मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज एवं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रातः के आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 27वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 17 जून सन 2026। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:52 हो चुके हैं। आरंभ होती है आज की ये सभा।

0: आप जुड़े हैं आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। श्रोताओं, आज खेत खलियान कार्यक्रम में वार्ता का विषय है ग्लैडुलस की खेती। वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।
1: किसान भाइयों नमस्कार। ग्लैडुलस या ग्लैडुलस भारत का एक श्रेष्ठ कट फ्लावर है। यह अपने सुंदर रंगीन पुष्प क्रमों के कारण ज्यादा प्रचलित है। इसकी सूचिकाओं में फूल एकांतरित रूप में लगते हैं, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। प्रचलित संकर जो है वो वैज्ञानिक के नाम पर है। ग्लैडुलस का पौधा सुंदर होने के कारण आंतरिक और बाह्य दोनों तरह की सजावट में प्रयोग होता है। लॉन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए नियमित और अनियमित दोनों तरह के बेड इसके उगाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग कट फ्लावर के रूप में होता है। इसके स्पाइक्स में से खूबसूरत बुके बनाया जाता है। इसका विदेशों में निर्यात भी होता है। ग्लैडुलस के उन्नत प्रभेद जो हैं उनमें आरती, अंबर, अप्सरा, ऑस्ट्रेलियन फेयर महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ब्यूटी स्पॉट, चेरी ब्लॉज, गोल्ड डस्ट, मीरा, सपना, ऑस्कर भी हैं। अनेक के इसकी किस्में खोजी गई हैं। ग्लैडुलस के उत्पादन में तापक्रम का बहुत बड़ा महत्व है। यह विभिन्न प्रकार की जलवायु में उगाया जा सकता है। इसके लिए उपयुक्त न्यूनतम तापक्रम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापक्रम 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है। फूल आने के समय वर्षा का होना इसके उत्पादन को प्रभावित करता है। ग्लैडुलस के लिए दिन में सीधी रोशनी की आवश्यकता होती है। 12 घंटे धूप युक्त दिन इसके वृद्धि एवं विकास के लिए अच्छा होता है। छाया में इसकी खेती नहीं की जा सकती है। तेज हवा के झोंकों द्वारा भी इसके पौधे को बचाना चाहिए। ग्लैडुलस की खेती के लिए जीवांश युक्त उर्वर भूमि अच्छी होती है। मिट्टी में जल निकास का उचित प्रबंध होना चाहिए। मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या हरी खाद डालकर इसे उर्वर जो है वो बनाया जा सकता है। ग्लैडुलस के बोने का समय जो है काफी महत्वपूर्ण है। उचित तापक्रम और उचित जलवायु में इसकी खेती करके लाभ कमाया जा सकता है। ग्लैडुलस की खेती कट फ्लावर के लिए जब की जाती है तो इसे जून, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है। ग्लैडुलस का प्रवर्धन कार्म और कार्मेल के द्वारा होता है। इसके बीज और टिश्यू कल्चर के द्वारा भी इसे लगाया जा सकता है, पौधे तैयार किए जा सकते हैं इसके। ग्लैडुलस की बहुत सी किस्मों में कैप्सूल बनते हैं जिसमें बीज होता है, इससे इसका प्रसारण होता है। नई हाइब्रिड किस्मों को विकसित करने के लिए बीज की आवश्यकता होती है। कार्म और कार्मेल से पौधों को उगाना सबसे अच्छा होता है। इसके लिए आप साधारण ढंग से संबंध समझ लें कि ग्लैडुलस का जो पौधा है तो होता है उसकी जड़ों में प्याज की तरह जो है वो बना हुआ होता है। उसी प्याज की तरह बने हुए गांठ को आपको लगाना है, उससे नए पौधे तैयार होते हैं। गर्मी के मौसम में मिट्टी को सूखने देना चाहिए। काले रंग की पॉलीथीन सीट से मिट्टी को भर देना ढक देना चाहिए। इससे यह होता है कि मिट्टी में स्थित हानिकारक कवक नष्ट हो जाते हैं। मिट्टी में ट्राइकोडर्मा विरिडिन नामक कवक का प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर मिट्टी में आप मिलावें। 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। 5 सेंटीमीटर के आकार वाले जो प्याज होते हैं यानी कि कॉर्म होता है ग्लैडुलस का, उसका प्रयोग बुआई के लिए करते हैं। इसे शीत गृहों से यानी कोल्ड स्टोरेज में से निकालने के बाद छाया में रखते हैं, फिर 0.2% बाविस्टीन के घोल से 30 मिनट के लिए उपचारित करते हैं, फिर इसे समतल क्यारियों में बोते हैं। ग्लैडुलस की फसल सिंचाई प्रमुख फसल है। इसमें मौसम के अनुसार सिंचाई देने की आवश्यकता होती है। खेत में खरपतवार नहीं रहे इसका भी आपको इंतजाम जो है वो करना है। इसके अलावा आप जो उपज इसकी होती है स्पाइक की यानी कि जिस डंठल में फूल लगे होते हैं उनकी उपज काफ़ी अच्छी होती है। उसकी कटाई उस समय करनी चाहिए जब बाजार में ज़्यादा उसकी खपत हो, ज़्यादा मांग हो। झुलसा रोग और स्टोरेज रॉट रोग इसमें लगता है। इसके लिए आप कोकनासी और बैक्टीरिया को मारने वाली जो दवा है।
0: खेत खलियान कार्यक्रम में आपने जाना ग्लैडुलस की खेती के बारे में। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब सुनिए दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर। अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज एवं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, अब आपके लिए प्रस्तुत है चिंतन मनन। चिंतन मनन फिजूल खर्ची, स्वर है सौरभ कुमार का। श्रोताओं, फिजूल खर्ची चिंतन मनन, आइए सुनते हैं।
2: गांधी जी छोटी से छोटी बात का भी बहुत ध्यान रखते थे। सत्य और अहिंसा उनके सफल जीवन का अमोघ अस्त्र था। इन दोनों अस्त्रों में भी वे अपने जीवन में सत्य का प्रयोग हमेशा करते रहते थे और लोगों को उस पर चलने का आग्रह करते थे। बात गोलमेज सम्मेलन की है। बापू भोजन के समय थोड़ा सा शहद लेते थे। प्रवास के समय एक दिन गांधी जी का जहां भोजन था वहां मीरा बहन हमेशा व्यवहार करने वाला शहद की

0: का विरोध करते हैं। वे जोर देकर कहते हैं कि शरीर मात्र मल मूत्र की खान नहीं है, बल्कि ये आत्मा का मंदिर है। इसलिए हमें हमेशा अपने शरीर का सदुपयोग करना चाहिए, सादा और सरल जीवन व्यतीत करना चाहिए, अनावश्यक खर्च नहीं करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह भी नहीं करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति जो जमा किया जाता है, हम उसके ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं। वंचितों के लिए होना चाहिए। सार्वजनिक कार्य जैसे सड़क, स्कूल आदि बनाने में अतिरिक्त धन को खर्च करना चाहिए। ऐशो आराम पर खर्च करना फिजूल खर्ची है। देश के करोड़ों लोगों के विषय में सोचना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने समाज, राज्य और अपने देशवासियों के कल्याण के लिए भी सोचना चाहिए। ऐसा फिजूल खर्ची बंद करने से ही हो पाएगा।
1: आप सुन रहे थे चिंतन मनन। स्वर था सौरभ कुमार का। जैसे कि आपने चिंतन मनन में जाना, गांधी जी फिजूल खर्ची के सख्त खिलाफ थे। और अगर हम अपने जीवन में भी फिजूल खर्ची को कम कर दें तो बहुत सारी चीज़ें बदली जा सकती है। सबसे पहले तो हम व्यर्थ का व्यय कम कर देंगे, उससे ना केवल हमें फ़ायदा होगा, हमारे परिवार को फ़ायदा होगा, बल्कि एक तरह से समाज को भी फ़ायदा होता है, पर्यावरण को भी फ़ायदा होता है। और जब फिजूल खर्ची रुकती है तो हमारे पास जो धन एकत्रित होता है उसे समाज के कामों में उपयोग करना चाहिए। जैसे कि गांधी जी का मानना था, जो धन हमारे पास होता है उसके हम ना कि मालिक हैं बल्कि ट्रस्टी हैं। चिंतन मनन आपने सुना आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। आइए अब आनंद लेते हैं भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। आरंभ करेंगे देश वंदना के साथ।

हमें हमारे जीवन में कई बार ऐसा अनुभव होता है कि जब हमारी सुख की घड़ियां चल रही होती है तो हमारे आसपास लोगों की भीड़ होती है, लेकिन जैसे ही वो सुख की घड़ी खत्म होती है, दुख प्रारंभ होता है, धीरे धीरे कर लोग छटने लगते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग मदद उसी की करते हैं जिनसे वापस मदद की अपेक्षा की जाती है, जिनसे वापस मदद की संभावना होती है, और जो व्यक्ति दुख में होता है उनसे किसी बात की अपेक्षा कैसे की जा सकती है, और वो फिर अकेला रह जाता है। इसलिए कहते हैं कि हमारे जीवन में अगर हमारा कोई सच्चा साथी है तो वो दुख में भी हमारे साथ होगा, और मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी ही होती है कि उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए कहते हैं कि सुख हो या दुख हो, हमारा एक ही सच्चा साथी हो सकता है, और वो है हमारे राम, हमारे प्रभु, हमारा विश्वास। जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे वो धूप हो या छाया हो, सुख हो या दुख हो, वो हर परिस्थिति में हमारे पास होते हैं, हमारे साथ होते हैं।

सुख में सब साथ होते हैं। कई बार हम अपने कर्म को अपनों के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए गलत राह पर ले जाते हैं, परंतु अंत में पाते हैं कि वो हमारा साथी ही नहीं है जिसके लिए हमने गलत कर्म किए, गलत राह पर चले, जिसके लिए हमने ढेर सारे धन इकट्ठा किए, लेकिन हम पाते हैं कि वो हमारा है ही नहीं, वो व्यक्ति ही हमारा नहीं है, और दुख के समय में वो भी छोड़कर चले जाते हैं। तब ऐसे वक्त में हमें स्मरण हो आता है कि ईश्वर हैं जो हमारे हैं, ईश्वर हैं जो जगत के स्वामी हैं। चाहे कितने भी गलत राह पर हम चल लें, चाहे कितने भी पाप कर लें, ईश्वर सब देख रहे हैं, और ईश्वर हमें तभी सही राह दिखाने की कोशिश करते हैं जब हम पहली बार दूसरी बार गलत राह को चलते हैं। लेकिन जब हम नहीं समझते तो धीरे धीरे ईश्वर हमारा साथ छोड़ने लगते हैं, लेकिन जब हमें समझ आता है कि जो हैं ईश्वर ही हैं, जगत के पिता वही हैं और अंतर्यामी भी, और जब हम उनके पास वापस लौटते हैं तो पाते हैं कि ईश्वर तो हमारे रोम रोम में अभी भी बसे हुए हैं, और तब हमें समझ आता है कि ईश्वर से अब हम क्या मांगें। सिवाय उनके साथ के ईश्वर से तब और कुछ मांगने को नहीं रह जाता, और हम समझ जाते हैं कि जो हमारे ईश्वर रोम रोम में बसे हैं उन्हें हमें फिर से महसूस करना होगा, अपने सच्चे कर्मों से सही राह पर चलकर ईश्वर को अपने अंदर वापस जागृत करना होगा।

ईश्वर से और कुछ मांगना भी नहीं चाहिए, उनसे केवल साथ मांगना चाहिए, उनसे केवल अपनों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो उनके हाथ में है उसे बदला नहीं जा सकता। हाँ, अपने कर्म अच्छे किए जा सकते हैं और ईश्वर से ये मांगा जा सकता है कि हे ईश्वर, हमें अपने कर्मों का फल देना। जब हम ये मांगना आरंभ कर देते हैं कि हे ईश्वर, हमें अपने कर्मों का फल देना, तब हम अपने जीवन के लिए अपने जीवन का दायित्व स्वयं उठाने को तैयार हो जाते हैं। जब हमें पता होता है कि हमारे कर्मों का फल हमें मिलेगा, तब हम अपने कर्मों को भी बेहतर करते हैं, अपने अंदर प्रेम भरते हैं, अपने अंदर मानवता भरते हैं और ये समझते हैं कि हर प्राणी में ईश्वर हैं और चाहे धर्म कोई भी हो, ईश्वर कितने भी हों, सब एक हैं। वैसे कहा भी जाता है कि राम हो या रहीम हो, राम हो या श्याम हो, सब एक ही हैं। कृष्ण कहो या राम कहो, दोनों ही नाम सुंदर हैं, दोनों ही नाम एक हैं।

विशेषता है भजन में, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में किया गया है।

0: भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। आज स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में भेंट वार्ता का विषय है आवाज में अचानक बदलाव। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर प्रखर उपाध्याय।
1: चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बातें कर रहे हैं आवाज में अचानक होने वाले बदलाव के विषय पर, और ये क्यों होता है और किस प्रकार ये खतरनाक भी साबित हो सकता है कभी कभी। इन बातों की जानकारियां लेने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है शहर के जाने माने कान नाक गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रखर उपाध्याय को। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या क्या उसके लक्षण हो सकते हैं या क्या उसका कारण हो सकता है जो कि हम समझे कि आवाज में अचानक बदलाव हो गया है।
2: आवाज में बदलाव में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी का आवाज का पिच बदल गया है, माने बोलेंगे कि मेरी आवाज पहले पतली थी अभी भारी लग रही है, या फिर बोलेंगे कि मैं जोर से नहीं बोल पाता हूँ, पहले जोर से बोल पाता था अब उतनी जोर से नहीं बोल पा रहा।

0: या बोलेंगे कि मैं जब भी आवाज कुछ बोलता हूँ तो लगता है सिर्फ फटा फटा सा आ रहा है, या फिर मुझे दर्द होता है तुरंत, या ज्यादा देर बोल नहीं पाता हूँ। तो ये सब कंप्लेंट लेके लोग आते हैं और इसको आवाज का बदलना मान सकते हैं हम।
1: जी, तो क्या ये सभी प्रकार के लोगों में हो सकता है या किसी खास व्यवसाय से जुड़े लोगों में ये ज्यादातर देखा जा सकता है?
0: देखिए, आवाज का बदलाव ऐसे किसी में भी हो सकता है,
1: जी।
0: लेकिन ऐसे कुछ व्यवसाय हैं जहाँ की उन लोगों को ध्यान देना चाहिए जिनकी पूरी नौकरी उनकी बोली पर है, जैसे कि कोई डॉक्टर है, या फिर कोई सिंगर है गाना गाता है, या फिर कोई लॉयर वकील है, या टीचर हैं। तो इन सब में तो इनकी नौकरी ही बोली पर है ना, हर
1: जी
0: समय तो
1: जी
0: बोलते रहना है उनको। ऐसे
1: जी
0: लोगों को आवाज में प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर ज्यादा हो गई तो इनकी नौकरी भी डिस्टर्ब हो सकती है।
1: जी जी तो शारीरिक कष्ट तो होगा ही, व्यवसाय पर भी प्रभाव पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, अब आवाज में अचानक बदलाव के कारणों पर हम आपसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या कारण हो सकते हैं इसके।
0: सबसे कॉमन कारण है सर्दी खांसी होना, इसमें आवाज बैठ जाएगी, वो अपने आप ठीक हो जाता है, उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है।
1: जी जी
0: अब दूसरी तरफ आए तो देखें कि जैसे हमारी आवाज जो बनती है यह ध्वनि पट्टी से, यानी कि वोकल कॉर्ड से बनती है, जो कि हमारे श्वास की नली में स्थित होता है।
1: जी
0: तो अगर मान लीजिए वोकल कॉर्ड में कोई मांस बढ़ जाए, जैसे कुछ लोग जैसे तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, शराब का सेवन करते हैं, तो ऐसे लोगों को वोकल कॉर्ड पे मांस होने का खतरा रहता है।
1: जी
0: फिर जैसे वोकल कॉर्ड में जैसे या ध्वनि पट्टी में गिल्टी हो जाना, या कोई पॉलिप बन जाना, या फिर घाव हो जाना, या फिर नस की कमजोरी से वोकल कॉर्ड जो है वो ठीक से हिल नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ हो जाना, ये सब कारणों से भी आवाज बदल जाती है।
1: जी, क्या बहुत अधिक ठंडा या बहुत अधिक गर्म पदार्थों का सेवन करने से भी ऐसा हो सकता है क्या?
0: बिल्कुल हो सकता है। तो अति सर्वत्र वर्जित,
1: जी जी
0: इसीलिए ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म नहीं लेना चाहिए।
1: जी निश्चित रूप से। अब इसके इलाज की अगर हम बात करें तो क्या इसका उपचार संभव है?
0: बिल्कुल संभव है। तो जैसे किसी की आवाज बदल गई, उनको सर्दी खांसी है, तो वो इलाज लेंगे, सर्दी खांसी ठीक हो जाएगी, उस दौरान सुसुम पानी से, गर्म नहीं, सुसुम पानी से गलगला कर रहे हैं, और मैंने सादे पानी का भाप ले रहे हैं 10-10 मिनट, तो अपने आप आवाज ठीक हो जाएगी। अब जिसने 15 दिन तक इलाज लिया लेकिन ठीक नहीं हुआ, 15 दिन तक इलाज लेने के बाद भी आराम नहीं हुआ,
1: जी
0: तो उसको तफ्तीश करानी चाहिए, ये एकदम जरूरी है।
1: जी,
0: तो आप जाएंगे अपने नाक कान गला के विशेषज्ञ के पास, वो क्या करेंगे कि एक कैमरा डाल के, आपके गले में कैमरा डाल के देखेंगे कि
1: अच्छा।
0: आपकी ध्वनि पट्टी में कोई बीमारी तो नहीं है, और जैसा कुछ बीमारी दिखा उसके हिसाब से दवा से इलाज होगा। अगर मांस बढ़ गई है तो उसको लेजर से हटा दिया जाएगा या ऑपरेशन से हटा दिया जाएगा, लेकिन वो डरने की बात नहीं है, काफी आवाज की बीमारियों में दवा से ही बहुत आराम हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आप दवा सही सही लेंगे, नियम कानून पालन करेंगे, तो भविष्य में बीमारी बढ़ेगी नहीं या कुछ और खतरनाक नहीं हो जाएगा, तो कोई डरने की बात नहीं है।
1: जी, अब अंत में डॉक्टर साहब हम आपसे सलाह लेना चाहेंगे कि किस प्रकार हम अपनी आवाज को बचा कर रख सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं, कौन कौन से साधारण नियमों का पालन करना चाहिए?
0: तो सबसे पहला है कि सूखे गले में ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, रह रह के थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। दूसरा है, ज्यादा जोर से चिल्ला के या ज्यादा जोर से बात नहीं करना चाहिए, इससे ध्वनि पट्टी में चोट लग सकती है। तीसरा है कि लंबे देर तक बिल्कुल नहीं खींचना है, आप थक रहे हैं, आप रिलैक्स हो जाइए, लंबा सांस लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, फिर धीरे धीरे बात कीजिए, क्या हड़बड़ी है आपको। आखिरी सबसे जरूरी है कि गैस को कंट्रोल करना है, एसिडिटी को, जो
1: अच्छा।
0: पेट में एसिडिटी होती है उसको काबू में रखना है, क्योंकि एसिडिटी आवाज को बहुत तंग करती है।
1: जी निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी कि हम अपनी आवाज को किस प्रकार बरकरार रख सकते हैं, और अगर इसमें कुछ बदलाव हो तो डॉक्टरी सलाह लेना भी बहुत जरूरी है और इसका उपचार।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आपने जाना आवाज में अचानक बदलाव के बारे में। भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर प्रखर उपाध्याय, ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब आपके लिए प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की अगली कड़ी, श्रीकांत पारगांवकर और रविंद्र साठे के स्वर में।

उधर दशरथ पुत्रों से, चाहे वे भगवान के अवतार भी हों, लोहा लेने का निश्चय करके रावण मारीच के पास पहुंचता है और इधर श्रीराम जनक नंदिनी पर मनुष्य लीला करने का अपना मंतव्य प्रकट करते हैं। जब तक रावण का विनाश न हो जाए, सीता अग्निदेव की शरण चली जाती हैं।

रामचरितमानस गान आपने सुना श्रीकांत पारगांवकर एवं रविंद्र साठे के स्वर में। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। श्रोताओं, अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ें इससे पहले आइए जान लेते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की समय सारणी एवं संक्षिप्त रूपरेखा।

रोजाना की तरह प्रातः 7 बजे सुनिए मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनते हैं मौसम सूचना, रेल सूचना, आज का इतिहास, समाचार पत्रों की सुर्खियां और सुगम संगीत, साथ ही फिल्मी गीत। और आज आप सुन पाएंगे काव्यांजलि में कृष्णानंद चौधरी की कविताएं। आज फिल्मी गीतों का प्रसारण समय है प्रातः 9:06, 10:11, 11:30, दोपहर 2:30, शाम 5:30, रात 10:00। फिल्म संगीत कार्यक्रम एक फनकार होगा और रात 10:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से होगा। सुगम संगीत का आनंद लीजिए प्रातः 9:30 पर, कलाकार होंगे राजीव कुमार सिंह। शाम 7:52 पर कलाकार डॉक्टर स्मिता सिन्हा। लोकगीत आपके लिए प्रस्तुत होगा प्रातः 10:30 पर, कलाकार होंगी लीला कुमारी। 1 बजे सुनिए लोकगीत संजीव कुमार सुमन की आवाज में। बहने अपना कार्यक्रम नारी लोक सुनती हैं दोपहर के 12:00, 12:30 पर होता है NCERT का उमंग। घर आंगन कार्यक्रम प्रसारित होगा 1:30 पर। दोपहर 3 बजे प्रस्तुत होगा रविंद्र संगीत कार्यक्रम, कलाकार होंगे लोपा मुद्रा मित्रा। 3:20 पर हम आपको सुनवाते हैं समूह स्वर में देशभक्ति गीत। 3:25 से शाम 5 बजे तक विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम होंगे। हमारे केंद्र के शेष कार्यक्रम प्रसारित होंगे शाम 5 बजे से।

शाम 5 बजे युवाओं को संबोधित हमारा विशेष कार्यक्रम युववाणी, शाम 6 बजे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम होगा, शाम 7:10 पर सुनिए श्रमिक जगत कार्यक्रम, चर्चा का विषय कार्यक्रम प्रसारित होगा रात 9:30 पर दिल्ली केंद्र से, हमारी आज की ये सभा संपन्न होगी रात 11:10 पर।

कार्यक्रम विवरण आपने सुना आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। 6:55 होने वाले हैं, आइए सुनिए दिल्ली केंद्र से संस्कृत समाचार।

गुड मॉर्निंग, राम राम, शुभ प्रभात। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना, अपने अपनों का और अपने आसपास का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, खुश होंगे, साथ ही अपने जीवन में हर रोज़ कुछ नया जोड़ने की, कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। बस आपकी इसी कोशिश में आपका थोड़ा सा साथ देने के लिए लेकर आ गए हैं हम आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा। आप सभी को मेरा नमस्कार, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके और हमारे पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में। दोस्तों, गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में बहुत सी बातें होने वाली है, बहुत से गपशप और बहुत सा मनोरंजन, और मनोरंजन की पोटली में लिपटी होने वाली है ढेर सारी जानकारियाँ और जानकारी ढेर सारी। लेकिन हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक छोटी सी पर बेहद ज़रूरी जानकारी के साथ। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक समझा है, मैं आपको बताने वाली हूँ वक्त का हाल। वक्त हो चुका है 7:02 और दिन है आज बुधवार का और तारीख है 17 जून 2026। ये देखिए कितनी तेज़ी से तारीख भाग रहा है, और एक बार दिन भी शुरू हो जाए ना तो दिन इस तरीके से भागता है कि पता ही नहीं लगता कि कब शाम हो गई और कब हमने जो आज काम सोचा था वो पूरा होता है, कभी कभी कभी नहीं होता है। तो बस दिन भागते और दौड़ते रहते हैं, बस हमें चाहिए कि हम अपने दिन की शुरुआत अच्छी तरीके से करें तो पूरा दिन अच्छा जाता है। दिन की शुरुआत थोड़ा योग के साथ कीजिए, थोड़ा ध्यान के साथ कीजिए और हमारे साथ कीजिए। जी हाँ, आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र के साथ जुड़िए और अपने दिन की शुरुआत गुड मॉर्निंग विक्रमशिला के साथ कीजिए और एक प्रार्थना के साथ। प्रार्थना कि हे घनश्याम, हम पर कृपा करो, और साथ ही आप प्रार्थना ये भी कीजिए कि आप मानव जीवन का कल्याण करो और हमारी पृथ्वी की रक्षा करो, हमारे भारत माता की रक्षा करो। इन कुछ प्रार्थनाओं के साथ अगर आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो आप अपने लिए तो बेहतर मांगते ही हैं, साथ ही जब आप पृथ्वी के बारे में सोचते हैं, जन कल्याण के बारे में सोचते हैं, तो आपके दिन की शुरुआत एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ होती है। आइए शुरुआत करें अपने दिन की घनश्याम सुंदर से एक आराधना के साथ, घनश्याम सुंदर से एक विनती के साथ कि कृपा करना घनश्याम जी,

श्याम सुंदर तो एक बार कृपा कर भी दें और कर भी देते हैं, परंतु मौसम आजकल बिल्कुल भी इस मिजाज में नहीं है कि हम पर कृपा करें। और मौसम की बात करें, आज अधिकतम तापमान 37.3 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। आज आसमान में बादल आपको ना के बराबर दिखेंगे, तो वर्षा होने की भी संभावना काफ़ी कम है। और अगर हम सापेक्ष आर्द्रता की बात करें तो सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-80% और दोपहर में 25-30% रहने की संभावना है। और इस दौरान हवा में आप महसूस करेंगे कि 14-15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चल रही है। और साथ ही अगर हम आपको बता दें तो आज बहुत ही अच्छी धूप, बहुत ही खतरनाक धूप निकलने वाली है, तो जहाँ भी बाहर जाएं आप ध्यान रखें कि आप अपने पास एक पानी का बोतल रखें और साथ ही छाता भी रखें। इन दो चीज़ों के बिना आप बाहर जाएं ही नहीं, और साथ ही कोशिश ये भी करें कि दोपहर के वक्त आप बाहर ना जाएं। और अभी तो बच्चों के स्कूल को भी दोपहर 12:30 बजे तक कर दिया गया है, तो आपको अपने बच्चों को लाने के लिए भी नहीं जाना होगा। स्कूल ट्यूशन भी आप सुबह और शाम जा सकते हैं, तो बिना वजह के आप बाहर जाने से बिल्कुल बचें। बाहर बहुत कड़ाके की धूप है। और जैसे स्कूल की छुट्टियों की बात हुई, तो बहुत सारे बच्चे अभी सोच रहे होंगे कि हाँ, छुट्टी थोड़ी और बढ़नी चाहिए थी, पर क्या करें, छुट्टी तो ख़त्म हो गई। गर्मी की छुट्टियाँ जो होती है ना, पूरे साल बच्चों को इंतज़ार रहता है। जब हम भी बच्चे हुआ करते थे तो सोचे कि हमें भी पूरे साल गर्मी की छुट्टियों का इंतज़ार रहता था कि गर्मी की छुट्टियों में यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, नानी के घर जाएंगे, या बहुत सी चीज़ें होती थी जो हम गर्मी की छुट्टियों में जिसका आनंद हम लेते थे। और कहते हैं ना कि बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ें उन्हें खुशी दे जाती है। और बच्चों के लिए ज़िंदगी का जो प्यार होता है वो कुछ भी हो सकता है। छोटी सी कोई छोटा सा कोई खिलौना हो सकता है, छोटी सी छुट्टी हो सकती है, या क्लास में टीचर का अब्सेंट होना भी ज़िंदगी की खुशी बन सकती है, ज़िंदगी का प्यार बन सकता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम ज़िंदगी में प्यार के मायने भी बड़े बड़े ढूंढने लगते हैं। अगर हम अच्छे से देखें हमारे आसपास, तो हमारे खुश रहने का बहुत सारा कारण हमें मिल सकता है, और ज़िंदगी का प्यार हमें बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों में, हमें अपने अपनों में मिल सकता है। बस ढूंढने की ज़रूरत है।

कुछ लोग अपनी जिंदगी का प्यार किसी की नरगिसी आंखों में ढूंढते हैं, कुछ बादल में, कुछ किताबों में और कुछ सफ़र में। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बस अपने जीवन में चाहते हैं कि वो बहुत सारी जगहों पर घूम फिर लें और अपने जीवन का पूरी तरीके से आनंद उठा लें। सबके अपने अपने जीवन जीने का तरीका होता है और आपके जीवन जीने का तरीका तब तक बिल्कुल सही है जब तक आपकी वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ नहीं हो रही है, तब तक सब ठीक है। और अगर हम सफ़र की बात करें और ट्रेनों की बात ना करें तो कैसे हो सकता है? आइए हम आपको ट्रेनों का हाल बता देते हैं। और अगर आपके कोई अपने आने वाले हैं, आप कहीं जाने वाले हैं, तो बिल्कुल ट्रेन का समय अच्छी तरीके से नोट कर लें। ट्रेन संख्या 15553 भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 7:50 पर भागलपुर से रवाना होगी। ट्रेन संख्या 13016 हावड़ा कविगुरु एक्सप्रेस सुबह 7:45 पर भागलपुर आएगी। 12368 आनंद बिहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस 6 की देरी से चलते हुए 8:21 पर भागलपुर पहुँचेगी। 15658 ब्रह्मपुत्र मेल अपने निर्धारित समय 8:05 पर भागलपुर आएगी। 53416 जमालपुर साहिबगंज पैसेंजर तय समय पर 8:37 पर भागलपुर आएगी। भागलपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस यानी कि 15648 सुबह 8:30 पर भागलपुर से रवाना होगी। 13403 रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस बिल्कुल राइट टाइम है, 9 भागलपुर पहुंच जाएगी। 6341 साहिबगंज जमालपुर मेमू अपने तय समय 9:15 पर भागलपुर आएगी। 13409 मालदा क्यूल इंटरसिटी बिल्कुल सही समय पर 9:35 पर भागलपुर आएगी। 13241 बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी का सही समय है 10:15। ये

0: बिल्कुल अपने सही समय से चल रही है। 1, 2, 3, 6, 7 भागलपुर आनंद बिहार विक्रमशिला एक्सप्रेस अपने तय समय 11:55 पर भागलपुर से अपने गंतव्य की ओर रवाना होगी। फिलहाल हम रवाना होते हैं एक छोटे से अंतराल की ओर, बिल्कुल छोटा सा अंतराल है। अंतराल के इस पार हम आपको यहीं मिलेंगे, तो आप भी कहीं मत जाइएगा, आप हमारे साथ यानी कि आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र के साथ बने रहिए। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त रेडियो होस्ट उमा।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronx. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronx owners starting at just rupees 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
4: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
5: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: एक छोटे से अंतराल के इस पार अपने वादे के अनुसार हमें इस पार, जी हाँ, लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। मैं हूँ आपके रेडियो दोस्त रेडियो होस्ट उमा। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम सुनेंगे काव्यांजलि। काव्यांजलि में आज आप सुनेंगे कुछ कविताएँ। कविताओं को लिखा है कृष्णानंद चौधरी ने। इनकी कुछ कविताएं आप सुनेंगे पिता पर, कुछ कविताएं आप सुनेंगे बरखा रानी पर, कुछ कविताएं पर्यावरण पर और कुछ कविताएं खुद के ऊपर। और यानी कि जब हम खुद के बारे में सोचते हैं तब हमारी सोच किस तरह से होती है, उन कविताओं को आप सुनेंगे। और आपको पता है पिता पर जो कविता आप सुनने वाले हैं, और मतलब काव्यांजलि की शुरुआत ही होने वाली है पिता पर कविता से, कि किस तरीके से पिता हमारे लिए ना एक ऐसे छत की तरह होते हैं जो हमें हर चीज़ से बचाते हैं, हमारी सुरक्षा भी करते हैं, हमें प्यार भी देते हैं। और पिता जो हमारे, जिनके बारे में शायद बहुत कम बात होती है क्योंकि वो थोड़े कठोर होते हैं, परंतु पिता तो पिता होते हैं, उनके मन में भी ढेर सारा प्यार होता है। और हाँ, मैं आपको बताने वाली थी कि पिता दिवस भी मनाया जाता है। जी हाँ, जून के तीसरे रविवार को पिता दिवस मनाया जाता है। तो पिता दिवस में आप अपने पिता के लिए कुछ खास कीजिए, और अगर आपको भी लगता है कि आपके पिता थोड़े कठोर हैं तो एक बार उनके लिए कुछ खास करके देखिए, एक बार उनसे प्यार से बात करके देखिए, देखिएगा कि आपके पिता बहुत नरम है, बहुत आसानी से वो पिघल जाते हैं, बस एक आवरण उन्हें बनाए रखना होता है। क्योंकि जब कोई किन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी होती है, ऊपर से सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, तो थोड़ा कठोर होना तो बनता है। फिलहाल आइए कृष्णानंद चौधरी की लिखी कविताएं सुनते हैं काव्यांजलि कार्यक्रम में।

चांद है, पिता सूरज है, चांद है, विस्तृत आसमान है। पिता सूरज है, चांद है, विस्तृत आसमान है। चमकते सितारों का सारा जहान है, चमकते सितारों का सारा जहान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, पिता ही मकान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, पिता ही मकान है। सारी जरूरतों का सारा सामान है, पिता ही मकान है। सारी जरूरतों का सारा सामान है। पिता गीता है, रामायण है। पिता गीता है, रामायण है, समस्त पुराण है। पिता गीता है, रामायण है, समस्त पुराण है। सारी बाधाओं का मधुरम निदान है, सारी बाधाओं का मधुरम निदान है। पिता हंसी की खुशी की, पिता हंसी की खुशी की मीठी मुस्कान है। पिता हंसी की खुशी की मीठी मुस्कान है। जीवन के हर पल का स्वर्णिम बिहान है, जीवन के हर पल का स्वर्णिम बिहान है। धूप से बारिश से बचाने वाला, धूप से बारिश से बचाने वाला पिता ही दलान है। धूप से बारिश से बचाने वाला पिता ही दलान है। फले फूले जिसके तले, फले फूले जिसके तले दिन रात ही अरमान है। फले फूले जिसके तले दिन रात ही अरमान है। इस अनोखी सृष्टि का, इस अनोखी सृष्टि का सच में अगर भगवान है, इस अनोखी सृष्टि का सच में अगर भगवान है तो पिता भगवान का ही दूसरा प्रतिमान है। पिता भगवान का ही दूसरा प्रतिमान है। दूसरी रचना है बरखा रानी। ऋतुओं का राजा बसंत, ऋतुओं का राजा बसंत, बरखा ऋतुओं की रानी। ऋतुओं का राजा बसंत, बरखा ऋतुओं की रानी। कहकर कवियों ने वर्षा के महत्व को रेखांकित करने का यूं ही प्रयास नहीं किया है, बल्कि एक सच को सच कहा है। यह सच साकार होता है, यह सच साकार होता है जब ज्येष्ठ की प्रचंड गर्मी से, यह सच साकार होता है जब ज्येष्ठ की प्रचंड गर्मी से मूर्छित जनजीवन को फिर से हरा भरा करने की, मूर्छित जनजीवन को फिर से हरा भरा करने की एक नई ऊर्जा लेकर ममतामयी बनकर, एक नई ऊर्जा लेकर ममतामयी बनकर धरती पर यह उतरती है। एक नई ऊर्जा लेकर ममतामयी बनकर धरती पर यह उतरती है। इसे देखते ही मोर नाचने लगते हैं, इसे देखते ही मोर नाचने लगते हैं, दादुर जयकार करने लगते हैं, झुंगुरे करताल बजाने लगता है। इसे देखते ही मोर नाचने लगते हैं, दादुर जयकार करने लगते हैं, झुंगुरे करताल बजाने लगता है। पपीहे पी कहाँ, पपीहे पी कहाँ, पी कहाँ पुकारने लगता है। पपीहे पी कहाँ पुकारने लगता है। पूरी धरती इसके स्नेह से नहा जाती है, पूरी धरती इसके स्नेह से नहा जाती है। आदमी ही नहीं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फल फूल एवं फसलें भी लहलहा उठती है। आदमी ही नहीं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फल फूल एवं फसलें भी लहलहा उठती है। प्रकृति को हसमुख और मनमोहक बना देती है, प्रकृति को हसमुख और मनमोहक बना देती है। सचमुच बरखा रानी पूरी धरती को निहाल कर देती है, सचमुच बरखा रानी पूरी धरती को निहाल कर देती है। इसके लिए बेसब्री से करता है इंतजार, इसके लिए सभी बेसब्री से करता है इंतजार। यही है बरखा रानी का राज, इसके लिए सभी बेसब्री से करता है इंतजार। यही है बरखा रानी का राज। तीसरी रचना है पर्यावरण और हम। मेरा दिल दहल उठता है, मेरा दिल दहल उठता है जब कोई आदमी मरता है, मेरा दिल दहल उठता है जब कोई आदमी मरता है। मेरा दिल तब भी दहल उठता है जब कोई पेड़ काटता है, मेरा दिल तब भी दहल उठता है जब कोई पेड़ काटता है। पेड़ों का निरंतर कटना, आदमी का असमय मरना, पेड़ों का निरंतर कटना, आदमी का असमय मरना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बल्कि एक आदमी के मरने से ज़्यादा नुकसान
एक पेड़ के कटने से होता है, बल्कि एक आदमी के मरने से ज़्यादा नुकसान एक पेड़ के कटने से होता है, क्योंकि पेड़ों में संभावनाएं होती है, क्योंकि पेड़ों में संभावनाएं होती है, और संभावनाओं का मरना अस्तित्व का मिटना ही तो होता है, और संभावनाओं का मरना अस्तित्व का मिटना ही तो होता है। जब कोई व्यक्ति किसी नए पेड़ को काटकर

0: जब कोई व्यक्ति किसी नए पेड़ को काटकर उसका छाल छीलकर बाजार में बिकने के लिए खड़ा करता है, तब वह पेड़ पेड़ नहीं लगता बल्कि सफ़ेद चर्म रोग से ग्रसित कोई बीमार लगता है। तब वह पेड़ पेड़ ही नहीं लगता, सफ़ेद चर्म रोग से ग्रसित कोई बीमार लगता है, क्योंकि पेड़ का रंग तो हरा होता है, क्योंकि पेड़ का रंग तो हरा होता है। ये भोगवादी लोग विषैले उद्योग, रासायनिक प्रयोग, बीमारियां बांटते हैं। ये भोगवादी लोग विषैले उद्योग, रासायनिक प्रयोग, बीमारियां बांटते हैं, जो दम घुटता है। हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे बच्चे खांसते हैं। हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे बच्चे खांसते हैं। कौन रोकेगा इन्हें, कौन टोकेगा? कौन रोकेगा इन्हें, कौन टोकेगा? निरंतर गर्म होते सूर्य का आतप, निरंतर गर्म होते सूर्य का आतप, जरा सोचें। भौतिकता की यह भूख कहीं हमारे अस्तित्व को नो खा जाए, भौतिकता की यह भूख कहीं हमारे अस्तित्व को नो खा जाए, हमारी हरियाली को नो पी जाए। इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम क्या करें? आओ आज विचार करें, आओ आज विचार करें और संकल्प लें, आओ आज विचार करें और संकल्प लें। प्रत्येक व्यक्ति एक एक पेड़ अवश्य लगाएं, प्रत्येक व्यक्ति एक एक पेड़ अवश्य लगाएं, प्रत्येक व्यक्ति एक एक पेड़ अवश्य लगाएं। चौथी रचना है कविता। खुद भी सज लें सजा लें तुमको, खुद भी सज लें सजा लें तुमको, इन पलकों पर बिठा लें तुमको। खुद भी सज लें सजा लें तुमको, इन पलकों पर बिठा लें तुमको। दिल को शीशा बना के उसमें, दिल को शीशा बना के उसमें चेहरा तेरा दिखा दें तुमको। दिल को शीशा बना के उसमें चेहरा तेरा दिखा दें तुमको। मुझ में तुम हो, तुझ में मैं हूँ, मुझ में तुम हो, तुझ में मैं हूँ, धड़कन दिल की सुना दें तुमको। मुझ में तुम हो, तुझ में मैं हूँ, धड़कन दिल की सुना दें तुमको। पी सकते हो हजारों गम को, पी सकते हो हजारों गम को, आँखों से मैं पिला दें तुमको। पी सकते हैं हजारों गम, आँखों से मैं पिला दें तुमको। दिल की दुनिया अलग है दुनिया, दिल की दुनिया अलग है दुनिया, उस दुनिया को दिखा दें तुमको। दिल की दुनिया अलग है दुनिया, उस दुनिया को दिखा दें तुमको। मरना तो एक दिन है सबको, मरना तो एक दिन है सबको, जीना क्या है सिखा दें तुमको। मरना तो एक दिन सबको, जीना क्या है सिखा दें तुमको। जब जी चाहे तुम्हें ही देखें, जब जी चाहे तुम्हें ही देखें, आँखों में ये बसा लें तुमको। जब जी चाहे तुम्हें ही देखें, आँखों में यूँ बसा लें तुमको।
1: जब जी चाहे तुम्हें देखें, आँखों में यूँ बसा ले तुमको। काव्यांजलि में आप सुन रहे थे कृष्णानंद चौधरी की लिखी कविताएं उन्हीं की आवाज़ में, और आखिरी कविता आपने सुनी आँखों के बारे में, प्रेम के बारे में। और वाकई हम जब जिनसे प्रेम करते हैं, हम जिन्हें पसंद करते हैं, या कई बार ऐसे भी आप जाएंगे तो आपको किसी की आँखों को देखकर लगता है कि कितनी खूबसूरत आँखें हैं। और जिनसे हम प्रेम करते हैं तो उनकी आँखें खूबसूरत हो या ना हो, हमारी नज़र में उनकी आँखों में जो खूबसूरती होती है ना, वो बहुत ही कमाल की होती है। और उनकी आँखों में जो, उनकी आँखें जो हमसे दास्ता कहती है, बिना कहे जो बात कहती है, वो बात ही अजीब सी होती है। और आँखों की अदाएँ तो मशहूर है, कवियों के लिए मशहूर है, प्रेमियों के लिए मशहूर है, लेखकों के लिए।

एक बहुत ही प्यारे से गीत के बाद अब कुछ जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। जी हाँ, उससे पहले आपको मैं समय का हाल बता दूं, 7:34 हो चुके हैं और दिन तो पता ही है आपको, दिन है आज बुधवार का और तारीख है 17 जून 2026। और 17 जून को क्या कुछ घटित हुआ था, आइए इस बारे में जानते हैं। और अगर हम आज के इतिहास की बात करें, इतिहास में आज क्या कुछ दर्ज हुआ है, तो 1994 में उत्तरी कोरिया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को अपने देश में बने रहने को सहमत हो गई थी। 2002 में कराची में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पुनः खोला गया था। 2004 में मंगल पर पृथ्वी की चट्टानों से मिलते जुलते पत्थर मिले थे। और 2008 में देश में विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस का बेंगलोर में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। आज ही के दिन 2008 में रूस ने 2012 तक अपने विनाशकारी रासायनिक हथियारों का जखीरा नष्ट करने की दिशा में कदम बढ़ाया था। 2012 में साइना नेहवाल तीसरी बार इंडोनेशिया ओपन चैंपियन बन गई थी। और अब बात उन व्यक्तियों की जिनका आज निधन हो गया था। 2015 में मदन मोहन पुंशी इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। मदन मोहन पुंशी भारत के भूतपूर्व 28वें मुख्य न्यायाधीश थे। 1928 में गोपबंधु दास का निधन हुआ था। गोपबंधु दास प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, कवि, साहित्यकार और उड़ीसा के प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता थे। गोपाल गणेश आगरकर 1895 में इस दुनिया को अलविदा कह गए, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता। भारत के पहले वाइसराय लॉर्ड कैनिंग भी आज ही के दिन उस दुनिया को अलविदा कह गए थे 1862 में। 1858 में निधन हो गया था रानी लक्ष्मीबाई का, या कहें कि वीर गति को प्राप्त हो गई थी रानी लक्ष्मीबाई। और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सबको पता है, भारत के हर छोटे छोटे बच्चे को भी पता होगा कि 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना रानी थी रानी लक्ष्मीबाई। 1828 में इनका जन्म हुआ था, 1858 में रानी लक्ष्मीबाई का निधन हो गया था। और कहते हैं कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सबसे साहसी वीरांगना थी। और मात्र 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य की विशाल सेना को हराया था, उनका डटकर सामना किया था और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी का गौरव प्राप्त किया था। बचपन का नाम झांसी

रानी का मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। और उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और माता भागीरथी बाई। बचपन में उनका झुकाव हो चला था युद्ध कला, घुड़सवारी और तलवारबाजी की ओर। उनका विवाह 1842 में झांसी के महाराजा गंगाधर राव के नेवलकर के साथ हुआ, जिसके बाद उन्हें लक्ष्मीबाई का नाम मिला। 1851 में उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई, दामोदर राव, लेकिन दुर्भाग्य से केवल 4 महीने बाद ही उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। और उसके बाद उन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया। राजा गंगाधर राव ने अपने जीवन काल में ही एक रिश्तेदार के बच्चे आनंद राव को गोद लिया और उनका नाम दामोदर राव रखा। और राजा के निधन के बाद अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू कर दिया, जिसके तहत दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार करते हुए झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की कोशिश की गई। और ये रानी को बिल्कुल मंजूर नहीं था और होना भी नहीं चाहिए था। रणनीति ये थी कि रानी ने अंग्रेजों का विरोध किया और प्रसिद्ध नारा दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। युद्ध का मैदान तैयार हो चुका था। जब अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण किया तो रानी ने अपनी सेना का नेतृत्व किया और अपनी पीठ पर गोद में लिए हुए अपने पुत्र दामोदर राव को बांधकर घोड़े पर सवार होकर वो तलवार चलाती थी। झांसी हारने के बाद वो कालपति और फिर ग्वालियर गई और 17-18 जून 1858 को ग्वालियर के निकट ही कोटा की सराय में अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए उन्होंने अपने अद्भुत वीरता का परिचय दिया और वीर गति को प्राप्त हो गई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। बात करें जीजाबाई की, तो जीजाबाई का निधन आज ही के दिन 1674 में हुआ था। 1674 में जीजाबाई इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। जीजाबाई शाहजी भोसले की पत्नी और छत्रपति शिवाजी की माता थी। 1631 में मुमताज महल का निधन हो गया था। मुमताज महल आसफ खां की पुत्री, जिनका निकाह मुगल सम्राट खुर्रम शाहजहां से हुआ था। और मुमताज महल को ही उनकी ही याद में ताज महल का निर्माण किया गया था। अब बात उन व्यक्तियों की जिनका आज है जन्मदिन। 1973 में जन्म हुआ था लिएंडर पेस का। लिएंडर पेस भारत के सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी हैं। 1981 में जन्म हुआ अमृता राव का। अमृता राव हिंदी चलचित्र अभिनेत्री और इन्हें खास तौर से बिहार में जाना जाता है इनके फिल्म के लिए। और वो फिल्म है विवाह, जॉली एलएलवी 3 के साथ हालांकि उन्होंने कम बैक किया, मैं हूं ना फिल्म, इश्क विश्क, खिलाड़ी, वाह लाइफ हो तो ऐसी जैसी कई सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया। और उन्होंने एक लंबा ब्रेक भी लिया फिल्मों से। हालांकि 2025 में जॉली एलएलबी 3 के साथ उन्होंने फिल्मों में वापसी की है। और आगे बढ़ते हुए अब हम जानते हैं निशिकांत कामंत के बारे में। निशिकांत कामंत हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशक और अभिनेता थे। 1970 में इनका जन्म हुआ था। 1945 में PDT आचार्य का जन्म हुआ। भारत के भूतपूर्व लोकसभा महासचिव रहे हैं। 1930 में ज्योति प्रसाद अग्रवाल का जन्म हुआ था। असम के प्रसिद्ध साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी और फिल्म निर्माता थे। तो ये बात आज के इतिहास के बारे में। और आज अमृता राव का जन्मदिन है और विवाह फिल्म से उन्हें खास तौर से जाना जाता है। और विवाह फिल्म को कहा जाता है कि वो एक कल्ट फिल्म है। और उसी फिल्म का एक गीत सुनते हैं और गीत के उस पार एक छोटा सा अंतराल। अंतराल के उस पार हम फिर से आपके साथ हाजिर होंगे। आपके साथ हमारी मुलाकात होगी ढेर सारी जानकारियों के साथ। आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इस गीत का, प्यारे से गीत का आनंद लीजिए।

0: Some cars are designed to blend in. Others are designed to be remembered. Meet the Maruti Suzuki Fronx with powerful 1.0-liter turbo booster engine. Fronx delivers performance that matches its bold SUV-inspired design. Already trusted by more than 4 lakh proud owners across India. Fronx is now available starting at just Rs. 6.85 lakh with exciting offers available at your nearest Nexa showroom. So, why follow the road when you can lead it? Visit your nearest Nexa showroom and experience the Maruti Suzuki Fronx right now.
1: Nexa.
2: Work from home? High salary? Bas ek click mein. Are wow!
3: Fussy!
4: Anjaan links par click mat kijiye. RBI kehta hai.
5: Jankar baniye, satark rahiye.
6: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
7: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: एक बहुत ही प्यारे से गीत और एक छोटे से अंतराल के इस पार हमें आपके साथ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत बहुत स्वागत करती हूं इस कार्यक्रम में। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कार्यक्रम में लौटने के बाद आप तक पहुँचेंगी ढेर सारी जानकारियाँ। इतिहास की बातें तो हमने कर ली, अब जानते हैं कि वर्तमान में क्या कुछ घटित हो रहा है हमारे आसपास, देश में, विदेशों में, यानी कि समाचार पत्रों की सुर्खियां देखते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, बिहार के अपराधी अपराध छोड़े या शमशान जाएं, अफसर काम करे या घर बैठे, सुस्ती के कारण 8942 को नोटिस। एम्बापे का डबल धमाल, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हराया, 66वें और 96वें मैच में एम्बापे ने दागे गोल। बिहार में मरीजों को सरकारी अस्पतालों में भी नहीं मिलती राहत, दक्षिण के राज्यों में सरकारी अस्पतालों में इलाज का औसत खर्च मात्र ₹1,357 पर बिहार में ₹10,553 खर्च हो रहे हैं। G7 की बात करें तो पीएम मोदी फ्रांस पहुंचे, आज ट्रंप से भेंट, वार्ता संभव है। ईरान ने चेताया, लेबनान पर इजरायली हमले से डील खटाई में पड़ेगी। अब ट्रंप बोले, ईरान को पैसे नहीं देंगे ना एटमी हथियार बनाने देंगे। मॉनसून पूर्वी भारत में लगातार प्रगति पर, सिर्फ 103 जिलों में ही सामान्य बारिश। चिंताजनक मानसून अब भी पश्चिमी तट पर अटका, मुंबई पहुंचने में 7-8 दिन और लगेंगे। उत्तर पश्चिम में कल से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिल सकता है। संविदा पर होने वाली नियुक्ति की शर्तों पर रोक लग गई है। जमुई, भोजपुर, गया, औरंगाबाद समेत 9 जिलों में पर्यावरण एनओसी मिलने के बाद भी 32 घाटों को भूल गया खान एवं भूतत्व विभाग, नतीजा विभाग को 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सख्ती, स्वास्थ्य मंत्रालय ने गांवों की छूट भी खत्म की, नियम बदले, अब डॉक्टर की पर्ची दिखाने पर ही मिलेंगे कफ सिरफ। नीट का पेपर ले वायुसेना का विमान पटना पहुंचा, एहतियात, नीट रीटेस्ट 21 जून को, मैसेज एडिटिंग फीचर 30 जून तक बंद, नीट 2.0 में पेपर लीक नहीं हुए इसलिए 22 तक टेलीग्राम भी बंद। बीएयू में प्राकृतिक खेती पर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित, प्रभारी मंत्री नीतीश मिश्रा ने रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों पर चिंता जताई। भागलपुर में बनेगा प्राकृतिक खेती का सेंटर ऑफ एक्सलेंस, मंत्री ने कहा। भागलपुर सुल्तानगंज मरीन ड्राइव 41.3 किलोमीटर कॉरिडोर के लिए जीपीएस सर्वे शुरू, चंपानाला के पास बनेगा कनेक्टिंग पॉइंट, बारिश से काम पर असर की आशंका, भूमि अधिग्रहण के बाद शुरू होगा निर्माण कार्य, विकास को मिलेगी नई रफ्तार। 21 को नीट पुनः परीक्षा, 15 केंद्रों पर 6000 परीक्षार्थी, भागलपुर, मुंगेर और बांका के अभ्यर्थियों को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा। व्यवस्था लागू, न्यूनतम आयु 23 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित करने का प्रस्ताव। विश्वविद्यालय में फिक्स्ड टर्म फैकल्टी नियुक्ति की तैयारी शुरू, शिक्षकों को अब प्रति सप्ताह लेनी होगी 16 कक्षाएं। सहयोग शिविर में निगम के 13 वार्डों में लगे कैंप अम्पा पंचायत में मौके पर समाधान। सहयोग पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज हुई शिकायतें समाधान में जुटे अफसर। 103 जीविका सहायता समूह को 1,25,000 करोड़ का चेक मिला। 103 जीविका सहायता समूह को 1,25,00,000 का चेक मिला। स्मारक स्थल का होगा आधुनिकरण। शिला पट पर मिलेगी ऐतिहासिक जानकारी। अब जल्द बदलेगा तिलका मांझी चौक का स्वरूप। वर्टिकल गार्डन और सड़क चौड़ीकरण से बढ़ेगी चौक की खूबसूरती। वर्टिकल गार्डन से बढ़ेगा आकर्षण और सड़क चौड़ीकरण से जाम की परेशानी खत्म होगी। संडिस कंपाउंड में खेले जा रहे महिला अंडर 19 T20 टीम ए व एफ के बीच फाइनल आज होगा। सुल्तानगंज में वार्ड 18 के कई घरों में डेढ़ साल से जलापूर्ति बंद। पार्षद ने कहा अतिरिक्त बोरिंग कराने की जरूरत है। राज्य के 211 प्रखंडों में खुले नए डिग्री कॉलेजों में 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू होगी। पहले चरण में हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति, विज्ञान व समाज शास्त्र की पढ़ाई होगी। अगले सत्र में उर्दू और मैथिली विषय को भी शामिल किया जाएगा। नए डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। छपरा हाजीपुर NH पर अधूरा गंडक पुल अब जनवरी तक पूरा होगा। 15 साल में नहीं बना 1.4 किलोमीटर पुल, नई एजेंसी बनाएगी। पुराने पुल पर रेंगती जिंदगी। छपरा आनंद विहार के बीच चलेगी नई ट्रेन, CM करेंगे शुभारंभ। अब बात बाजार की। चांदी की कीमत काफी बढ़ चुकी, अब यह ट्रेंड पलटने के संकेत मिल रहे हैं। गोल्ड सिल्वर रेशियो अब 62 पार पहुंचा, मतलब सोने के दाम चांदी से ज्यादा बढ़ेंगे। इस साल मार्च से लेकर मई के बीच 89 के ऊंचे स्तर से 55 तक आ गया था गोल्ड सिल्वर रेशियो। सोने का आयात महंगा, कमजोर रुपए का असर। स्पेस एक्स घाटे में वैल्यू 3,00,000 करोड़, लेकिन मस्क की एक दिन की कमाई वफे की पूरी दौलत से 11% ज्यादा। स्पेस एक्स के शेयर सिर्फ 2 दिन में 38.6% चढ़ चुके हैं। ठहराव निवेशक AI चिप सेक्टर पर स्पष्टता का इंतजार कर रहे। 70 बड़े विदेशी फंड्स में से 43 ने भारत में तय सीमा से कम निवेश किया, जेरिफ के रिपोर्ट का दावा। निवेश के लिए पावर, हेल्थ केयर, एयरपोर्ट्स अभी बेहतर। 2025-26 में निर्यात रिकॉर्ड $863 अरब रहा। 2031 में 1.1 अरब 5G सब्सक्राइबर होंगे भारत में। ये कुल मोबाइल सब्सक्रिप्शन का 81% होगा। अब बात फीफा वर्ल्ड कप की। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के 5वें दिन सभी मुकाबले बराबरी पर खत्म हुए। साल 1958 में स्वीडन वर्ल्ड कप में भी ठीक इसी दिन ऐसा ही हुआ था। ड्रॉ का ऐतिहासिक दिन दोहराया 68 साल पुराना रिकॉर्ड। 4 में से 3 मैचों में गोल हुए, 1 मैच गोल रहित बराबर रहा। ग्रुप सी में मिस्र की पहली जीत का इंतजार कायम। बेल्जियम से 1-1 से बराबर रहा मैच। ग्रुप एच में उरुग्वे के ड्रॉ के साथ ही किसी साउथ अमेरिकन देश को नहीं मिली जीत। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड ने मजबूत टीम ईरान को ड्रॉ पर रोका। 4 बेहतरीन टीम गोल हुए। एशिया की 9 में से 6 टीमें खेलने उतरी, कोई नहीं हारी। महिला T20 में लगातार दूसरी जीत की तलाश में भारतीय टीम, पहली बार नीदरलैंड्स से खेलेगा भारत। क्रिकेट की बात करें तो भारत का आज 2 मोर्चों पर मिशन। अफगानिस्तान लखनऊ में सीनियर टीम, दाबुला में ए टीम का मैच। ट्राई सीरीज और वनडे सीरीज में भिड़ंत। महिला T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका की न्यूजीलैंड पर पहली जीत। महिला हॉकी में जापान को हराकर नेशंस कप के सेमीफाइनल में भारत पहुंचा। कीवियों से दूसरा टेस्ट आज से, अकेले रूट से कम इंग्लैंड की बाकी टीम का अनुभव। टेनिस में 5 साल बाद एक साथ खेलेंगी विलियम्स बहने। AI से जुड़े 70% फास्ट ट्रैक कोर्स छलावा, क्योंकि सर्टिफिकेट काफी नहीं होते हैं। लग्जरी किचन ट्रेंड। अमेरिका के धनी इलाकों की आधुनिक रसोई में सिंक और कुक स्पॉट से लेकर छोटे उपकरणों का सबको छिपाने का चलन है। ये थे आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। अब वक्त कह रहा है कि हमें लेनी चाहिए आपसे इजाजत, मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन जाने से पहले एक खास बात की अपना और अपने अपनों का और अपने आसपास का रखें विशेष ध्यान, और ध्यान रखें कि जहां भी आप थोड़ा भी वक्त बिताते हैं वहां की साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी भी होती है। इससे आप, आपका समाज और आपके आसपास के सभी लोग स्वस्थ तो होंगे, साथ ही हमारे समाज की तस्वीर भी बदलेगी। स्वस्थ रहें, खुश रहें, साफ सफाई रखें और हमारे साथ यानी कि आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र के साथ जुड़े रहें। आपकी होस्ट, आपकी दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अगले कार्यक्रम से पहले कुछ संदेश।

0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। ये समय होता है दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और खबरनामा का। आपको बता दें, खबरनामा के थोड़ी ही देर बाद आप पटना केंद्र से सुन पाएंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: हुआ ये पंखा का खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
5: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
1: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
2: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
4: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
5: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और NEET UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्ता की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने NEET UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजादे मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
3: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में तीन मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reach consensus on implementation of long-pending Keshau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of three-match series in Lucknow this afternoon. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has called on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Avion, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life, highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability.

0: अक्वामी साझेदारी कायम करने खासतौर पर बढ़ती हुई बाहम मुंसलिक दुनिया में एतमाद की अहमियत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि बैन अक्वामी साझेदारी को अतिया देने वाले और लेने वाले फरीक से आगे बढ़कर यगानगत और मुसावियाना मिल्कियत की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि बैन अक्वामी कानून के लिए एहतराम का फुकदान बैन अक्वामी यकजहती कायम करने में सबसे बड़ी रुकावट है और इस पर तरजीही बुनियाद पर तवज्जो दिए जाने की जरूरत है। वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की खातिर बैन अक्वामी साझेदारी में मुज़ाकरात और सिफारतकारी को तरजीह दिए जाने की जरूरत है। फ्रांस का शहर एवियां इस वक्त आलमी सिफारतकारी का मरकज बना हुआ है। वहां G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस अहम मरहले में दाखिल हो रही है। भारत एक साझेदार मुल्क की हैसियत से इसमें शिरकत कर रहा है। सबकी निगाहें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान आज होने वाली दोतरफा मीटिंग पर लगी हुई है, जिसका काफ़ी इंतज़ार किया जा रहा था। ये मुलाकात सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर हो रही है। फरवरी 2025 में वॉशिंगटन DC में दोनों लीडरों के दरमियान मुलाकात के बाद से ये पहली बिल मुशाफा मीटिंग है। उम्मीद है कि आज की मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमा मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा इश्तराक को मजीद वसअत देने के लिए वसीतर तबादले ख्याल करेंगे। साथ ही वो इलाकाई और बाहमी मफाद के आलमी उमूर पर भी बातचीत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये मीटिंग काफी अहमियत की हामिल है क्योंकि भारत एक बड़ी आलमी ताकत के तौर पर उभरा है और आलमी बिरादरी भी पेचीदा आलमी चैलेंजों के हल के लिए अब और ज्यादा भारत का रुख कर रही है। आलमी मामलात पर तबादले ख्याल को जहद देने में भारत के बढ़ते हुए रोल से उसका सिफारती राबते का दायरा बढ़ने और मुख्तलिफ फोरमों में आलमी रहनुमाओं के साथ सरगम राबतों की अक्कासी होती है। कल सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान एक राबता इजलास में वजीर आजम ने बैन अक्वामी साझेदारी कायम करने और खास तौर पर बढ़ती हुई बाहम मुंसलिक दुनिया में एतमाद की अहमियत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने इस बात को भी उजागर किया कि भारत ने हमेशा इंसानियत मुकद्दम का रवैया इख्तियार किया है। वजीर आजम ने कहा कि भारत की ज़ेर कमान किए गए मुख्तलिफ इकदामात से इस बात की अक्कासी भी होती है, जिनमें बैन अक्वामी शमसी इत्तेहाद कुदरती आफात से पैदा हालात से निमटने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे का मखलूत इत्तेहाद, आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम मुहिम शामिल हैं। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि बैन अक्वामी साझेदारी के भारत के नजरिए की बुनियाद वसुधे कुटुंबकम यानी दुनिया एक कुनबा है के दायमी फलसफे में पिन्हा है। फ्रांस के शहर एवियां से अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: अमरीकी सदर के साथ मुलाकात के अलावा वजीर आजम नरेंद्र मोदी G7 वर्किंग इजलास में भी शिरकत करेंगे, जिसका मौजू है सभी के फायदे के लिए मुतवाजन जामे और पायदार माशी तरक्की को फाल बनाना। इसके अलावा जनाब मोदी मसनूई जहानत के महफूज तेज रफ्तार और मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के मौजू पर वर्किंग लंच में भी शामिल होंगे। वजीर आजम मोदी यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर अंतोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन के सदर वॉन देर लेन के साथ सेफरीकी मीटिंग करेंगे और जर्मनी के चांसलर फ्राइडरिख मर्ज के साथ दोतरफा मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर कनाडा और बरतानिया के वज़राए आज़म और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के साथ दोतरफा बातचीत की थी। जनाब मोदी ने केनिया, मिस्र और जनूबी कोरिया के सुदूर नीज जापान की वजीर आजम से भी मुलाकात की। G7 मुल्कों ने भारत समेत कई साझेदार मुल्कों के साथ सेहत और तरक्की से मुतालिक आलमी इश्तराक को मुस्तहकम बनाने के लिए कई इकदामात का ऐलान किया है। G7 के रहनुमाओं ने जमहूरिया कांगो और युगांडा में इबोला बीमारी के फिर से जोर पकड़ने के तनाजुर में तालमेल के साथ बैन अक्वामी कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया। भारत, मिस्र, केनिया और जनूबी कोरिया ने भी इकदामात में तेजी लाने की अपील की, जिसमें राबते में आने वाले अफराद का पता लगाना, सरहद पर निगरानी और बेदारी पैदा करना शामिल है। इन रहनुमाओं ने इबोला वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीन तैयार करने, तशखीस और इलाज मुआवजे के लिए मदद करने का भी वादा किया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने तवील अरसे से जेर इल्तवा केशाऊ कसीर मकसदी बांध प्रोजेक्ट के मामले पर कल नई दिल्ली में एक अहम मीटिंग की सदारत की। इस प्रोजेक्ट का मकसद दरियाए जमुना का अहिया करना है। एक बयान में उमूर दाखिला की वजारत ने कहा है कि मजकूरा प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में चल रहे सहयोग शिविरों में प्राप्त लगभग 90% शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पटना के नौबतपुर में आयोजित खेत बचाओ अभियान में शामिल होंगे। प्रदेश की पंचायतों में जनभागीदारी बढ़ाने और विकास कार्यों की समीक्षा के लिए प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को मनाया जाएगा पंचायत विकास दिवस। और मद्य निषेध कारा और परिवहन विभाग में सिपाही तथा कक्षपाल की नियुक्ति के लिए आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रहा है परीक्षा का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में चल रहे सहयोग शिविरों में प्राप्त लगभग 90% शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। अब तक 3 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2,61,000 से अधिक मामलों का निष्पादन हो चुका है। कैमूर और सिवान में आयोजित सहयोग शिविरों में उन्होंने कहा कि 30 दिनों के भीतर आवेदन का निपटारा नहीं होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी।
1: साथियों, हम लोगों ने शिविर कार्यक्रम शुरुआत किया है और लगभग 1 महीना पूर्ण वाला है 1-2 दिनों के अंदर, और इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 3,03,678 लोगों का आवेदन प्राप्त हुआ। 2,61,628 लोगों का आवेदन निष्पादित किया गया। कार्यक्रम का मकसद है जनता से संवाद, जनता के समस्या का हल करना।
0: इधर मुख्यमंत्री आज पटना के फुलवारी शरीफ प्रखंड स्थित नदियावा में आयोजित प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर में शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पटना के नौबतपुर में आयोजित खेत बचाओ अभियान में शामिल होंगे। वे किसानों के साथ संवाद भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने आज सुबह स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लिया। श्री चौहान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर कृषि, ग्रामीण विकास और केंद्र राज्य समन्वय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वे न्यू विधायक फ्लैट परिसर में पौधारोपण करेंगे तथा दारोगा राय पथ से अटल पथ गोलंबर तक आयोजित प्रगति पथ यात्रा में भी शामिल होंगे। दोपहर में केंद्रीय मंत्री विद्यापति भवन में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में भाग लेकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों और आगामी प्राथमिकताओं पर अपने विचार रखेंगे। राज्य सरकार ने पंचायतों में जनभागीदारी बढ़ाने और विकास कार्यों की नियमित समीक्षा के लिए प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को पंचायत विकास दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इस दिन सभी पंचायतों में ग्राम सभा आयोजित होगी, जिसमें विकास योजनाओं की प्राथमिकताएं तय की जाएंगी और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि ग्राम सभा में मुखिया, पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत सचिव तथा विभिन्न विभागों के स्थानीय अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में वित्त आयोग की राशि के उपयोग, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, सड़क, नाली, सफाई और अन्य विकास योजनाओं की प्रगति पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम का भी प्रसारण किया जाएगा। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत आम निर्वाचन 2026 के तहत आरक्षण निर्धारण से जुड़े दस्तावेज प्रपत्र 1 का अंतिम प्रकाशन कर दिया है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित यह दस्तावेज ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों पर आरक्षण तय करने का वैधानिक आधार है। आयोग के अनुसार प्रपत्र 1 के आंकड़ों का जिला गजट में प्रकाशन 20 जून को किया जाएगा, जबकि इसकी प्रति 23 जून तक आयोग को उपलब्ध कराई जाएगी। मद्य निषेध कारा और परिवहन विभाग में सिपाही तथा कक्षपाल की नियुक्ति के लिए आज 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती से प्राप्त जानकारी के अनुसार परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 544 केंद्र बनाए गए हैं। 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इधर रेलवे ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आज 25 विशेष ट्रेनों के संचालन की व्यवस्था की है। ये ट्रेनें पटना, बक्सर, गया, सोनपुर, सहरसा, मधुबनी और बेतिया समेत विभिन्न स्टेशनों से परिचालित की जाएंगी। रेल प्रशासन ने अभ्यर्थियों से समय से पहले स्टेशन पहुंचने और निर्धारित ट्रेनों का उपयोग करने की अपील की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने कहा है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। एनटीए ने महानिदेशक अभिषेक सिंह का वीडियो भी जारी किया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि देश में टेलीग्राम ऐप को क्यों फिलहाल बंद किया गया।
2: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील, द्व्यर्थी और जाति सूचक गीतों के प्रसारण पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। कला और संस्कृति विभाग के सचिव प्रणव कुमार ने गृह विभाग को पत्र भेजकर ऐसे गीतों के प्रसारण पर प्रभावी रोक लगाने और आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। पटना हाईकोर्ट ने मिशन वात्सल्य योजना के तहत राज्य में चल रही संविदा बहाली प्रक्रिया पर अंतिम रोक लगा दी है। बहाली की शर्तों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई तक नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित रहेगी। बहुचर्चित टेंडर घोटाला मामले में ठेकेदार रेशो श्री उर्फ रंजन सिन्हा को पूछताछ के लिए 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर एसवीयू को सौंप दिया गया है। पटना स्थित निगरानी की अदालत की अनुमति के बाद उसे एसपीयू को सौंपा गया। इधर इसी मामले में आईएएस अधिकारी संजीव हंस की अग्रिम जमानत याचिका पर अब 24 जून को सुनवाई होगी। अदालत ने एसपीयू से मामले की केस डायरी और साक्ष्य तलब किए हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ने से राज्य में बारिश की भारी कमी दर्ज की गई है। 1 जून से अब तक राज्य में सामान्य से 32% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली मॉनसून की दोनों शाखाएं कमजोर हैं। मॉनसून मुजफ्फरपुर के आसपास ठहर गया है जिससे अधिकतर जिलों में बारिश नहीं हो पा रही है। बारिश की कमी के चलते पटना समेत 7 जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 42.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के उत्तर, दक्षिण पूर्व और दक्षिण मध्य हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
5: राज्य के उत्तर, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भागों के जिलों के एक या दो स्थानों में वर्षा होने की संभावना है, जबकि शेष भाग शुष्क रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भागलपुर, कटिहार, किशनगंज एवं पूर्णिया जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कम बारिश की स्थिति को देखते हुए कृषि संबंधी विशेष कार्य योजना बनाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
6: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि राज्य में बाढ़ पूर्व सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पटना जदयू कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि कटाव निरोधक कार्य समाप्त हो चुके हैं और बाढ़ से निपटने के लिए आवश्यक सामग्रियों का पर्याप्त भंडारण किया जा चुका है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने बेतिया अंचल कार्यालय में कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटर राजकुमार मिश्र को 15,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर्मी शिकायतकर्ता से जमाबंदी का लॉक खोलने के लिए रिश्वत ले रहा था। गया जिले के बांके बाजार स्थित टुमरी नाला जंगल में सीआरपीएफ और जिला पुलिस ने संयुक्त सर्च अभियान चलाकर हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। बरामद सामानों में एक भरमार बंदूक, AK-47 और SLR के जिंदा कारतूस, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, बैटरी और वायर शामिल हैं। सुरक्षा बलों के अनुसार नक्सलियों ने हथियार और विस्फोटक जमीन के अंदर प्लास्टिक में छिपा कर रखे थे। मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में कदाचार कराने के आरोप में पुलिस ने नवादा से दो भिक्षकों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों KLS कॉलेज परीक्षा केंद्र पर वीक्षण कार्य में तैनात थे। पूर्णिया जिले की एक अदालत ने चर्चित ताराबाड़ी दोहरे हत्याकांड मामले में 8 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। औरंगाबाद जिले के रिसेप थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक चारपहिया वाहन से 51 किलो गांजा के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अररिया जिला प्रशासन ने नेपाल से सटे भारतीय सीमा क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप से पेट्रोलियम उत्पादों की कालाबाजारी रोकने के लिए दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मुख्यमंत्री सीवान और कैमूर में सहयोग शिविरों में शामिल हुए, आवेदकों से संवाद भी किया। दैनिक जागरण ने लिखा है, SBU की बढ़ी शक्ति, बिना वारंट इंस्पेक्टर कर सकेंगे गिरफ्तार। प्रभात खबर ने G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, दुनिया में संसाधनों की कमी नहीं, भरोसे की कमी, यह सबसे बड़ा संकट। दैनिक भास्कर लिखता है, नीट में पेपर लीक नहीं हो इसलिए टेलीग्राम 22 तक बंद, नीट का पेपर ले वायुसेना का विमान पटना पहुंचा। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, दो एनकाउंटर, गयाजी में 48 लाख लूट के 2 आरोपियों को पुलिस ने दौड़ाकर गोली मारी। आज अखबार लिखता है, बिहार को मिलेगी 400 ई बसों की सौगात। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में चल रहे सहयोग शिविरों में प्राप्त लगभग 90% शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पटना के नौबतपुर में आयोजित खेत बचाओ अभियान में शामिल होंगे। प्रदेश की पंचायतों में जनभागीदारी बढ़ाने और विकास कार्यों की समीक्षा के लिए प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को मनाया जाएगा पंचायत विकास दिवस। और मद्य निषेध कारा और परिवहन विभाग में सिपाही तथा कक्षपाल की नियुक्ति के लिए आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रहा है परीक्षा का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
8: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
7: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ एवं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए आनंद लें फिल्मी गीतों के कार्यक्रम नगमे नए पुराने का। कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है 1942 अ लव स्टोरी फिल्म से। आवाज़ है कुमार सानू की। संगीत तैयार किया है राहुल देव वर्मन ने। बोल हैं जावेद अख्तर के।

अगले गाने के लिए आवाज दी है हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान ने। फिल्म है आपका सुरूर। गीतकार समीर अंजान, संगीतकार हिमेश रेशमिया।

अब सुनिए सोनू निगम और अलका याग्निक को दिल मांगे मोर फिल्म के इस गीत के लिए। समीर अंजान के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने।

0: The future feels effortless with the Grand Vitara because some journeys deserve more than just movement. They deserve comfort, presence and peace of mind. This is your opportunity to bring home the Grand Vitara at just ₹8,999 per month. Yes, ₹8,999 per month. Step into a world of refined performance and hybrid technology along with 6 airbags as standard. Less fuel stress, more driving pleasure. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
1: Nexa.
2: सुनो ना,
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
5: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
6: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। श्रोताओं आइए अब सुने सुनिधि चौहान को धूम 2 फिल्म के इस गीत के लिए। संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने और गीत लिखा है समीर अंजान ने।
8: Crazy.

श्रोताओं, आइए अब सुने संगीतकार एआर रहमान का गाना। मोहित चौहान की आवाज में तमाशा फिल्म का ये गाना लिखा है इरशाद कामिल ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब आपके लिए प्रस्तुत है सुगम संगीत राजीव कुमार सुमन के स्वर में। आरंभ में आइए सुने सूरदास की ये रचना।

श्रोताओं आइए अब सुने गोपाल दास नीरज का लिखा ये गीत।

आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं राजीव कुमार सुमन। आइए इनकी आवाज में सुने गोपाल दास, नीरज का लिखा ये गीत।

कुछ तकनीकी खामियों की वजह से हम आपको राजीव कुमार सुमन के स्वर में सुगम संगीत नहीं सुनवा पाएंगे। आइए सुनते हैं अनिल कुमार आनंद की आवाज़ में ये गीत।

सुगम संगीत में आपने सुना कलाकार राजीव कुमार सुमन और अनिल आनंद की आवाजों में सुगम संगीत। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। प्रातः के 10 बज चुके हैं। आइए अब आनंद ले फिल्म संगीत कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से का। कार्यक्रम के आरंभ में गीता दत्त का गाया गाना प्यासा फिल्म से। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी में, गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत है सचिन देव वर्मन का।

श्रोताओं, अब सुनिए फिल्म सच्चा झूठा का ये गाना। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की मिलीजुली आवाजों में इंदिवर के लिखे गीत को संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

आइए अब सुने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का गाना शबीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म है वो सात दिन। नगमे निगार आनंद बख्शी।

अब गीतकार एमजी हसमत का लिखा गाना तपस्या फिल्म से, धुन है रविंद्र जैन का, गायक कलाकार किशोर कुमार और आरती मुखर्जी।

फिल्म संगीत कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से इसी गीत के साथ संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आइए अब हम सुने लोकगीतों का कार्यक्रम। कलाकार हैं लीला कुमारी। आरंभ में सुनिए देवी गीत।

श्रोताओं, जब हम विरासत की बात करते हैं तो अक्सर हमारी नजर जमीन के ऊपर दिखने वाले नजारों पर होती है, लेकिन बिहार की असली भौगोलिक दौलत तो इसके गर्भ में छिपी है। चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। क्या आप जानते हैं कि बिहार के दक्षिणी हिस्से में स्थित रोहतास और कैमूर का पठार विंध्यन चट्टानों से बना है? ये वही चट्टाने हैं जिनका उपयोग सदियों से हमारे किलों और महलों के निर्माण में होता आया है। रोहतास के चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन ने ही बिहार के डालमिया नगर जैसे औद्योगिक शहरों की नींव रखी थी। वहीं दूसरी ओर गया और मुंगेर का क्षेत्र खनिजों का भंडार है। गया की अभ्रक की चमक हो या जमुई में हाल ही में चर्चा में आए सोने के यानी गोल्ड के भंडार, बिहार की जमीन केवल अनाज ही नहीं बहुमूल्य धातुएं भी अपने आंचल में समेटे हुए हैं। मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ियां न केवल सुंदर हैं, बल्कि वहां मिलने वाला क्वार्टजाइट हमारी निर्माण कला का आधार रहा है। अब जरा अपनी नजरें मैदानों की ओर घुमाइए। उत्तर बिहार के चौर और मन, जिसे हम ऑक्सबो या लेक्स के नाम से भी जानते हैं, केवल पानी के जमाव वाले इलाके नहीं हैं, ये हमारी भौगोलिक विरासत के जीवंत केंद्र हैं। बेगूसराय की कांवर झील को ही लीजिए, यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है। हर साल हजारों मील दूर साइबेरिया से पक्षी यहां मेहमान बनकर आते हैं। यह झील इस बात का सबूत है कि बिहार का भूगोल वैश्विक पारिस्थितिकी यानी ग्लोबल इकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान से लेकर कटिहार के गोगाबिल तक ये आर्द्र भूमियां यानी वेटलैंड्स हमारे भूजल को रिचार्ज करती हैं और जैव विविधता का उत्सव मनाती है।

बिहार की मिट्टी भी एक जैसी नहीं है। जहां उत्तर में बाल सुंदरी मिट्टी गन्ने और मक्के की मिठास बढ़ाती है, वहीं दक्षिण की कगारी मिट्टी और भारी ताल मिट्टी रबी की फसलों के लिए वरदान है। बक्सर से लेकर भागलपुर तक गंगा के किनारे फैली काप मिट्टी यानी एलुवियल सॉयल की परतें इतनी गहरी हैं कि वैज्ञानिकों के लिए यह भी एक शोध का विषय बनी हुई है। यह मिट्टी ही है जिसने मगध और वैशाली जैसे साम्राज्यों को आर्थिक शक्ति प्रदान की थी। श्रोताओं, बिहार की भौगोलिक विरासत जितनी समृद्ध है उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी है। उत्तर बिहार जहां कोसी के कारण बाढ़ की विभीषिका झेलता है, वहीं दक्षिण बिहार कभी कभी सूखे की मार भी सहता है। लेकिन यही संघर्ष यहां के लोगों को जुझारू भी बनाता है। यहां की जलवायु मानसून के इशारों पर नाचती है। जून की वो पहली बारिश जब बिहार की सूखी मिट्टी पर गिरती है तो जो सौंधी खुशबू आती है वह किसी इत्र से कम नहीं। हमने अपनी इस विरासत को बचाना है, चाहे वो कांवर झील जैसे वेटलैंड्स हों या फिर हमारे लुप्त होते जा रहे पुराने आहर पाइन जल प्रबंधन प्रणाली। भूगोल बदल रहा है और इसे सुरक्षित रखना हमारी ही जिम्मेदारी है।

श्रोताओं, चलते चलते बस इतना ही कहूंगा कि अगली बार जब आप बिहार के किसी खेत से गुजरें या गंगा किनारे बैठें, तो महसूस कीजिएगा कि आपके पैरों के नीचे की यह मिट्टी हजारों सालों के भूवैज्ञानिक बदलावों की गवाह है। यह मिट्टी सोना उगलती है, बशर्ते हम इसकी कद्र करें।

0: आज की आओसाद चले में बस इतना ही। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया मोहम्मद शाहिद सबा ने, और अब मुझे यानी संजय किशोर और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मोहम्मद शाहिद सबा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के पटना केंद्र पर तैयार किया गया और प्रसारित किया गया।

0: श्रोता कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आकाशवाणी पटना से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 12:30 बजे से किया जाता है, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में इस बार का विषय है मधुमेह, कारण, लक्षण और बचाव। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे आज यानी 17 जून 2026 को।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्स एवं FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में 11 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नई फिल्मों से। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अथर्व फिल्म के इस नगमे के साथ।

अभी आपने सुने आशी तितोरिया की आवाज़ में अथर्व फिल्म का ये नगमा। गीत लिखा था राजा रमेश राजस ने, संगीतबद्ध किया था श्रीचरण पकाला ने। कार्यक्रम है नई फिल्मों से, अब आइए सुनते हैं धुरंधर फिल्म का ये नगमा।

0: अभी आपने सुना धुरंधर फिल्म में अरिजीत सिंह और साथियों को। गीत लिखा था इरशाद कामिल ने, संगीत बद्ध किया था शाश्वत सचदेव ने। कार्यक्रम है नई फिल्मों से।
1: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: अभी आपने सुना सितारे जमी पर। इस फिल्म का ये नगमा अरिजीत सिंह और शरीबा पारुलकर की आवाज़ थी। गीत अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा था, संगीत बद्ध किया था शंकर एहसान लॉय ने। कार्यक्रम है नई फिल्मों से।
1: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से। उमंग।

अभी आपने सुना द डिप्लोमेट फिल्म का नगमा। आवाजें थी वरुण जैन, रोमी और अनुराग सैकिया की। गीत लिखा था कौसर मुनीर ने, संगीतबद्ध किया था अनुराग सैकिया ने। कार्यक्रम है नई फिल्मों से। अब आइए सुनते हैं धड़क 2 फिल्म का नगमा। आवाजें हैं जुबिन नौटियाल और सुवर्ण तिवारी की। गीत अजल दलाल ने लिखा है, संगीतबद्ध किया है तनिष्क बागची ने।

अभी आपने सुना था राजा साहब फिल्म का नगमा। आवाज़ें थी विशाल मिश्रा और साथियों की, गीत लिखा था कुमार ने, संगीतबद्ध किया था दमन एस ने, और फिल्म का नाम तो आपने जाना ही, द राजा साहब। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं भूल भुलैया 3 फिल्म का नगमा। श्रेया घोषाल और साथियों की आवाज़ें हैं।

0: कार्यक्रम के आखिर में आपने सुना श्रेया घोषाल और साथियों की फिल्म भूल भुलैया 3 में। गीत लिखा था समीर ने, संगीतबद्ध किया था अमाल मलिक ने। इसके साथ ही नई फिल्मों से कार्यक्रम का आज का सफर हुआ पूरा। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 11:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है गुलदस्ता कार्यक्रम। आज गुलदस्ता के साथ मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र। श्रोता मित्रों, गुलदस्ता में कुछ प्यारी प्यारी बातें होती हैं और कुछ नगमे होते हैं। बातें ऐसी जो हमारे आपके दिल को छू जाएं, या फिर किसी ऐसे शख्सियत के बारे में जिनसे हमारे जीवन को प्रेरणा मिले, या फिर कुछ ऐसी बातें जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो, हमारा उत्साह बढ़ाती हो, या फिर कहीं बहुत कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करता हो। ये सारी चीज़ें गुलदस्ता में पिरोने का प्रयास होता है हमारा, नगमों के साथ साथ बातचीत के रूप में। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे हमारे आपके दिलों की। मनुष्य शरीर अद्भुत है, इसकी कृति ईश्वर की सबसे उत्तम रचना है, और ऐसा माना जाता है कि मनुष्य जीवों में श्रेष्ठ है। इस दृष्टि से हम देखें तो इसको सारी चीज़ें ऐसी मिली हुई हैं जिसका किसी दूसरे से कोई तुलना नहीं है, ख़ास करके इसकी बौद्धिक क्षमता और इसके प्रेम और करुणा की बातें। इसलिए जीवों में श्रेष्ठ है। जब प्रेम हमारे सबसे पहले प्राथमिकता में शामिल हो जाता है तो ऐसा लगता है सारी दुनिया बहुत अच्छी, खुशनुमा और आनंददायक हो गई हो। लेकिन जब कहीं खटास पैदा हो जाता है तो बहुत कष्टदायक हो जाता है ये सफ़र। ऐसी ही कुछ बातें होंगी हमारी आपकी। और प्रेम की तो बातें निश्चित रूप से हमारी आपकी हो, क्योंकि आज हमारा मन भी है आपसे ऐसी ही बात करने का। खासकर प्रेम उनसे जिनको हम कभी जानते नहीं और अचानक से आंख लड़ जाती है।

कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति थी फिल्म जब जब फूल खिले से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब की थी, गीत लिखा था आनंद बख्श ने, संगीतबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने, गीत बेशक आनंद बख्श ने लिखा था लेकिन अल्फाज पूरी दुनिया के प्रेमियों की, क्योंकि ये मामला ही कुछ ऐसा है, अगर कहीं आंखें लड़ गईं और फिर वो परदेशी थोड़ा सा कहीं आंखों से ओझल हो गया तो परेशानियां सिर चढ़ जाती हैं, धड़कने बढ़ जाती हैं, अच्छा कुछ भी नहीं लगता और कभी मन कोसता है खुद को, कभी उसको, कभी दुनिया को, कभी समय को, न जाने कैसी बेचैनी होती है। ये बेचैनी शायद हमारी अपनी बनाई हो लेकिन कई सारे अन्य बातों से अच्छी लगती है बेचैनी। ये कैसा रोग है कुछ पता नहीं लेकिन ये रोग अच्छा है। जब न मिलो तो यूँ लगता है क्यों नहीं मिल रहा, व्याकुलता होती है, और जब मिल जाए तो फिर आँखें लड़ नहीं पाती हैं, पता नहीं क्यों।

ये क्या हो जाने वाली व्यवस्था, अद्भुत है जो हमारी द्वारा ही बनाई जाती है। अच्छा है जो भी है, लेकिन एक बहुत मज़े की बात ये है कि ये प्रेम व्यवस्था जो बनाई गई, ये कहाँ से आई? इस ज़माने में इसे जो हर कोई अपनाना चाहता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये सवाल है आपके लिए, क्योंकि जब यह रोग हर किसी के लिए कॉमन है, तो फिर कहीं से तो यह आया होगा ज़रूर, प्रादुर्भाव इसका कहीं से हुआ। और जब हुआ तो ऐसा संक्रमण कि कोई नहीं बच पाया इससे। तो निश्चित रूप से ये सोचनीय विषय है कि इसका प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, ये हवा कहाँ से चली, ये संक्रमण कहाँ से फैला, ये प्रेम का रोग सबसे पहले किसे लगा? आप निश्चित रूप से सोचिए। तब तक हम एक अंतराल लेते हैं। हाँ, अंतराल से पहले हम आपसे साझा करते हैं कि अभी जो आपने ये नगमा सुना, ये फिल्म हीर और रांझा से था। आवाज़ लता मंगेशकर की थी, गीत लिखा था कैफी आजमी ने, संगीतबद्ध किया था मदन मोहन ने। वक्त एक छोटे से अंतराल का, अंतराल के उस पार कुछ और नगमे, कुछ और बातें, लेकिन आपके लिए सवाल कि प्रेम

0: जो आज सबके सिर चढ़कर बोल रहा, इसकी शुरुआत कहां से हुई?
1: कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: मेरे ढोल ना सुन मेरे प्यार की धुन। अभी आपने भूल भुलैया फिल्म का नगमा सुना। श्रेया घोषाल, एम जी श्रीधर और साथियों की आवाज़ें थीं। गीत समीर ने लिखा था, संगीत पद किया था प्रीतम ने। कार्यक्रम है गुलदस्ता, बातें हो रही हैं हमारे आपके बीच प्रेम की। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, अन्य सभी जीवों को भी अगर हम बहुत गहराई से अध्ययन करने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें, तो ये गुण लगभग सभी जीवों में मिलता है। इतना ही नहीं, चर तो सभी जीव जो हैं, चलने वाले जो श्वासधारी हैं, जिन्हें हम अपनी आँखों से अपने समान धड़कनों वाला समझते हैं, उन्हें तो ये रोग होता ही है। पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ, उन्हें भी ये रोग होता है। और इस पर ही तो खोज किया जगदीश चंद्र बसु ने। उन्होंने बताया कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह ही होते हैं, सारी संवेदनाएं उनके हमारी तरह होती है, तो निश्चित रूप से प्रेम भी उनके अंदर हमारे जैसी ही होती है। और तभी तो अगर हमें बहुत गहराई से देखने की इच्छा हो तो हमें बहुत कुछ मिल जाता है उनसे। बहारों का मौसम आता है, देखें कैसे खिल जाते हैं बाग, अनेकानेक नवगोवल पत्तियाँ, जैसे सारा जहाँ सुगंधमय हो गया हो। और ये प्रकृति इतनी खूबसूरत सज जाती है, जैसे कोई चाहकर भी स्वयं को इतनी खूबसूरत नहीं बना सकती। कौन है जिसने इन पत्तियों में इतनी खूबसूरती भरी? ऐसे कोमलताएँ, ऐसे सुर्ख रंग, किसने तितलियों को ये रंगीन साड़ियाँ दी? किसने नज़ारे इतने बेहद खूबसूरत बनाए? किसने हवाओं में ये रवाने दी? किसने जल को अमृत सा बनाया? और किसने हवा आवाज़ के तरंगों में मधुर ध्वनि खोल दी? कौन है जो इस सृष्टि को इतनी खूबसूरती से सजा रहा है? वो प्रेम अनूठा है जो कहीं प्रदर्शित नहीं होता, लेकिन प्रदर्शन अद्भुत है। हमारी आँखें उस प्रेमी को देख नहीं पाती, लेकिन उनके प्रेम को महसूस जरूर कर पाते हैं। उनके प्रेम को देखकर हमारा हृदय भी धड़कने लगता है। ये अद्भुत बनावट किसकी है? कौन है जिसने सबसे पहले सृष्टि में प्रेम का ये पाठ पढ़ा और फिर दुनिया के बाग में उलीच दिया? वक्त एक छोटे से अंतराल का, अंतराल के बाद बातें और भी, गाने और भी प्यारे प्यारे।
1: कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: ये रोग ही ऐसा है, न चाह कर भी इसके गुलाम हो ही जाते हैं लोग, न चाह कर भी न लड़ी जाते हैं, तो फिर हंसकर क्यों नहीं।

कार्यक्रम के आखिर में आपने सुना कच्चे धागे फिल्म का नगमा। आवाजें थी अलका याग्निक और कुमार सानू की, लिखा था आनंद बख्श ने, संगीत बद किया था नुसरत फतेह अली खान ने और कार्यक्रम आपने सुना गुलदस्ता। बातें हो रही थी प्रेम की और अंतिम प्रश्न था कि ये प्रेम सबसे पहले किसने छेड़ा। ये प्रेम ईश्वर ने छेड़ा। ईश्वर और प्रकृति के मिलन से ये सृष्टि है, इसीलिए तो परमात्मा और प्रकृति के प्रेम ने ही संसार में प्रेम का स्वरूप धारण किया। तो आज गुलदस्ता कार्यक्रम का सफ़र बस इतना ही। कल फिर 11:30 पर भेंट होगी इस कार्यक्रम के साथ। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के ठीक 12 बजे हैं। प्रस्तुत है हमारी शहरी महिला श्रोता बहनों को संबोधित हमारा कार्यक्रम नारी लोक।

0: बहनों सृणा का प्यार भरा नमस्कार। बहनों ढेर सारी बातों के साथ आज हम सुनेंगे गीतों भरी कहानी, है ना अच्छी बात। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ कुछ और जरूरी बातों से।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
4: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: क्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: बहनों, नारी लोग कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। और बहनों, आज की हमारी चर्चा का विषय है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। तो पहले इस पर बातचीत कर लेते हैं। बहनों, मरुस्थलीकरण और सूखा आज पूरी दुनिया की बड़ी समस्या बन गई है। मरुस्थलीकरण का मतलब है कि उपजाऊ जमीन धीरे धीरे बंजर और रेगिस्तान जैसी बन जाती है। सूखा तब पड़ता है जब लंबे समय तक बारिश नहीं होती और पानी की कमी हो जाती है। इन समस्याओं के कई कारण होते हैं बहनों, जैसे पेड़ों की कटाई, पानी का ज़्यादा उपयोग, बढ़ती गर्मी और जलवायु परिवर्तन। इनका असर खेती, पशुओं और लोगों के जीवन पर पड़ता है। पानी की कमी से फसलें खराब हो जाती हैं और लोगों को पीने का पानी भी मुश्किल से मिलता है। इन समस्याओं

से बचने के लिए पूरी दुनिया में प्रयास किए जा रहे हैं। वैनु कई देशों में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं ताकि जमीन सुरक्षित रहे और बारिश का संतुलन बना रहे। जल संरक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जैसे वर्षा जल संचयन, तालाब बनाना और पानी बचाने वाली सिंचाई तकनीक अपनाना। बहनों, मरुस्थलीकरण और सूखे को रोकने के लिए ही हर साल 17 जून यानी आज के दिन विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़े। भारत सहित कई देश पानी बचाने और हरियाली बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नई तकनीकों की मदद से किसान मौसम की जानकारी लेकर बेहतर खेती कर पा रहे हैं। बहनों, मरुस्थलीकरण और सूखा केवल एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की चुनौती है। हमें पानी बचाना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई, जल प्रबंधन और भूमि सुधार योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए। एक ही फसल को बार बार उगाने से मिट्टी की उर्वरता घट जाती है, तो इसलिए जरूरी है कि फसल चक्र अपनाने से मिट्टी में पोषक तत्व बनी रहे। तो फसल चक्र का नियम अपनाएं और संतुलित रहे। साथ ही कम पानी वाले फसलें उगाना और जैविक खाद का उपयोग भूमि के लिए लाभदायक है। लोगों को पर्यावरण संरक्षण, जल बचत और भूमि के सही उपयोग के बारे में शिक्षित करना जरूरी है। जब समाज जागरूक होगा तभी समस्या के प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है और आने वाली पीढ़ी को हम एक सुंदर और बेहतर भविष्य दे सकेंगे। तो बहनों, अब अपनी चर्चा को देती हूँ विराम और कहानी की शुरुआत करती हूँ बहनों। और सच यही है कि जो औरत खुद को आखिरी मान ले, दुनिया उसे आखिरी ही रखती है। और जिस दिन वह खुद को पहले रख लेती है, उस दिन से वह आत्मसम्मान की लड़ाई जीतने लगती है। जी हाँ बहनों, ऐसी ही आत्मसम्मान से भरपूर अपनी प्यारी सखी वंदना की कहानी के साथ मैं हाजिर हूँ आपके अपने कार्यक्रम नारी लोक में। आप सभी बहनों का मैं स्वागत करती हूँ और शुरू करती हूँ सखी वंदना के साथ गीतों भरी कहानी। रात भर घर में खुशबू तैरती रही थी, घी में तली पूरियों की, दम पर चढ़े पुलाव की और मलाई में डूबे शाही पनीर की। आज ननद निशा पूरे परिवार के साथ आई थी। बच्चों के लिए अलग सब्जी, जीजा जी को कम मसाले की दाल, सास के लिए बिना प्याज की सब्जी और ननद की पसंद की कढ़ी। वंदना ने किसी से नहीं पूछा, बस बनाती चली गई। एक के बाद एक, जैसे उसकी थकान का कोई महत्व ही नहीं। ननद हंसती रही और भाभी की तारीफ करती रही। भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। जादू था या मजबूरी, यह तो वंदना ही जानती थी। दावत खत्म हुई, हंसी ठहाके दरवाजे के बाहर रह गए। घर में बची तो सिर्फ बर्तनों की खनक और पैरों में उठता दर्द। वंदना ने बच्ची को सुलाया, माथा चूमा और फिर खाने के लिए बैठी। कैसरोल खोला और अंदर दो सूखी रोटियां थी और दाल 4 चम्मच, न ज्यादा न कम, जैसे नाप तोलकर छोड़ी गई हो। वंदना कुछ देर यूं ही बैठी रही। क्या मेरी तकदीर ऐसी है? क्या ऐसी ही मेरी जिंदगी है?

आज वंदना की आंखों में ना आंसू थे ना चेहरे पर शिकन, बस दिल के भीतर एक चुप सी आवाज उठी, तू कब तक आखिरी रहेगी। उसने रोटी प्लेट में नहीं रखी, उठकर रसोई की लाइट बंद कर दी। सुमित ने पूछा, खाना नहीं खाओगी? वंदना ने धीमे से कहा, आज नहीं। आज नहीं क्यों? क्योंकि आज मैंने समझ लिया है कि मैं भूखी नहीं हूं, मैं अपमानित हूं। सुमित हंसना चाहता था पर हंस नहीं पाया। उसकी सासू माँ बोली, बहू इतना मत सोचा करो, घर की औरतें ऐसी ही जीती है। वंदना ने पहली बार बहुत ही साफ शब्दों में कहा, माँ जी औरतें ऐसे जीती नहीं, उन्हें ऐसे जीना सिखा दिया जाता है। कमरे में सन्नाटा उतर आया। वंदना की आवाज कांपी नहीं। आज ननद की पसंद पूछी गई, बच्चों की प्लेटें भरी गई, सबका ख्याल रखा गया और जब मेरी बारी आई तो बचा हुआ मेरा हिस्सा बन गया। नाप तौल के दो रोटियां और चार चम्मच दाली छोड़ी गई, पर अब नहीं।

समय बीत गया। ननद फिर घर आई थी, हंसी वही थी, सभी बहुत खुश थे। आवाजों का शोर फिर से शुरू, बच्चों की वही फरमाइशें, रसोई में फिर से खुशबू फैल गई। घी में डूबी रोटियों की, दम पर चढ़ी दाल की और सब्जियों में घुला हुआ अपनेपन की। आज ननद के घर आने से घरों में रौनक थी, सभी खुश थे।

आज वंदना फिर खाना बना रही थी। बदलाव सिर्फ इतना था कि इस बार पूड़ियां और रोटियां गरम गरम नहीं सेकी गई, बल्कि एक ही बार बना करके रख लिया गया डाइनिंग टेबल पर। और ऐसा पहली बार हुआ कि वंदना ने खाना सबके बाद नहीं, सबके बराबर खाया। खुशबू अब भी घर में थी, लेकिन अब उसमें एक नई महक घुल गई थी, आत्मसम्मान की, अपनेपन की।

क्योंकि कहते हैं ना, जब औरत खुद को साइड में रखा हुआ मानना छोड़ देती है तो उसकी प्लेट भी और उसकी जगह भी कोई नहीं छीन सकता। आज वंदना बहुत खुश थी, मानो उसे एक नया जीवन मिला हो। न किसी से ज्यादा न किसी से कम, बल्कि सबके बराबर का हक। अब वह अपनी जिंदगी अपने अनुसार जीना चाहती थी।

तो बहनों, इसी के साथ आज का नारी लोक कार्यक्रम ही पूरा होता है। हमारी आज की गीतों भरी कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि बहनों आपकी प्रतिक्रिया ही हमारे कार्यक्रम को बेहतर से बेहतर बनाने का कारण होते हैं। तो प्रतिक्रिया जरूर दें, साथ ही अपना ख्याल रखें। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। और अब हमें दे आज्ञा, नमस्कार।

अभी आप नारी लोक कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्स और FM बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
2: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
0: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूं। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि यह दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि यह झील है कहाँ। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि यह झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको यह भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओं, इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओ। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहां गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से

0: पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभ देव से जोड़ा जाता है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओं, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियां भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहां मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। यह झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहां मिलते हैं। जहां तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओं, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त, लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियाँ प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। तो श्रोताओं, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। हमारा IBRS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
2: दादी जी।
3: अरे आशीष, दीपिका, आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
2: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
3: हाँ पूछो।
2: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
3: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है, जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
2: अच्छा।
3: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
2: अच्छा।
3: यानी आजादी, आजादी, आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े, सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
4: अच्छा।
3: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
2: मंगल पांडे।
3: हाँ, मंगल पांडे 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
4: अच्छा।
3: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में

0: दादी जी, लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
2: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
1: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
2: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
1: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
0: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
1: सुनाती हूँ सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
0: ऐसा क्यों?
1: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे, अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
2: दादी, फिर क्या हुआ?
1: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
3: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
4: खुद करनी होगी, खुद करनी होगी,
5: खुद करनी होगी, सही कहे।
0: फिर क्या हुआ दादी?
1: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
2: फिर क्या हुआ दादी?
1: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
0: अच्छा।
1: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
6: हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसा चल नहीं सकता, नहीं ऐसा चल नहीं
2: पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ?
1: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
7: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे,
8: नहीं होने देंगे, बिल्कुल
7: भले ही हमें फांसी के तख्त पर झूलना पड़े।
1: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
7: भाइयों उठो, किस चिंता में पड़े हो, मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
1: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
9: हम पांडे को अरेस्ट मांगता है।
10: मंगल पांडे जिंदाबाद, मंगल पांडे जिंदाबाद, इंकलाब
11: जिंदाबाद,
10: इंकलाब जिंदाबाद।
1: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉर्म आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
12: ए मंगल पांडे, वॉच आउट।
1: सारी छावनी में खलबली मच गई।
0: उसके बाद क्या हुआ दादी?
1: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
7: अरेस्ट करो,
12: मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे,
13: नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे, कोई हाथ नहीं लगेगा।
0: दादी जी,
2: फिर क्या हुआ?
1: कर्नल व्हीलर वहां से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली।

0: Come, Bande ko, thi khana mangta hai. Durant, hospital bhejo.
1: उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
2: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूं।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई? हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
3: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
1: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
3: इसके बाद क्या हुआ दादी?
1: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता, जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
3: अच्छा।
1: इस कविता में क्रांतिवीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
4: जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भईल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भई, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मशहूर चलल, गुरनी का पलटनी का आगे बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भईल, जननी के भेंट परान भईल, आजादी का बल बेदी पा मंगल पांडे बलिदान भेल, जब संतावनी के रारी भैली वीरन के वीर पुकार भैली।
3: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
1: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
3: अच्छा।
1: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तानकर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशिका।
6: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है, जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
7: काशु बेटी, तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
8: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
7: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
8: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
7: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
8: अच्छा माँ।
9: माँ माँ।
8: लो देवेंद्र भी आ गया।
9: दीदी मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
7: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
8: ठीक है माँ।
9: नाश्ता नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठ कर खाऊंगा।
8: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
9: ये देखो दीदी, ये मारा।
8: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
9: अरे ये मारा।
8: अच्छा तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
9: बंद कर दिया होगा, ये तो देखो।
8: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
9: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
7: लगता है कोई आया है। काशु बेटी देखो दरवाजे पर कौन है।
8: अच्छा माँ, कौन? आप लोग कौन? कहिए किससे मिलना है? अरे
10: हमें अंदर आने दो।
8: अरे क्यों?
11: ए लड़की रास्ते से हट जा।
8: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
10: लड़की हट।
8: माँ
10: ये चाकू देख रही है ना,
11: ज्यादा होशियारी मत दिखा।
8: अरे
11: वरना इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा।
8: माँ
11: हट रास्ते से।
8: माँ
7: क्या हुआ?
8: देखो
7: जल्दी आओ। ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
10: ए शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
8: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
10: ये चाकू देख रही है ना,
8: छोड़ दो। नहीं मेरी माँ को कुछ मत करो।
7: चाबी चाबी मुझे नहीं मालूम,
10: जल्दी
7: याद नहीं कहाँ रखी है, छोड़ दो।
11: बहानेबाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
7: अरे मेरे बात को छोड़ो,
8: मेरी माँ को छोड़ो।
10: चुप चुप, आवाज निकाली तो यही ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
11: सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
7: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
8: देवेंद्र।
9: हाँ दीदी।
8: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
9: हाँ।
8: पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
9: अच्छा।
8: हेलो।
12: हाँ बेटा बोलो।
8: पापा। पापा
12: हाँ बोलो बेटा।
8: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसाए हैं।
12: कौन घुसा है?
8: माँ को बहुत मार रहे हैं।
12: अच्छा तुम घबराओ नहीं। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है?
8: अब देवेंद्र मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
9: अच्छा।
8: बचाओ बचाओ, घर में चोर घुस आए हैं, बचाओ
13: बचाओ।
6: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
13: अरे कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको कशिका को। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
7: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था। मैं तो डरी गई थी।
13: देखो ना सबकी जान
7: बची।
6: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे।
14: मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
15: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
16: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्स और FM बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर का ठीक 1 बजा है। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। कलाकार हैं संजीत कुमार सिंह। कार्यक्रम के आरंभ में इनसे आइए सुनते हैं कुछ झूमर।

अभी आप सुन रहे हैं लोकगीत कार्यक्रम में संजीत कुमार सिंह को। लोकगीत कार्यक्रम का अगला भाग आप 1:20 से सुन पाएंगे। 1:10 होने ही वाले हैं। अब आइए शामिल होते हैं प्रादेशिक समाचारों के लिए आकाशवाणी रांची के प्रसारण में। कृपया प्रतीक्षक

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सौंपेंगे प्रोत्साहन राशि। रांची और बोकारो के कर्मी भी होंगे लाभान्वित। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कल होगा मतदान। सत्ता पक्ष से बैजनाथ राम और प्रणव झा तथा निर्दलीय के रूप में परिमल नाथवानी हैं उम्मीदवार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा नहीं करने की अपील की। रांची विश्वविद्यालय एकेडमिक काउंसिल की आज होगी बैठक। नई शिक्षा नीति के तहत नए कोर्स समेत 27 प्रस्तावों पर होगी चर्चा। और रांची में चल रही झारखंड T20 क्रिकेट लीग में रांची टाइटंस ने धनबाद डायमंड्स को और संथाल स्ट्राइकर्स ने कोयलांचल सुपर किंग्स को हराकर दर्ज की जीत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के पात्र कर्मचारियों और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन राशि देंगे। श्री मोदी दिल्ली के विज्ञान भवन से ऑनलाइन जुड़ेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि क्षेत्रीय कार्यालय रांची के आयुक्त तारिक अनवर ने बताया कि इस योजना के तहत रांची और बोकारो के हजारों लोग लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनवरी 2024 में अयोध्या में भव्य श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपने हाल की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।

0: लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: इधर वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थयात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
2: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कल मतदान होगा। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। सत्ता पक्ष से झामुमो के बैजनाथ राम और कांग्रेस के प्रणब झा तथा दूसरी ओर एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी चुनावी मैदान में हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि वे ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
3: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
1: रांची विश्वविद्यालय अकादमिक काउंसिल की बैठक आज कुलपति प्रोफेसर सरोज शर्मा की अध्यक्षता में होगी। इसमें 27 जाने की संभावना है। इसमें 4 प्रोफेशनल विभागों का नाम बदलने, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अंक पत्र और सर्टिफिकेट के प्रारूप को स्वीकृति देने समेत नए कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव शामिल है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के प्रांत कार्यालय के पास पेट्रोल बम फेंकने का मामला सामने आया है। पुलिस CCTV की मदद से अपराधियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। सूचना पाकर RSS कार्यालय पहुंचे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
4: ये साधारण घटना नहीं है। हमारे यहाँ जितने अधिकारी गण है वो चपेट में आते, यहाँ पर पुलिस पिकेट बनाया जाए और जो भी है पकड़कर तुरंत ही बड़ी साजिश का पर्दाफाश करे। पुलिस प्रशासन को उस नियत का पता लगाना चाहिए।
1: कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड के प्रगतिशील किसान सुमन लाल मेहता ने मल्टी लेयर खेती के तहत एक ही जमीन पर एक ही मौसम में एक ही पटवन से 3 अलग अलग प्रकार की सब्जियों की खेती कर अपने आय के स्रोत को बढ़ाया है। किसान ने बताया कि मध्य प्रदेश से उन्होंने मल्टी लेयर खेती की विधि सीखी है।
5: का नाम है मल्टी लेयर खेती है। हमने सीख जो है मध्य प्रदेश से सीखे, ट्रेनिंग करके आने के बाद हमने इसको लगाया है। जिस फसल के लिए 100% पानी लगती है उस फसल में मात्र हम 30% या 25% पानी में ही इसमें उपजा सकते। 3 लेयर वाला भी हम कर रहे हैं। एक जमीन के नीचे है जो कंद वाली फसल है, उसके ऊपर मिट्टी की जो ऊपर पत्तेदार सब्जी लगाना है। 3रा लेयर है जो लतर वाली, हमने इसमें सिर्फ देसी बीज का ही उपयोग किया है।
1: वहीं कोडरमा के कृषि पदाधिकारी सुरेश स्वासी ने कहा कि मल्टी लेयर खेती पद्धति से दूसरे किसानों को भी अवगत कराया जाएगा।
6: पहले उनका जो फील्ड है विजिट करना होगा, फिर उसमें देखना होगा उसके पास क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या सुविधा नहीं है। जो भी सुविधा नहीं है उसको प्रदान किया जाएगा। फिर जो भी आसपास किसान है उनका फील्ड विजिट कराया जाएगा, जिससे कि और भी किसान प्रेरित हो सके।
1: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 341 अंक बढ़कर 77,150 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 89 अंकों की बढ़त के साथ 24,078 पर है। सेक्टर के हिसाब से देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल स्टॉक्स में सबसे ज्यादा बढ़त देखी गई। इधर राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,40,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,54,000 रुपए प्रति किलो है। और अब क्रिकेट। राजधानी रांची में चल रही झारखंड T20 क्रिकेट लीग 2026 के सातवें दिन रांची टाइटंस ने धनबाद डायमंड्स को हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। 192 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आर्यन हुड्डा ने नाबाद 94 और शिखर मोहन ने 62 रनों की पारी खेली, जिससे रांची ने 18 ओवर और 3 गेंदों में जीत दर्ज की। इससे पहले धनबाद डायमंड्स ने राम रोशन शरण के 58 रनों की बदौलत 191 रन बनाए थे, जबकि रांची के प्रिंस अनुराग मुर्मू ने 3 विकेट लिए। वहीं दिन के पहले मुकाबले में संथाल स्ट्राइकर्स ने कोयलांचल सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराकर सत्र की पहली जीत दर्ज की, जिसमें विवेक कुमार ने 64 रन बनाए और प्रत्युष कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सौंपेंगे प्रोत्साहन राशि। रांची और बोकारो के कर्मी भी होंगे लाभान्वित। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कल होगा मतदान। सत्ता पक्ष से बैजनाथ राम और प्रणव झा तथा निर्दलीय के रूप में परिमल नाथवानी हैं उम्मीदवार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा नहीं करने की अपील की। रांची विश्वविद्यालय एकेडमिक काउंसिल की आज होगी बैठक। नई शिक्षा नीति के तहत नए कोर्स समेत 27 प्रस्तावों पर होगी चर्चा। और रांची में चल रही झारखंड T20 क्रिकेट लीग में रांची टाइटंस ने धनबाद डायमंड्स को और संथाल स्ट्राइकर्स ने कोयलांचल सुपर किंग्स को हराकर दर्ज की जीत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:20 हुए हैं। लोकरंग कार्यक्रम को जारी रखते हुए संजीत कुमार सिंह से आइए सुनते हैं कुछ कृषि गीत।

0: अभी आप लोक गीतों के कार्यक्रम लोक रंग में संजीत कुमार सिंह से कुछ कृषि गीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
1: 12 साल विश्वास के
0: मीडियम वेव 205.7 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है हमारी ग्रामीण श्रोता बहनों को संबोधित हमारा कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन की सभी प्यारी बहनों को कमली का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, हमारा स्वास्थ्य, हमारा पोषण बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। अच्छा वातावरण, सही आबोहवा, नियमित व्यायाम, अच्छी नींद और उचित खान पान। उचित खान पान तो सबसे ज़रूरी है बहनों, और हमारी संतुलित थाली वह होती है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन जैसे सभी जरूरी अवयव शामिल हो। देखा जाए तो बहनों, हमारी भारतीय थाली पोषण भरी थाली मानी जाती है, क्योंकि इसमें यह सभी जरूरी अवयव होते हैं। भात, दाल, सब्जी, सलाद, रोटी, रायता, चटनी, यानी स्वाद भी और पोषण भी। बहनों, अगर हम बहनें थोड़ी कोशिश करें तो अपने घर में ही पोषण वाटिका भी तैयार कर सकते हैं। पोषण वाटिका यानी हरी ताजी सब्जियों की वाटिका, और इसे तैयार करना वो भी बहुत आसान है। बहनों, हमारे घरों के आसपास थोड़ी बहुत कच्ची ज़मीन तो होती ही है, और अगर न भी हो तो हम थोड़े गमलों की मदद से, किसी खाली बैग की मदद से, बाल्टी टूटी हुई इनकी मदद से इसे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है कि ज़मीन को साफ सुथरा करके अनावश्यक खरपतवार हटा देने हैं, और फिर हमारी रसोई में जो कुछ बीज हों उन्हें वहाँ छिड़क देना है, जैसे कि धनिया, मेथी, मिर्च के बीज, या पालक, बथुआ, हरा साग इनके बीज, या पपीता, अमरूद, शरीफा, नींबू के बीज। ये सारे पौधे बहुत ही आसानी से उग जाते हैं और इनकी देखभाल करना भी बहुत ही आसान है। और हमारी गृह वाटिका में हम अपने रसोई घर में धोए हुए अनाजों का पानी, जैसे कि हम चावल, दाल ये सब धोते हैं तो जो निकलता है पानी, और सब्जियों का धोने पर जो पानी निकलता है वो सब इनमें दे सकते हैं। इनसे हमारी गृह वाटिका जो है वह न सिर्फ हरी भरी होगी बल्कि उनमें उगी हुई साग सब्जियां भी बहुत अच्छी क्वालिटी की होगी। साथ ही हमारे रसोई घर में बहनों जो छिलके होते हैं, कचरे होते हैं, उनकी मदद से हम बहुत अच्छी खाद भी तैयार कर सकते हैं। हाँ बहनों, खाद, और ये बहुत ही आसान भी है। इसके लिए बहनों हमें किसी बड़े गमले में रसोई घर से निकले छिलके, चाय पत्ती, अंडे के छिलके, इन सभी को जमा करते जाना है, और धीरे धीरे कुछ महीनों बाद यह सभी सड़कर बहुत अच्छी कंपोस्ट खाद बन जाता है, और इनकी गुणवत्ता किसी भी बाज़ार की खाद से ज़्यादा अच्छी होती है। और यह काम हम अपनी बगिया के किसी कोने में भी कर सकते हैं। इसके लिए कहीं कोने में एक गड्ढा खोदकर और उसमें हम सारी जो भी रसोई घर की चीज़ें हैं, जो निकली हुई छिलके ये सब हैं, उसमें डालते जाते हैं, और धीरे धीरे धीरे करके जो गड्ढा भर जाता है, फिर हम कहीं दूसरी जगह पर ऐसा ही गड्ढा खोदकर फिर उसमें चीज़ें डालते जाते हैं। तो इससे क्या होगा, ये वहाँ छिलके वगैरह जम कर, सड़ कर और बहुत अच्छी मिट्टी की तरह तैयार हो जाते हैं और हमारी खाद तैयार हो जाती है। और इसका उपयोग करके हम अपनी वाटिका को बहुत अच्छा बना सकते हैं। हो सकता है बहनों कि शुरुआत में हमें कुछ दिक्कत आए, कुछ परेशानी हो, लेकिन धीरे धीरे करते करते हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, और फिर बहनों ये पौधे, ये बेलें हमारी दुनिया में शामिल हो जाते हैं और हमारे अच्छे मित्र भी बन जाते हैं, और सच्चे मित्र होते हैं बहनों ये।

0: के बारे में हम आगे अपने कार्यक्रम में और भी बातें करेंगे, पहले थोड़ा रुकते हैं एक अंतराल के लिए, कुछ संदेश सुनते हैं और फिर सुनते हैं एक गीत।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: आइए बहनों, अब सुनते हैं, विवाह का मौसम आ चुका है, तो आइए सुनते हैं एक जनेऊ गीत।

0: बहनों, हम बातें कर रहे थे गृह वाटिका के बारे में, तो हम गीत बाद में सुनेंगे। आइए पहले सुनते हैं इस गृह वाटिका के बारे में कि कैसे हम गृह वाटिका आसानी से तैयार कर सकते हैं। एक पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से हम और विस्तार से जानते हैं।
1: गृह वाटिका का साधारण अर्थ है गृह परिसर में अपनी इच्छा अनुसार बागवानी करना। वैसे गृह वाटिका को अंग्रेजी शब्दों में किचन गार्डन कहा जाता है।

पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल।

0: देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

गृह वाटिका लगाने के लिए हमें घर के आसपास या छत पर पड़ी खाली जगह में फल फूल और ताजी सब्जियां लगा सकते हैं। इसके लिए इसका उद्देश्य यह है बहनों कि घर परिवार के लिए हमें रसायन मुक्त ताजा और पोषक तत्वों से भरपूर सब्जियां प्राप्त हो सकती है, जिससे घर के भोजन का स्तर पोषण का स्तर बढ़ता है। और इसमें जो है हानिकारक रासायनिक कीटनाशक या रंगों का प्रयोग नहीं होता है बहनों, इससे जो है हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, साथ ही हमारी बाजार पर निर्भरता कम होती है, मतलब हम कभी भी इन्हें तोड़ कर बना सकते हैं। और इसमें जैविक खाद का प्रयोग होता है तो ये स्वाद में भी अच्छी होती है, हमारी सेहत के लिए भी अच्छी होती है। और इसमें जो है हमें अक्सर हम इनमें पत्तेदार सब्जियां जो बस बहुत आसानी से हमें उपलब्ध हो जाती है, इनमें आयरन विटामिन और प्रोटीन भी हमें अक्सर मिल जाया करती है। और पौधों की देखभाल करना मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी एक बेहतरीन शौक के रूप में हम विकसित कर सकते हैं। तो बहनों, हम अपने घर के पीछे आंगन में या छत पर ऐसी जगह चुनें जहां कम से कम 4 से 5 घंटे की सीधी धूप आती हो और वहां पानी की उचित निकासी हो। उसके लिए हम क्या करेंगे कि क्यारियां बनाएंगे या पुराने जो गमले हैं या थर्मोकोल के डिब्बे हैं या चावल दाल की बोरियां हैं, उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए हम कैसे मिट्टी तैयार करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, लगभग 3 भाग सामान्य मिट्टी और 1 भाग में गोबर की खाद, थोड़ी सी रेत, ये सबको हम मिला लेंगे आपस में। कुछ सूखे पत्ते भी हम इनमें मिला सकते हैं और इन सबको मिलाने पर हमारी अच्छी एक मिट्टी तैयार हो जाती है। और फिर हम क्या करेंगे कि अपने क्षेत्र में अपनी जलवायु के अनुसार मौसमी फसलों का चुनाव करेंगे। जैसे कि अभी गर्मी या बरसात का समय है तो इस समय हम भिंडी, लौकी, तोरई जिसे नेनुआ कहते हैं हम, करेला, मिर्च, टमाटर और बैंगन को उपजा सकते हैं। ये सभी बहुत ही आराम से उपज जाती है और बिन कम मेहनत में भी हम इन्हें अपने घर में उगा सकते हैं। साथ ही अगर मौसम ठंड का हो तो हम पालक, मेथी, धनिया, गाजर, मूली, ये सारी चीज़ें हम तैयार उसमें लगा सकते हैं। और साथ ही साथ हम कई तरह के फल और औषधियाँ भी इनमें लगा सकते हैं, जैसे कि हम क्यारी के किनारे किनारे नींबू, अमरूद का पौधा, पपीता का, सहजन का पौधा या औषधीय पौधों के रूप में हम तुलसी के पौधे, एलोवेरा के पौधे, इन सबको भी लगा सकते हैं। पुदीना भी हम लगा सकते हैं, बहुत आराम से ये विकसित हो सकता है। इसमें हमें कई बातों का ध्यान रखना है बहनों कि हम इन पौधों की जो देखभाल करते हैं उसमें हम पानी तो दें लेकिन हम पानी जमा ना हो, इस बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना है। यानी ज़्यादा पानी भरने से ज़्यादा पानी हम अगर इनमें देते हैं तो इनमें सड़न हो सकती है, इसलिए इन बात का हम ज़रूर ध्यान रखें। और साथ ही साथ अगर उनमें कीड़े लग जाते हों तो हम उसमें रासायनिक दवाओं की जगह नीम का तेल या नीम की पत्तियां उसमें छिड़काव करें। तो ऐसा करने से हमारे जो पौधे हैं वो शुद्ध स्वस्थ रहेंगे और उनसे हम अच्छी उपज भी ले सकेंगे। तो बहनों, गृह वाटिका के रूप में हम बहुत आराम से कुछ छोटे छोटी चीज़ों को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं और जब हमारी गृह वाटिका तैयार हो जाती है तो हम इनके पास बैठकर बहुत आराम से एक सुकून भरा चाय का प्याली भी पी सकते हैं। तो ये मन को और तन को बहुत ही शुद्ध करता है। तो बहनों, हम इसके लिए ज़रूर हम अपने गृह वाटिका का तैयार करेंगे और बनाएंगे। आइए बहनों, आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं एक विवाह गीत।

0: जी बहनों, हमने बहुत ही अच्छा सा विवाह गीत सुना और विवाह का मौसम फिर से शुरू हो गया है। जगह जगह से हमारे आसपास में बुलावे भी आने लगे हैं। तो विवाह में तो गीतों की एक अलग ही रौनक होती है और इसके बिना हमें अच्छा भी नहीं लगता है। बहनों, अब हमारी बहनों में एक समस्या अक्सर पाई जाती है, वो है खून की कमी का होना, और इसे हम चिकित्सीय भाषा में कहते हैं एनीमिया। तो इस समस्या से हमारी अधिकतर बहनें ग्रसित होती हैं। तो इनका क्या कारण है एनीमिया होने का, और इससे बचाव के क्या क्या उपाय हैं, आइए जानते हैं एक वार्ता के जरिए।
1: अनेक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए लौह तत्वों की आवश्यकता होती है, विशेषतः हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। ये हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है, इसी के कारण हमारे खून का रंग लाल है। हीमोग्लोबिन का मुख्य काम है फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना। हमारे शरीर को लौह तत्व हमारे भोजन से मिलता है, ये अस्थि मज्जा के द्वारा हमारे रक्त तक पहुंचता है, क्योंकि अस्थि मज्जा में ही रक्त कोशिकाएं बनती हैं। रक्त कोशिकाओं में ये लौह तत्व प्रोटीन से मिलकर हीमोग्लोबिन बनाती हैं। जरूरत से ज्यादा लौह तत्व हमारे लीवर में जमा हो जाता है, जो कभी जरूरत पड़ने पर काम आती हैं। इस तरह अगर किसी कारणवश हमारे शरीर में लौह तत्वों की कमी हो तो अस्थि मज्जा में भी लाल रक्त कोशिकाओं का बनना कम हो जाता है, साथ ही हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम होने लगती है। शरीर में हीमोग्लोबिन की इसी कमी को एनीमिया कहा जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा के अनुसार हम एनीमिया को निम्न वर्गों में विभाजित करते हैं। सामान्य 11 ग्राम या इससे ऊपर, हल्का 10.9 ग्राम से 9 से 5 ग्राम, मध्यम 9.4 ग्राम से 8.1 ग्राम तक, खतरनाक 7.9 ग्राम से 6.5 ग्राम तक, और प्राण घातक 6.5 ग्राम से भी कम। एनीमिया होने के क्या क्या कारण हैं? पहला, रक्त स्राव। शरीर के किसी भी भाग से कम मात्रा में धीरे धीरे रक्त स्राव, जैसे कि मल मूत्र के द्वारा या फिर मृत चमड़ी की कोशिकाओं से, जैसा कि जले हुए भाग से होता है। एक्सीडेंट्स, चोट, शल्यक्रिया के दौरान, प्रसव के दौरान, माहवारी में अत्यधिक रक्तस्राव, खूनी बवासीर, आंत की अल्सर इत्यादि में ज्यादा रक्तस्राव होता है। दूसरा कारण है शरीर को ज्यादा लौह तत्व की आवश्यकता का होना। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब शरीर को सामान्य से ज्यादा लौह तत्व की आवश्यकता होती है, जैसे समय पूर्व पैदा हुए शिशुओं को, बढ़ते हुए बच्चों एवं किशोरों को, धावकों या ज्यादा शारीरिक श्रम करने वालों को, मासिक चक्र शुरू होने पर किशोरियों को, गर्भवती महिलाओं को, दूध पिलाने वाली माताओं को। और अन्य कारण है किसी शारीरिक बीमारी की वजह से खून में लौह तत्वों का अवशेषण नहीं होना, यह हमारे दैनिक भोजन में लौह तत्वों की कमी का होना। अंत में हुकवॉर्म इन्फेक्शन, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अभिशाप है। एनीमिया के क्या लक्षण हैं? हल्के काम के बाद भी सांसों का फूलना, हमेशा थकावट महसूस करना, धड़कन का बढ़ जाना, शरीर का पीला पड़ना, हाथ पैर और चेहरे में सूजन आना, चक्कर आना, भूख में कमी, मासिक धर्म में गड़बड़ी इत्यादि। इन सभी बातों से हमें ये पता चलता है कि एनीमिया होने का मूल कारण हमारे भोजन में लौह तत्वों की कमी है, क्यों? आइए इस पर भी दो चार बिंदुओं पर बात कर लें। आज की आधुनिक पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से अनेक मामलों में अलग है। आज वे सजग हैं, शिक्षित हैं, विशेषज्ञ नौकरी पेशा हैं और किसी पर आश्रित नहीं हैं। अपने कार्यों, घर, परिवार, समाज एवं देश के प्रति समर्पित हैं। लेकिन इन सब के बावजूद वे स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति बेहद उदासीन हैं। इसी भागदौड़ भरी जिंदगी में जो मिला थोड़ा खा लिया, या फिर आज की किशोर पीढ़ी स्वयं को दुबला, छरहरा और स्मार्ट दिखाने की होड़ में भोजन से परहेज करने लगे हैं। इसी तरह आजकल के

0: फास्ट फूड ने बच्चों और किशोरों को संतुलित और पौष्टिक आहार से दूर कर दिया है। गरीबी एवं अज्ञानता भी एनीमिया का एक प्रमुख कारण है। हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें संतुलित आहार के बारे ज्ञान नहीं है। कुपोषण हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। गरीबी इतनी है कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है। बेटे बेटियों के फर्क ने भी एनीमिया को बढ़ावा दिया है, क्योंकि अक्सर बेटियों की उपेक्षा की जाती है एवं उन्हें बचा खुचा भोजन या जूठन ही नसीब होती है, जबकि शारीरिक श्रम उनसे ज्यादा लिया जाता है। कम उम्र में शादी, जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करना या ज्यादा बच्चे पैदा करना भी एनीमिया के कारणों में एक है। तो हम एनीमिया से बचाव कैसे करें? बिल्कुल सरल, अपने आहार में लौह तत्व युक्त पदार्थों को शामिल करें। नवजात शिशुओं के पूर्ण आहार के लिए 6 माह तक उन्हें सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो, उसके आहार में अनाज के साथ हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह देना शुरू करें। फास्ट फूड या जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक से उन्हें दूर रखें। किशोरियों को मासिक धर्म शुरू होने पर लौह तत्व युक्त भोजन एवं आयरन की गोली देनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था स्कूल प्रबंधन या सरकार की तरफ से होनी चाहिए। समय समय पर उनके स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं या दूध पिलाने वाली माताओं के भोजन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्हें भी नियमित जांच एवं आयरन की गोली देनी चाहिए, क्योंकि औसतन एक वयस्क पुरुष को प्रतिदिन 8 मिलीग्राम आयरन और एक वयस्क महिला को 18 मिलीग्राम आयरन की जरूरत होती है। अनेक शोधों से यह बात सामने निकल कर आती है कि 95% एनीमिया भोजन में लौह तत्वों की कमी से होता है। इसलिए मांसाहारी भोजन लौह तत्वों के लिए सर्वोत्तम है, जिसमें रेड मीट, लीवर, अंडा और छोटी मछली आती हैं।
1: बहुत ही अच्छी और काम की बातें हमने इस वार्ता के जरिए जानी बहनों, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बहनें अपनी स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगी और रक्त अल्पता को दूर रखेंगी। और इसी के साथ ही बहनों, हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में फिर से हम ढेर सारी बातों और जानकारियों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए विदा दें सबों को। कमलिका नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारी ग्रामीण श्रोता बहनों को संबोधित हमारा कार्यक्रम घर आंगन, मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्स और FM बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने ही वाले हैं। अब आइए शामिल होते हैं प्रादेशिक समाचारों के लिए आकाशवाणी पटना के प्रसारण में, कृपया प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 205.74 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:15 होने ही वाले हैं। अब आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दिल्ली के प्रसारण में, जहां से आप हिंदी में दोपहर समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा, 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया, 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वाशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
1: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए, भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज़ से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओज के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक युवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में युवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोप्रे, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
3: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
4: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
5: एनटीए इज कमिटेड।
6: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
5: कंडक्टेड इन अ फ्लॉलेस मैनर।
0: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
7: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
8: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: मीडियम वेव 205.7 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गण नगमों का कार्यक्रम चित्रपट से। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस नगमे के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे दिल धड़कने दो फिल्म का नगमा। जावेद अख्तर, प्रियंका चोपड़ा और साथियों की आवाज़ें थीं। गीत जावेद अख्तर ने लिखा था, संगीतबद्ध किया था शंकर एहसान लॉय ने। कार्यक्रम है चित्रपट से।
1: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

अभी आप सुन रहे थे चिराग फिल्म कनक माँ। लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ें थीं। गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीतबद्ध किया था मदन मोहन ने। चित्रपट से कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है फिल्म धरती कहे पुकार के से आवाज़ें लता मंगेशकर और साथियों की है। गीत एक बार फिर से मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है, संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: अभी आपने सुना लता मंगेशकर को फिल्म धरती कहे पुकार के में गीत बजरू सुल्तानपुर ने लिखा था, संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम है चित्रपट से।
1: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
2: तिलका मांझी तो बहुत।
1: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
3: बख्शी जगबंधु तो
2: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
4: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।

चित्रपट से कार्यक्रम के आखिर में आपने चश्मे बद्दूर फिल्म का नगमा सुना, यशुदास और हेमंती शुक्ला की आवाजें थी। इसके साथ ही आज का चित्रपट से कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:50 हो रहे हैं। अब आइए सुनते हैं विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के और जल कल्याण के की 16वीं कड़ी है ये। इसके अंतर्गत केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार।

0: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: नमस्कार। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली थी। तब से अब तक इन 12 सालों में भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं और हर क्षेत्र में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की गई हैं। आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के जन कल्याण के में आज हम पर्यावरण के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। मंत्री जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हाल ही में 12 वर्ष पूरे किए हैं। इस पूरी यात्रा में, इन 12 सालों में, आप किन बदलावों को सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी मानते हैं जिन्होंने भारत में गुड गवर्नेंस की एक नई परिभाषा गढ़ी है?
2: आपने जो शुरुआत में दो शब्द कहे थे
1: जी,
2: विश्वास और जन कल्याण
1: जी,
2: मुझे लगता है 12 साल की कहानी विश्वास और जन कल्याण की है। विश्वास इस बात का कि सरकार ऊपर से जो 100 रुपये भेजेगी वो जनधन खाते में पूरा 100 रुपया जाएगा, ये पहली बार हुआ है। वरना खुद देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं 85 रुपया गायब हो जाता है। विश्वास इस बात का कि सरकार जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेगी उसका उद्घाटन भी यही सरकार करेगी। 12 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने एक प्रगति नाम का कार्य शुरू किया तो कई सौ समय से पड़े हुए प्रोजेक्ट नहीं पूरे हुए
1: जी।
2: मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में केन बेतवा प्रधानमंत्री जी के समय में पूरा हुआ, राजस्थान में ERCP प्रधानमंत्री जी के समय में प्रारंभ हुआ, या आपके ऊपर पुल बनाने का विषय हो या गुवाहाटी के पुल बनाने का विषय हो। तो दूसरा विश्वास कि सरकार जिसका उद्घाटन करेगी उसको जनता को समर्पित भी करेगी। तीसरा जो लोगों का विश्वास है कि भारत का आत्मसम्मान और गौरव दुनिया में बड़ा है। फिर ऐसा जब अच्छा समय होता है तो आपकी परीक्षा भी ली जाती है।
1: बिल्कुल।
2: तो दुनिया में जब कोरोना की महामारी का संकट आया तो इस बात का विश्वास कि हम अपनी दवाई भी खुद ढूंढ सकते हैं और अपना रास्ता भी खुद तय कर सकते हैं। फिर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी तो इस बात का विश्वास कि हम जिस रास्ते पे चले हैं वह रास्ता विकसित भारत की ओर जा रहा है। और दूसरा जो शब्द आपने कल्याण कहा था, कल्याण
1: जी,
2: गरीब कल्याण, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी के खाते से निकाला, 80 करोड़ लोगों को समय पर राशन पहुंचाने का काम किया, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। और कल्याण के इस कार्य में जो कभी लोहिया जी 60 के दशक में कहा करते थे कि पानी और पखाना, ये भारत की महिलाओं की इतनी बड़ी त्रासदी रही है कि उनको मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने नेचुरल क्रिया को रोकना पड़ता है, घर घर शौचालय बनाने जैसा छोटा लेकिन एक लंबा कार्य, और जल जीवन मिशन को पहुंचाना। और इसलिए विश्वास और जन कल्याण ये 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और सफलता को बताता है।
1: भूपेंद्र जी, जलवायु संरक्षण के प्रयास के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी वैश्विक आवाज बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इसके बहुत बड़े पक्षधर हैं। तो आपके मुताबिक भारत ने विकास की अपनी जरूरतों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया है?
2: विषय ये उठता है कि हम वैश्विक आवाज किसकी बने? हम वैश्विक आवाज ग्लोबल साउथ की बने
1: जी।
2: तो जलवायु परिवर्तन के संकट की असमानता और असंतुलन क्या है? जलवायु परिवर्तन संकट की असमानता ये है कि जो विकसित देश हैं उन्होंने अपने स्पेस से ज्यादा धरती का कार्बन स्पेस घेरा हुआ है, और आज अगर वो पर्यावरणीय विषयों में विकासशील देशों को कुछ निर्देशित करना चाहते हैं तो पहले उनको जो उनका हिस्टोरिकल रॉन्ग है वो देना पड़ेगा
1: जी।
2: और भारत ने इसलिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रखरता के साथ उठाया है, लेकिन हमने ग्लोबल साउथ की आवाज को केवल लड़ने के लिए नहीं उठाया है। प्रधानमंत्री जी हमेशा हमें निर्देशित करते हैं कि भारत दुनिया की जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में समाधान का मार्ग प्रशस्त करे, समस्या ना बने
1: जी।
2: और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम, चाहे कोलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अकाल, सूखे और बाढ़ के कारण होने वाले दुष्परिणामों के कारण दुनिया में कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग का विषय हो? क्या इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक वैकल्पिक ऊर्जा जिसको नवकरणीय ऊर्जा कहते हैं
1: जी,
2: उसका विषय हो? क्या जो कार्बन एमिशन जिन इंडस्ट्रीज से निकलता है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लीडरशिप और इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा विषय हो? और चाहे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसा विषय हो, तो भारत ने दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज बन करके उनके हकों की बात करी है, क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बनकर और उसका नेतृत्व करके समाधान, नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का विषय अपनाया है, और मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान चलाकर ये समस्या हम सबकी समस्या है और अपनी अंतरचेतना को जगाकर अपना व्यक्तिगत योगदान क्या दे सकते हैं, उसमें एक बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निभाने का कार्य किया है।
1: आपने अभी जो कुछ पॉइंट्स कहे हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की, आपने नेट जीरो एमिशंस की बात की, इन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, खासकर कि दिल्ली जैसे महानगरों में, और ये जो है वो हमारे पर्यावरण पे बहुत इसका बुरा असर पड़ रहा है। सरकार अपनी तरफ से इसके लिए कई प्रयास कर रही है, जैसे भी हमने हाल ही में देखा कि यूनियन कैबिनेट ने दिल्ली NCR में पुराने ट्रकों और बसों को फेज आउट करने के लिए एक स्कीम जो है अप्रूव की है, साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EVs को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है, आप खुद भी EV में ट्रैवल करते हैं, तो इन प्रयासों को आप कैसे देखते हैं?
2: नहीं, ये सकारात्मक प्रयास है, जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, भौगोलिक परिस्थिति के कारण पर्टिकुलर समय में दिल्ली में वातावरण में प्रदूषण फैलता है
1: जी।
2: अभी तो आपको अच्छा लगा होगा कि मई तो हमारा क्लीनेस्ट डे रहा है, अखबारों में भी आया है
1: जी।
2: लेकिन जहां पर मनुष्य आधारित गतिविधियां होती हैं, वहां PM 2.5 और PM 10, ये दो जो तत्व है, मतलब PM 2.5 में कार्बन, ओजोन, बाकी जो गैसेस निकलती हैं उद्योगों से, व्हीकल से, और PM 10 में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके कारण ये प्रदूषण फैलता है। और जब मौसम में ऐसी स्थिति आती है, विशेष रूप से दिल्ली में जब हवाएं चलनी बंद होती है और सर्दी होती है, और सर्दी भी हो हवा भी ना चले, तो वो जो वायु में जो तत्व है इसको एयर पार्टिकल कहते हैं, वो जम जाता है, और जमने के कारण वो एक वातावरण का जो AQI है उसको खराब करता है। तो इसका उपाय विभिन्न क्षेत्रों में है, व्हीकल पोल्यूशन के स्तर पर क्लीन और फ्यूल की बात कही गई है, पुराने व्हीकल्स को समाप्त किया गया है, स्मार्ट ट्रैफिकिंग की ओर सरकार का ध्यान गया है, दिल्ली से कमर्शियल व्हीकल के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पैरेलल एक हाईवे बना करके बड़ा ट्रैफिक वहां से निकालने की बात की गई है, मेट्रो का विस्तार करके सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने का काम किया गया है, इंडस्ट्री के मॉनिटरिंग के लिए हर इंडस्ट्री में OCM लगाने की बात की गई है, और उसके साथ ही साथ जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अनधिकृत क्षेत्र में हैं उनको सख्ती से बंद करने की बात की गई है। उसके साथ ही दिल्ली के ग्रीनिंग के अभियान को चलाया गया है, डस्ट के लिए जो मैकेनाइज मशीन की जो सफाई है उसके लिए लगभग 100 से ज़्यादा मशीनें मंगाई गई हैं, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया है, फिर आर्टिकल जो P10 है इसका बड़ा कारण डस्ट है, तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन के लिए साइट्स को बनाने का काम किया गया है। इन सारे विषयों को करते हुए आज शाम को ही कृषि मंत्रालय में हमारी बैठक है कि पराली के बारे में अभी से प्रबंधन के विषयों के लिए बाकी राज्यों से बात करने की बात की गई है। दिल्ली के आसपास जो कॉरपोरेशंस हैं, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, मानेसर हो, गुड़गावा हो या फिर अलवर हो, वहाँ के जो हमारे कॉरपोरेशंस हैं उनको अपना एडवांस में प्लानिंग बनाने को कहा है, व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री पॉल्यूशन, डस्ट कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इन सब विषयों में एक अच्छे तरीके की नीति बनाने की बात की गई है, और पब्लिक के सहयोग के लिए भी इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है
1: जी। प्रधानमंत्री का एक संकल्प है भारत को विकसित भारत बनाना 2047 तक, इस विजन में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण पिलर है, तो भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आपकी मिनिस्ट्री यानी कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मिनिस्ट्री जो है, मैं कहूंगी कि सबसे अहम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
2: सबसे पहले तो सतत विकास का अर्थ है कि विकास की धारा निरंतर चलती रहे, इसमें इम्बैलेंस ना है, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहे। लेकिन हम धरती से जो संसाधन निकालते हैं उन संसाधनों का हमें वापस से पुनः उपयोग करना चाहिए, इसलिए हमारा मंत्रालय जो है सर्कुलर इकोनॉमी पे बल देता है। सर्कुलर इकोनॉमी में चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे यूज्ड ऑयल से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे फ्लाई ऐश जो होती हैं उनके साथ बेकार फ्लाई ऐश का विषय हो, और ऐसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जो कि हम पहले क्या करते थे, मेक टेक एंड वेस्ट, वो क्या करते थे। अब जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो एक नए कंसेप्ट को लेकर चलती है, रिसाइकल रीयूज एंड रिप्रोड्यूस, है ना। तो उसके लिए रेगुलेशन के लिए हमारे मंत्रालय ने रेगुलेटरी मिनिस्ट्री के नाते सारे रूल्स के फ्रेमिंग करने का काम किया। दूसरा, जो एक लंबे समय से इंडस्ट्री में बात की जा रही थी कि भाई आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो जैसे आपको अपना अकाउंट्स का ऑडिट देना पड़ता है, अब एनवायरमेंट ऑडिट की भी बात करी है और उनके ऑडिटर वो ऑडिट देंगे, ताकि हम जैसे आजकल रोज सुबह उठकर अपना इंसुलिन नाप लेते हैं ना कि हमारा आज कितना इंसुलिन है, हमारा आज कितना बीपी है, तो ये जो पर्यावरण का प्रदूषण भी एक किस्म का डायबिटीज ही है, इसके लिए अपना आपको एनवायरमेंट ऑडिट कराना चाहिए। और हमारे मंत्रालय ने रिफॉर्म्स के मानकों को काफी सरल करने का काम किया है, ताकि लोग नियम कठिन होने के कारण नियम को तोड़ते हैं। नियम जब सरल होते हैं और कॉन्शियसनेस होती है, उसके प्रति अवेयरनेस होती है, तो लोग उसको अपनाने का काम करते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी का उपयोग, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, देश के इको सेंसिटिव जोन का संवर्धन, देश में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका प्रोटेक्शन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर धरती को हरा भरा बनाने का विषय, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और कॉर्पोरेट पार्टिसिपेशन को लेने के लिए ग्रीन क्रेडिट फंड जैसा प्रोग्राम, कैंपा के माध्यम से ग्रीन इंडिया मिशन पे कार्य, बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए गांव-गांव में बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाने का कार्य, इन सब विषयों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं।
1: शुरू में आपने बात की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट इनिशिएटिव्स में से एक है। तो वैश्विक जलवायु संरक्षण के प्रयास और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करने में इस तरह के पहल के बारे में आप क्या कहेंगे?
2: ऐसा है कि दुनिया भर में ये कहा जाता है कि भाई आप दुनिया में अगर आपको कार्बन एमिशन कम करना है तो आपको फॉसिल फ्यूल जो है वो कम उपयोग करना पड़ेगा। भारत ने जो अपने एनडीसी टारगेट दिए थे उसमें हमने कहा था कि हमारी जो ऊर्जा की कैपेसिटी है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी से हमने ये प्राप्त करने के लिए सोलर के क्षेत्र को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। भारत ने सोलर के क्षेत्र में अपने 53% जो है ग्रोथ किया है। मैं जब G20 में कैपटाउन में गया था तो UNFCCC के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद दुनिया में कहाँ पर नया और अच्छा नवाचार हुआ, और उसमें भारत की इस बात की प्रशंसा की गई कि भारत ने दुनिया को सोलर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि से बताया है कि जिसको रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसमें भारत ने अच्छा कार्य किया है। और अभी तो जो इरना की जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी की, वो भी ये बताता है कि भारत दूसरे नंबर पे पहुंचा है। तो हम भी मानते हैं कि कार्बन एमिशन कम होना चाहिए, रिन्यूएबल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और इसलिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है जिसका अब तो हेडक्वार्टर भी गुड़गांव है। एक समय होता था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हेडक्वार्टर हमें दुनिया के दूसरे देशों में दिखते थे। 12 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उपलब्धि हुई है, तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर भी अब भारत में बनने लगे हैं। और रिन्यूएबल के क्षेत्र में भारत ने विशेष रूप से सोलर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल में एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है।
1: अगले सवाल के लिए मैं आपसे कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूंगी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में फॉरेस्ट और ट्री कवर यानी कि वन क्षेत्र और वृक्षों का दायरा बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% हो गया है और पिछली रिपोर्ट की तुलना में इसमें लगभग 1425 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, और साथ ही फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है उसमें भी 8 करोड़ 10 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, लेकिन अगर हम इसको समग्र रूप में देखें और अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा और के रूप में देखें, तो इन उपलब्धियों के पीछे आप कौन सी प्रमुख नीतियों और पहल की बात मानते हैं कि कौन सी पहल और उपलब्धियां रही हैं?
2: ऐसा है कि सतत विकास के साथ समग्र विकास भी होना चाहिए
1: जी।
2: और नेचर का ये नियम होता है कि जहाँ प्योरेस्ट नेचर होती है वहां पर जो अपेक्स प्रेडेटर है वो सरवाइव करते हैं
1: जी।
2: नेचर जो है उसमें जैसे एक छोटा माइक्रो जो स्पीशीज है उससे लेकर और जो अपेक्स प्रेडेटर है, तो इसमें 7 बिग कैट्स हैं। तो भारत ने पिछले 12 साल में दिखाया है कि हमारे टाइगर की संख्या में वृद्धि हुई है, लेपर्ड की संख्या में वृद्धि हुई है, स्नो लेपर्ड का एस्टिमेशन हम लोगों ने कराया है, लॉयन जो है पूरे अफ्रीका में कम हो रहे हैं, भारत में उसकी संख्या में वृद्धि हुई है, और एक स्पीशीज जो हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई थी चीता, उसका भी हमने वापस से री इंट्रोडक्शन किया है। तो हमने ये जो फॉरेस्ट कवर बढ़ा है ये इस बात को दर्शाता है कि हमने अपने यहाँ ये अभियान चला करके वो नेचर के बैलेंस को बनाने का काम किया है। यही कारण है कि आप ये देखोगे कि 2014 के पहले कांग्रेस के समय में ये इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन ही नहीं करते थे, पड़ा रहता था मामला। अभी अगर 2014 से और 2026 12 साल में देखेंगे तो उनकी संख्या बढ़कर 391 हो गई है, प्रोटेक्शन एरियाज की संख्या बढ़कर 509 हो गई है, जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या 47 थी वो बढ़कर के 58 हो गई है, जो एलिफेंट रिजर्व हैं उनकी संख्या बढ़कर के 33 हो गई है, जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं चाहे एलिफेंट हो, टाइगर हो, लॉयन हो, डॉल्फिन हो, पहली बार डॉल्फिन का एस्टिमेशन किया गया, मोर देन 6500 डॉल्फिन का हमने एस्टिमेशन किया है, उसके साथ ही साथ घड़ियाल हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, तो ये सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने का, इनके प्रोटेक्शन का, प्रिजर्वेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल ट्राइब्स हैं उनके जो राइट्स हैं उसके लिए भी हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टों के वितरण का कार्य किया गया है। ये इस बात को पूरी तरीके से दर्शाने का काम करते हैं कि हम अपने इकोलॉजी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
1: आपने डॉल्फिन्स की बात की तो नमामि गंगे मिशन की बात करना जाहिर हो जाता है। तो जब नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो उसका मकसद था गंगा को स्वच्छ करना, लेकिन समय के साथ ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के एक बहुत बड़े और अहम मॉडल के रूप में उभरा है। हाल ही में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका मेंशन किया था। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन के तहत देश की पहली डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस द्वारा एक गंगा डॉल्फिन के सफल बचाव किया गया, और उन्होंने इसे आशा की किरण बताया और कहा कि गंगा डॉल्फिन की रक्षा गंगा के पूरे इकोसिस्टम की रक्षा है। तो नदी की स्वच्छता से लेकर उसके बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम के संरक्षण तक की इस यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे, और नमामि गंगे मिशन की सफलता को आप किस तरह देखते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है ये?
2: देखिए, सरकार ने तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि जो गंगा का जो अपर एरिया है जहाँ ओरिजिनल गंगा बनने की शुरुआत होती है उनकी ट्रिब्यूटरी पे अब कोई फर्दर और कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि गंगा की सेंटिटी, गंगा के जल की शुद्धता, ये तो हमारा लक्ष्य रहा ही है, और इसलिए नमामि गंगे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी हम इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि धरती पे भी अपेक्स प्रेडेटर तभी रहता है जब बाकी जो माइक्रो से लेकर के और मैक्रो सब सारा जो सिस्टम नेचर का सुरक्षित होता है, सेम डॉल्फिन के बारे में भी है। और इसलिए हमने डॉल्फिन मित्र बनाने का भी काम किया। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एक संस्थान है ICFR, उसने अभी एक पिछले 3-4 साल से एक रिपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं कि हमारे नदियों के किनारे जो पेड़ लगाने के विषय हैं उस पर उन्होंने एक पूरी DPR तैयार करी है, और हम नदियों के किनारे भी वृक्षों के संरक्षण को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों पहले जो पीलीभीत से ऊपर एक जगह है कतरनिया घाट, वहाँ पे सबसे अच्छी डॉल्फिन साइटिंग भी है, और हमारे घड़ियाल के लिए भी मैं गया था। तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। और जो अमृत सरोवर तो प्रधानमंत्री जी के हृदय के बड़ा नज़दीक है, अगर आप एटलस भी देखेंगे तो जो छोटे सरोवर हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन बड़े सरोवर भी जो बड़ी झीलें भी हैं उनके प्रति जागरूकता के लिए हमको रामसर साइट का दर्जा दिला रहे हैं। और 2014 में जहां देश में 24 रामसर साइट्स थी अब उनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई।
1: मंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था एक पेड़ माँ के नाम अभियान, आपने भी बात की, और वो आज एक जन आंदोलन बन गया है, इसे भी हम सब जानते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस अभियान के तहत 140 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। बेशक ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसे सिर्फ संख्या के नजरिए से ना देखें तो जन भागीदारी, एफॉरेस्टेशन और पर्यावरण जागरूकता के संदर्भ में इसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं?
2: मैं हमेशा अपने अधिकारियों को कहता हूँ कि देखिए, जो हरित क्षेत्र का विस्तार है ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये पैशन का विषय है
1: जी।
2: और ये नेचर के साथ आपके कंपैशन का विषय है। अगर आपके साथ नेचर के साथ अगर आपका भाव होगा तो आप लगाओगे। पेड़ लगाना ये फोटो खिंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, पेड़ लगाना ये प्रकृति को बचाने के लिए होना चाहिए। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू भी किया था तो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था और जिसको हम लोगों तक पहुँचाते हैं कि हमारे पे दो लोगों का बहुत एहसान है, एक हमारी माँ का जिसने हमें जन्म दिया और दूसरा धरती माँ का जिसने हमारा भरण पोषण किया। और इसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का यही तरीका है कि हम वहाँ पर एक पेड़ कम से कम माँ के नाम लगाएं। देखिए, आप बहुत बड़ी किसी भी बड़े ब्रांड की गाड़ी खरीद सकती हैं लेकिन वो गाड़ी ऑक्सीजन नहीं दे सकती। आप 10 मंजिल का मकान बना सकते हैं लेकिन वो चिड़िया के लिए एक दाना नहीं बना सकता, है ना, पक्षियों को छाव नहीं दे सकता। तो पेड़ तो नैसर्गिक रूप से प्रकृति का दिया हुआ उपहार होता है। और मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि केवल पेड़ लगाना मतलब हॉर्टिकल्चर का विषय हो जाता है। जब हम वन की बात करते हैं, हम इकोलॉजी की बात करते हैं, तो पेड़ लगाना मतलब वुडलैंड तैयार करना। लेकिन जितना वुडलैंड का महत्व होता है उतना ही वेटलैंड का महत्व होता है पक्षियों के लिए
1: जी।
2: और उतना ही ग्रासलैंड का महत्व होता है। और ग्रासलैंड का जो हमारा एक बड़ा स्पीशीज था चीता, वो तो भारत से एक्सटिंक्ट हो गया था। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चीते के भी ट्रांसलोकेशन का कार्य किया है। तो एक पेड़ माँ का नाम अभियान प्रधानमंत्री जी का इस धरती की हरियाली से जुड़ने का अभियान है। और धरती की हरियाली वुडलैंड, ग्रासलैंड और वेटलैंड तीनों बायोडायवर्सिटी के समान रूप से संरक्षण में होगी और हम तीनों के लिए कार्य कर रहे हैं।
1: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और अक्सर ऐसा माना जाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसे में जब हरित विकास भारत की स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, तब सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित कर रही है?
2: देखो, विकास तभी समृद्ध होता है जब नेचर समृद्ध होता है। मान लो आप पानी से बिजली बनाते हो
1: जी,
2: पानी नहीं होगा तो बिजली कहाँ से बनाओगे? आप कोयले से बिजली बनाते हो, कोयला ही नहीं होगा तो बिजली कहाँ से बनाओगे
1: जी?
2: दुनिया की कौन सी ऐसी दवाई है जिसका लास्ट सोर्स नेचर ना होता हो? आप फैक्ट्री में ब्रेड बना सकते हो लेकिन गेहूं तो पैदा नहीं कर सकते हो। कोई ऐसी फैक्ट्री थोड़ी होती है कि जिसमें गेहूं बनता है। गेहूं से आटा बनता है लेकिन वो तो नेचर से आता है। तो हमारा फूड, हमारा एनर्जी रिसोर्स, हमारी औषधि, ये तो नेचर से आती है। तो नेचर सुरक्षित और संरक्षित होगी तो विकास भी होगा
1: जी।
2: आप एक बात बताइए कि जैसे आप सड़क बना रहे हैं या आप मकान बना रहे हैं, तो मकान में जो भी चीज लगा रहे हैं आप, दरवाजा है तो लकड़ी तो नेचर से आती है, ये कहाँ से आती है
1: जी।
2: तो विकास भी तभी होगा जब हम संसाधनों का बुद्धिमता तरीके से उपयोग करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है
1: जी?
2: कि कितना लंबे समय तक आप धरती को से खोद खोद कर केवल खनिज का उपयोग करोगे? कभी तो ऐसा समय आएगा कि इस खनिज का पुनर्उपयोग करने का काम आप करोगे। तो मेरा मानना है, जिसको आजकल कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन
1: जी,
2: नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, नेचर बेस्ड लाइफस्टाइल और नेचर के साथ विकास करने का काम हम लोग करेंगे। और इसलिए इकोलॉजी और इकोनॉमी ये एक दूसरे की विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है
1: जी। हम बात कर रहे थे शुरू में नेट जीरो एमिशंस की, तो जो भारत में वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक लाने की यानी कि नेट जीरो एमिशंस के लक्ष्य सहित कई महत्वाकांक्षी क्लाइमेट गोल्स को निर्धारित किया खुद के लिए, सो इस दिशा में अब तक कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं और आगे के क्या हमारे लक्ष्य हैं?
2: देखो, जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी क्षमता है, ये नेट जीरो के हैं
1: जी।
2: जो ग्रीन सिटीज की बात है ये नेट जीरो की है। जो मेट्रो का विस्तार है ये नेट जीरो के लिए है। जो ईवी का विस्तार है वो नेट जीरो के लिए है। जो ग्रीन हाइड्रोजन नए एनर्जी रिसोर्स को ढूंढ रहा है वो नेट जीरो के लिए है। जो बायोफ्यूल अलायंस कर रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। जो सोलार की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। नेट जीरो का अर्थ है कि हम एक ऐसे अर्थव्यवस्था के मुकाम पे पहुंचे जो कार्बन एमिशन और कार्बन उत्सर्जन कम हो, हमारी जीवन शैली और हमारे विकास का आधार पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो। और इसलिए जैसा आपने बताया कि 1477 किलोमीटर वन क्षेत्र बड़ा है तो वो नेट जीरो के लिए है।
1: पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, लेकिन इसके साथ ही जो हम जब पर्यावरण की बात करते हैं, उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसमें इंडस्ट्री का, कॉर्पोरेट जगत का कितना इम्पोर्टेंट आप एक रोल देखते हैं?
2: अभी हमने ग्रीन क्रेडिट फंड में कॉर्पोरेट को लगाया है, उनके जो ESG है वो भी है। कॉर्पोरेट जगत

0: बात होती है, भारत में कॉरपोरेट जगत में एक उत्साह का भाव बना है कि वो ग्रीन ट्रांजिशन की ओर जाए, अपनी इंडस्ट्री को ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाए, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि विकास ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक चले और धरती को बचाने के लिए हो। इसलिए कई बार ये कहते हैं ना कि ये ग्रह हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, अपने बच्चों से उधार में मिला है
1: जी।
0: तो ये हरा भरा ग्रह छोड़ के जाए, वरना एक दिन, जैसे आप ये कहते हैं ना कि मनुष्य ये सोचता है कि मंगल पे कभी जीवन था, तो ऐसा नहीं हो कि दूसरे ग्रह के लोग कहें कि पृथ्वी पे भी कभी जीवन, था।
1: क्योंकि आपने बच्चों की बात की, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आम नागरिक और आज खासकर की जो देश के युवा है, जो देश का भविष्य है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस अभियान में क्या योगदान दे सकते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
0: पहला तो एक फिर माँ के नाम अभियान से जुड़े, और दूसरा प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ में जो आयाम दिए हैं, सेव फूड, सेव वाटर, सेव एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, हेल्दी लाइफ स्टाइल, ऐसे विषयों पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, इसको अपनी जीवन पद्धति पर अपनाएं, तो मिशन लाइफ को अपना जीवन का आधार बनाएं, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास में अपना योगदान करें।
1: मंत्री जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई उपलब्धियों के बारे में और लक्ष्यों के बारे में बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आकाशवाणी में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। ये
3: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
4: ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: मीडियम वेव 205.74 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 3:20 हो रहे हैं। प्रस्तुत है समूह स्वर में देशभक्ति गीत।

0: अभी आप समूह स्वर में देशभक्ति गीत सुन रहे थे। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में 3:25 हो रहे हैं। अब आइए शामिल होते हैं हमारे आकाशवाणी के विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण में। संध्या 5 बजे से आप पुनः हमारे कार्यक्रम सुन पाएंगे। तब तक के लिए आइए विविध भारती के अनुप्रसारण में जुड़ते हैं।
1: राजस्थानी बांधनी की और बाकी राजस्थानी बांधनी या गुजराती बांधनी के और जो प्रकार हैं, और हमारे जो राजस्थान और गुजरात के श्रोता हैं वो भी बता सकते हैं कि क्या खासियत है साड़ियों की। भुज में खास तरह की बांधनी होती है। कच्छ के आदिवासी आकृतियां आमतौर पर काले और लाल रंग में, जिनमें बारीक ज्यामितीय बिंदु होते हैं। मॉडर्न बांधनी समकालीन सौंदर्य बोध के लिए डिजिटल प्रिंट के इस्तेमाल किए जाते हैं और पेस्टल रंगों का उपयोग भी किया जाता है और कुछ फ्यूजन डिजाइन भी बनाई जाती है।
2: जी, और हमारे साथी भी लिखते हैं कि बांधनी साड़ी प्रमुख रूप से राजस्थान और गुजरात में पहनी जाती है और उसका डिजाइन बहुत ही सुंदर होता है। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और साथ में हमारे साथी और भी लिख रहे हैं कि बांधनी साड़ी भारत की सबसे प्राचीन और जीवंत डाई वस्त्र कलाओं में से एक है और मुख्य रूप से गुजरात राज्यों में बहुत प्रचलित है। और बिंदिया बहुत बारीक होती हैं और चटक रंग की होती हैं, तो इसका जो है सांस्कृतिक महत्व भी है। त्योहार उत्सव पर भी खूब पहनी जाती है।
1: और इन साड़ियों के साथ चूड़ी का भी कॉम्बिनेशन होता है।
2: बिल्कुल, साज श्रृंगार तो बहुत जरूरी है।
1: और उसी रंग की अगर चूड़ी पहन ली जाए तो फिर और लुक एकदम अलग आ जाता है। अब ये बात तो ये इस गाने के साथ हम जोड़ रहे हैं, तो सुनते हैं ये गाना, हरे कांच की चूड़ियां। फिल्म का नाम है

0: विविध भारती पर यह है कार्यक्रम सखी सहेली।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
4: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
3: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय सखियां सहेलियां और सखा सुन रहे हैं सखी सहेली कार्यक्रम और बात अब डायरी की चल पड़ी है। डायरी लिखना एक कला भी है और डायरी लिखने से तनाव दूर हो जाता है, मन हल्का हो जाता है और एक फायदा और होता है कि कई बरस बाद, जैसे मान लीजिए आज आपने कोई बात लिखी डायरी में, अब से 20 साल बाद आपकी आने वाली पीढ़ी उसे देखेगी पढ़ेगी तो आज क्या क्या हुआ वो जानेगी और क्या माहौल था घर का। माँ डायरी लिख रही, पिता डायरी लिख रहे हैं तो बच्चे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो तो वो एक जानकारी मिलती है और एक अलग अनुभव होता है।
5: बिल्कुल,
0: है ना,
5: बिल्कुल। डायरी जो लिखने की आदत है उसमें बहुत सारी बातें आपके जीवन की आ जाती हैं। उस वर्ष आपने, उस महीने आपने क्या चीज फेस करी अपने जीवन में, सुख दुख सब हंसी खुशी सब कुछ उसमें रहता।
0: सूखा पड़ा, बारिश हुई बहुत ज्यादा,
5: बिल्कुल,
0: और बहुत खुशगवार दिन था, शादी ब्याह, दुनिया भर की बातें आ जाती है। अब हमारे सखी हैं जिन्होंने एक बात लिखी है। लिखा है कि 10वीं क्लास पास करते ही मुझे भी डायरी लिखने का खूब शौक चढ़ा था। एक युवा लड़की की डायरी में जो जो लिखा जा सकता था वो सब मैं रोज लिखती थी। जैसे कि आज शाम गजब की बारिश हुई, कल रात मेरे कमरे में घुप अंधेरा, एकाएक जानी पहचानी खुशबू मेरे चारों तरफ फैल गई, मेरी आंखों में चमक सी जागी। स्कूल जाते समय एक लड़का रोज मेरा पीछा करता है, कल तक जो बेरंग था आज सब कुछ रंग बिरंगा लग रहा है। मेरे मन में एक कविता आकार ले रही है मगर शब्द साथ नहीं दे रहे। फिर मैंने कविता के ख्याल को झटक दिया। चाहतों से भरी जिंदगी में डायरी अपनी किसी सहेली की तरह होती है और जब हकीकत के थपेड़े पड़ते हैं तो डायरी लिखने में बड़ा सुकून मिलता है। डायरी में फिल्मी गीत भी बहुत लिखे हैं पर अब डायरी नहीं लिखती। भाई क्यों नहीं लिखती है?
5: जो लिखा है उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, मैं तो उसी में डूब गई थी।
0: अब सवाल ये है कि क्यों नहीं लिखती है?
5: लिखना चाहिए,
0: लिखना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, ये जरूर है कि अगर कागज कलम साथ में नहीं होता है तो आपके पास बड़ा अच्छा यंत्र है, मोबाइल यंत्र। आप कहीं बाहर है, रस्ते में जा रहे हैं, ट्रेन में है, विमान में है या फिर कार में, गाड़ी में, बस में, ऑटो रिक्शा में, तो वहाँ भी आप डायरी लिख सकते हैं, बोल के टाइप करने की भी सुविधा है तो।
5: जी बिल्कुल। अरे हमारे साथी लिखते हैं कि डायरी लिखना अच्छा भी है और कुछ हद तक नहीं भी अच्छा, इसलिए कि दिन भर की अच्छी बुरी बातों को लिख कर रख देना और मन को हल्का कर लेना। 6 महीने पहले का पन्ना पलटो तो लगता है उस समय की यही बात कितनी बुरी लगती थी कि, लेकिन समय की धूल ने उस पर पर्दा डाल दिया। डायरी लिखने से यादें जिंदा रहती हैं। बच्चे की पहली हंसी से लेकर पिता की आखिरी नसीहत मानो सब कुछ कह रही हो, लेकिन यही आदत तब बुरी बन जाती जब डायरी में सिर्फ दुख, नफरत और शिकायतें लिखते रहो, तो यही डायरी जिंदगी को दलदल बना दे।

0: जी में जो भी बात लिखें सच लिखें,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि झूठ लिखने का कोई मतलब नहीं होता।
1: नहीं।
0: कुछ लोग डायरी भी आत्मश्लाघा में लीन होकर लिखते हैं पर अपनी तारीफ, तो उससे कोई मतलब नहीं होता।
1: बिल्कुल नहीं होता।
0: सच को सच की तरह लिखें, झूठ को झूठ लिखें कि ये गलत था,
1: तभी तो उस समय का पता चलेगा कि आपने जीवन में क्या बिताया।
0: अब हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे नाना जी को डायरी लिखने का बड़ा शौक था, एक बार उनकी सीट पर बैठा तो उनकी डायरी हाथ आ गई, मैंने खोल कर देखी तो जो पढ़ा वो सच में गजब ही था। नाना जी का स्वतंत्रता संग्राम में जेल के दिन, उनके साथियों के साथ क्रांति के दिन, मैं तो एक्साइटेड हो गया था और खोजा तो वो डायरी भी मिली जिसमें मेरी माँ की शादी के बारे में भी पूर्ण ब्यौरा लिखा गया था। उसे पढ़ा तो लगा जैसे मैं उन दिनों के लम्हों को जी रहा था। सच में डायरी लिखना बहुत बड़ी बात है, वर्षों बाद भी आपके पुराने दिन जीवित रहते हैं। आजकल जो मोबाइल में नोटपैड पर लिखना डायरी का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि मोबाइल 5-7 साल में बदलना ही पड़ता है, जबकि डायरी आपके साथ है तो उसके बाद भी रहती है। बिल्कुल सही है, डायरी का तो कोई मुकाबला नहीं है, कागज और पन्नों का कोई मुकाबला नहीं है। वो कलम से जो बैठ के लिखते हैं तो जो हौले हौले जज्बात निखर के आते हैं, कागज पर चमकते हैं, तो वो बात निराली होती है। लेकिन न से तो बेहतर है कुछ, तो इसलिए कि अगर आप लिखते ही नहीं तो कम से कम मोबाइल के नोटपैड पर लिख सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और डायरी अगर लिखने की आदत है तो बहुत अच्छी बात है।
1: बिल्कुल, और देखिए हमारी साथी लिखते हैं कि डायरी लिखने मैंने 8th क्लास से शुरू किया था, मुझे क्लास और घर के दिन भर की सभी घटनाओं को रोज लिखा करती थी और आज भी कायम है। सोने से पहले डायरी लिखकर बड़ा सुकून मिलता है। बहुत अच्छी सी बात इन्होंने लिखी है और मुझे लगता है कि आपको भी डायरी लिखने का शौक है।
0: भाई अगर डायरी लिखने से कई बार लिखने की ताकत मिलती है, प्रेरणा मिलती है, तो इसलिए हम सबको डायरी लिखनी चाहिए, हमें आपको भी लिखनी चाहिए।
1: नहीं लिखते
0: फिलहाल गाना सुनना चाहिए।

0: आदत है, और आजकल खत लिखने का चलन भी खत्म हो रहा है, तो उसे भी जिंदा रखना चाहिए। इसीलिए विविध भारती ने जिंदा रखने के लिए शुरुआत की है मन चाहे गीत की। मन चाहे गीत कार्यक्रम में फिर से चिट्ठियां आनी शुरू हो गई, और एक दो नहीं, बहुत ढेर सारी चिट्ठियां आनी शुरू हो गई हैं। और अब फिर वही स्थिति हो गई कि कौन सी वाली चिट्ठी ले पहले, कौन सी वाली बाद में ले, तो बस वो आंख मूंद के उठाने वाली नौबत आ गई।
1: करना पड़ेगा।
0: तो हमें चिट्ठियों से प्यार होता है, इससे ये जाहिर है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि डायरी लिखना मुझे बहुत पसंद है। जब हम पन्ने पलट कर पढ़ते हैं तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। डायरी के अंदर मैंने कुछ पुराने पत्रों को भी संजो कर रखा है, उसे पढ़कर भी बहुत अच्छा लगता है। डायरी तो जरूर लिखनी चाहिए, मन में नए विचार भावनाएं जागृत होती हैं, दुख लिख देने से वो कम होने लगता है। डायरी हमारे मित्र है जो हमारे राज किसी से नहीं कहती है, और हम पूरे विश्वास के साथ उसे अपनी सारी बातें कह देते हैं। लेकिन कई बार अपनी प्रेम कहानी जब लिखते हैं और छुपाते हैं तो वो जब उजागर होता है तो फिर वो दोस्त नहीं रह जाती है डायरी।
1: देखिए ममता जी, एक ऐसा भी उस समय भी ऐसा चला था, भाई लिखते तो थे ही डायरी सब लोग, लेकिन उसमें भी अपने दिल की बातें लिखते थे प्यार भरी।
0: आपने लिखी है कभी?
1: तो ये बात तो बताई जा सकती है, क्योंकि ये बात को रहने
0: उजागर, राज को राज रहने,
1: राज ही रहने देते हैं। तो लेकिन हम वो ये कह रहे थे ममता जी कि जो उस समय भी डायरियां बड़ी डिजाइनर डायरियां आती थी, और कुछ डायरियां ऐसी आती थी ममता जी उसमें लॉक होता था, तो मैंने खुद देखा है कि वो लॉक वाली रहती थी, उसमें वो स्पेशल खास
0: वो अभी भी आती है।
1: हाँ,
0: बस शौक होना चाहिए डायरी खरीदने का, डायरी लिखने
1: तो
0: का, और डायरी तोहफे में देने का तो भी एक अलग मजा है।
1: सोचते हैं हम आपको दे देते हैं, आप मुझे दे दो। फिलहाल तो हम कमेंट्स पढ़ लेते हैं, है ना?
0: बिल्कुल।
1: तो एक साथी लिखते हैं कि मुझे डायरी लिखने का शौक है। कोई आवश्यक कार्य नोट करता हूँ। 2005 में हमारे पूरे परिवार करीब 40 लोग और सहायक बस चलाने वाला रसोई मैनेजमेंट 6 लोग कुल 50 व्यक्ति ने बद्रीनाथ तक का 21 दिनों का प्रवास किया था। उनका सभी वर्णन मैंने लिखा हुआ है। आज भी कभी डायरी देखता हूँ और पढ़ता हूँ तो पूरा प्रवास के स्थलों, कहाँ रुके, भोजन का मेनू, सभी विवरण पढ़ते हैं तो नजर समक्ष पूरा प्रवास याद ताजा हो जाती है। बिल्कुल सही लिखा है आपने।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि आपका मन हल्का होता है एक तो डायरी लिखने से। वैसे मैं लिखती हूँ कुछ लेन देन की बातें, कुछ वैसी बातें जो मुझे याद रखनी चाहिए, यानी मैं पेन जरूर उठाती हूँ। आजकल स्लेट और पेंसिल पर सुरीला सफर के इबारत पढ़कर गाने और क्या कुछ कहना है लिखती हूँ। क्या बात है भाई, जब मैं लिखती रहती हूँ तो मेरी हेल्पर आ जाती है तो पूछती है कि चाची अब आप क्या पढ़ती रहती हैं, लिखती रहती हैं, तो मैं हंस के कह देती हूँ बस ऐसी कुछ कुछ बातें लिखते हैं और फिर मिटा देते हैं। और ये जो लिखी है कि लेन देन की बातें लिखते हैं, अभी भी बहुत सारे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं जो बाकायदा कागज कलम लेकर जो घर की जरूरी चीजें हैं उसकी लिस्ट बनाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और उस लिस्ट को देते हैं अपने बच्चों को कि ले जाओ ये सामान लेकर आओ। हम अमूमन क्या होता है कि सीधे स्टोर में जाते हैं या मॉल में जाते हैं और चीजें दिखती हैं, सामान रखते जाते हैं, भरते जाते हैं, कई बार अनावश्यक चीजें आ जाती हैं।
1: हमें याद है ममता जी, जो आपने बुजुर्गों की बात की आदत बताई है, तो वो लोग इसलिए भी लिखते थे कि महीने में हमने कितना खर्च किया, अगले महीने हमें कहाँ पे कटौती करनी है, तो वो एक पूरा बजट बना के चलते थे। तो हमने भी बड़ों से यही सीखा है, तो वो डायरी उस तरह का हम भी नोट बनाते हैं घर पे कि हम अगले महीने किस चीज को माइनस करते हैं, तो एक बजट बना के जब चलते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है, और गृहस्थी में तो बहुत जरूरी होता है।
0: पढ़ाई की बातें, गानों की बातें, संगीत की बातें, और तो और संगीत सरिता जो प्रोग्राम प्रसारित होता है आज भी, हम जब छोटे थे सुनते थे तो अपनी डायरी में संगीत सरिता से जुड़ी जो बातें होती, जानकारियां, वो डायरी में नोट करते थे और उन जानकारियों के आधार पर अपनी बातें लिखा करते थे।
1: क्या, बहुत अच्छी बात।
0: ये हम सबकी आदत में शुमार है ये सब डायरी लिखना, लेकिन अब कहीं विलुप्त हो रहा है ये चलन।
1: बिल्कुल। लेकिन हमारे साथी कि डायरी लिखना एक बहुत अच्छी उपयोगी आदत है, ये हम अपने दैनिक अनुभव, विचारों और भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने का अवसर देती है। डायरी लिखने आत्मचिंतन की क्षमता बढ़ती है और हम अपनी गलतियों तथा उपलब्धियों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। ये हमारी लेखन कला को भी निखारती है और स्मरण शक्ति को मजबूत बनाती है। कई वर्षों बाद जब हम अपनी पुरानी डायरी पढ़ते हैं तो जीवन के अनेक यादगार पल फिर से ताजा हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से डायरी लिखने की आदत को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्तित्व विकास और मानसिक संतुलन के लिए अत्यंत लाभदायक है।
0: और साथ में संगीत सुनते रहें तो ये और ज्यादा लाभदायक होता है। सुनिए ये गाना।

0: छाया फिल्म का ये गाना था और डायरी लिखने पर हमारे श्रोता बहुत सारे टिप्पणियां लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि अगर डायरी लिखने की बात है तो महात्मा गांधी जी के जो सचिव हैं उनको कैसे भुला सकते हैं, उन्होंने साल 1917 से 1942 तक नियमित रूप से डायरी लिखी थी जिसमें स्वतंत्रता संग्राम और गांधी जी के जीवन का सबसे प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज दर्ज है।
1: क्या बात है। और हमारे साथी लिखते हैं कि एक जमाना था मुझे भी डायरी लिखने की आदत थी जो मेरे ससुर जी से प्रेरणा मिली थी, अब तो डायरी लिखना छोड़ दिया है, भले ही अब डायरी लिखना छूट गया है लेकिन वो शौक आज भी दिल के किसी कोने में एक मीठी सी याद बनकर जिंदा है। डायरी लिखना छोड़ देने से शायद हम अपनी रोज की बातें दर्ज करना भूल गए हों लेकिन ये वो आदत हमें अपने विचारों को गहराई से समझना सिखा गई है।
0: मंजरी जी एक हमारे श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि डायरी लिखने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे पतिदेव डायरी लिखते थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने उन्हें बहुत पसंद था डायरी लिखना। आज जयपुर में वो नहीं है, उनके न रहने पर जब मैं डायरी उठाकर देखती हूँ तो एक एक दिन का हाल दर्ज है। जब हम लोगों की लव स्टोरी चलती थी तब लेकर जब बच्चे हुए घर की कोई बात हमेशा उसमें दर्ज है, जो पढ़कर ऐसा लगता है कि पुराने सालों में जिंदगी पहुंच गई है। वाकई बहुत अच्छी आदत है डायरी लिखना।
1: बिल्कुल। और हमारे जो और साथी हैं तो हम लोग सोचते हैं कि अगले विषय की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा जो हमने शब्द दिया था प्रोत्साहन
0: डायरी लिखने की तरह का प्रोत्साहन
1: भी था ये और हमने प्रोत्साहन लिया है, तो ममता जी प्रोत्साहन वो शक्ति है जो किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने

0: बेहतर करने और कठिन परिस्थितियों में भी हार ना मानने की प्रेरणा देती है। जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी निराश, असफलता और कठिनाइयों का सामना करता है, और ऐसे में यदि हम किसी का उत्साह बढ़ाने वाले शब्द, सहयोग या विश्वास मिल जाए तो वही प्रोत्साहन उसके लिए एक नई ऊर्जा बन जाता है।
1: बिल्कुल। अब प्रोत्साहन हमने डायरी के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि मैंने डायरी लिखनी चाहिए पर जब उसको उठाओ पढ़ो तो पुरानी यादें जिंदा हो जाती हैं, तो दुख कुरेद जाता है, तो मैंने छोड़ दिया। आज भी कभी मन होता है तो लिखने बैठ जाती हूँ, बस अपने भाव सहेज लेती हूँ। ये तो दोनों सकारात्मक नकारात्मक दो पहलू होते हैं, तो आपके दुख, अगर दुख को पलटेंगे बार बार तो वो तो आपके मन में भी उघाव ही पैदा करेगा।
0: बिल्कुल सही बात है। तो कुछ अच्छी बातें भी सोच के आप लिखना शुरू कर दीजिए, है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोत्साहन, तो हमारे साथी भी लिख रहे हैं देखिए प्रोत्साहन पर, कि प्रोत्साहन वो शक्ति है जो किसी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और उत्साह का संचार करती है। जब कोई हमारा हौसला बढ़ाता है तो कठिन से कठिन कार्य भी आसान लगने लगते हैं, और एक छोटा सा प्रशंसा का शब्द या विश्वास भरा साथ किसी के जीवन की दिशा भी बदल सकता है, हमारे साथी लिख रहे हैं। और प्रोत्साहन जो है वो केवल बड़े कार्यों के लिए आवश्यक नहीं होता ममता जी, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक बच्चे को पढ़ाई के लिए, खिलाड़ी को जीत के लिए, और कलाकार को अपनी कला के लिए, और कर्मचारी को बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। और जब किसी व्यक्ति के कार्य की सराहना की जाती तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता और वो अधिक मेहनत करने के लिए भी प्रेरित होता है। जैसे कि हम लोग करते हैं प्रोग्राम, तो अगर हमारी प्रशंसा होती है या प्रोत्साहन दिया जाता है कि इसको और अच्छे से करो, उत्साह बढ़ता है, तो लगता है कि नहीं अगली बार हम और अच्छा करेंगे। तो ये चीज हर के साथ होती है,
1: प्रोत्साहन बहुत जरूरी है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रोत्साहन सफलता की ओर बढ़ने का महत्वपूर्ण साधन है, ये व्यक्ति के मनोबल को मजबूत करता है और उसे अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा भी देता है। इसीलिए हमें सकारात्मक रहना चाहिए और दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कई बार तो लोग बहुत अच्छे काम में भी कुछ न कुछ मीन मेक निकाल ही देते हैं कि अरे इसमें ये कमी रह गई, तो वो सही चीज बताने की, सही गलती की ओर इशारा करना अच्छी बात है, आपकी सही निंदा करना अच्छी बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से मीन मेक निकालना ठीक नहीं होता है, बल्कि काम को प्रोत्साहित करना चाहिए।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि प्रोत्साहन एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा है जो किसी व्यक्ति के सोए हुए आत्मविश्वास को जगाकर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करती है। ये केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि प्रेरणा का वह पुंज है जो कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का संबल देता है।
1: और हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी है कि बच्चों को प्रोत्साहन देने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी छोटी छोटी सफलताओं की भी सराहना की जाए। जब बच्चे कोई अच्छा कार्य करें, मेहनत करें, नई चीज सीखने का प्रयास करें तो उनकी प्रशंसा करें, उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि गलतियां सीखने का एक हिस्सा है और निरंतर प्रयास से सफलता प्राप्त की जा सकती है। माता पिता और शिक्षक बच्चों की बात ध्यान से, उन्हें प्यार और सम्मान दें और उनकी रुचियों को आगे बढ़ाने में सहयोग दें। इसीलिए तो स्कूल कॉलेज में पुरस्कार की व्यवस्था की जाती है ना, कि
0: बच्चों का उत्साह बढ़ जाता है उस तरह से। और हमारे एक साथी लिखते हैं पौधों को और खेत में पानी देने से प्रोत्साहन मिलता है, वो फूलता फलता है। जी हाँ, प्रोत्साहन यानी एक स्फूर्ति, पुरस्कार या उत्साह भरे शब्दों में शाबाशी देना जो किसी व्यक्ति या समूह को खास काम करने या व्यवहार में कार्यक्षम और सकारात्मक बनने में प्रेरित करती है। याद रखें पौधों को उतना ही खाद पानी दे जितना जरूरी, अधिक मात्रा से वो मुरझा जाता है। अत्यधिक प्रोत्साहन से काम बिगड़ने की संभावना रहती है। बहुत गुड़ बात इन्होंने अच्छी बात लिखकर भेजी है। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि प्रोत्साहन सफलता की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है, ये व्यक्ति के मनोबल को मजबूत करता है और उसे सपनों को साकार करने के लिए प्रेरणा देता है। इसलिए हमें सकारात्मक रहना चाहिए, दूसरों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए।
1: और अब देखिए डायरी लिखने के लिए भी एक टिप्पणी हमारे श्रोता ने लिखी है कि बचपन में दी डायरी, आप सबने पूछा कि कोई ऐसी डायरी भी पढ़ी है, तो लिखा है कि बचपन में दी डायरी ऑफ यंग गर्ल पढ़ी थी जो एक किशोर वय बच्ची एनी फ्रैंक द्वारा लिखित बहुत मार्मिक अभिव्यक्ति है। वे एक यहूदी थी और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नीदरलैंड पर जर्मनी के कब्जे के समय अपने परिवार के साथ छिप कर रही थी। उन बिताए समय का वृत्तांत उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है। तो डायरी किस तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है कई बार, और एक लंबा दस्तावेज होता है। अब प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं ये गाना।

0: मॉडर्न गर्ल फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजें थी। और अब बिल्कुल भी वक्त नहीं कि गाना सुनवाएं या कुछ बोलें बतियाएं, तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों आज हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता विजय राज। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: बहुत बहुत स्वागत है देवदत्त के इस कार्यक्रम में आपका। नमस्कार।
2: नमस्कार। मैं एक्चुअली मैं बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि रेडियो एक ऐसी चीज रही है बचपन से, कहीं आपके भीतर कुछ पैदा कर देता है। वो लगता है जैसे कि आप ही के भीतर से कोई आवाज आ रही है। मैं यहाँ पे हूँ, मैं पहली बार आया हूँ रेडियो में।
1: अच्छा,
2: तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार।
1: लेकिन रेडियो के साथ में बतौर श्रोता आपका रिश्ता बना रहा है।
2: मैं जब छोटा था तो मुझे बड़ा शौक था रेडियो का, और पैसे चूंकि होते नहीं थे तो मैंने एक दो बार पैसे इकट्ठे किए और मैं रेडियो लेके आया था, छोटा पॉकेट रेडियो 110 रुपए, जो मेरे लिए इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी। रात को मैं सुनता उसको और वो सुबह खर खर पाया जाता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था, स्पेशली 10 बजे कोई कार्यक्रम आता था, छाया गीत, करेक्ट
1: जी
2: हाँ,
1: और उसमें हम पुराने पुराने गाने,
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: कमेंट्री पेश
2: हाँ,
1: करते हैं।
2: हाँ,
1: तो ये जो उसमें आप कमेंट्री वगैरह भी, क्योंकि उन दिनों तो हॉकी और क्रिकेट की कमेंट्री के लिए रेडियो बड़ा सहारा हुआ
2: बिल्कुल
1: करता
2: बिल्कुल
1: था।
2: हाँ।
1: और कौन कौन से रेडियो थे विविध भारती के अलावा?
2: मेरे ख्याल से वही एक ज्यादा
1: पॉपुलर
2: पॉपुलर हुआ करता था उस समय। और जो कि जैसे क्रिकेट का मुझे बड़ा शौक था तो कमेंट्री उस पे आती थी, वो सुनते थे। और टेलीविज़न तो उन दिनों बहुत कम हुआ करता था, किसी के घर में पाया जाता था तो वहाँ इतने सारे लोग जमा हो जाते थे कि भाई चलिए टीवी देखा जाए।
1: आपके यहाँ टीवी कब आया पहली बार?
2: हमारे यहाँ आया जब ये एशियाड हुए थे,
1: कलर आया था, ब्लैक एंड व्हाइट था वो।
2: ब्लैक एंड व्हाइट।
1: अच्छा, चूंकि रेडियो की बात कर रहे हैं हम, और रेडियो के स्टूडियो में आए हैं आप, विविध भारती के स्टूडियो में आए, क्यों ना आपकी फरमाइश के गाने से?
2: मुझे एक्चुअली पुराने गाने यार बहुत बहुत अच्छे लगते हैं,
1: और विविध
2: स्पेशली
1: भारती के पास विजय भाई पुराने गीतों का जबरदस्त खजाना है।
2: हाँ। तो मुझे एक मन्ना डे साहब का एक गाना है, ऐ मेरे प्यारे
1: प्यारे
2: वतन,
1: वतन,
2: जो मन्ना डे साहब क्या क्या गाया है,
1: अद्भुत।
2: बाप रे। और
1: लेकिन जो कुछ भी गाया, कव्वालियां गाई, भजन गाए,
2: बिल्कुल
1: रोमांटिक
2: बिल्कुल
1: सॉन्ग्स
2: बिल्कुल
1: गाए,
2: बिल्कुल
1: और शास्त्रीय संगीत पर आधारित गाने जो उन्होंने गाए हैं वो भी अद्भुत हैं। उनका गाना ये काबुली वाला फिल्म का गाना है, पेट
2: हाँ।
1: धवन साहब का लिखा हुआ है और सलील चौधरी साहब का संगीत है। सुनवा दिया जाए
2: बिल्कुल
1: ऐ मेरे प्यारे वतन।

कसम हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले।

0: और सिर्फ वतन में ही नहीं, सभी लोग सुन रहे विजय भाई, ये चाहूंगा विजय कब प्राप्त हुई आपको फिल्मों के लिए, कहाँ मिला?
1: मैं दिल्ली में पैदा हुआ, पला बड़ा वहीं पे, और मेरी मतलब जैसे कहते हैं कि बचपन में पूछा जाता है कि भाई क्या बनेगा बच्चा बड़ा होके तो मैं ऐसा कह लें कि मुझसे ये सवाल नहीं किया गया था कभी कि क्या बनेगा। मेरी समझ में हिंदुस्तान में इतने सारे परिवार हैं जिनकी संख्या करोड़ों में है, जहाँ शायद ही कभी बच्चे से ये सवाल किया जाता है। इट्स अ वेरी ग्लैमराइज्ड क्वेश्चन एक्चुअली कि क्या बनेंगे आप, इस सवाल तक तो जाता ही नहीं है। बहुत करोड़ों परिवार ऐसे हैं, वहाँ ध्यान कुछ होता है कि खाना मिलेगा, तो सवाल मेरे ख्याल से पेट भरने के बाद शुरू होते हैं।
0: और कई परिवारों में तो थोपा भी जाता है कि हम इसको इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, ये बनाएंगे, बच्चे से कोई नहीं पूछता।
1: हाँ, ये अनजाना अनदेखा कर देते हैं हम, कि हम ही तय करते हैं कि बच्चा क्या करेगा। जैसा आपने कहा ना कि बच्चे से पूछा नहीं, और बच्चे से पूछना भी नहीं चाहिए। बच्चा भी उस मेरे ख्याल से उस तक पहुंचा नहीं कि जहां वो इस को झेल पाए, जो इतना बड़ा सवाल है।
0: जी जी।
1: और छोटा सा बच्चा नन्ना, वो भी जी रहा है, ये सवाल लोग जो एक्चुअली जी नहीं पाए ऐसा लगता है, वरना ये सवाल कभी कोई सेंसिबल आदमी नहीं पूछेगा। क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना है, अभी तो जीने का समय है, अभी तो जी ले कम से कम,
0: रास्ते में है अभी तो
1: मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं क्या बनूंगा, मैंने ये सोचा कि यार मेरा होगा क्या। जब धीरे धीरे हम बड़े होने के, तो बड़े हो गए, पढ़ाई वढ़ाई खत्म होने वाली है, फ्री की रोटी मिलेगी
0: पढ़ाई मिलती कैसे
1: मैं यार ठीक ठाक था, मतलब क्या लगता था पढ़ाई में,
0: मन कहीं और लगता था,
1: मन मेरा खेलने कूदने में, और अकेले बहुत समय बिताया मैंने। मैं घर बहुत बाद में जाता था, पहले सोने के लिए जाता।
0: इस आवारगी का ताल्लुक किससे था, मतलब अपने आसपास के, कभी पेड़ों से बात करना, हवाओं से बात करना, कुछ ऐसी बात थी क्या?
1: जहाँ मैं पैदा हुआ पूसा इंस्टीट्यूट, खेत खलिहान वहाँ बहुत है, हालांकि है दिल्ली के अंदर, बट आप वहाँ अगर गए हों कभी या जाने मौका मिले आपको, तो आपको लगेगा नहीं कि आप दिल्ली में, बड़ी शांति है वहाँ, बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे मतलब अमरूद, आम, जामुन, पता नहीं क्या बाग बगीचे वहाँ पे, लोगों की संख्या बहुत कम है। उस माहौल में मेरी पैदाइश हुई, और पूरी जो सराउंडिंग थी वो नेचर से पूरी भरी हुई, उसने मैं पीछे से कुछ लाया हूँगा, एकांत बड़ा पसंद था हमेशा ही।
0: जिस तरह से आप आए हैं और आपकी शख्सियत को देख रहा हूँ, मैंने पर्दे आपको कई फिल्मों में देखा, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे एक मलंग पना जो है वो पसंद है वो।
1: हाँ वो है
0: जो होती है स्वभाव सा होता है, और आपने अभी इस है उसे
1: बिल्कुल मतलब बड़ा सच मेरे ख्याल से है नहीं, इसको हम करने चाहते हैं कि हमेशा आगे कुछ तय हो जाते हैं, वो हो नहीं पाता कभी, ये हमेशा बना रहता है हमारे हमको कि मैं प्रकृति का आदमी हूँ, वैसी प्रकृति मुझे अच्छा, भी समय होता है मैं निकल जाता हूँ गाड़ी वाड़ी लेके हाईवे पे, कहीं गाड़ी रुक के फिर खेत वेत घूम लिए, वहाँ चेयर डाल के बैठ गए, मुझे बड़ा मजा आता है।
0: ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अभी भी आपको अपनी वो जो जड़ें हैं उनसे जुड़े बहुत पसंद है। आपने अभी कहा कि ये पल जो है वो जी लें, और इस पल में पल की बात करते हैं तो संगीत हमारे बहुत सारे पलों को सुरीला बनाता है, उसके साथ जीना भी बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हम उसके उसकी नदी में बस बहते चले जाएं। तो आपने कहा कि पुराने गानों का बड़ा शौक है आपको।
1: हाँ, चूंकि बात अब चल रही है पलों की, हाँ, तो एक गाना तो बन गया।
0: कौन सा?
1: पल पल दिल के पास तुम रहते हो।
0: क्या बात बहुत खूबसूरत गाना है, और धर्मेंद्र जी पर फिल्माया गया है ना, ब्लैकमेल फिल्म का गाना है।
1: फिल्मों के बगैर मुझे नाम नहीं मालूम है, बट गाना वाकई बड़ा खूबसूरत है।

0: पल पल बने रहिए, इस समय हमारे साथ हैं फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता। परिवार की आपने बात की और अपने के बारे में भी बताया, लेकिन जो होती है वो उसके लिए वो भी एक साधना है, बहुत आसपास रहते हैं जिंदगी में, विश्वसनीय ना कि लोग डूब जाएं उसमें, चुनौती वाली बात है। तो एक्टिंग जो थी इसका आपके बचपन से कहीं बड़े जब आप हुए तब आप।
1: मैं बड़ा शर्मीला किस्म का व्यक्ति रहा हूं बचपन से। तो मैं कभी नहीं सोचा था अभिनेता, खैर कुछ भी नहीं सोचा।
0: घर में भी कोई नहीं था इस
1: नहीं, घर में थे मम्मी हमारी हाउसवाइफ, से बड़े हमारे दादा थे उनका संग मुझे बहुत ज्यादा मिला नहीं, इन बुजुर्ग बहुत ज्यादा। जब हम लोकेशन में जाते थे तो उन 10 सालों सुना है बस कि वो थोड़े वहां से मुझे ये अपना मिल गया हो, मेरी तबीयत में वहां से आ गया हो। कॉलेज में मैं पढ़ रहा था तब ये घटना, वहां पे थिएटर थे, मैंने उनसे पूछ लिया यूं कि ले लो यार क्या है, तो उन्होंने दिया वो मैंने पढ़ लिया। अच्छा ठीक है, तो है ना ये सारे करके लाना। जब उन्होंने ये बात कही कि याद करके लाना, वहां से मुझे एकदम टूट गया मेरा, यार ये मैंने गलत पंगा ले लिया, ये मैं ये याद करूं तो यार मैं पढ़ पढ़ा के थोड़े ठीक ठाक नंबर ले आऊं इसमें से तो थोड़े बेहतर हो जाए लेकिन जवान थे आप 18-19 साल की उम्र में, तो बात अब तो पत्थर की लकीर हो गई। लेकिन घर आके वापस मैं आया और मैं सोचता रहा खाना खाने में तक की बहुत बड़ी नहीं करना चाहिए था, इतनी ना करूं मैं अब। अगले दिन शाम को हम लोग तो मैं अब ढूंढ रहा हूं जगह, कोई बहाना ऐसा मिले मना कर दूं।
0: कोई नर्वसनेस नहीं थी?
1: नर्वसनेस नहीं थी मुझे, सिर्फ ये था यार मैं क्यों
0: कहां फंस गया,
1: ये बात इतनी लंबी चली जाएगी मुझे नहीं मालूम था। वो बस ऐसी मजाक था कि यार हमें रोल दे दो और बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, बट ये मेरे लिए अभी समस्या का कारण हो गई। खैर वो रिहर्सल होने लगी एक दिन दो दिन और मैं फिर ये सवाल भूल गया पूछना या उनको कहना कि यार मैं नहीं करूंगा। मुझे अचानक एक रस पैदा हो गया और मुझे मजा आने लगा। और फिर 1-1.5 महीने के बाद शो हुआ उसका, और कैसा हुआ होगा हमने कैसा किया होगा वो तो खैर हम समझ सकते हैं क्योंकि बड़ी पुरानी बात है, बिल्कुल पहला नाटक। लेकिन जब वापस आया अरे विजय यार क्या बात है यार मैंने कहा यार कुछ तो हुआ है वहां से वो पैदा हो गया उस रस की वजह से
0: कुछ कुछ होने
1: इसमें मुझे बहुत मजा आ रहा है। एक तो खेलने में मुझे बहुत मजा आता था कि कोई मुझे न रो, मुझे रात को भी बॉल दिखाई देती थी मतलब सब लोग चले जाते थे यार अभी कहाँ जा रहे हो यार खेलते ना, मैं थकता नहीं था, मुझे इतना मजा आता था खेलने में। या फिर मैं अकेला रहता था, अकेला घूमता था, हमको एक छोटी जमीन मिली हुई थी जहाँ पे हम सब्जियां उगाया करते थे, मैंने बहुत सारी सब्जियां हर तरह की सब्जियां उगाई हैं बचपन में, वहीं पे कुआं था वहां से पानी निकाल के उसमें देते थे, या वो काम करता था। इतना स्वाद मुझे किसी भी चीज में मेरे इतिहास में आया नहीं था, और सिर्फ इसी बात ने, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये बात मुझे एक दिन बॉम्बे ले आएगी, यहां तक जा सकते हैं इस बात से, मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था और मुझे इस बात से कुछ लेना देना नहीं था।
0: तो बॉम्बे हम आएंगे थोड़ी देर के बाद में, लेकिन उसके पहले एक गाने को छेड़ा जाए, आपकी पसंद के गाने को।
1: गाना मुझे अभी कुछ भी याद नहीं है, आप भी सुना दीजिए अपनी पसंद का।

0: बिजु भाई कैसे आना हुआ आपका मुंबई?
1: वो भी बड़ा एक अजीब सा किस्सा है। मैं एनएसटी रिपेट्री में था और किसी बात को लेकर तनातनी हो गई, आपस में हो जाती है। बिना तनातनी के कुछ मजा भी नहीं रह जाता, कई बार ऐसा लगता है। अच्छे पैसे मिलते थे, थिएटर करने को मिल रहा था, बड़ा मजा आ रहा था, बहुत अच्छा काम मिल रहा था मुझे। रिपेट्री ने बहुत काम दिया मुझे करने के लिए, मैं बड़ा आभारी हूँ उसके लिए, एनएसटी रिपेट्री का। जब वो बात वाक्या हो गया तो वो उसके बाद फिर एक ही चाह रहा था कि आप बम्बई चले आएँ। तो 98 में मैं बॉम्बे आया। पिछले सितंबर की 13 तारीख को मुझे पूरे 11 साल हो गए। जब नए नए आया तो एकदम समझ में नहीं आया यार यहाँ पे करें क्या मतलब करें क्या, कैसे जाएं और काम मांगे और जाएं कहाँ, सड़क पे तो कोई घूमता नहीं, तो पड़े रहे मतलब घर में। और सिर्फ यही सवाल कि यार कैसे, मतलब करें कैसे, क्या करें। तो कुछ पुराने दोस्त थे यहाँ पे, उनसे पूछा गया भाई कैसे होता है, कि होता कुछ नहीं, फोटो खिंचाओ, फोटो खिंचा के बांटो। मैंने हाँ ये तो अच्छा तरीका है यार तो फोटो वोटो खिंचवाई गई, शक्ल आपकी चाहे जैसी भी हो फोटो तो चाहिए, फोटो वोटो खिंचवाई और जो है उसके बाद फोन करके लोगों से एड्रेस मांगे गए और एड्रेस जाके वहाँ फोटो वोटो बांट दी गई, हो गया जैसा होना था। मेरी समझ में मैं ऐसा मानता हूँ कि किस्मत बड़ी चीज़ है, कहाँ पे आपका क्या होगा। आप अपनी तरफ से चीज़ें करते ज़रूर हैं क्योंकि वो करनी होती हैं, बट तमाम चीज़ें हैं मेरे ख्याल में हर चीज़ किस्मत एक वर्ड है, एक नाम दे दिया, एक ऐसी शक्ति को नाम कह लें, उसके बिना कुछ होता नहीं।
0: डेस्टिनी को आप मानते हैं?
1: बिल्कुल मानता हूँ। और टैलेंट एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, ये एक अजीब सी बहस का मुद्दा भी हो सकता है अगर हम बात करें तो, अगर आप टैलेंट के हिसाब से बात करते हैं। और मैं अपनी ही बात को काटूंगा कि हमको वो बहस नहीं छेड़नी चाहिए, क्योंकि जब हम बिना अपने जाने पैदा हो जाते हैं तो बिना वो जो टैलेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, बिना वो हुए भी हम बहुत बड़े कलाकार कहे जा सकते हैं, क्योंकि हम ही तय कर रहे हैं कि आप बड़े हैं आप छोटे हैं, और हम तय कर रहे हैं जो हम ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसी किस्मत की बात कह लीजिए कि चीज़ें बन गई, वरना ऐसा आपने कहा कि जाने माने कलाकार हैं वो सब, यार मुझे नहीं लगता कि वो उस बहस में हमको पढ़ना चाहिए। किस्मत थी मेरी, मुझे काम मिल गया, और किस्मत ही कह लें उसे कि लोगों को वो अच्छा लगता है।
2: विविध भारती से समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज के मेहमान, और आज हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता विजय राज। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
0: विजय भाई बहुत सारी फिल्मों में आपने काम किया, एक अलग पहचान भी है आपकी, लोग देखते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं आपका काम देख करके, बड़े प्रभावित होते हैं। रेपर्टरी का आपने जिक्र किया, मैं ये बात पीछे छूट गई थी, थोड़ा सा फिर से हम फ्लैशबैक में जाते हैं जरा, वहाँ कैसे, किसने, किसी ने प्रेरित किया आपको या कहीं से आपको जानकारी मिली?
1: कॉलेज में जब शुरू हो गया सब कुछ, तो उसके बाद हम लोग मंडी हाउस आ गए। मंडी हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्कूल भी है और थिएटर एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो साक्षी कला मंच एक अमेच्योर थिएटर ग्रुप वहाँ पे है, और वहाँ पे मैं कॉलेज से, आप वहाँ एक थोड़े से प्रोफेशनल तरह के लोगों के बीच में एंट्री हो गई, तो उनकी बातें समझ में ना आए, कह रहे बात क्या कर रहे हैं यार, पता नहीं क्या क्या नाम ले रहे हैं वो विदेशी नाम, जो हमारी समझ से और हमारी जानकारी के हिसाब से बड़े दूर के कोई हैं और इसका ये एक्चुअली आदमी का नाम ले रहे हैं या किसी चीज का नाम ले रहे हैं उतना तक समझ में नहीं आता था। एक्चुअली जब मैं थिएटर मैंने ज्वाइन किया तो थिएटर का मुझे आज भी मतलब नहीं मालूम, एक्चुअली पहले भी नहीं मालूम था मुझे, तो बस मजा आता था यार, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ मुझे मजा आ रहा है, इतना ही मेरे लिए था। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, क्या होता है ये करना है, और हम कौन हैं, ऐसा कुछ मेरे ये सब मुझे इससे कोई लेना देना था नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है बस, बात खत्म हो गई। छोटा छोटा रोल मिलने लगा, फिर एक प्ले हुआ रोमियो एंड जेनेट, एक बाहर का प्ले है, जिसमें मुझे अचानक एक बड़ा रोल मिल गया। अचानक यूं कि पहले कोई और कर रहा था जो बड़ा एक्टर था, पुराना एक्टर था, तो उन्होंने दे दिया, तो मैंने कहा यार चलो, तो हम करने लगे, और वो मेन रोल था मतलब उस नाटक में। बाकी जितने भी लोग थे वो सब सीनियर लोग थे, तो मैं ही एक था जो सबसे छोटा भैया इसको कह लें, तो इतने सीनियर लोगों के साथ काम करने का मौका मिला पहली बार, और प्ले बड़ा बढ़िया हो गया और मुझसे बड़ा बढ़िया हो गया काम मतलब ऐसा कहा लोगों ने। जे एन कौशल एक व्यक्ति रहे हैं जिनका जो रेपर्टरी चीफ हुआ करते थे, उन दोनों बड़े प्यारे इंसान, उन्होंने वो प्ले देखा था, दो तीन बार देखा था, और उनको बड़ा पसंद आया, तो मुझे उन बुलाया रेपेट्री में कि सुनो रेपेट्री ज्वाइन करना चाहोगे, 3000 रुपये मिलेंगे, और तो 3000 सुन के मैं बाकी सुनना ही बंद कर दिया मैंने। मेरे कानों ने शटर डाउन कर लिया कि 3000 के बाद मैं 3000 के हिसाब लगाने लगे। 6 महीने के लिए बुलाया है तो 6 से 18 18000 में इतना इतना इतना ना, मैं वो आंकड़े में चला गया। बाकी वो क्या बोल रहे मुझे कुछ नहीं। फिर ये था कि यार ये क्यों पूछ रहे हो, करोगे क्या? हाँ मैं करूंगा। ऐसे वहां मेरी एंट्री हो गई तो मुझे गेस्ट आर्टिस्ट उन्होंने ले लिया। उसके बाद उन्होंने ही मुझसे कहा कि आप परमानेंट होने के लिए यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि मेरे लिए तो उतना काफी हो गया था कि 6 महीने उन्होंने मुझे रख लिया, बड़ी मेहरबानी, 18000 रुपये मिल गए, बस 1-1.5 साल लाइफ का और कट जाएगा, बाकी अपना घूमते रहेंगे। क्योंकि मैंने कभी माना ही नहीं अपने आप को कि मैं, जो टैलेंट की आप अभी जिक्र कर रहे थे कि वो मुझे समझ में कभी आया नहीं कि हाँ अच्छा हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, मुझे पता नहीं, अगर इसी को कहते होंगे टैलेंट तो ठीक है। कौशल साहब ने, आखिरी समय था, आखिरी दिन था कि आप भर दें, तो मैंने अप्लाई कर दिया और मुझे बुला लिया गया इंटरव्यू के लिए। मुझे कुछ आता नहीं था, जो थिएटर मैंने पढ़ा नहीं था, क्या क्या इतिहास में किसने किया मुझे कुछ नहीं मालूम था, जो आज भी नहीं मालूम है, पर जो मुझे समझ में आता था वैसा मैंने एक इंटरव्यू दे दिया और मुझे सेलेक्ट कर लिया उन लोगों ने, यार पता नहीं कैसे। तो पहले वो लोग 1 साल के लिए रहते हैं, 1 साल के बाद 2 साल का रिन्यूअल होता है, फिर 2 साल के बाद 3 साल का, तो मैक्सिमम आप 6 साल तक रह सकते हैं वहां पर। तो 1 साल के लिए जैसे उन्होंने लिया तो मैंने फट से, फिर तनख्वाह हो गई 4000, तो 12 चौक 48, मैंने 48000 का हिसाब लगा लिया। मैं यार आगे रखे नहीं रखे निकाल देंगे, और ऐसा हुआ नहीं। फिर 2 साल के लिए मिल गया और फिर मुझे कुछ कुछ छोटा छोटा काम उन्होंने दिया, जो इत्तेफाक से वापस ठीक हो गया। फिर उन्होंने बड़े रोल देना मुझे शुरू किया, और उसके बाद एक समय ऐसा था कि काफ़ी इम्पोर्टेंट काम रेपेटरी ने मुझे दिया, और इत्तेफाक से वो सभी अच्छा हो गया और लोग पसंद करने लगे।
0: किन किन कलाकारों के साथ में, निर्देशकों के साथ में, खासतौर से थिएटर की जो पर्सनालिटी की हम बात करें, आपको काम करने का मौका मिला?
1: MK रैना साहब, रंजीत कपूर साहब, DR अंकुर साहब, बजाज साहब, BM शाह, मोहन उप्रीति साहब, बापी बोस, कई सारे नाम हैं जिनका सानिध्य मिल पाया मुझे। काबिलियत थी नहीं, लेकिन होता है कई बार चलता है कि आप नहीं हैं काबिल, लेकिन होता ना कि गेहूं में घुन भी पिस जाता है और टेस्ट गेहूं का ही आता है। तो
0: विजय भाई, अभी मौका है एक और गाना अपने सुनने वालों के लिए पेश करने का, आपकी तरफ से आपकी पसंद का गाना, वो सुनवाएंगे और उसके बाद में फिर किस्सों पे फिर चलेंगे। जी
1: अभी किशोर साहब का गाना है, शराबी फिल्म का, हालांकि फिल्म बहुत ज्यादा पुरानी, बट बहुत अच्छा गाना है वो।

0: किशोर दा भी कुछ ऐसी ही जिंदगी में मलंग जैसे, उनका भी बड़ा स्वभाव वैसे ही रहा। उन्होंने खास उससे सिंगिंग के करियर को तो बहुत बाद में सीरियसली लिया, शुरू में थे वो एक्टिंग पे ही जोर देते थे। उनकी फिल्में आपने देखी?
1: मैंने एक्चुअली फिल्में बहुत कम देखी हैं, मतलब ओवरऑल एक आध दो, जैसे जिसमें एक गाना है एक लड़की भीगी भागी सी
0: चलती का नाम,
1: हाँ वो फिल्म देखी है मैंने, लेकिन वो सब बचपन की बात है। बचपन में मैं काफ़ी फिल्में देखा करता था, जब टीवी किसी किसी घर में पाया जाता था तो आप लटक के खिड़कियों से लटक के बड़ा मजा आता था। रात रात तक घर से बाहर रहने की परमिशन है भाई, 10-11 बजे रामलीला खत्म होगी, थोड़ा जो आवारगी थी उसको थोड़ा और वक्त मिलेगा, तो उस वजह से ज़्यादा वो समय बड़ा अच्छा लगता था जो अब चल रहा है दिवाली के आसपास का समय।
0: विजय भाई आपने कहा, हालांकि बहुत ही हल्के ढंग से आपने उसको मजाक में कह दिया, लेकिन मुझे लगा कि उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई गंभीर बात भी है। पैसे की आपने कहा कि बात जब से पहली बार बताया कि 3,000 रुपये महीने के मिलेंगे, मैंने हिसाब लगाया फिर पता चला कि 4,000। मतलब कैसी थी जिंदगी, हालात कैसे थे?
1: जब थिएटर कर रहा था मैं तब वाकई हालात बड़े गड़बड़ थे, क्योंकि मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था, इवनिंग कॉलेज में पढ़ता था, मैं दिन में एक नौकरी किया करता था अकाउंट्स की पार्ट टाइम।
0: ये जरूरत थी एक?
1: हाँ जरूरत थी, क्योंकि मैं एक मतलब बहुत पैसे वाले परिवार से बिलोंग करता नहीं, पिताजी सरकारी नौकर थे और एक मॉडेस्ट सी तनख्वाह की, जिसमें एक 2-3 बच्चों का परिवार सिर्फ पल सकता है और एक्टिविटीज नहीं हो सकते हैं। ख्वाहिश नहीं थी मेरी कभी भी कि ऐसा ऐसा हो, पैसों से पूरे हों ऐसे सपने मैंने कभी देखे नहीं।
0: अभी भी?
1: अब भी वैसा ही है ऑलमोस्ट, हालांकि कुछ ज़रूरतें जो होती हैं बेसिक वो सारी हैं आसपास, ये कर दूंगा मैं जो पैसे के बल पे जो चीज़ें होती वो ख्याल नहीं आते हैं कि यार इतना मिल गया काफ़ी है, तो कई बार देने में बड़ा मज़ा आता है मुझे, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब थोड़ा एक्स्ट्रा जब आता है तो मुझे लगता है यार ये अगर यहाँ चला जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा।
0: विजय भाई वापस मुंबई हम लौटते हैं,
1: कुछ कुछ काम मुझे मिला, कैरियर में मोड़ आया कहें कि ज़्यादा चर्चा जिस बात की हुई वो मानसून वेडिंग पिक्चर का बहुत बड़ा हाथ है, और वो फिल्म नसीर साहब मुझे कहा था कि आप मीरा जी से जाके मिल लें, और नसीर साहब से हमारी मुलाकात रेपिट्री के दौरान हुई, एक प्ले वो देखने आए थे अग्नि और बरखा, एक प्ले था जो प्रसन्ना जी ने डायरेक्ट किया था
0: जी,
1: वो उनको बड़ा पसंद आया और वो हमसे मिले भी, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि नसीर साहब मतलब आपका इंतज़ार कर रहे हैं मिलने के लिए, और वो हमारी पहली मुलाकात वहाँ पे हुई, और वहीं से पता नहीं क्यों हमको लगा कि यार हम इस व्यक्ति को जानते हैं, दूरी नहीं थी कोई, मुझे लगा कि मैं इस व्यक्ति के पास बैठा रहूँ, जो मैंने शेयर की पिछले समय में एक फिल्म में दोबारा हमको मौका मिला काम करने का 12 आना, तो मैंने नसीर साहब को बताया मानसून वेडिंग और 12 आने के बीच में 8-9 साल का अंतर है, इस दौरान हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, न फोन पे ना मुलाकात हुई, और मैंने ये बात

0: शेयर की उनसे कि सर 8 साल हो गए लेकिन मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं
1: आपसे दूर हूँ या
0: आपसे मिला नहीं। और उन्होंने कहा एकदम जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही मैं भी कह सकता हूँ। तो मीरा जी को उन्होंने कहा था कि हालांकि कास्टिंग वो कर चुकी थी पहले उस अच्छा। रोल में किसी को, जो बात उन्होंने मुझे बताई कि भाई मैं कास्ट ऑलरेडी कर चुकी हूँ और बट वहां से मुझे जवाब आना है, लेकिन आप जब आए तो ऑडिशन दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है।
1: कहाँ दिया था आपने? बॉम्बे में।
0: बॉम्बे में।
1: हमें तो मुझे बड़ी इसकी इच्छा है जानने की कि वो कैसी रही वो मुलाकात, उन्होंने बुलाया आपसे फिर वो।
0: मैं गुवाहाटी में था उस समय जब अच्छा। मुझे फोन आया था, मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी उसके लिए मैं वहां पे था, और जब मैं लौट के आया तो मुझे जिस पर्टिकुलर डेट में आना था मैं उस समय नहीं आ पाया। तो नेक्स्ट डे मैं आया तो मैंने उस दिन फोन किया कि मैं अभी यहाँ हूँ और ऐसे ऐसे हो गया है तो मैं तो आ नहीं पाऊंगा आज, मैं तो कल है मुझे आना है। कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, शाम का टाइम था तो वो ऑलमोस्ट सबसे मिल चुकी थी या मैं ही आखिरी था जिससे मिलना था, और होटल में मुलाकात होनी थी। तो मैं नीचे बैठा रहा काफ़ी देर तक कि मैं कैसे पूछूं, मतलब किससे यार कि क्या। तो मैंने कहा मीरा नायर जी, ओ या तो ऐसे उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा शायद इनको पता हो गई मैं आने वाला हूँ, तो मैं बैठ गया कि भाई यही बुलाएंगे अब मिलने के लिए। बुलाया नहीं किसी ने, तो काफ़ी समय बीत गया, मतलब आधा पौना घंटा। मैंने यार इतना तो देर नहीं लगना चाहिए। तो मीरा जी ने ही नीचे फ़ोन किया कि कोई आया है क्या, तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने फिर मुझे भेजा, तो मुझे कहा यार तुम इतना वेट करवा दिया तुमने, मैं मतलब वेट कर रही हूँ 45 मिनट हो गए कि नहीं। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, मुझे लगा कि बुलाया जाएगा समथिंग कि एनीवे, तो थक गई थी काफ़ी। तो मैंने बताया ऐसे ऐसे मैं था, ऐसा ऐसा किस्सा हो गया कि ओह सॉरी, चाय पियेंगे? मैंने हाँ हाँ बिल्कुल। हम करीबन 1-1.5 घंटे रहे साथ में। उस दौरान मतलब कैमरे में इंटरव्यू भी ले लिया उन्होंने, मतलब जो इंटरव्यू कर रहा हूँ मतलब ऑडिशन। और
1: आपसे कौन सा, वही जो जिस करेक्टर को आपने
0: हाँ,
1: किया,
0: वही करवाया उसी के लिए उनके पास थी, और मैंने कर दिया। बैठे रहे, बात बात होती रही, तो 1-1.5 घंटा उनके साथ रहना हुआ।
1: कुछ ब्रीफ किया था उन्होंने कि इस तरह का करेक्टर है और ये,
0: हाँ ये सब बताया। तो मैंने कर दिया जैसा जितना मैं समझ पाता हूँ जैसा हुआ, और ये सारी बातें भी बताई कि भाई ऐसा ऐसा है, हो चुकी है, एक आदमी से बात चल रही है और ऑलमोस्ट फाइनल है, तो लेकिन ठीक है। जब मैं कमरे से निकला बाहर तो पता नहीं क्यों मुझे लगा यार ये रोल तो मैं मेरे अलावा बड़ा कठिन है किसी और के लिए। ऐसे ही होता है ना, आप मन में कई चीजें उठती हैं, कई बार आपको मन में उठता है मैं उड़ जाऊं, कई बार आप प्लेन में सफर कर रहे हो तो मुझे कई बार लगता है यार मैं प्लेन के ऊपर लेट जाऊं। तो वैसे एक ये ख्याल था कि यार ये तो मुश्किल है यार मेरे अलावा। खैर मैं आ गया।
1: कभी कभी ये भी होता है ना कि कहीं कोई ऐसा लगता है कि कोई सवाल हमें उसका हल मिल जाता है, तो ऐसा लगता है कि शायद वो कैरेक्टर आपके अंदर पढ़ते ही समा गया।
0: हाँ, जिसको हम इंस्टिंक्ट जो एक वर्ड ईजाद किया है मेरे ख्याल से वो वही है कि तमाम चीज़ें आपके कंट्रोल में होती नहीं, हमको लगता रहता है ऐसा कि कंट्रोल में है, वहीं से वो आपके भीतर टपकती हैं चीज़ें और वो एक ख्याल पैदा करती हैं, वो पकड़ना कई बार बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना यार आपने मेरे बारे में सोचा उस समय, टेलीपैथी इसको बोलते हैं। तो खैर वो समय चला गया, जितना समय उन्होंने दिया यार उन्होंने मुझसे समय मांगा है 7 दिन का, उसके बाद वो बताएंगे मुझे, अगर वो नहीं होते हैं तो हम बात करेंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद वो समय पीरियड चला गया, मैं भूल भी गया बात। उसके बाद एक दोस्त था मेरा उस पिक्चर में, जो मेरे साथ 3 लोग जो काम करते हैं उनमें से एक, वो आया रिहर्सल के लिए बम्बई, तो मेरे घर पे ठहरा। उसने कहा यार ऐसे मीरा जी की फिल्म कर रहा हूँ। मैंने कहा अरे वाली फिल्म? हाँ। तो मैंने वो रोल कौन कर रहा है? कि वो परेश रावल साहब कर रहे हैं। मैंने अरे यार तो कमाल हो जाएगा यार, बड़ा मजा आ जाएगा वो तो। मैं ये सोच रहा हूँ, रिहर्सल हो गई, वो लोग वापस चले गए, मुझे एक फ़ोन आता है कुछ समय के बाद, मतलब कुछ दिनों के बाद मोबाइल पे, और नंबर पहले कोड 011। मैंने यार ये तो दिल्ली का फ़ोन है और ये मीरा जी का फ़ोन है, लैंडलाइन से नंबर है। जबकि मैं फ़ोन उठाता हूँ और एक लड़की कहती है कि मीरा जी आपसे बात करना चाहते हैं, और मीरा जी फ़ोन पे आते हैं और कहते हैं विजय हाय कैसे हो ये सब और करके कि मैं चाहती हूँ कि आप वो रोल करें। मैंने नहीं मैडम, परेश जी बहुत अच्छी कास्टिंग है।
1: क्योंकि उन्होंने तो बताया नहीं था आपको
0: कि नहीं दैट आई नो, बट या मैं चाहती हूँ आप करें। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। रोल हो गया, हम दिल्ली चले गए।
1: शूटिंग कहाँ हुई इसकी?
0: दिल्ली में। और
1: उसी में आपने पहली बार कैमरा फिल्म कैमरा फेस किया?
0: नहीं, उससे पहले मैं फिल्म कर चुका था, उससे पहले मैं जंगल फिल्म कर चुका था, अक्स भी कर चुका है, भोपाल एक्सप्रेस मेरी पहली फिल्म थी,
1: भोपाल एक्सप्रेस,
0: ये मेरी चौथी फिल्म थी। फिर शूटिंग शुरू हो गई और कब शूटिंग खत्म हो गई, कब क्या हो गया पता ही नहीं चला। और
1: लेकिन वो रोल आपका बड़ा चर्चित हो गया दुबे जी वाला।
0: हाँ वो अच्छी बन पड़ी, और फिल्म जब अच्छी बन जाती है तो उसमें छोटी छोटी चीजें भी काउंट हो जाती हैं
1: जी।
0: और वाकई बड़ी खूबसूरत फिल्म, मेरे ख्याल में इंडियन सिनेमा को वेस्ट में जो पहचान बननी शुरू हुई है, जो अब दिख रही है आपको
1: जी,
0: उसमें दो फिल्मों को बहुत बड़ा हाथ है, मॉनसून वेडिंग और बैंडिट लाइक बेकम, ये ऑलमोस्ट एक साथ की फिल्म है, कि वेस्ट में इंडियन सिनेमा को एक जगह दी गई, एक प्लेटफॉर्म दिया गया। उसमें काफ़ी घुमा हूँ, जो फेस्टिवल सर्किट होता है उसमें मेरी, जैसे मॉनसून वेडिंग, रघु रोमियो मेरी एक फिल्म है जो फेस्टिवल्स में काफ़ी गई, हरिओम एक फिल्म है जो भाग्य या कह लें दुर्भाग्य कह लें वो रिलीज नहीं हुई है, एक बहुत अच्छी फिल्म भरत बाला ने बनाई थी, वो काफ़ी रही है फेस्टिवल्स में,
1: उसमें आप ऑटो वाले बनते हैं।
0: हाँ, तो मैंने वो सब देखा है। तो अभी वो एक स्पेस जो मिला है इंडियन सिनेमा को, उसमें इन दो फिल्मों का बहुत हाथ है। मैं बड़ा आभारी हूँ मीरा जी का और नसीर साहब का कि मुझे ऐसा मौका दिया उन लोगों ने। गुजारा हो रहा है
1: लेकिन हमारा गुजारा नहीं होगा अगर हम संगीत नहीं सुनवाएंगे तो गाना सुनाना बड़ा जरूरी है। आपकी पसंद का गाना है?
0: गुलजार साहब मुझे बहुत पसंद है। गुलजार साहब ने कमाल लिखा है, मतलब उनके लिए मैं अगर तारीफ करूं मेरे ऐसा व्यक्ति, तो वो बड़ी अजीब सी बात होगी।
1: गुलजार साहब की एक फिल्म है खामोशी, बहुत पहले आई थी, उसमें हेमंत कुमार साहब ने संगीत दिया है, लता जी ने उसमें एक बढ़िया गाना गाया है, हमने देखी है उन आंखों की महक।
0: क्या बात,
1: कही तो बजाएगा

0: मानसून वेडिंग के बाद क्या चेंज आया, उससे क्या फर्क पड़ा?
1: फर्क अभिनेता के तौर पर, चूंकि फिल्म चल पड़ी, लोग जाने लगे, थोड़ा काम देने लगे, और एक मेरे ख्याल से जिस फील्ड में आप हैं वहाँ ये आपके लिए काफ़ी अहम होता है कि आपको काम मिले, तभी आप चीज़ें आगे कर पाएंगे। और चूंकि आपकी रोजी रोटी भी यही है, आप का प्रोफेशन भी यही है, तो वो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है जीने के लिए भी। उस पिक्चर ने बड़ा, मतलब वो सिनेरियो थोड़ा सा बदला, थोड़ा काम मुझे मिलने लगा और मैं थोड़ा ज़्यादा काम करने लगा।
0: लेकिन जो आपने अरसा बताया, उस अरसे में आपकी बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन ये सारी जितनी फिल्में मैं देख रहा हूँ, इनमें जितने भी नाम मैं देख रहा हूँ, उनके टाइटल जो है पढ़ना बड़ा ऑफ बीट सी है सर।
1: हाँ, कमर्शियल जो फिल्में आती हैं वो फिल्में कम हैं, उनकी तादाद कम है। पर्सनली मुझे अच्छा लगता है जब कुछ ऐसा करने के लिए मिलता है जहाँ पे मैं कुछ कह सकूँ।
0: ये तो आप मानिएगा कि ये सिनेमा की जब हम बात करते हैं, सारी के सारे धारा से हटकर के बनी फिल्में हैं, और जाहिर है कि इसमें बहुत सारी फिल्में, बहुत अच्छी फिल्में हैं, क्योंकि सिनेमा में इस बीच हम देखते हैं कि बहुत बदलाव सा आया है। मुख्य धारा का सिनेमा तो है, उस मुख्य धारा की सिनेमा में भी रहते हुए लोगों ने बहुत अच्छा सिनेमा बनाया है, और अब नए नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, कहानी को नए आयाम दे रहे हैं, एक्टर्स बहुत अच्छे आए हैं, कहानी कहने की कला जो है खासतौर से सिनेमा की वो बदल रही है। पहले जैसे एक कन्वेंशनल तरीका था, कुछ चीजें तय थी कि ये रहेगा, ये सारी चीजें फिक्स थी, अब नई तरह की कहानियां जो है उनको भी कहने का खतरा मोल ले रहे हैं लोग, बेशक कि भाई फिल्म चले ना चले, लेकिन अच्छा सिनेमा इस बहाने कम से कम आते रहा हमारे सामने। इन दिनों आप क्या कर रहे हैं?
1: अभी एक फिल्म है जो ईस्ट इज ईस्ट, एक फिल्म आई थी
0: जी, जी,
1: उसका सीक्वल बन रहा है वेस्ट इज वेस्ट, जो अगले महीने मैं उसके लिए जा रहा हूँ। इंग्लिश फिल्म है, चंडीगढ़।
0: अच्छा अच्छा, इसको कौन निर्देशित कर रहा है?
1: एंडी डायरेक्टर का नाम है, चूंकि फिल्म जिन्होंने पहले प्रोड्यूस की थी वही प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म को दोबारा। फैमिली ड्रामा है, रिलेशनशिप की कहानी है, तो एक बार दोबारा मौका मिलेगा बाहर के लोगों के काम करने के तरीके के साथ, दोबारा काम करने का मौका, मजा आएगा।
0: क्या फर्क कुछ महसूस किया? इतनी सारी फिल्में की हैं और बाहर के लोगों के साथ में भी काम किया है।
1: फर्क तो है, फर्क ये है काम करने का तरीका अलग है, उनकी जो स्क्रिप्ट पे जो वो लोग काम करते हैं उस पर काफी समय वो लोग लगाते हैं, तमाम चीजें वो, ऐसा तो नहीं कह सकते कि 100% आप पहले से तय कर लेते हैं सब कुछ, ऐसा नहीं है, बट 90% चीजें तय होती हैं, स्क्रिप्ट तैयार होती है उनकी, उस पर काफी काम वो लोग कर चुके होते हैं, बट कुछ चीजें इम्प्रोवाइज हो जाती हैं सेट पे, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं। हमारे यहाँ उस तरह के सिनेमा की संख्या अब होने लगी है, अब बढ़ने लगा है वैसा, कि अब स्क्रिप्ट पे काम करने लगे हैं लोग, वरना सेट पे ही लिखा जाता है सब कुछ, कई बार एक आइडिया होता है किसी दिमाग में, चूंकि कमर्शियल सिनेमा की जो बात करें वहाँ पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कहानी से, कि आपके पास 50 करोड़ रुपए हैं तो 50 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि कहानी इंपॉर्टेंट। पब्लिक जिन लोगों को देखने जाती है वो लोग बड़े इंपॉर्टेंट है ना कि कहानी इंपॉर्टेंट है, कपड़े वो क्या पहनेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि वो कपड़े क्या कहते हैं या क्यों पहने गए हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उस सिनेमा से क्या कहना चाहते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक इट्स अ बिजनेस, व्यवसाय है, और वहां कि कैसे बेचना है, बेचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अब बदल रहा है।
0: विजय भाई, आपके लिए भी तो ये एक रोजी रोटी का जरिया है, लेकिन थिएटर भी आपको संयोग से मिला, सिनेमा में भी काम संयोग से ही आया।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन इस सिनेमा की जब हम बात करते हैं, सिनेमा आपके लिए क्या है, कितनी गंभीरता से आप उसे लेते?
1: मैं ऐसा मानता हूं कि बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडियम है, असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है ये बड़ा मुश्किल है इसके बारे में बता पाना। कुछ मुद्दों को लेकर इतना कॉन्ट्राडिक्टरी है कि ये नहीं दिखा सकते, ये नहीं दिखा सकते, बट वो बेचा जा सकता है। उसको बेचना ही क्यों बंद नहीं किया है, उसको बनाना ही बंद क्यों नहीं किया जाता है? अगर आप इतनी सीरियसली लेते हैं इस बात को, समाज के लिए आप एक विचार हैं, आप एक सोच, आप हैं जो सोचते हैं समाज के लिए, तो ये क्यों नहीं सोचते हैं आप? वो क्या चीज है जो रोकती है?
0: आपने असर की बात की, अगर असर नहीं होता तो लोग, सिनेमा हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा आकर्षण है आज भी।
1: हाँ,
0: शायद वो आकर्षण ही उसे सिनेमा हॉल तक खींच करके लाता है, सिनेमा का जादू, उसका तिलस्म तो मैं समझता हूँ कि लगातार बढ़ता चला गया है, टिकटें महंगी हुई बावजूद इसके लोग
1: नहीं, लोगों ने जैसे कहा ना कि, जैसा मैं कह रहा था कि जो बुरी चीजें हैं वो सिनेमा ने सिखाई हैं समाज को, ऐसा मानते हैं लोग, बट आप फिल्में उठाए हैं, बुराई को कभी जीतते हुए दिखाया नहीं, अंत में सच की ही जीत होती है। हर सारे मुद्दे उठाए, वो चाहे राजनीति का हो, चाहे वो भूख का हो, प्यास का हो, रिलेशंस का हो, वहां से तो सोसाइटी ने कुछ नहीं सीखा,
0: विजय भाई कुछ और आने वाले प्रोजेक्ट्स के नाम जानना चाहेंगे।
1: एक फिल्म है डोंट वरी जस्ट बी हैप्पी जो बन रही है, अभी आएगी, रिलीज होगी। एक है फिल्म अता पता लापता, इसकी शूटिंग चल रही है, बेस्ट इज बेस्ट जो शूटिंग करूंगा मैं। और रिलीज होने वाली दो तीन फिल्में हैं, द फ्लैग एक फिल्म है जो अगले साल जनवरी में रिलीज होगी, बड़ी प्यारी सी कहानी है, प्री इंडिपेंडेंट की कहानी है। फितरत चूंकि मलंग है मेरी इसलिए मैं भूल जाता हूँ करने के बाद चीज़ें, बहुत ज़्यादा मैं याद रखता नहीं और उनको चूंकि बहुत बोझा हो जाता है यार।
0: शुभकामनाएं देते हैं कि लोग हमेशा याद रखें, और आपका तो नाम ही ऐसा है, मैं तो यही कहूँगा कि विजय भाई आपको जीवन में हर समय विजय मिले और पर्दे पर राज करें। आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, अपना बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से और तमाम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
1: शुक्रिया, बहुत बहुत
0: शुक्रिया।
2: आज के मेहमान कार्यक्रम के अंतर्गत ये थी फिल्म अभिनेता विजय राज से कमल शर्मा की बातचीत। इस कार्यक्रम में सहयोग PKA नायर ने दिया, संयोजन शकुंतला पंडित ने किया, कार्यक्रम के लिए विशेष सहयोग विजय दीपक छिब्बर ने दिया, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है, नमस्कार।
3: आज के मेहमान।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा।
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। प्रस्तुत है युवा वर्ग को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

0: युवानी सुनने वाले सभी दोस्तों को बंटी का प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों आपके फेवरेट रेडियो शो युववाणी में। उम्मीद है आपने ट्यून कर लिया होगा हमें अपने रेडियो सेट या फिर अपने स्मार्टफोन पे। जरिया जो कोई भी हो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपका लगाव मायने रखता है जो जुड़े हुए रहते हैं हमेशा बेतार के तार से। तो आइए प्यारे साथियों, इस जुड़ाव इस लगाव को फिर से देते हैं एक नया आयाम, हर शाम की तरह इस शाम भी युववाणी के साथ। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए आपको बताएं कि क्या कुछ सहेज कर लाए हैं हम आज के युववाणी में। दोस्तों सबसे पहले बातें करेंगे हम वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ड्राउट यानी कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस पर। इसके बाद चलेंगे अपने वीकली सेगमेंट मार्गदर्शन की तरफ जिसमें आप सुनेंगे एक भेंट वार्ता। भेंट वार्ता के बाद वक्त होगा प्रश्न मंच का और फिर अंत में करेंट अफेयर्स पर अपडेट के साथ लेंगे आपसे विदा। तो बेहद खास होने वाला है आज का कार्यक्रम, यूं ही बने रहिएगा हमारे साथ। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।

0: 8700001-4242।
1: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
2: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है दोस्तों आपके फेवरेट रेडियो शो युवावाणी में। दोस्तों आज वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट डे है, यानी कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। दोस्तों यह दिवस प्रत्येक वर्ष 17 जून को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना तथा भूमि क्षरण को रोकने के व्यावहारिक समाधानों को प्रोत्साहित करना है। दोस्तों इस दिवस को मनाने की घोषणा 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हुई थी। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन UNCCD के सचिवालय द्वारा किया जाता है। यह दिवस सभी को इस बात की याद दिलाने का अनूठा क्षण है कि भूमि क्षरण, तटस्थता समस्या का समाधान मजबूत सामुदायिक भागीदारी और सभी स्तरों पर सहयोग के माध्यम से किया जा सकता है। दोस्तों पिछले 2 दशकों की तुलना में समकालीन अवधि में सूखे की घटना में वृद्धि हुई है। 55 मिलियन आबादी हर साल सूखे के कारण प्रभावित होती है। आज हम जल संकट का भी सामना कर रहे हैं, तो ऐसे में साथियों भूक्षरण और मरुस्थलीकरण की समस्या का निदान त्वरित वनीकरण और वृक्षारोपण से सुधारी जा सकती है। जल प्रबंधन का सहारा लेकर हम इस दिशा में अभूतपूर्व लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए वर्षा जल का संचयन और उसका पुनः उपयोग महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इसके अतिरिक्त साथियों प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का भी सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। राष्ट्रीय पहल की बात करें दोस्तों तो एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम ग्रामीण रोजगार सृजन के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और विकास को आगे बढ़ाकर पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत कर रहा है। प्यारे साथियों सूखा एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है। इस वजह से जल की भारी कमी उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ ही दोस्तों कृषि, पशुपालन, जैव विविधता और मानव जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सूखे की वजह से कृषि उत्पादकता में गिरावट और खाद्य संकट की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। पेयजल की किल्लत और पारिस्थितिकी तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। भारत की बात करें दोस्तों तो भारत की कुल भूमि का 30% हिस्सा मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण से प्रभावित है। इस प्रतिशतता को कम करने की दरकार है और यह संभव तभी होगा जब सरकार के साथ साथ जन भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। व्यक्तिगत स्तर पर हम जल संरक्षण कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, वर्षा जल का संचयन और उपयोग कर सकते हैं। अगर हम इतना भी ईमानदारी से करें तो आगे की राह सुगम और सुलभ होगी। इसी आशा, उम्मीद और अपील के साथ आज की बातें यहीं तक दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं अपने डेली सेगमेंट डेली ट्रिविया की ओर, जिसमें एक सवाल आपसे हम हर रोज पूछते हैं। दोस्तों आज का सवाल है आपसे कि आकाशवाणी कितनी भाषाओं और कितनी बोलियों में समाचार, शिक्षा, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रसारित करता है। आप इस सवाल का जवाब भेज सकते हैं हमारे मेल आईडी phair@gmail.com पर। आइए आज के फन फैक्ट्स की ओर चलते हैं। आकाशवाणी से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां हम इसमें शामिल कर रहे हैं। दोस्तों आकाशवाणी भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की रेडियो प्रसारण सेवा है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और दोस्तों 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, तब इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा रखा गया था। बाद में आगे चलकर 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया। तो आज के लिए फन फैक्ट सेगमेंट में बस इतना ही दोस्तों। आइए कार्यक्रम में एक प्यारा सा गीत सुनते हैं जिसे लिया है हमने फिल्म दिल है बेताब से। गायक कलाकार हैं उदित नारायण।

0: इस खूबसूरत नगमे के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप दोस्तों आपके चहेते कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों अब वक्त है हमारे वीकली सेगमेंट मार्गदर्शन का। आज मार्गदर्शन में प्रस्तुत है एक पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता, विषय है युवा भारत और विज्ञान। भेंटवार्ताकार हैं प्रोफेसर जनार्दन झा और भेंटकर्ता हैं अमित कुमार।
1: युवानी में आप सभी का स्वागत है। आज पूरे विश्व में भारत की चर्चा उसकी युवा आबादी को लेकर होती है। भारत में लगभग 65% जो आबादी है उसकी वो युवा, तो ऐसे में पूरे विश्व में ये बातें होती है कि युवा भारत का जो विकास का दर है वो और देशों की अपेक्षा ज़्यादा होगा आने वाले समय में। लेकिन विकास के लिए जो एक अहम चीज़ है वो है विज्ञान। तो आज हम बात करेंगे युवा भारत और विज्ञान के बारे में कि युवा भारत से किस तरह से भारत विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा कर सकता है और क्या कमियां होंगी जिसको वो दूर कर आगे एक अच्छे पथ पे चल सके। इसके लिए हमने आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में डॉक्टर जनार्दन झा जी को। ये पूर्व में डायरेक्टर रह चुके हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ बिहार के, काउंसलर रह चुके हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडियन एम्बेसी मॉस्को में और वाइस चांसलर बीआईटी मिश्रा रांची के, प्रो वाइस चांसलर इग्नू के और मणिपाल यूनिवर्सिटी के। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर सबसे पहले हम जो एक महत्वपूर्ण चीज जानना चाहेंगे कि युवा भारत जो हम कहते हैं तो उसका जो आधार है आपके समय में, क्योंकि आपने एक अच्छा खासा अनुभव आपके पास है, तो जो युवा भारत की परिभाषा अभी विश्व परिप्रेक्ष्य में दी जाती है क्या वही परिभाषा आपके समय दी जाती थी कि युवा भारत इस तरह से विकास करेगा, अभी युवा भारत एक विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा कर रहा है, इस तरह की बातें क्या आपके समय में भी होती थी?
2: हमारे समय में भी युवा भारत से आकांक्षाएं बहुत थी, क्योंकि आप देखे होंगे कि स्वतंत्रता संग्राम में भी छात्रों का बहुत बड़ा योगदान रहा था। इसलिए हमारे समय में भी जो है सो छात्रों से यही अपेक्षा की जाती थी कि वो देश के उन्नति के लिए, चाहे वो विज्ञान हो चाहे राजनीति हो, उसमें वो पूर्ण रूप से भाग लें।
1: जी तो सर अभी का जो समय है युवा भारत का और जो विज्ञान में उनका अंतर संबंध है वो कितना मजबूत आपको दिखता है?
2: अभी युवा के साथ जो है साइंस का थोड़ा विज्ञान का जो है थोड़ी कमी हो गई है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं साइंस कॉलेज में पढ़ता था
1: जी,
2: तो उस समय जो कोई भी एमएससी फिजिक्स में करता था
1: जी,
2: और फर्स्ट क्लास फर्स्ट होता था तो वो तुरंत वहाँ रिसर्च स्कॉलर हो जाता था
1: जी।
2: उसी तरह से मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी की भी बात कर रहा हूँ कि उस समय में जो भी आदमी फर्स्ट क्लास फर्स्ट होता था
1: जी,
2: वो उसमें रिसर्च किया करता था। आज ये बातें नहीं रह गई हैं
1: जी।
2: आज जो है वो फिर दूसरे विधाओं में जाना चाहते हैं, एमबीए हो जाना चाहते हैं, जो अच्छे लोग हैं वो इंडस्ट्री में चले जाते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में चले जाते हैं। जरूर आवश्यकता ये है कि ये लोग कम से कम विज्ञान में जाएं। विज्ञान में इसलिए नहीं जा रहे हैं कि उसमें पैसे का अभाव है, काम करने की भी उतनी सुविधा हिंदुस्तान में नहीं है, इसलिए कि अब विज्ञान में शोध करना काफ़ी महंगा हो गया है
1: जी।
2: पहले जो छोटी छोटी लेबोरेटरी और प्रयोगशाला होती थी अब काफ़ी महंगी होने लगी है। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई है कि अब आप कंप्यूटर से काफ़ी कुछ रिसर्च कर सकते हैं जिसमें अत्यधिक पैसे की आवश्यकता नहीं है, और हमारे विद्यार्थी कंप्यूटर में काफ़ी अच्छे हैं और वो इस विषय में रिसर्च कर भी रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ आधारभूत विज्ञान के शोध कार्य में भारी कमी है
1: जी। आपने कुछ प्रमुख वजहों का जिक्र किया कि भारत में इन चीज़ों की कमी की वजह से भी लोग इस ओर नहीं आ रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे भी लोगों में रुचि में कमी दिख रही है आपको, तो ये व्यक्तिगत स्तर पे जो रुचि में कमी है वो आधारभूत जो विज्ञान है भारत में वो उतना मजबूत नहीं है ऐसा आप कह रहे हैं, तो क्या इसका हल क्या होगा, क्या आप हल देखते हैं कि इन चीज़ों से मुक्ति मिले और विज्ञान के क्षेत्र में जो नए नए विकास पूरे विश्व में हो रहा है भारत भी उसमें अपना अहम योगदान दे सके?
2: हमारे यहाँ जितनी भी कल कारखाने चल रहे हैं
1: जी,
2: सबों को शोध की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेट ये है कि ये शोध हमारे यहाँ नहीं हो करके ये शोध बाहर होता है, मैं उन्हें पैसे दे करके खरीद लेता हूँ
1: जी,
2: तो इसलिए हम अब आवश्यकता ये है कि जितने भी कल कारखाने हैं वो अपना शोध कार्य यहाँ पर करवाएं। अगर वो अपना शोध कार्य यहाँ पर करेंगे तो शोध को बढ़ावा मिलेगा, उसमें पैसे मिलेंगे। आज भी सरकार शोध कार्य में करने के लिए जो पैसे इंडस्ट्री देते हैं उनको उस पर टैक्स की छूट मिलती है
1: जी।
2: लेकिन वो सिर्फ इस ध्यान से नहीं करना चाहिए कि उन्हें टैक्स की छूट मिल रही है इसलिए हम कर रहे हैं, बल्कि उन्हें अपने उस एरिया में अग्रणी होने के लिए करनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे यहाँ के जो कल कारखाने या जो भी इस तरह के जो उत्पादन वाली वस्तुएँ हैं उनमें जो है सो रुझान बढ़े, शोध कार्य की तरफ लोगों का की इच्छा आ जगे, और साथ ही साथ पढ़ाई में भी स्तर थोड़ा सा बढ़ाना होगा
1: जी। जी, युवा भारत को अगर हम दो भागों में बांटें, एक तरफ लड़कों को रखें एक तरफ लड़कियों को रखें, तो इसमें अनुपात अगर देखते हैं हम तो लड़कों का अनुपात ही ज्यादा दिखता है। तो क्या भारत अब भी अपनी उसी मानसिकता के साथ जी रहा है कि जिसमें लड़कियों को कहा जाता है कि आप कला का विषय लें और अन्य काम करें, विज्ञान आपके लिए नहीं है? तो आपको क्या लगता है कि अभी का जो समय है इसमें ये चीजें किस तरह से दूर हो पाएंगी?
2: नहीं, लड़कियां अब काफी पढ़ने लगी हैं, विज्ञान की तरफ भी पढ़ने लगी हैं, कंप्यूटर में तो लड़कियां काफी आगे आ गई हैं। तो इसलिए यह अब हम नहीं कह सकते हैं कि लड़कियों के लिए यह क्षेत्र खुला नहीं है या लड़कियों के लिए यह क्षेत्र अच्छा नहीं है।
1: जी, जी।
2: मैं बल्कि ये तो कहूंगा कि ये क्षेत्र लड़कियों के लिए ज्यादा अच्छा है
1: जी, लेकिन अनुपात जो है सर वो तो बहुत कम दिखता है।
2: अनुपात अभी चूंकि लड़कियों की हायर एजुकेशन में ही अनुपात कम है
1: जी,
2: इसलिए ऑब्वियसली जो है
1: अच्छा, आप कहना चाहते हैं कि जो बेस है वहीं पे कम,
2: वहीं
1: कम
2: पर कमी है। हालांकि लड़कियां भी अब काफी MBA में जा रही हैं, बिजनेस के में बड़ी बड़ी अफसर हो गई हैं, बैंकिंग में हमारे यहाँ कम से कम 5-7 तो औरतें जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बड़े बड़े बैंक का, चाहे वो स्टेट बैंक हो, तो उन्होंने उधर भी अच्छा काम किया है। जबकि अगर वो विज्ञान के कार्य में जाएं, शोध कार्य में जाएं, तो उन्हें बहुत आराम की जिंदगी रहती है, उनमें जो है इतनी भागदौड़ नहीं मची रहती है। पैसे हो सकता है कि कम मिले लेकिन जीवन सुखी रहता है।
1: तो युवा भारत और विज्ञान जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं सर, इसमें आगे हम थोड़ा सा ये इस पर बात करना चाहेंगे कि जो एक समाज की मानसिकता भी है, चाहे वो लड़कों के प्रति हो लड़कियों के प्रति हो, कि नहीं नहीं विज्ञान ठीक है, वैज्ञानिक बन जाना एक अलग बात है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आप खुद इस क्षेत्र से रहे हैं और आपने कई साल काम भी किया है इसमें, तो आपको क्या लगता है कि ये जो कहा जाता है कि विज्ञान बहुत नीरस है, बस किसी तरह से दिन रात लगे रहो, कुछ नहीं मिलता है, कुछ हासिल नहीं हो पाता है, इन बातों में कितनी सच्चाई है? जो युवा है ऐसा सोचते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर?
2: ये कहना कि विज्ञान नीरस है ये बिल्कुल गलत धारणा है
1: जी,
2: क्योंकि अगर आप काम करने लगते हैं और अगर आपको एक नई चीज मिलती है तो आपको इतनी खुशी होती है जैसे आपके घर में एक नया बच्चा आया हो
1: जी।
2: जिस तरह से एक माँ को अपने बच्चे को जन्म देने के बाद खुशी होती है, उसी तरह एक वैज्ञानिक को एक छोटी सी भी सफलता जब मिलती है तो उसी प्रकार की वो खुशियाँ होती हैं। विज्ञानी बिल्कुल नीरस नहीं है, इसमें अगर आपका ध्यान लगा है तो फिर इससे ज़्यादा आनंद और कहीं नहीं हो सकता है। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि हो सकता है कि पैसे की कुछ कमी हो, हालांकि बहुत देशों में तो वैज्ञानिक को काफ़ी पैसे मिलते हैं, खास करके मैं तो USSR में रहा था और वहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा किसी प्रोफेशन को इज्जत थी तो वो वैज्ञानिक और प्रोफेसर को थी
1: जी,
2: और उन्हें पैसे भी कंपेरेटिवली अधिक मिला करते थे। हमारे यहाँ ठीक है, बिजनेस वालों को पैसा कुछ अधिक जरूर

0: मिलता है, लेकिन बाकी चीजें तो वैज्ञानिकों के पल्ले ही पड़ती हैं।
1: जी, तो सर क्या एक मुख्य वजह पैसों की ही है? और आपने जैसे कि अभी कुछ देर पहले कहा कि आधारभूत शिक्षा भी भारत में जो है वो उस स्तर का नहीं है जिस स्तर का होना चाहिए। लेकिन सर दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि हाल के वर्षों में इसरो ने कई सारे उपग्रहों का निर्माण किया और उसको सफलतापूर्वक प्रक्षेपित भी किया, और भारत अब व्यावसायिक तौर पे भी कई अन्य देशों के उपग्रहों का भी प्रक्षेपण कर रहा है। तो दूसरी तरफ जो ये दिख रहा है सर, एक तरफ तो युवा भारत दिख रहा है हम लोगों को, जिसमें आप बता रहे हैं कि लोग बिजनेस क्लास की ओर ज़्यादा जाना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ लोग हैं जिनको हम उंगलियों पर गिन सकते हैं, उनका जो काम है वो काफ़ी अच्छा काम दिखता है। तो आपको क्या ऐसी संभावना दिखती है कि अगर भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रोत्साहन दिया जाए तो आने वाला समय युवा भारत जो कहा जाता है पूरे विश्व में वो वाकई सच कहा जाता है?
0: बिल्कुल, अगर प्रोत्साहन विज्ञान को और शोध कार्य को दिया जाए तो भारत बहुत आगे बढ़ेगा,
1: जी
0: क्योंकि यहाँ संख्या ज़्यादा है, यहाँ पर जो है सो लोगों के दिमाग अच्छे हैं, काम करने की

7 दिनों के अंदर पत्र या मेल से भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले साथियों के नाम हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष और किनके द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। तो आज के लिए प्रश्न मंच में बस इतना ही दोस्तों। आइए चलते चलते करंट अफेयर्स पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। DRDO ने ओडिशा से स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLACM का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। भारत सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में वृद्धि की है। यह बदलाव 16 जून 2026 से लागू किया गया है। भारत पहली बार एशियाई सीनियर फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा और भारत के अली आवती लॉन्ग कुमेर को उत्तरी कोरिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो आज के लिए करंट अफेयर्स सेगमेंट में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है यह सेगमेंट आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होता है। दोस्तों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमें अवश्य लिख भेजिए। हमारा पता है युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर, पिन कोड संख्या है 8120001। आप चाहें तो हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है phairbhagalpur@gmail.com। दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी अब कर रही है इशारा, अब इस शो को रैप अप करने का वक्त हो चला है। चलते चलते बस यही कहेंगे आपसे हमेशा की तरह कि हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए युवाओं की वाणी युववाणी। मिलेंगे फिर इसी प्रोग्राम इसी फ्रीक्वेंसी पर। इसी वादे के साथ अपने रेडियो दोस्त बंटी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा वर्ग को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनाते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म जिद का ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं शकील आजमी ने, संगीत है सरीफ शबरी और तोशी शबरी का।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथा लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए, बढ़ते हैं आगे और आप आपको सुनाते हैं वेलकम फिल्म से आनंद राज आनंद की आवाज में ये गाना, जिसके बोल और संगीत भी हैं आनंद राज आनंद के।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम में आपको सुनाते हैं फिल्म टेंशन से सुखविंदर सिंह, उदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाज़ में ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं विशाल दत्तलानी ने, संगीत है विशाल शेखर का।

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मीका सिंह की आवाज़ में फिल्म अपना सपना मनी मनी की का ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं शब्बीर अहमद ने, संगीत है प्रीतम का।

श्रोताओं, इसी के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गाना। आयुष्मान खुराना की आवाज़ में फिल्म विक्की टोनर से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब आइए कार्यक्रम विवरण में जानते हैं हमारी आज की सभा के शेष और हमारी कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही पल बाद यानी कि शाम 6 बजे से आप सुनेंगे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। आज शाम 7:10 पर आप सुनेंगे श्रमिक जगत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रदर्शन। आज शाम 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी, जहां कलाकार होंगी स्मिता सिन्हा। आज रात 8 बजे से आप सुनेंगे रजनीगंधा फिल्म संगीत कार्यक्रम। रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है, जिसका प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। आज रात 10 बजे से आप सुनेंगे कंपेयरिंग आधारित फिल्म संगीत कार्यक्रम एक फनकार। और आज 10:30 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत पुरानी फिल्मों से। श्रोताओं, अब एक नज़र हमारी कल की सभा की ओर। हमारी कल की सभा आरंभ होगी प्रातः 5:48 पर, जिसमें 5:55 पर आप सुनेंगे खेत खलिहान कार्यक्रम। 6:05 पर आप सुनेंगे चिंतन मनन कार्यक्रम। 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कल प्रातः 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सुनेंगे योग एवं नेचुरोपैथ से हृदय रोगियों को होने वाले लाभों पर सुरेश कुमार से वार्ता। कल प्रातः 6:40 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस गान पाठ, कलाकार होंगे हरिहरन और मिताली बी सिंह। कल सुबह 7 बजे से लेकर 7:55 तक आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, जिसमें आप जानेंगे मौसम का मिजाज, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां और कल का इतिहास। साथ ही रसरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे गांधी कुमार मिस्त्री से सुगम संगीत। कार्यक्रम में आगे 7:20 पर कथा सागर में आप सुनेंगे कहानी प्रतिस्पर्धा करुणा की। कहानीकार होंगे उमाकांत भारती। 7:30 से आप सुनेंगे फिल्मी गीत। कल प्रातः 9:06 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। 9:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत कार्यक्रम, जहां कलाकार होंगे चंद्रशेखर। कल दिन के 10 बजे से आप सुनेंगे फिल्म संगीत पुरानी फिल्मों से। 10:30 पर आप सुनेंगे नाटक खोया हुआ खत, जिसकी लेखिका होंगी डॉक्टर आभा पूर्वे, प्रस्तुतकर्ता शंकर कैमूरी। कल दिन के 11 बजे से आप सुनेंगे फिल्म संगीत नई फिल्मों से। 11:30 से आप सुनेंगे कंपेयरिंग आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। कल दोपहर 12 बजे से आप सुनेंगे नारी लोक कार्यक्रम। 1 बजे से आप सुनेंगे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग, जहां कलाकार होंगी सुलेखा कुमारी। कल दिन के 1:30 से आप सुनेंगे धारावाहिक गंगा के सुरताल, जिसके लेखक होंगे रमेश रमन और प्रस्तुतकर्ता होंगे दासमी चार्टर। कल दिन के 2:30 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत चित्रपट से। दोपहर बाद 3 बजे से आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम तरंग, कलाकार होंगे चंदन दास। कल शाम 5 बजे से आप सुनेंगे युववाणी कार्यक्रम। 5:30 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम। कल शाम 6 बजे से आप सुनेंगे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। कल शाम 7:10 से आप सुनेंगे लोकगीत कार्यक्रम, जहाँ कलाकार होंगी आशा देवी। 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी, कलाकार होंगे उदय नारायण राय। कल रात 8 बजे से आप सुनेंगे रजनीगंधा फिल्म संगीत कार्यक्रम। कल रात 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम। रात 10 बजे से आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में साहित्य प्रवेश से सितार वादन राग झिंझोटी में। कल रात 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाना सफर। श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न हुआ। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी।

0: ग्राम जगत कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को रामू का नमस्कार
1: और सबों को कमली का भी नमस्कार। रामू भाई आपको भी हार्दिक नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार और हार्दिक स्वागत कमली बहन। और सब बताइए क्या हाल समाचार है
1: जी। रामू भाई गर्मी, उमस वाली गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और हाल बेहाल है और उस पर से परेशानी ये है कि आप देखते हैं जनजीवन जो है मतलब इस ऐसी समस्या हो गई है कि आजकल देखते हैं कि धरती का जो जल स्तर है दिन पर दिन नीचे जाता जा रहा है।
0: निश्चित
1: रूप से तो आप देखेंगे कि नदियां हैं जो भी है तालाब वगैरह सूखते जा रहे हैं और एक जल की समस्या एक बड़ी समस्या के रूप में बनकर उभर रही है।
0: तो थोड़ा सा इसमें बढ़ के ये भी सोचना होगा कमली बहन
1: कि
0: इसके लिए जिम्मेदार भी तो हम लोग ही हैं।
1: हाँ, निश्चित तौर पर हम ही हैं। और लेकिन ये जो समस्याएं हैं आप एक देखेंगे कि आजकल बारिश भी ऐसे कम ही हो रही है
0: जी।
1: अब देखिए कि मानसून अभी कुछ दिनों पहले था कि बारिश यहाँ पे आ जाने वाली है, मानसून का मौसम आ जाने वाला है, लेकिन अभी तक तो ऐसा आया नहीं है। और उसके बाद जो है बारिश होती है तो भी कम होती है
0: बिल्कुल,
1: और उसके बाद भी आप देखेंगे कि कुछ देर कम होती है और हमारे आसपास का माहौल हमने ऐसा बना दिया है, सभी तरफ हमने पक्की सड़कें, पक्के मकान, पक्की नालियां, तो धरती जो है कच्ची बन बची ही कम है।
0: ऐसा
1: तो
0: है कमली बहन कि प्रकृति से जब छेड़छाड़ हम लोग करते हैं तो उसका अंजाम भी तो हम लोगों को ही भुगतना होगा, है कि नहीं। अब जो जंगल का क्षेत्र है उसको भी आप काट करके वहां पे घर बना रहे हैं, आबादी बस रही है, सड़क बन रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बन रही है।
1: देखिए आप कि मकान लोगों ने बना लिए हैं तो अब नदियों का भी एक तरह देखा जाए तो रास्ता मोड़ने जैसा हो रहा है
0: बिल्कुल। और कई नदी तो आप देखेंगे कि वो करीब करीब सूखने के कगार हो गई है
1: बिल्कुल, बरसाती नदियों की तरह बन गई है कि जब बरसात के मौसम में ही बस उसमें पानी रहता है, बाकी दिन वो सूखे नाले की तरह बहती है। तो ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं रामू भाई बहुत चिंता देती है
0: और
1: भयावह स्थिति
0: बिल्कुल निश्चित रूप से। और उसी से संबंधित आज हम लोग एक महत्वपूर्ण दिवस भी मना रहे हैं कमली,
1: वो क्या है रामू भाई?
0: आज मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का विश्व दिवस हम लोग मना रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा।
0: जो प्रत्येक साल 17 जून को मनाया जाता है और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और सूखे जैसी गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियां के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है कमली।
1: बहुत जरूरी है रामू भाई और बहुत अच्छा विषय है।

0: क्योंकि ये समस्या दिन पर दिन विकट होती जा रही है, और जो धरती पे सूखे की समस्या है वो अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो और दिन पर दिन ये बढ़ती जा रही है।
1: निश्चित रूप से, और इसमें सबसे पहले ये समझना होगा कमली बहन कि मरुस्थलीकरण क्या है।
0: हाँ जी,
1: है ना
0: जी।
1: तो मरुस्थलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों की उपजाऊ भूमि का क्षरण होता है और जिसकी वजह से मिट्टी में नमी कम हो जाती है और अंत में जो वनस्पति है वो भी नष्ट होकर वह भूमि मरुस्थल में तब्दील हो जाती
0: जी,
1: है।
0: जी रमू भाई, कई जगहों पे हम लोग ऐसा देखते हैं कि वहाँ की धरती जो होती है ऐसा लगता है उसमें दरार आ गई है,
1: बिल्कुल
0: फट-फट जाती है, यानी कि उसके अंदर का पानी जब सूख जाता है तो वो मिट्टी जो है एकदम से सूखी हो जाती है, फटने लगती है, और वहाँ की जो वनस्पति है पेड़ पौधे हैं वो भी निश्चित तौर पर अगर उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो वो भी सूखेंगे।
1: इसी के कारण तो सूखे के कारण जो प्रभावित क्षेत्र है कमली बहन, उसमें चाहे हम लोग जल संकट की बात कर लें या फिर फसल का नष्ट भी हो जाते हैं वहां पर, और इसके साथ ही साथ क्या है कि मनुष्य का और पशु का पलायन जो है वो जैसी एक विकराल समस्या सामने आ जाती
0: बिल्कुल,
1: है,
0: बिल्कुल,
1: है कि नहीं?
0: बिल्कुल समस्या, क्योंकि जब पानी ही नहीं रहेगा तो लोग कैसे जिएंगे।
1: और इस दिन का ये महत्व है कि यह दिन लोगों को भूमि के क्षरण, मरुस्थलीकरण और सूखे के खतरों से अवगत कराता है। इसके साथ ही साथ क्या है कि चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को इस दिशा में नीतियां बनाने, सहयोग करने और समाधान खोजने के लिए प्रेरित भी करता है,
0: जी,
1: है ना?
0: जी जी और इस दिन जो स्थायी भूमि प्रबंधन, पारिस्थितिकीय संतुलन और जलवायु अनुकूलन की दिशा में भी वैश्विक प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाता है।
1: ये बात तो सही भी है ना कमली बहन कि जब तक सभी लोग इसमें आगे बढ़ करके नहीं आएंगे, प्रयास करेंगे, तब तक हम लोग किसी समस्या का समाधान पूरी तरह से नहीं कर
0: खोज
1: सकते,
0: पाएंगे,
1: है कि नहीं?
0: हाँ हाँ
1: और इसलिए मरुस्थलीकरण के पीछे जो है वो कई मानवीय और प्राकृतिक कारण भी होते हैं।
0: जी जी
1: जैसे मान लीजिए कहीं पर अत्यधिक चारागाही हो गया कि कोई जंगल का क्षेत्र है वहां पर उसको चारागाह आप बना दिए तो वो जो भी वनस्पति है वहां पे वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। वनों की कटाई हम लोग कर रहे हैं, अंधाधुंध कटाई हो रही है, तो जलवायु परिवर्तन और भूमि का अत्यधिक दोहन है कि नहीं?
0: जी जी
1: तो ये सब कारण जो है वो मरुस्थलीकरण का सबसे बड़ा कारण होता है कमली बहन।
0: जैसे कि एक सूखा एक प्राकृतिक आपदा है,
1: बिल्कुल,
0: और किसी किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है और वहां पर भारी जल की कमी भी हो जाती है, और इसी कारण जब जल नहीं होगा तो कृषि और पशुपालन की तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, और जैव विविधता और मानव जीवन पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
1: निश्चित रूप से, जब जल ही नहीं होगा तो जल के बिना तो जीवन,
0: जीवन
1: की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं हम लोग कमली बहन।
0: जी,
1: और भूमि क्षरण के जो है वो उसके प्रभाव भी पड़ते हैं, जैसे कि कृषि उत्पादकता में गिरावट और खाद्य संकट उत्पन्न होता है उससे, है कि नहीं?
0: जी जी।
1: और साथ ही साथ क्या है कि जल स्रोतों का सूखना और पेयजल की कमी, है ना?
0: हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को भी इससे नुकसान पहुंचता है, बहुत सारी प्रजातियां जो हैं वो विलुप्ति की कगार पे चली जाती
1: है। निश्चित रूप से,
0: और
1: इससे क्या होता है कमली बहन की जो ग्रामीण आबादी है ना उसका भी मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो प्रवास हो जाता है और शहर पर उसका अत्यधिक दबाव पड़ जाता है, है कि नहीं?
0: बिल्कुल, और इसी कारण जो है कई तरह की सामाजिक और आर्थिक असमानता भी देखने को आती है।
1: निश्चित,
0: है ना? कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा वो उनको मतलब जैसे खाद्यान्न सही कीमत पे उपलब्ध नहीं होंगे और भौतिक सुविधाएं उनको उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, तो वो क्या होता है धीरे धीरे उनके रहने सहने की स्थिति में बहुत गिरावट आती है और उनको आर्थिक बहुत लाभ भी नुकसान भी होता है।
1: बिल्कुल, और तो इसके लिए क्या है कि अगर हम लोग इसके समाधान और उपाय की बात करते हैं कमली बहन, तो कुछ छोटी छोटी बात है जिसको कि अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो इस पर नियंत्रण हम लोग पा
0: सकते हैं।
1: जैसे कि वृक्षारोपण हो गया, वनों की कटाई को रोकना हो गया और हरित क्षेत्र को बढ़ाना, है ना? इसके साथ ही साथ जल संरक्षण तकनीक जैसे कि वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करना ये बहुत जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है। और अभी देखिए कि आप रामू भाई कि वर्षा का मौसम आने वाला है तो हम लोग जो वर्षा जल संचयन में एक बहुत अच्छी एक तकनीक है कि हम लोग वर्षा का जल कहते हैं रामू भाई कि सबसे शुद्ध जल के स्रोत में आता है, तो हम अगर बारिश के जल जो होता है ऐसी तकनीक बनाई जानी चाहिए कि जो मकान की छतों पर जो पानी होता है वो पाइप के जरिए नीचे कोई एक टैंक में जमा हो जाए और उसको फिर हम उपयोग कर सके, या ऐसा हो कि वो नाली के जरिए पाइप के जरिए फिर सीधे धरती में चला जाए ताकि धरती की भी जो है वो धरती उसे सोखे और उसका जल स्तर अच्छा हो। तो ये जल स्तर को संचय करने की जो एक तकनीक है उस

0: उसको बहुत ज़्यादा तरीके अच्छे तरीके से उसको जो है उपयोग में लाने की एक मतलब कार्य प्रणाली विकसित की जानी
1: निश्चित
0: चाहिए।
1: रूप से, इसलिए इस दिन का महत्व उन क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करना है कमली बहन जो खो गए हैं।
0: जी जी
1: है ना, इसके अलावा भोजन हो, कच्चे माल हो, सड़क हो या फिर आवास की जो बढ़ती आवश्यकता के कारण विश्व के 3/4 बर्फ मुक्त क्षेत्र जो है कमली बहन वो पिघल गए,
0: क्योंकि बहुत ज्यादा जब गर्मी पड़ती है तो फिर क्या होता है हिमस्खलन जो होता है और उनका पिघलना शुरू होता है और उसके कारण जो है ता असमान जल का वितरण होता है जो बड़ी एक समस्या के रूप में उभर के आता है।
1: जी, तो इन और इन नुकसानों की भरपाई के लिए और लोगों के अस्तित्व को सुनिश्चित करना अत्यंत ही आवश्यक है कमली बहन।
0: जी जी,
1: क्षरणग्रस्त जो भूमि है उसका पुनर्स्थापन रोजगार सृजन करता है कमली बहन, है कि नहीं? अगर जो मान लीजिए कि कोई भूमि अगर हम लोग पुनर्स्थापित करके वहां पर खेती बाड़ी करते हैं तो निश्चित रूप से है कि वहां रोजगार भी होगा, रोजगार होगा तो आय भी बढ़ेगी और उसके आर्थिक स्थिति में सुधार भी करता है और साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा को मजबूत भी करता है।
0: जी जी, भूमि सुधार का सीधा असर जो है जलवायु परिवर्तन पर भी पड़ता है। इसके कारण वैश्विक तापमान में भी कमी आती है और हाल के ही वर्षों में राबू भाई जो वैश्विक तापमान है उसका बढ़ते रहना एक बहुत बड़ी चिंताओं के रूप में उभर कर आया है। तो ये बहुत सोचने विचारने वाली बात है कि हमारे जो है विश्व का तापमान जो है उसको नियंत्रित किया जा सके और उस कारण भी जो है हमारी जो धरती है मरुस्थल बनने से बची रह सकती है और सूखे की समस्या से भी निपटान हो सकता है। तो इस बारे में हम लोगों को जो है सचेत होकर सोचना है रामू भाई, ये किसी एक की समस्या नहीं है, सबकी समस्या और हर एक को इसके लिए सोचना होगा, आगे बढ़ना होगा। और रामू भाई आगे और भी बातें होंगी, पहले रुकते हैं, कुछ संदेशों को सुनते हैं और फिर सुनते हैं एक देवी गीत।
1: जी,
2: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for ₹10.99 lakh with a battery EMI of just ₹3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
3: Nexa.
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
4: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
6: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
7: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुँचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: Some cars are designed to blend in, others are designed to be remembered. Meet the Maruti Suzuki Fronx with powerful 1.0-liter turbo booster engine. Fronx delivers performance that matches its bold SUV-inspired design, already trusted by more than 4 lakh proud owners across India. Fronx is now available starting at just ₹6.85 lakh with exciting offers available at your nearest Nexa showroom. So, why follow the road when you can lead it? Visit your nearest Nexa showroom and experience the Maruti Suzuki Fronx right now.
3: Nexa.

0: जी
1: जी रामू भाई, आजकल देखते हैं कि कभी तो लगता है कि बारिश होती है तो ठंड जैसा एहसास होता है, और कभी बहुत तेज गर्मी और उमस का एहसास होता है।
0: बिल्कुल
1: तो ये जो मौसम के बदलने पर जो है, आप देखिएगा कि जैसे मौसम बदलता है तो स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ कुछ दिक्कतें होने लगती है। कि जैसे समझ लीजिए कि आज जैसे कभी उमस वाला मौसम होता है तो बहुत सर्दी या ऐसी कुछ समस्याएं देखने को आती है।
0: निश्चित रूप से। और देखिए, बदलते मौसम के दौरान क्या होता है ना कमली बहन,
1: हाँ
0: कि
1: हाँ
0: शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो नए तापमान के अनुसार ढलने के लिए एक तरह से कहिए कि संघर्ष करता है
1: हाँ
0: कि नहीं।
1: और इसीलिए
0: और
1: स्वास्थ्य समस्याएं भी
0: हाँ
1: होती है।
0: बिल्कुल, चाहे वो सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए, वायरल बुखार हो गया, या फिर गले में खराश जैसी समस्याएं भी जो है वो आम समस्या हो जाती है कि
1: जी
0: नहीं।
1: जी
0: तो एक पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से हम लोग और विस्तार से जानते हैं कि बदलता मौसम और स्वास्थ्य।
1: तो ये भेंट वार्ता, ये सुनते हैं, भेंट वार्ताकार हैं धनंजय कुमार हिमांशु, और इनसे भेंट कर रहे हैं डॉक्टर विजय कुमार मिश्र।
0: आइए उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुने।
2: हो गया, रेडी करें। श्रोताओं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अपना यह प्यारा देश भारत षड ऋतुओं का देश है, यानी कि छह छह ऋतुएं हैं। एक ऋतु आती है, एक ऋतु जाती है। जब भी कोई नया मौसम आता है तो निश्चित रूप से हमारे अंदर में एक चेतना, हमारे अंदर में जीवन का संचार वो किया करता है। पर बदलता हुआ मौसम कई मामले में कई दृष्टिकोण से अच्छा भी होता है तो थोड़ा खराब भी हुआ करता है। क्योंकि जब भी मौसमी परिवर्तन हुआ करता है तो अपने साथ कई अच्छाइयों के साथ कुछ रोग बीमारी व्याधियों को भी लेकर आता है। और एक मौसम से दूसरा बदलता हुआ मौसम या परिवर्तित मौसम या फिर मौसमी परिवर्तन, ये कई प्रकार के कष्ट भी हमें दे जाता है। लेकिन बदलते हुए मौसम में अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। अभी देखिए कि ठंड धीरे धीरे जा रहा है, ग्रीष्म का प्रवेश धीरे धीरे हो रहा है। ऐसे समय में ये जो परिवर्तित मौसम है, बसंत चल रहा है, हमें अपने स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, ऐसे समय में कौन कौन से रोग बीमारी से हम आक्रांत हो सकते हैं, इसी विषय पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया हुआ है भाई डॉक्टर धनंजय कुमार हिमांशु जी को। धनंजय जी, आपका अपने स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं श्रोता भाइयों बहनों की ओर से। और पहली बात जानना चाहेंगे कि अभी का जो मौसम चल रहा है, बदलता हुआ मौसम, एक परिवर्तित मौसम, जबकि दिन में गर्मी लग रही है और शाम होने के बाद हल्की ठंडक और रात मध्य रात्रि में ज़्यादा ठंडक लग रही है, ऐसे समय में कौन कौन सी रोग व्याधियाँ ज़्यादातर नज़र में आती हैं?
3: इस मौसम में सबसे पहले हम अपने स्वास्थ्य की रख रखाव पे ध्यान देना होगा। जैसे कि ठंड लग रही है तो गर्म कपड़े पहन लिए, फिर गर्म लगने लगी तो उसको उतार लिए। यहाँ पे ठंड और गर्म दोनों का सामंजस्य जैसे ही हमारे शरीर को नहीं कर पाता है, उस जगह पे बच्चे को अधिकांशतः निमोनिया नामक सर्दी खांसी से अक्सर वो पीड़ित हो जाया करते हैं। इसलिए कम से कम हमें यह चाहिए कि हम ठंड के ऋतु में जिस तरह का पहनावा किए थे, अभी जो बसंत की आगमन हो रही है, इस ऋतु में हम उस कपड़े को डायरेक्ट पहनावे को नहीं बदलें, ताकि थोड़ा थोड़ा शरीर हमारा मौसम के अनुकूल परिवर्तन हो जाएगा, उसके बाद हम अपने पहनावे को बदलेंगे, जिससे कि हमें अधिकांशतः बच्चे को और बुजुर्गों को इस निमोनिया, दमा, हाई बीपी वगैरह प्रॉब्लम से हमें दूर रहना बचाया जा सकता है।
2: यानी कि इस बदलते हुए मौसम में निमोनिया हो सकता है, सांस से संबंधित बीमारी हो सकती है, और साथ ही साथ जिन्हें रक्तचाप की बीमारी है, उच्च या निम्न, उन्हें भी परेशानी हो सकती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत लोग पंखा का भी प्रयोग कर बैठते हैं, जबकि वो नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जब गर्म लगती है तो शरीर से वस्त्र की कमी कर देते हैं शरीर के ऊपर से, जो कि नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत अपने शरीर को वातावरण के अनुकूल बनाए रखने के लिए ये काम अभी कुछ दिनों तक करना पड़ेगा। और मान लीजिए कि ऐसे में निमोनिया, श्वास की बीमारी, और साथ ही साथ जो रक्तचाप से संबंधित बातें आपने कही, वो अगर होती है तो क्या करना चाहिए?
3: निमोनिया और रक्तचाप, रक्तचाप एक ऐसी बीमारी है जो कि वृद्धे लोग में और जवानों में तो कम, लेकिन वृद्धे लोग में अधिकांशतः पाया जाता।
2: हाँ, तो निमोनिया

0: बच्चों को निमोनिया नामक बीमारी, गले में घरघराहट, सर्दी, खांसी अक्सर इस मौसम में हो जाया करता है।
1: जी जी।
0: इससे बचने के लिए हमें सबसे पहले बच्चे के शरीर को गर्म रखना होगा। अगर मान लीजिए कि वो सफर कर गया, उसे पीड़ित हो गए, तो उसे एक घरेलू उपचार है कि घर में अगर पुरानी घी रखी हुई हो, जो कि अक्सर लोग घर में रखा करते हैं, तो उन्हें सीने पे या पीठ में अच्छी तरह से लगा दिया जाए। अगर मान लीजिए वो भी नहीं है, तो सरसों तेल को पका कर उसके शरीर को इस तरह से मालिश करना है कि वो गर्म हो जाए। कहने का मतलब कि निमोनिया होने का कारण एक ठंडी से हम निकल रहे हैं और गर्मी का प्रवेश कर रहा है, तो ठंड और गर्म का जहाँ टकराव होता है, वहाँ पे हमारे बच्चे में इम्यूनिटी पावर की कमी रहने के कारण कफ की मात्रा बढ़ जाया करती है, जिससे कि उसके श्वास में कष्ट होने लगता है, गला घरघराने लगता है, खांसी होने लगती है। तो अगर हम शरीर को उसका सामान्य तापमान में अगर हीट में रखेंगे, ढक करके रखेंगे, पहनावा को सरी करके रखेंगे, तो हमें ये समस्या से निदान मिल सकता है।
1: अच्छा, इससे सिर्फ बच्चे ही प्रभावित होते हैं या बड़े बुजुर्ग भी?
0: बड़े बुजुर्ग भी इसी से प्रभावित होते हैं। उसे हम लोग बुजुर्ग में सेकेंडरी स्टेज में दमा के नाम से जानते
1: अच्छा,
0: हैं।
1: अच्छा, वही जो श्वास की बीमारी,
0: अच्छा, होती है। अच्छा।
1: तो इसमें लक्षण क्या क्या उभरेंगे?
0: दमा में आपको एक मौसम तो आता ही है, साथ में हमारा पॉल्यूशन जो है, धूल गर्दा फैक्ट्री की गंद वगैरह सब जो आती है पॉल्यूशन, उससे श्वास कष्ट उनको ज़्यादा होने लगता है और श्वास लेने में दिक्कत होगा। फिर वो जब ऊपर या नीचे चढ़ेंगे या कोई कड़ा काम करेंगे, तो ब्रीथिंग ट्रबल यानी श्वास दम फूलने की प्रक्रिया उनको बढ़ने लगती है। रात में नाक बंद हो जाया करेगा और कमजोरी महसूस होने लगेगी। गले में घरघराहट तो होती ही है बच्चे में और इनमें भी होगी, लेकिन दमा में मेन रूप से उनका लंग्स इतना इफेक्टेड हो जाता है, फेफड़ा, कि बलगम की मात्रा बढ़ जाती है और जो हम श्वास लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की जितना जाना चाहिए श्वास में वो नहीं जा पाती है, जिससे कि हमारा हार्ट का भी प्रॉब्लम होने लगेगा। आपको दम फूलना, कमजोरी आना, सर्कुलेशन की कमी हो जाना, ये सारा चीज़ बड़े लोगों में श्वास की एलर्जी के कारण हो जाया करता है।
1: ये जानना चाहेंगे डॉक्टर धनंजय कि जैसे कि निमोनिया हो या फिर ये श्वास की बीमारी हो, ऐसे में आपके होम्योपैथ चिकित्सा के मुताबिक बच्चों में कौन कौन से दवा और कितनी मात्रा का प्रयोग होगा और बड़ों में कितनी मात्रा और दवा का प्रयोग, कौन दवा का प्रयोग होगा, साथ ही साथ बुजुर्गों में जो 60 साल के ऊपर के हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए दवा और मात्रा की क्या भूमिका कितनी होगी?
0: सबसे पहले तो हम बच्चों में अगर होता है, बच्चे में हमारे यहाँ एकोनाइट नाम की ऐसी दवा है कि अगर उसमें कहा जाता है कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या किसी को हो, तो उसे देते हुए 1/3 बीमारी को ये आरोप कर देगा, नहीं तो ये डॉक्टर के यहाँ जाते जाते वहाँ तक स्वस्थ आपको पहुँचा देता है। दूसरा, एकोनाइट की अवस्था प्राप्त होने के बाद समाप्त होता है तो ब्रैनिया, एंटीमटाट, स्पोंजिया, ये तीन अच्छी दवा है जो बच्चे को 6 पावर से लेके 30 पावर तक में हम बारी बारी से यूज कर सकते हैं। दूसरी एक दवा आती है रस्टक्स, बेलाडोना, डालका मारा। चूंकि अभी मौसम परिवर्तन का समय चल रहा है, इसलिए इस मौसम परिवर्तन में ठंड में गर्मी की आभास, कभी गर्म में ठंडी की आभास हो रही है, तो इस मौसम के लिए हमारे बदलते हुए मौसम में रस्टक्स, डालका मारा और बेलाडोना का प्रयोग हमेशा करते रहना चाहिए। फिर यही चीज अगर बड़े व्यक्तियों में हम जाते हैं, तो बड़े व्यक्तियों के लिए हमारी सबसे अच्छी दवा होती है, अगर श्वास की प्रॉब्लम है तो आरवा सेंटा मदर टिंचर में 5-5 बूंद 3 बार, अगर बलगम उनसे निकलता है तो हीपर सल्फर सिनेगा ये सब दवा का हम लोग उनमें यूज करते हैं। अगर उन्हें दम फूलने के साथ साथ कमजोरी और श्वास कष्ट हार्ट की भी प्रॉब्लम है तो वहाँ क्रेटिगस और डिजिटेलिस को भी हम लोग अस्परण में लेकर के दवा का निदान करते हैं।
1: तो ये तो निमोनिया और श्वास से संबंधित जो बीमारी है उसके लिए ये जानकारी हो गई। एक चर्चा आपने और की थी कि बदलते हुए मौसम में रक्तचाप में भी उतार चढ़ाव थोड़ा हो जाता है।
0: जी हाँ।
1: तो डॉक्टर धनंजय हम ये जानना चाहेंगे कि रक्तचाप में जैसे उच्च रक्तचाप हुआ या फिर निम्न रक्तचाप हुआ, तो उच्च और निम्न रक्तचाप की स्थिति में क्या क्या लक्षण उभरेंगे और उसके।
2: जी रामू भाई, बहुत अच्छी जानकारियाँ हमने इस वार्ता के जरिए पाई। और निश्चित तौर पे जब मौसम में बदलाव होता है उस समय अगर हम थोड़ा ध्यान दें और उसे अनुरूप अपने शरीर को ढाल लें तो संबंधित बीमारियों से हम बचे रह सकते हैं।
3: बिल्कुल,
2: है ना। और आइए रामू भाई आगे बढ़ते हैं, पहले एक झूमर सुनते हैं।
3: जी,
0: हम लोग करते हैं

0: जी, अब कुछ मौसम संबंधी जानकारियां भी हम लोग लेने। तो अगले कुछ दिनों में मानसून जो है वो भागलपुर के आसपास आने वाला, परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है।
1: जी
0: और धान के लिए कुछ सूचना हम लोग दे दें कि लंबी अवधि वाली धान की किस्में जैसे कि सबोर श्री, स्वर्णा सब एक, राजेंद्र मंसूरी, राजेंद्र श्वेता, स्वर्णा एवं भी पीटी 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर बनाएं। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद का व्यवहार करें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर रखें और लंबाई सुविधानुसार रखें।
1: जी
0: 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी तैयार करें। बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीजों को गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें।
1: बिल्कुल
0: जितने क्षेत्र में धान का रोपनी करना हो उसके दशांश हिस्से में बीज गिरा लें और बीजों को गिराने से पहले 1.5 ग्राम वाविस्टिन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लें।
1: जी, और इसके साथ ही कुछ प्याज से संबंधित ये सलाह है किसान भाइयों के लिए कमली बहन, कि खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी की तैयारी करें और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद अवश्य डालें।
0: जी
1: और खरीफ प्याज के लिए N53, एग्री ग्राउंड डॉक रेड, अर्क कल्याण, भीमा सुपर किस्में जो है वो अनुशंसित है। और प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार जो है वो निश्चित रूप से कर लें।
0: जी
1: और बीज की दर जो है वो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखना है।
0: और साथ ही साथ मूंग की जो तैयार फलियां हैं उनकी तुड़ाई कर लें और हरी खाद के लिए उनके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दें।
1: जी
0: और साथ ही गलघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए पशुओं को टीकाकरण कराने की आवश्यकता है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं।
1: और अब तो समय हो चला है कमलीवन प्रायोजित कार्यक्रम का, तो
0: आइए
1: आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम। पारा मेडिकल है पारस।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
3: नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से आप सबों के घर आंगन में आज बुधवार का दिन है और लेकर आ गया पैरामेडिकल है पारस। जी हां, पैरामेडिकल है पारस में हम बातें करते हैं हेल्थ सेक्टर में पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद रोजगार की भी, स्वरोजगार की भी। अगर जो रोजगार है तो सरकारी क्षेत्र के रोजगार और निजी क्षेत्र के रोजगार की भी बात करते हैं। कहते हैं कि कोविड के बाद से इतना वाइब्रेंट हो चुका है हेल्थ सेक्टर कि पढ़ते पढ़ते ही रोजगार मिल जाता है या कमाना शुरू कर दिया जाता है। पैरामेडिकल है पारस हम लेकर आते हैं राज्य की एक विशिष्ट संस्था है पैरामेडिकल की, श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जो पटना के जक्कनपुर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने है। उनकी तरफ से उनका मानना है कि बिहार के अंतिम युवा तक बातें पहुंच जानी चाहिए कि अगर वो हेल्थ सेक्टर की पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए रोजगार ले लेना बहुत कठिन कार्य नहीं है। हम नंबर बताते हैं इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद, आप चाहे तो डायल कर सकते हैं, नंबर नोट करें 9155558888 और दूसरा नंबर है 9162413233। ये नंबर है, इस पर आप बातें कर सकते हैं। और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी, तो चलिए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। किस मुद्दे पर बात होगी हम, हाँ जोड़ते हैं डॉक्टर साहब, क्या बात करना चाहिएगा पैरामेडिकल के बारे में बताइए।
4: देखिए राजेश जी, बहुत अच्छे अच्छे जो बैचलर का कोर्स आ गए हैं,
3: हाँ।
4: बच्चे लोग के पास अभी तक जानकारी का अभाव है और नहीं कर पाता है,
3: जानकारियों का अभाव है। हाँ।
4: जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और बहुत सारे बच्चे लोग को ये ऐसा पता भी नहीं कि ऐसा भी कोर्स होता है।
3: जी
4: जैसे हुआ बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब जो कोर्स हैं ये बहुत ही उपयोगी कोर्स है। और इस सब करके बच्चे निश्चित रूप से अपने जो सपना देखा है उसके तरफ बढ़ जाता है
3: जी।
4: तो ऐसे ऐसे कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए। सिर्फ आईएससी बायोलॉजी और बीएससी करने से उसके जो टेक्निकल कोर्स अगर नहीं करेगा तो आज के समय में उसका बहुत महत्व नहीं रह गई
3: जी।
4: तो निश्चित रूप से किसी भी बच्चे को अगर डॉक्टर नहीं बन पाया है या डॉक्टर की चाह नहीं है, उतना उसके सामर्थ्य नहीं है, उतना मार्क्स नहीं ला पाता है, उतने पैसे का जुगाड़ नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से उसको सेकंड ऑप्शन चुनना चाहिए पैरामेडिकल का कोर्स। और पैरामेडिकल में देखिए दो तरह से होते हैं, एक डिप्लोमा कोर्स होता है, एक डिग्री कोर्स होता
3: जी,
4: है
3: जी।
4: तो डिग्री कोर्स जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, आसपास होता है। तो ऐसे ऐसे बच्चे को निश्चित रूप से वह कोर्स चुनना चाहिए और उसमें पढ़ाई कर करके अपने करियर को बनाना चाहिए।
3: बिल्कुल।
4: जिसमें से मैंने पहले भी बताया कि बीपीटी हुआ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हुआ, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ, ये भी बैचलर का कोर्स है। और उसके बाद

0: बिल्कुल नहीं, इसकी मांग कभी कम भी नहीं होगी।
1: मार्केट में इस तरीके से क्यों बातें फैल रही हैं कि फिजियोथेरेपी के कोर्स की यूटिलिटी नहीं रह गई?
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, फिजियोथेरेपी की यूटिलिटी कभी कम नहीं हो सकती है, जिस तरह से मेडिकल की यूटिलिटी कम नहीं हो सकती है, और जिस तरह से नर्सिंग की यूटिलिटी नहीं कम हो सकती है, उसी तरह से फिजियोथेरेपी की भी यूटिलिटी कम नहीं होगा, और जहां तक और बढ़ ही रही है। मोटापा बढ़ रहा है, घुटने का ये सब जितने भी बीमारियां है सब बढ़ रही है, तो उसकी उसको ठीक करने वाले को कम कैसे माना जा सकता है?
1: नहीं माना जा सकता है, लेकिन लोग कह रहे हैं इसलिए हमने पूछ लिया।
0: नहीं तो उसको जानकारी का अभाव है इसलिए ऐसा कह रहे हैं।
1: तो जानकारी दीजिए युवा साथियों को, थोड़ा डिस्करेज कर रहे हैं।
0: निश्चित रूप से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब कोर्स जो है अभी और वाइब्रेंट होगा और ज्यादा होगा। यहाँ तक कि डिप्लोमा छोड़ करके लोग डिग्री में कर रहे हैं
1: जी।
0: और डिप्लोमा पहले चलता था, अब डिग्री आई है तो डिग्री सब लोग कर रहे हैं। डिप्लोमा तो किए हुए हैं ही, डिग्री लोग करना चाहते हैं। जो बच्चे आता है कि कहता है कि नहीं, तो अगर हमारा 2 साल बर्बाद होगा ही, 2 साल करने का मतलब लगेगा ही, तो 2 साल और कर करके डिग्री कर लेते हैं।
1: हाँ।
0: डिग्री करने से वो जो होता है राष्ट्र स्तर पर वो अपने आप को बिखेर लेता है, और उस तरह से वो जहाँ चाहे जिस विधा में चाहे वो जा कर करके आगे बढ़ सकता है।
1: तो फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी एक बार थोड़ा फिर से दे दीजिए। जैसे जनरल कोर्स में जर्नलिज्म को लोग बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसी तरीके से फिजियोथेरेपी की भी चर्चा हो रही है, तो उसके बारे में एक बार फिर से विस्तृत जानकारी।
0: मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि देखिए, हर समय हमेशा रहा गुरुकुल शिक्षा का भी ले लीजिए या कोई भी शिक्षा के ले लीजिए, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सभी जगह मांग है
1: जी।
0: और जनरल एस्पेक्ट में कहिए तो अगर आप उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे लेते हैं और निश्चित रूप से आप पढ़ लेते हैं तो आपकी मांग कभी घटेगी नहीं। और हेल्थ प्रोफेशनल तो एक ऐसा कोर्स है कि अब नौकरियां आपके पीछे पीछे चलती है, बाकी सब में तो उसको बुलाया जाता है, लेकिन ये हेल्थ प्रोफेशनल है कि आपके पीछे आपकी नौकरियां चलती है। अगर आप अच्छा करते हैं तो यू वेलकम टू एवरी हॉस्पिटल, अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो यू एक्सीट फ्रॉम एवरी हॉस्पिटल। ये तो निश्चित रूप से है कि अगर आप अच्छा नहीं करेंगे अपने अपने प्रोफेशन में तो आपको कहीं मांग नहीं होगी। अगर आप बेहतर अच्छा करेंगे, जितना और अच्छा करते जाएंगे उतना और मांग बढ़ते जाएगी
1: जी।
0: तो ये तो निश्चित रूप से ये परंपरा रही है और हेल्थ का। और जहां तक रही बात की टोटल की बात है, तो टोटल देखिए कि लगातार जो ये हमारा जो खान पान आहार विहार पर्यावरण ये सब जो है लगातार दूषित होते जा रहा है, इससे बीमारियां भी तरह तरह की बढ़ रही है, तो इसको देख रेख करने वाले भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अगर देख रेख करने वाले लगातार बढ़ रहे हैं तो आप कम कहां से होंगे?
1: सही।
0: और फिजियोथेरेपी का इतना एस्पेक्ट बढ़ गया है, जैसे आप खेलों में भी जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, सभी जगह कोई ऐसा बताइए कि जहां पर फिजियोथेरेपी की आवश्यकता नहीं है। अनुमंडल अस्पताल में, सदर अस्पताल में, खेल के कोई भी क्षेत्र में अब लगातार खेल की भी संख्या कितनी बढ़ गई है, अब उसमें हर में एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। अगर इसी प्रकार से देख लीजिए तो लगता है कि हजारों हजार की संख्या आ जाती है।
1: सही सही सही बात।
0: इतने अनुमंडल अस्पताल है, इतने रेफरल अस्पताल है, इतने सदर हॉस्पिटल है, उसके बाद इतने मेडिकल कॉलेज है, इतना एक पूरा विभाग ही है। तो जिस तरह से ऑर्थोपेडिक का नहीं हटेगा, जिस तरह से गायनेकोलॉजी का नहीं हटेगा, जिस तरह से मेडिसिन नहीं हटेगा, उस तरह से ये ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी कैसे हटेगा?
1: सही बात है।
0: और इसकी महत्ता बढ़ते ही जाएगी, तो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल अगर कोई कहता है तो ये बेकार बातें हैं, वो उसको पढ़ने की जरूरत है और अच्छा से पढ़ने की जरूरत है। मैं आग्रह यही करता हूँ, मैं हमेशा इम्फेसिस करता हूँ सभी बच्चों को कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आपकी नौकरी आपकी रखी हुई है। कोई भी विषय हो जाए, जैसे अगर हम लोग मैट्रिक का ही उठा लेते हैं तो मैट्रिक में 120 बच्चे होते हैं, तो सबका मार्क्स एक समान तो नहीं आता है राजेश जी,
1: बिल्कुल नहीं।
0: लेकिन जो अच्छा से पढ़ता है निश्चित रूप से उसका मार्क्स अच्छा रहता है, और वो उसी में से कुछ लोग और अच्छे कर जाते हैं। तो मैं ध्यान यही केंद्रित करना चाहता हूँ बच्चों को कि आओ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो और कुछ नहीं, और तुम्हारा भविष्य यहीं से निर्णायक हो जाएगा और तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम अपने मुकाम पर पहुंच जाओगे। जो तुम्हारे गार्जियन, तुम्हारे परिवार ने तुमको सपना देखा, जो सोसाइटी ने तुम्हारे लिए सपना देखा है, उसको साकार करो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और आगे बढ़ जाओ।
1: पैरामेडिकल है पारस, ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं हूँ आपका अपना राजेश, और डॉक्टर NP प्रियदर्शी जो है ना इस कार्यक्रम में बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। ये कार्यक्रम

0: हम लेकर आते हैं श्रीराज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से। कितने लोगों ने इस कार्यक्रम को सुनकर ऑप्ट किया प्रोफेशनल कोर्स, चाहे वो पैरामेडिकल के कोर्सेज हो, नर्सिंग के कोर्सेज हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हो, और आज अपने लिए एक अच्छा करियर चुन लिया है। आज भी लोग कर रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चों, आपको हम ये बताना चाहते हैं, जिनको करियर निर्माण करना है 1-2-3 साल के अंदर, आपके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही उम्दा साबित होगा। नोट करें, अगर अभी से ही आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से बात करके उसे दूर करें। नंबर नोट करें, 9155558888, 9155558888, और दूसरा नंबर है 9162413233, 9162413233। और अब डॉक्टर प्रियदर्शी, फिजियोथेरेपी में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स, 4 साल का डिग्री कोर्स, यही है ना
1: जी?
0: इसी में आपको 4 साल तक मेहनत करनी है। श्रीराज नर्सिंग में ये है क्या फिजियोथेरेपी उच्च स्तर का?
1: 2023 से
0: पढ़ाई लिखाई के बारे
1: जी,
0: में
1: जी, जी।
0: पढ़ाई लिखाई के बारे में
1: बिल्कुल, मैं तो पहले ही, इसके पहले भी एपिसोड में मैंने बताया था कि जो आपने चर्चा किया था तो कि पढ़ाई का क्या स्तर रहता। हमने पहले ही बताया था कि हम पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तभी हम कोई कोर्स को लॉन्च करते हैं, और लोग और जगह से हम बेहतर रिजल्ट देंगे। ये हमेशा लगातार 10 साल से हमारा ये कीर्तिमान रहा
0: जी,
1: है
0: जी, जी।
1: और आगे भी कीर्तिमान रहेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ।
0: एंड जॉब अपॉर्चुनिटी फिजियोथेरेपी करके नौकरी या फिर स्व व्यवसाय,
1: उसकी इच्छा
0: हाँ।
1: उसकी इच्छा, अगर वो नौकरी में जाना चाहे तो नौकरी में जाए, उसको स्व व्यवसाय करना है तो स्व व्यवसाय करे, मल्टीनेशनल में जाना चाहे तो मल्टीनेशनल जाए, एब्रॉड जाना चाहता है तो एब्रॉड जाए, उसकी इच्छा, कहीं भी नौकरियां सभी जगह है,
0: नौकरियां सही जगह है डॉक्टर साहब ने कहा। इसीलिए ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि लोग मार्केट में क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा जिस तरीके से डॉक्टर्स की कभी मांग कम नहीं होगी, नर्सिंग की कभी मांग कम नहीं होगी, उसी तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट की मांग कभी भी कम नहीं होगी। इस बात को सोचने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में क्या है पहले ये बताइए और फिर आगे चर्चा करेंगे।
1: देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी को सीधे शब्दों में समझिए तो ये फिजियोथेरेपी का अपना भाई है, अपना भाई है, दोनों का बंटवारा हो गया।
0: क्या पढ़ाई होती है?
1: दोनों में सब कुछ सामान्य है,
0: हाँ।
1: सब कुछ समान है,
0: हाँ।
1: उसमें से बस यही डिफरेंट है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो तो करते ही हैं, जितने भी विधा है, हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, सारे देते ही हैं। उसमें ऐड क्या हो गया, ऐसा समझिए, ऐड हो गया मतलब जो जिस लायक का है उसके लायक का कुछ रोजगार के बारे में बता देना उसको।
0: अच्छा,
1: ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ कि ऑक्यूपेशन बना देना,
0: ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन व्यवसाय
1: उसके लायक बना देना। जैसे मान लिया कि कोई पढ़ा लिखा अगर हो गया है, अपंग हो गया है, तो उसको कुछ कंप्यूटर चलाने, कुछ और भी काम जो जिसमें उसकी रुचि है,
0: जॉब ओरिएंटेशन,
1: हाँ, जिसमें उसकी रुचि है उसके लायक उसको बना देना।
0: अच्छा,
1: अगर मान पैर कट गया तो वो दौड़ तो नहीं सकता है, जा नहीं सकता है, लेकिन वो क्या कर सकता है, उसको और क्या क्या ऑक्यूपेशन है जिसको वो समझाता है, बताता है और इस पर उसको आगे बढ़ा देता है, तो यही ऑक्यूपेशन थेरेपी है। और ये आजकल आज जो है, आज चूंकि हम लोग के नजरों में नहीं आता है, लेकिन एक जगह कलेक्टिवली अगर देखते हैं तो रोज इस भागदौड़ की जिंदगी में कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितने अपंग हो जाते हैं, कितने क्या हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से उसको जिस लायक है उस लायक को बनाने का काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का है।
0: यही काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का है, बिल्कुल। ये फिजियोथेरेपी, हाँ, जो है ना, उसका सगा भाई है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, और उससे कुछ कदम आगे है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वक्त नहीं है, आज हमने फिजियोथेरेपी के बारे में जो भ्रांतियां फैली थी कि जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, नीचे की ओर जा रहा है, पढ़ाई करना मुश्किल है, ये सारी चीजें आपने दूर की कि ये सारी चीजें गलत है, इस पर कहीं से विचार करने की जरूरत नहीं है, जमकर पढ़ाई कीजिए, आगे सोचिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में आगे हम बातचीत करेंगे अगले आने वाले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, लगातार हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर बहुत ही उम्दा है, आप इसमें अपना करियर आजमा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे तो नंबर नोट कर लें, एक बार फिर से बता रहे हैं 9155558888, 9155558888 ये पहला नंबर। दूसरा नंबर है 9162413233, 9162413233 ये नंबर है, इस पर बात कर लीजिए। और इसे कहीं से विज्ञापन नहीं समझिए, ये सहूलियत है आप युवाओं के लिए। फिलहाल चलने का वक्त हो गया, राजेश आज निकलता है, अगले बुधवार को फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
3: जी
4: जी,
3: अभी हम लोगों ने सुना प्रायोजित कार्यक्रम,
4: और अब हम अपने किसान भाई बहनों के लिए, जैसे कि आप रामू भाई देखते हैं कि हम बहुत अच्छे बीजों का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छी तकनीक का प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं होती और उस कारण हमें मनचाहा परिणाम देखने को नहीं मिलता है।
3: निश्चित रूप से। और देखिए, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी उपायों में से कमली बहन,
4: हाँ,
3: गोबर की खाद जिसको हम लोग कंपोस्ट खाद कहते हैं, या फिर हरी खाद जैसे मूंग या ढेंचा का जो उपयोग करना होता है, या फिर फसल चक्र को अपनाना, मतलब एक ही फसल को बार बार नहीं उगाना, है ना, और रसायन की जगह जो जैविक उर्वरक है उसका प्रयोग अगर हम लोग करते हैं तो निश्चित रूप से मिट्टी की उर्वरता जो है वो बढ़ेगी।
4: जी,
3: और जब मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी तो फसल भी अच्छा होगा, है ना।
4: तो बहुत अच्छी बातें आपने बताई। तो हम लोग मिट्टी की उर्वरता कैसे बढ़े और इसके क्या उपाय हैं, इसके संबंधित एक पूर्व प्रसारित वार्ता के जरिए थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। तो आइए सुनते हैं।
5: किसान भाई बहनों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मृदा उर्वरता, जिसे कि मृदा उर्वरता भी कहते हैं, उसे कैसे बढ़ाया जाए। सर्वप्रथम यह जानना जरूरी है कि आखिर यह मृदा उर्वरता है क्या। वास्तव में पौधों के उचित वृद्धि, विकास एवं प्रजनन के लिए मिट्टी द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों को प्रदान करने की मिट्टी की जो क्षमता होती है उसे ही मृदा उर्वरता या मृदा उर्वरता कहते हैं। संभवतः आपको मालूम ही होगा कि पौधों के लिए आवश्यक 18 पोषक तत्वों में से 15 पोषक तत्वों की आपूर्ति मिट्टी से ही होती है। पहले हमारी मिट्टी उपजाऊ थी, लेकिन दिनानुदिन इसकी उर्वरता घटती जा रही है। 1950 में नाइट्रोजन की कमी हमारी मिट्टी में देखी गई, लेकिन आज हमारे मिट्टी में नाइट्रोजन के साथ साथ फॉस्फोरस, पोटास, गंधक, जस्ता और बोरोन की भी कमी देखी जा रही है, और ये सारे तत्व उर्वरक के माध्यम से ही डालने पड़ रहे हैं। यदि इसी तरह से उर्वरता घटती रही तो जल्द ही वह दिन आ जाएगा जबकि हमें दसियों तरह के उर्वरक डालने पड़ेंगे अच्छी खेती करने के लिए। क्या कोई किसान 10 तरह के उर्वरक डालकर खेती कर पाएगा? और यदि खेती कर भी ले तो उत्पादन की लागत कितनी होगी? यह भी देखने वाली बात है कि दुनिया का चाहे कोई कितना बड़ा ही उद्योगपति क्यों ना हो, वह खाएगा अन्न ही, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे कोई भी हो। इसीलिए हे अन्नदाता किसान भाइयों, अब आप शीघ्र ही मृदा की उर्वरता बढ़ाने की पहल करें, वरना जमीन बंजर हो जाएगी। किसान भाइयों, मृदा उर्वरता ठीक करने के उपाय जानने के पहले आपको यह जानना जरूरी है कि वे कौन कौन से कारक हैं जो उर्वरता को प्रभावित करते हैं, ताकि वो कारक जो हमारी आपकी अज्ञानता के कारण हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को कम कर रहे हैं उसको ठीक किया जा सके, यानी कि उर्वरता को घटने से बचाया जा सके और उर्वरता को और ठीक ठाक किया जा सके। अब उसमें से जो पहला कारक है वह है मूल पदार्थ। मूल पदार्थ यानी कि चट्टान का वह हिस्सा जिससे कि मिट्टी बनती है, उसको आप मूल पदार्थ कहते हैं। दूसरा कारक है स्थलाकृत, यानी कि मिट्टी की आकृति कैसी है। यह देखा गया है कि ढालू जमीन की तुलना में मैदानी क्षेत्र की मिट्टी अधिक उपजाऊ हुआ करती है, यानी कि हमको जो यदि कोई ढालू जमीन है तो उसको हम चौरस यदि कर सकते हैं तो उसके करने की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा कारक है मिट्टी की उम्र। जिस मिट्टी की उम्र जितनी अधिक होगी उसमें पोषक तत्व उतनी ही कम होगी, क्योंकि जो पुरानी मिट्टी है जिसकी उम्र ज्यादा है उसमें जो पोषक तत्व हैं वो रिस करके निचले स्तर पर चले जाते हैं और फसल पोषक तत्व तो ऊपरी सतह से ही लिया करता है ना, तो ऊपर की मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। चौथा कारक है जलवायु। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में घुलनशील पोषक तत्व नीचे चले जाते हैं और ऊपर की मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। पांचवा कारक है मिट्टी की गहराई। गहरी मिट्टी उथली मिट्टी की तुलना में अधिक उपजाऊ हुआ करती है। छठा कारक मैं आपको बताऊं, वह है मृदा अपरदान। मृदा अपरदान का क्या

0: मतलब समझते हैं। एक जगह की मिट्टी जब पानी के द्वारा या हवा के द्वारा या किसी अन्य कारण के कारक के द्वारा एक जगह से हट करके दूसरे जगह चली जाती है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रक्रिया को आप मृदा अपरदान कहते हैं। वास्तव में जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो ऊपर वाली मिट्टी में ज्यादा होती है, और वही मिट्टी हट करके दूसरे जगह चली गई तो जो शेष बची हुई मिट्टी है वह आपकी अनुर्वर हो जाती है, उसकी उर्वरक क्षमता जो है वो कम हो जाती है। इसीलिए आपको मृदा अपरदान पर भी बिल्कुल कंट्रोल करना पड़ेगा। सातवां कारक है जल निकास की व्यवस्था। यह देखा गया है कि अच्छी जल निकास वाली जमीन ज्यादा उर्वरक वाली होती है, इसीलिए जल निकास की अच्छी व्यवस्था भी करनी चाहिए। यदि उसकी व्यवस्था नहीं है तो ऐसी स्थिति में मिट्टी की उपजाऊ शक्ति घटेगी। आठवां कारक है मृदा में पीएच। यह देखा गया है कि कुछ तत्व अम्लीय मिट्टी में ज्यादा आपको मिलते हैं और कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो क्षारीय मिट्टी में ज्यादा होते हैं, लेकिन जो उदासीन पीएच वाली मिट्टी है उसमें सारे पोषक तत्व बड़े ही संतुलित ढंग से हुआ करते हैं। इसलिए हमारा यह भी उद्देश्य होना चाहिए कि हमारी मिट्टी का पीएच मान बिल्कुल ठीक ठाक हो। नौवां कारक है मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा, जो कि लगभग 0.75% के ऊपर होना चाहिए। यदि 0.75% के नीचे है तो ऐसी स्थिति में उसकी उर्वरक क्षमता कम से कम होगी, तो ऐसी स्थिति में आपको जैविक कार्बन की मात्रा को भी बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि जैविक कार्बन को आप देखें तो मिट्टी के सारे भौतिक रासायनिक और जैविक गुणों को इसको जो है क्या कहते हैं बिल्कुल संतुलित करने का काम यह आपको जैविक कार्बन करते हैं। बारहवां कारक है मिट्टी में लाभदायक जीव और जीवाणुओं की संख्या, जो कि पर्याप्त संख्या में होनी चाहिए। ग्यारहवां कारक है जुताई की विधि। कभी भी एक ही गहराई पर जुताई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हलतल से होगा क्या कि मिट्टी की जो कड़ी परत है वह बन जाएगी, और मिट्टी की कड़ी परत हो गया तो जो पोषक तत्व है वह ऊपर से रिस करके नीचे तक नहीं जा पाएगा, और जो घुलनशील लवण है वह ऊपर में ज्यादा हो गए तो ऐसी स्थिति में आपकी मिट्टी जो है वह ऊसर बन जाएगी। इसीलिए आपको इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। बारहवां कारक है फसल प्रणाली। कभी भी धान्य फसल के बाद दलहनी फसल लेना चाहिए। जो आपको अधिक पोषक मांग वाली फसल है उसके बाद कम पोषक मांग वाली फसल लेनी चाहिए। कभी भी जो उथली जड़ वाली फसल है उसके बाद आपको गहरी जड़ वाली फसल लेना चाहिए। ऐसा यदि आप नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी उपजाऊ क्षमता कम होगी। उसके बाद जो कारक है बारहवां कारक वह है आपको तेरहवां कारक, जो कि अनुचित उर्वरक का प्रयोग। देखिए हर तरह की मिट्टी और अलग अलग तरह की फसल के लिए अलग अलग तरह के उर्वरक की अनुशंसा की जाती है, तो जो वैज्ञानिकों के द्वारा अनुशंसित आपके जो उर्वरक है उसका ही आपको प्रयोग करना चाहिए। अब किसान भाइयों, ये तो आपने जान लिया कि कौन कौन से कारक हैं जो कि इस उर्वरता को प्रभावित करते हैं, दुष्प्रभावित करते हैं या ठीक ठाक रखते हैं। अब इस बात पर आइए कि इसकी उर्वरता को ठीक ठाक यदि रखना है तो ऐसी स्थिति में इसकी उपजाऊ क्षमता को, उसकी उर्वरता को कैसे हम बढ़ाएं, यह मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि आपको अपने खेत में मिट्टी पलटने वाले हल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। लेकिन देखें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। लोग कहते हैं जुताई हमने किया। जुताई वास्तव में तब कहते हैं जबकि जो मिट्टी को चीर करके पलट दे। जो पलटता नहीं है उसको जुताई की श्रेणी में नहीं आप रख सकते हैं। तो कहने का मतलब कि खेत की आपके सही जुताई होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको जो कड़ी परत है वो कड़ी परत नहीं बनेगा। दूसरी बात कि जो नीचे की भी पोषक तत्व यदि थोड़ा बह करके गया है वह भी ऊपर आ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आपको मिट्टी पलटने वाले हल से इसका जो है जुताई करनी चाहिए। दूसरी बात कि गर्मी की जुताई आप अवश्य करें। गर्मी की जुताई करने से क्या होता है कि बहुत सारे जो आपके खरपतवार हैं, बहुत सारे जो आपके कीट पतंगे सब हैं, वह भी नष्ट होते हैं। और यदि संभव हो तो आप मृदा सूर्यीकरण भी कर दें। मृदा सूर्यीकरण का क्या मतलब कि जब आप गर्मी के दिनों में जुताई करते हैं उसके बाद उसको काली पन्नी से ढक दें और ढक करके उसको छोड़ देंगे, तो होगा क्या कि काले पन्नी के नीचे की जो मिट्टी है उसका तापक्रम 2-3-4 डिग्री ज्यादा बढ़ जाएगा, और यदि आपका तापक्रम उतना टेम्परेचर इसका बढ़ गया तो उसमें जो आपके खरपतवार के बीज हैं, जो आपके उसमें अन्य जो कीड़े मकोड़े वाले हैं, वह मरेंगे और मरने से आपकी उर्वरता ठीक ठाक होगी। यानी गर्मी की जुताई और सूर्यीकरण पर आपको बल देना है। अपने खेत का समतलीकरण अवश्य करवा दें। साथ ही साथ खेत में जल निकास की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए आपको। मृदा अपरदान को कम करने के लिए जमीन को पहले समतल कर लें, फिर मेड़ बना लें, और हवा के प्रवाह को रोकने के लिए उसके मेड़ पर जो हवा के प्रवाह को रोकने वाले पेड़ होते हैं जिसको विंड ब्रेक कहा जाता है, वैसे पेड़ यदि लगाते हैं तो निश्चित रूपेण आपका जो अपरदान होने की बात है वो अपरदान कम होगी। साथ ही साथ समय समय पर मिट्टी की जांच करावें, और यदि उसमें अम्लता या क्षारीयता उत्पन्न हो रही हो तो आपको उस अम्लता और क्षारता को कम करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए बीच बीच में आपको मृदा सुधारक का
1: जी। बहुत ही अच्छी और काम की बातें हमने इस वार्ता के जरिए पाई रामू भाई, और निश्चित तौर पर हमारे किसान भाई बहनों को इस वार्ता से लाभ मिला होगा
2: जी।
1: और फिर से ऐसे ही काम की उपयोगी वार्ताओं के साथ या बातों के साथ हम फिर मिलेंगे, क्योंकि अब कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में फिर हम मिलेंगे ढेर सारी बातों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए विदा दें सबों को कमली का नमस्कार,
2: और सबको रामू का भी नमस्कार।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राज्य में राज्यसभा की दो सीटों के लिए कल होने वाले चुनाव की सभी तैयारियां पूरी। सुबह 9 बजे से विधानसभा में शुरू होगा मतदान, शाम में घोषित होंगे नतीजे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह के धनवार में किया बहुप्रतीक्षित केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन। कहा, ग्रामीण बच्चों को अब घर के पास मिलेगी विश्व स्तरीय शिक्षा। राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय रेटिंग में हजारीबाग के बिहारी गर्ल्स स्कूल ने देश में 21वां स्थान और राज्य में हासिल किया दूसरा स्थान, मिलेगा 1,00,000 का पुरस्कार। राज्य में मॉनसून के बावजूद जून में 57% कम बारिश, गढ़वा और चतरा बने सूखे जैसे हालात में। मौसम विभाग ने कल से भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और रांची के खेलगांव में द्वितीय साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप का शानदार आगाज, 5 देशों के खिलाड़ी दिखा रहे हैं दम। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में राज्यसभा की दो सीटों के लिए कल विधानसभा में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। इसके तुरंत बाद शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। क्रॉस वोटिंग और तकनीकी गलतियों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री आवास में सत्तारूढ़ महागठबंधन के विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। वहीं एनडीए विधायक दल भी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी करेंगे। युवाओं को औपचारिक रोजगार से जोड़ने वाली इस योजना से अब तक 1,500,000 लोग लाभान्वित हो चुके हैं। इसके तहत पहली बार नौकरी पाने वालों को 15,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। गिरिडीह के धनवार को आज नई शैक्षणिक पहचान मिली है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बहुप्रतीक्षित केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस संस्थान के खुलने से स्थानीय और ग्रामीण बच्चों को अब घर के पास ही गुणवत्तापूर्ण और विश्वस्तरीय शिक्षा मिल सकेगी।
1: केंद्रीय विद्यालय पूरे देश में 1334 है, उसमें से एक आज राजधनवार में भी शुभारंभ हुआ है। फिर थोड़े दिन में बरकट्ठा में भी एक स्वीकृति मिली है, बरकट्ठा में भी केंद्रीय विद्यालय का शुभारंभ होगा।
0: रांची आरएसएस कार्यालय हमले पर राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए एनआईए जांच की मांग की है। उन्होंने इसे राष्ट्रविरोधी ताकतों की साजिश करार दिया है।
2: आरएसएस कार्यालय हमला किया गया, वह राष्ट्र भक्तों के आत्मा पर प्रहार करने वाला घटना है और यहाँ की शासन व्यवस्था को चुनौती देने वाला। यहाँ की राज्य की शासन व्यवस्था हेमंत सोरेन की सरकार निकम्मी सरकार है और निकम्मी सरकार से अपेक्षा करना मूर्खता है, इसलिए इसकी जांच एनआईए से होनी चाहिए।
0: राष्ट्रीय स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग में हजारीबाग के बिहारी गर्ल्स स्कूल को देश में 21वां और झारखंड में दूसरा स्थान मिला है। शिक्षा मंत्रालय की इस पहल में स्कूल ने 93.30 स्कोर हासिल किया। विजेता के रूप में विद्यालय को राष्ट्रीय मान्यता के साथ 1,00,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। प्रभारी प्रधान अध्यापिका रूपा वर्मा ने कहा, यह ऐतिहासिक उपलब्धि हमारे छात्र छात्राओं और शिक्षकों की सामूहिक मेहनत का परिणाम है।
3: पूरे भारत में कुल 200 विद्यालयों का इस कार्यक्रम के तहत चयन किया गया है, जिसमें हमारे विद्यालय का स्थान 21वां है और इस उपलब्धि के लिए हम लोग साल भर से प्रयास करते आ रहे थे। विद्यालय को जो है वो भारत सरकार के द्वारा मानक सर्टिफिकेट प्राप्त होगा और इसके साथ ही 1,00,000 की सहयोग राशि प्रदान की जाएगी।
0: राज्य का पलास ब्रांड आम अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में धूम मचा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बिरसा हरित ग्राम योजना से राज्य के 2,00,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को स्थायी रोजगार मिला है। सरकार के अनुसार इस सीजन में करीब 52,000 एकड़ बागानों से 50,000 मीट्रिक टन आम का उत्पादन का अनुमान है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @airnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @airnews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
4: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
5: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हां, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा हित में जारी।
6: कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं, महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
7: भाइयों एवं बहनों, जोहार। झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद, जोहार।
6: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
8: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी रेलवे क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए 405 करोड़ रुपए की सिग्नलिंग परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 32 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाया जाएगा। इससे तकनीकी खामियां दूर होंगी और ट्रेनों का परिचालन अधिक सुरक्षित होगा। झारखंड के स्टेट ट्रेनिंग नोडल पदाधिकारी देवदास दत्ता राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुए हैं। नई दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग के विशेष समारोह में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उन्हें उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र सौंपा। इसके साथ ही श्री दत्ता देश के 7 शीर्ष निर्वाचन कोर एक्सपर्ट्स में शामिल हो गए हैं। रांची में 27 जून को राज्य स्तरीय डिजिटल क्रिएटर्स मीट 2026 का आयोजन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल माध्यमों से मतदाता जागरूकता बढ़ाना है। इस मीट में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और वीडियो क्रिएटर्स हिस्सा लेंगे। इच्छुक प्रतिभागी 25 जून तक पंजीकरण करा सकते हैं। राज्य की पारंपरिक नचनी नृत्यांगना बूटनी देवी को प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के बुंडू स्थित उनके घर जाकर उन्हें लोक कला के संरक्षण और संवर्धन के लिए कृतज्ञता पूर्वक सम्मानित किया। उनके साथ उनकी बहन सोमवारी देवी को भी यह संयुक्त पुरस्कार मिलेगा। श्री सेठ ने कहा कि यह झारखंड की समृद्ध लोक संस्कृति का राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सम्मान है।
9: संगीत नाटक अकादमी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कला क्षेत्र में काम करने वालों के लिए इच्छा होती है कि भाई हम कला क्षेत्र में इतना काम कर रहे हैं, पूरा जीवन दे दिया, तो भारत सरकार का ये पुरस्कार अद्भुत है।
0: और अब मौसम का हाल। राज्य में मॉनसून के आगमन के बावजूद जून महीने में सामान्य से 57% कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार गढ़वा और चतरा में सूखे जैसे हालात हैं, जबकि डाल्टनगंज में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। हालांकि मौसम विभाग ने कल से राज्य के पूर्वी और मध्यवर्ती जिलों में गरज के साथ बारिश, आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। इस दौरान हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिसके कारण ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रांची के खेलगांव में द्वितीय साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप का भव्य आगाज हुआ। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने इसका उद्घाटन किया। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके पर श्री किशोर ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय आयोजन झारखंड के खेल इतिहास में एक मील का पत्थर है।
10: बेहतर खेल का प्रदर्शन आपके माध्यम से होगा और जो खेल का उद्देश्य होता है सद्भावना, सौहार्द, मित्रता, आपसी भाईचारा, आपके इस खेल से निकले हुए परिणाम से हम और हमारा देश भारत राष्ट्रीय एकता, अखंडता, विश्वास एक दूसरे पर, ये माहौल हम हासिल कर सकें।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में राज्यसभा की दो सीटों के लिए कल होने वाले चुनाव की सभी तैयारियां पूरी। सुबह 9 बजे से विधानसभा में शुरू होगा मतदान, शाम में घोषित होंगे नतीजे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह के धनवार में किया बहुप्रतीक्षित केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन। कहा, ग्रामीण बच्चों को अब घर के पास मिलेगी विश्व स्तरीय शिक्षा। राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय रेटिंग में हजारीबाग के बिहारी गर्ल्स स्कूल ने देश में 21वां स्थान और राज्य में हासिल किया दूसरा स्थान। मिलेगा 1,00,000 का पुरस्कार। राज्य में मानसून के बावजूद जून में 57% कम बारिश। गढ़वा और चतरा में बने सूखे जैसे हालात। मौसम विभाग ने कल से भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और रांची के खेलगांव में द्वितीय साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप का शानदार आगाज। 5 देशों के खिलाड़ी दिखा रहे हैं दम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड के 110.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है श्रमिक जगत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अतुल कुमार प्रदर्शन।

0: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम श्रमिक जगत में। कार्यक्रम के आज के अंक के साथ हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त पीयूष आनंद।
1: गहरी खामोशी सागर की सीख धैर्य की देती है, मेहनत से बंजर भूमि पर भी तो होती खेती है। कितना गहरा हो अंधकार प्रकाश उसे हर लेता है, परिस्थितियां श्रम से व्यक्ति अपने वश में कर लेता है। यह श्रोताओं, श्रम मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए सबसे उत्तम संसाधन है।
0: श्रोताओं आप तो जानते ही हैं कि श्रमिक जगत कार्यक्रम में हम बातें करते हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही श्रमिकों के लिए अनेक योजनाओं के बारे में। अपना उद्यम शुरू कर जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, और वैसे अनुभवी लोग जो श्रम कर मेहनत कर इन योजनाओं का लाभ लेकर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे श्रमिक भाइयों से हम आपको बातचीत भी सुनवाते हैं।
1: श्रोताओं, किसी भी देश के विकास में निर्माण क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हमारे आसपास हो रहा है, जो भवनों का निर्माण हमारे आसपास हो रहा है, जिससे हमें विकास के नए आयाम देखने को मिल रहे हैं, चाहे पुल पुलिया हो, सड़क हो, बड़ी बड़ी इमारतें हों, इन सभी में यानी निर्माण क्षेत्र में श्रमिकों का महत्व सर्वोपरि है। वे किसी भी निर्माण परियोजना की रीढ़ होते हैं, जो आर्किटेक्चरल डिजाइन और योजनाओं को भौतिक वास्तविकता में बदलते हैं। उनके बिना किसी भी बुनियादी ढांचे जैसे घर, पुल या सड़कों, इनके निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती। निर्माण क्षेत्र में श्रमिकों के योगदान और महत्व को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। इंजीनियरों और आर्किटेक्ट द्वारा बनाए गए नक्शे यानी ब्लूप्रिंट को जमीन पर उतारने का वास्तविक कार्य श्रमिक ही करते हैं। वे ईंटें जोड़ने से लेकर विशाल इमारतों को खड़ा करने तक की शारीरिक और तकनीकी भूमिका निभाते हैं। किसी भी राष्ट्र के बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास निर्माण श्रमिकों की मेहनत पर ही टिका होता है। वे देश की प्रगति, शहरों के आधुनिकीकरण और अर्थव्यवस्था को गति देने में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देते हैं। सुरक्षा और गुणवत्ता की बात करें तो कुशल निर्माण श्रमिक न केवल निर्माण कार्य करते हैं, बल्कि वे सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करके निर्माण स्थलों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने में भी मदद करते हैं। उनका अनुभव संरचना की दीर्घकालिक मजबूती और स्थायित्व को सुनिश्चित करता है। श्रमिकों का समर्पण और कड़ी मेहनत यह सुनिश्चित करता है कि निर्माण कार्य समय पर पूरे हों। वे निर्माण सामग्री का उचित प्रबंधन करते हैं और अप्रत्याशित चुनौतियों का समाधान करके कार्य को आगे बढ़ाते हैं। निर्माण क्षेत्र में और श्रमिकों के कल्याण के लिए ही भारत सरकार द्वारा निर्माण श्रमिक योजना जैसी कई पहल की गई है, जो उन्हें सुरक्षा और सामाजिक लाभ प्रदान करती है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम निर्माण श्रमिकों से जुड़ी हुई सरकारी योजनाओं, कौशल विकास कार्यक्रमों, श्रमिकों की सुरक्षा और अधिकारों के बारे में ही विस्तार से बातें करेंगे। यदि निर्माण श्रमिकों के लिए सरकार की योजनाओं की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर BOCW के लिए कई कल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को पेंशन, चिकित्सा सहायता, बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और दुर्घटना बीमा प्रदान करना है। निर्माण श्रमिकों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित कुछ प्रमुख योजनाओं की बात करें तो भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड योजना, यह निर्माण श्रमिकों के लिए सबसे प्रमुख योजना है। जिन श्रमिकों की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है और जिन्होंने पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में काम किया है, वे अपने राज्य के श्रम विभाग में पंजीकरण यानी BOCW कार्ड बनवाकर इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। पेंशन लाभ की बात करें तो 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3,000 प्रति माह तक की पेंशन का प्रावधान है। शिक्षा सहायता की बात करें तो श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा यानी कक्षा 1 से लेकर उच्च शिक्षा, इंजीनियरिंग, मेडिकल के लिए प्रतिवर्ष ₹500 से लेकर 10,000 तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। विवाह सहायता की बात करें तो श्रमिक की स्वयं की या उनकी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चिकित्सा और मातृत्व सहायता की बात करें तो गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आर्थिक मदद और महिला श्रमिकों को प्रसूति के दौरान वित्तीय लाभ मिलते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जी हाँ श्रोताओं, यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसकी पात्रता 18 से 40 वर्ष की आयु वाले श्रमिक जिनकी मासिक आय ₹15,000 से कम हो। इसका लाभ 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद प्रतिमाह ₹3,000 की सुनिश्चित पेंशन मिलती है। सामाजिक सुरक्षा योजना की बात करें तो निर्माण श्रमिकों को केंद्र सरकार की सामान्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जोड़ा जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके तहत केवल ₹436 प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर 2,00,000 का जीवन बीमा कवर मिलता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी PMSBI, इसमें मात्र ₹20 प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 2,00,000 और आंशिक विकलांगता पर 1,00,000 का कवर मिलता है। आयुष्मान भारत, इसके जरिए गरीब और पात्र निर्माण श्रमिकों के परिवारों को प्रतिवर्ष 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज मिलता है। आवास और रोजगार से जुड़ी योजनाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY, पक्के मकान बनाने या मरम्मत के लिए केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। विकसित भारत ग्राम रोजगार योजना वीवी राम जी, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्माण श्रमिकों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों तक के गारंटीकृत रोजगार की सुविधा दी जाती है। ई श्रम पोर्टल, इसके जरिए असंगठित मजदूरों जिसमें निर्माण श्रमिक भी शामिल हैं का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए वह पोर्टल है जिससे सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ प्राप्त होता है। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए श्रमिकों को अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर या राज्य श्रम विभाग के कार्यालय या आधिकारिक वेबसाइट जैसे ई श्रम पोर्टल या माई स्कीम पर जाकर अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। निर्माण श्रमिक जीवन और भविष्य सुरक्षा योजना की बात करें तो यह व्यापक योजना निर्माण श्रमिक उपकरण औजार किट सहायता योजना, निर्माण श्रमिक शिक्षा और कौशल विकास योजना और निर्माण श्रमिक सुलभ योजना जैसी अन्य पहलों का पूरक है। श्रोताओं, निर्माण श्रमिक की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो भवन निर्माण या निर्माण से संबंधित कार्य में संलग्न होना चाहिए और सभी योजनाओं के लिए आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बच्चों के लिए शिक्षा सहायता, स्वास्थ्य सहायता, पेंशन, मातृत्व लाभ, दुर्घटना कवरेज और आवास सहायता जैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज की बात करें जिसके जरिए इन योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है तो निर्माण श्रमिक का आधार कार्ड, उनके बच्चों को योजना के लिए छात्र का पासपोर्ट आकार का फोटो, OBN OCWWB यानी निर्माण श्रमिक ID कार्ड, श्रमिक के बैंक पासबुक का पहला पन्ना, निवास प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो विकलांगता प्रमाण पत्र, इनकी जरूरत पड़ती है। श्रोताओं, निर्माण श्रमिक हो या अन्य श्रमिक, सही जानकारी जीवन को बदल सकती है, उनके जीवन में बदलाव ला सकती है। बहुत से श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभ उठा रहे हैं और अपने जीवन में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हम हर बार आपको कुछ ऐसे श्रमिकों से बातचीत भी सुनवाते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आइए निर्माण क्षेत्र में कार्य कर रहे एक श्रमिक से की गई बातचीत सुनते हैं। इससे उन लोगों को इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा मिलेगी जो निर्माण क्षेत्र में काम कर आगे बढ़ना चाहते हैं। जी, अपना नाम बताएं।
2: ललन कुमार यादव।
1: ललन जी, आप क्या करते हैं?
2: राजमिस्त्री काम करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं।
1: ललन जी, ये काम आप कितने सालों से कर रहे हैं?
2: 10 साल से।
1: और यदि प्रतिमाह बात की जाए तो आपको इससे कितनी कमाई होती है?
2: वही 17-18 हज़ार के लपेट हो जाता है।
1: ललन जी, आप अभी राजमिस्त्री का काम करते हैं तो क्या आप शुरुआत में मजदूरी करते थे या फिर यही काम आपने शुरू किया? आपने कहाँ से ये काम सीखा राजमिस्त्री का काम करने का?
2: पहले मजदूरी करते थे
1: जी।
2: मजदूरी करते करते अनुभव किया, बस सीख गए।
1: अच्छा ललन जी, ये बताइए कि आपने कहाँ तक की शिक्षा दीक्षा हासिल की और आप इस फील्ड में क्यों आए?
2: मैट्रिक करके मजदूरी को जो है, मजदूरी घर से जो है स्थिति बहुत गंभीर होने के कारण जो है
1: जी,
2: हम ये चीज में आ गए हैं।
1: अच्छा ललन जी, यदि बात की जाए, आप एक कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यदि मकानों की बात की जाती है तो पिछले कुछ सालों में लगातार पक्के मकानों का प्रचलन लगातार बढ़ रहा है। फूस के मकान, टीन के मकान की संख्या थोड़ी कम होती जा रही है। सरकार के द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण क्षेत्र में चल रही आवास योजनाओं से भी लगातार पक्के मकानों की संख्या बढ़ रही है, तो क्या इसे लेकर आप लोगों का काम बढ़ा है पहले के मुकाबले? कामकाज रोजगार बढ़ा है?
2: हाँ, बढ़ा है कुछ।
1: ललन जी, यदि बात की जाए मकानों की, तो मकान बनाते समय कहा जाता है कि भूकंप रोधी मकान बनाना चाहिए आज के समय में और मजबूती का ख्याल खास रखना चाहिए, तो इसमें किस तरह का काम आप लोग करते हैं ताकि मकान जो है वो मजबूत बने?
2: मकान को जो है पूरा नक्शा में निकाल के और उसको बीम पिलर जो है उसको डिप किया जाता है और पिलर का बेस बना के ऊपर जो है मिट्टी के बराबर आ जाता है, तो उसके जो है लेंथ जो है DPC ढाल के
1: जी,
2: जो भी 10 इंची 1 फीट जो है ढाल के उसको जो है बांध देते हैं, बांध के उसके बाद ऊपर कुर्सी कस के तब ऊपर जो है अपना उठाना स्टार्ट कर देते हैं बिल्डिंग
1: जी। ललन जी, आप श्रमिक के तौर पर एक श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मिस्त्री का काम कर रहे हैं, ये वो क्षेत्र है कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र जिसमें बहुत सारी जोखिम उठाने पड़ते हैं लोगों को। बड़े बड़े बिल्डिंग्स पर आप काम करते होंगे, वहां से गिरने का खतरा रहता है, बहुत से सामान इस तरह से छड़ वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, लोहे के पिलर वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इससे चोट वगैरह भी लगने का डर रहता है, तो किस तरह की सावधानियां आप जैसे लोगों को बरतनी होती है इस क्षेत्र में काम करते हुए?
2: देहात में तो सब नहीं है, शहर में जो है वो सब व्यवस्था किया जाता है, सेफ्टी बेल्ट और टोपी जो है
1: जी। यानी कि शहरी क्षेत्रों में जब आप काम करते हैं तो सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि बड़े बड़े बिल्डिंग्स थोड़े कम बनते हैं तो वहाँ पे सावधानियां कम बरतनी पड़ती है। यदि बात की जाए, आपने कहा कि आपने कम ही शिक्षा हासिल की, लेकिन लगातार शिक्षा का प्रसार बढ़ रहा है, शिक्षा का महत्व बढ़ रहा है, तो आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं? ललन जी, आपका अभी जो मुख्य पेशा है वो यही काम है या फिर कोई और भी आप काम करते हैं?
2: नहीं, मेरा यही है।
1: अच्छा, ये इसी से आपका पूरा जीवन यापन चलता। आगे कुछ इसमें बदलाव करना चाहते हैं, कोई और काम भी आप करना चाहते हैं?
2: बदलाव ऐसा सोर्स मिलेगा तभी ना।
1: बहुत सारी सरकारी योजनाएं चल रही हैं जिससे कि लोगों को स्वरोजगार के क्षेत्र में लोन दिया जाता है, कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाती है, तो क्या इस तरह का किसी योजना का आपने लाभ लिया?
2: नहीं
1: लिया है। आगे यदि आपको इस तरह की योजनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी जिससे आप स्वरोजगार कर सकते हैं, अपने करियर को और आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी कमाई का जरिया बढ़ा सकते हैं, तो क्या आप ये जरूर लेना चाहेंगे?
2: जरूर।
1: ललन जी, बहुत से युवा ऐसे हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं या बहुत अच्छी शिक्षा हासिल करके या कम शिक्षा हासिल करके, ऐसे लोग यदि इस क्षेत्र में आना चाहे यानी कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में आना चाहे तो उनको आप क्या कहेंगे?
2: उसको समझा बुझा के जो है उस क्षेत्र में लाना पड़ता है।
1: तो इसके लिए उनको कोई विशेष ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कुछ जानकारी उनको होनी चाहिए?
2: धीरे धीरे वही जानकारी हो जाएगा, काम धंधा जब करेगा तो अपने धीरे धीरे जानकारी हो जाएगा।
1: ललन जी, आप इसी तरह श्रम कर, मेहनत कर, अपने करियर में नए मुकाम पाए, अपने जीवन में आगे बढ़े, और काफी लंबे समय से आप ये काम कर रहे हैं, आप इसी काम को आगे जारी रखना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप न सिर्फ इस क्षेत्र में बेहतर काम करते रहेंगे बल्कि वो सभी लोग जो लंबे समय से आपके काम करने से प्रेरणा ले सकते हैं वो लेंगे और इस क्षेत्र में आएंगे। आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, इसी तरह हम श्रमिक जगत कार्यक्रम में श्रमिक भाइयों के लिए चल रही योजनाओं के बारे में, अनुभवी श्रमिकों से बातचीत और श्रमिकों के कल्याण के लिए, उनके अधिकारों, उनकी तरक्की के लिए चल रहे कार्यक्रमों पर चर्चा करते रहेंगे। तो इस वादे के साथ कि अगले श्रमिक जगत कार्यक्रम में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे यानी पीयूष आनंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
3: श्रम की जय, श्रम जीवी।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्रमिक जगत कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: बिहार के आम, हर डाल से आए मिठास भरा पैगाम, सुनहरा रंग मधुर महक मन को भाए अपार, जरदालू मालदा का मेला सजा हमारा बिहार, दुधिया गुलाब खास कृष्ण भोग है स्वाद, एक से बढ़कर एक किस्म रहेगी चिरियाद।
1: पामेती पटना में 3 दिवसीय भव्य आयोजन, 19, 20, 21 जून, सादर है आमंत्रण।
0: अब खेती हुई स्मार्ट, देखें तकनीक का कमाल, QR और AI से सुलझे हर सवाल, ड्रोन ऐप और विज्ञान आम का है नया अंदाज, परंपरा में है जड़े गहरी पर डिजिटल का आगाज,
1: बच्चों हेतु चित्रकला और क्विज की भरमार, आम खाइए इनाम पाइए है यह त्योहार।
0: परिवार सहित पधारिए, मित्रों को भी लाइए, प्रवेश है पूर्णतः निशुल्क, उत्सव का आनंद उठाइए, हर आम की है विशेष पहचान, आम महोत्सव बढ़ाए बिहार की शान, विशेष जानकारी हेतु जाएं horticulture.bihar.gov.in पर। उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: और इस गीत के बाद
3: छाया गीत में

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा को मंजूरी दी। पटना, राजगीर, मां मुंडेश्वरी और वाल्मीकि नगर भ्रमण के लिए उपलब्ध होगी हवाई सेवा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, केंद्र सरकार के सहयोग से मनरेगा की सभी लंबित राशि का भुगतान 30 जून से पहले सुनिश्चित कर दिया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना जिले के नौबतपुर में खेत बचाओ अभियान का किया शुभारंभ। और मद्य निषेध, कारा और परिवहन विभाग में सिपाही तथा कक्षपाल की नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इस योजना के तहत मां मुंडेश्वरी, राजगीर, वाल्मीकि नगर और पटना के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर सैलानियों को घूमने के लिए हवाई सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने हाल ही में लोगों के लिए प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर आगामी 15 जुलाई से हवाई सेवा के माध्यम से भ्रमण कराने की घोषणा की थी। मंत्रिमंडल ने एक अन्य फैसले में बिहार नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय अशुलिपिक संवर्ग नियमावली 2026 का गठन करने को भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत अशुलिपिक के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष हो जाएगी। साथ ही इस पद के लिए परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष के स्थान पर 1 वर्ष हो जाएगी। कैबिनेट ने कुल 29 एजेंडों को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार के सहयोग से मनरेगा की सभी लंबित राशि का भुगतान 30 जून से पहले सुनिश्चित कर दिया जाएगा। श्री चौधरी ने पटना के फुलवारी शरीफ के नदियावा में प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में आश्वासन दिया है।
1: 1 तारीख से जी राम जी का महाअभियान शुरू होने वाला है और उसमें लगभग 10,000 करोड़ का फंड का एलोकेशन हमारे लिए 9 महीने के लिए हुआ है, जिसमें से लगभग 6,700 करोड़ रुपया भारत सरकार देगा और लगभग 3,000 से अधिक करोड़ रुपया हम राज्य सरकार से देंगे।
0: इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि शीघ्र ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का शिलान्यास करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोइलवर से भागलपुर तक 17,000 करोड़ रुपए की लागत से 83 किलोमीटर लंबे गंगा पाथवे का निर्माण कराया जाएगा। श्री चौधरी ने राजधानी पटना में विकसित होने वाले नए टाउनशिप का नाम पाटलिपुत्र करने की भी घोषणा की।
1: क्योंकि पटना का पहचान एक नए शहर पाटलिपुत्र के नाम से होना चाहिए। कई लोग मुद्दा बनाते हैं कि ये मगध का राजधानी था, इसका नाम पाटलिपुत्रा था, इसका नाम बदल देना चाहिए। मैंने तो इससे बड़े पटना की कल्पना की है और उसका नाम भी पाटलिपुत्रा रखने का काम किया है साहब।
0: इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिविर में पहुंचे लोगों की शिकायतें सुनी और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना जिले के नौबतपुर स्थित बीज गुणन प्रक्षेत्र में खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। इस अवसर पर श्री चौहान ने किसानों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर किसान कृष्ण कुमार ने केंद्र सरकार की किसानों से सीधे संवाद के पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: जब तक किसानों के बीच जाकर के किसान की बात नहीं सुनेंगे कोई भी मंत्री, तब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाएगा। ये पहल बहुत बहुत बहुत बढ़िया से सुनी, लेकिन हम किसानों की बात को सुना और हम भी जो भी बातें थी किसानों से संबंधित उस पर उन्होंने सहमति भी जताया।
0: एक अन्य कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि बिहार में कृषि के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली बनाई जाएगी। पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि छोटे किसानों की संख्या अधिक होने के कारण यह मॉडल यहां सफल रहेगा।
3: बिहार में ज्यादातर किसान हमारे छोटे किसान हैं। छोटे जमीन के टुकड़े में कैसे फायदे की खेती करें, इसके लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल बिहार में हम अपनाएंगे। अब एक साइंटिफिक रोड मैप और बनाने का हमने फैसला किया है कि जिसमें बिहार की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से यहाँ कौन से फल, कौन सी सब्जियाँ, कौन सी उपज, लेकिन उसके साथ साथ फूलों की, फलों की, सब्जियों की खेती के साथ साथ हम बाकी और क्या गतिविधियाँ खेत पर कर सकते हैं ताकि छोटे किसान की आजीविका चल सके, उस पर भी विस्तार से बातचीत।
0: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने श्री चौहान से प्रदेश के कृषि क्षेत्र में आदर्श केंद्र की स्थापना का आग्रह किया। पटना में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने श्री चौहान से बक्सर और लखीसराय में टमाटर तथा प्याज के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का आग्रह किया। मद्य निषेध, कारा और परिवहन विभाग में सिपाही तथा कक्षपाल की नियुक्ति के लिए आज दोनों पालियों की परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गई। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती से प्राप्त जानकारी के अनुसार परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 544 केंद्र बनाए गए थे। इधर रेलवे ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आज 25 विशेष ट्रेनों के संचालन की व्यवस्था की है। ये ट्रेनें पटना, बक्सर, गया, सोनपुर, सहरसा, मधुबनी और बेतिया समेत विभिन्न स्टेशनों से परिचालित की जा रही हैं। रेल प्रशासन ने अभ्यर्थियों से समय से पहले स्टेशन पहुंचने और निर्धारित ट्रेनों का उपयोग करने की अपील की है। रेलवे ने मीडिया में प्रसारित उन खबरों को निराधार बताया है जिनमें पाटलिपुत्र स्टेशन पर ट्रेन में सवार एक छात्र की मौत की बात कही गई है। भारतीय रेलवे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति किसी स्वास्थ्य समस्या या थकान से ग्रस्त प्रतीत हो रहा है। रेलवे के अनुसार सभी रिकॉर्ड की जाँच कर ली गई है और पाटलिपुत्र स्टेशन पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
4: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
5: कंडक्टेड इन अ फ्लॉलेस मैनर।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
6: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक सैंडल AIR न्यूज _ पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता में कमी आने से 1 जून से अब तक सामान्य से 32% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली मानसून की दोनों शाखाएं कमजोर हैं। बारिश की कमी के कारण पटना

0: तापमान रहा। बक्सर का अधिकतम तापमान 41.5, डेहरी का 41, गया जी का 40.7, शेखपुरा का 40.6, औरंगाबाद का 40.5, पटना का 40.4 और छपरा का अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान अररिया, कैमूर, रोहतास, सुपौल, पूर्णिया, भागलपुर और मधेपुरा जिले के कुछ स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। प्रदेश के 13 महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम AEDP की शुरुआत हो रही है। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में इस संबंध में आज पटना में बैठक हुई। बैठक में 5 विश्वविद्यालयों के कुलसचिव तथा 13 महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य मौजूद रहे। सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एंड पॉलिसीज हैदराबाद के संस्थापक सदस्य RS जुलानिया ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए इस पाठ्यक्रम को शुरू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस पाठ्यक्रम के लिए चयनित महाविद्यालयों में 7 विषय चुने गए हैं।
1: बिहार राज्य ने 13 कॉलेजेस चुने हैं जहां 7 सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें ये प्रोग्राम चलाए जाएं। एक बैच में 40 से 60 बच्चे हो सकते हैं और 2 साल, क्योंकि यहां 4 साल का प्रोग्राम है इसलिए 2.5 से 3 साल उनके क्लासरूम में लर्निंग होगी और आखिर का मैक्सिमम 1.5 साल और मिनिमम 1 साल उद्योग जगत में उसको अप्रेंटिसशिप मिलेगी। क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, इसके लिए हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर मटेरियल डेवलप करा करके डाल दिया।
0: विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने गया को खेल अवसंरचना और प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। खेल विभाग के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में श्री कुमार ने गया जिले तथा मगध प्रमंडल में खेल अवसंरचना के विकास, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और खेल सुविधाओं के विस्तार की जानकारी ली। इस बैठक में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। शिवहर जिले के पुलिस लाइन में आज प्रशिक्षु सिपाहियों के लिए दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 208 आरक्षी सिपाही बिहार पुलिस में औपचारिक रूप से शामिल हो गए। इस दौरान तिरहुत प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक चंदन कुशवाहा, जिलाधिकारी प्रतिभा रानी और पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने दीक्षांत परेड की सलामी ली। साथ ही सभी आरक्षियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुंगेर जिले के असरगंज थाना क्षेत्र के मसूदानपुर कमराय में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय बच्चे के अपहरण और हत्या के मामले में स्थानीय अदालत ने आरोपी विभोर कुमार उर्फ अंकुर कुमार को आजीवन कारावास और ₹10,000 जुर्माना की सजा सुनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना को मंजूरी दी। पटना, राजगीर, मां मुंडेश्वरी और वाल्मीकि नगर भ्रमण के लिए उपलब्ध होगी हवाई सेवा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, केंद्र सरकार के सहयोग से मनरेगा की सभी लंबित राशि का भुगतान 30 जून से पहले सुनिश्चित कर दिया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना जिले के नौबतपुर में खेत बचाओ अभियान का किया शुभारंभ। और मद्य निषेध, कारा और परिवहन विभाग में सिपाही तथा कक्षपाल की नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
3: 1 दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रसारित।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पटना जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष रंजन।
1: पटना जिले के सभी 23 प्रखंडों में सहयोग सह जन कल्याण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। फुलवारी शरीफ प्रखंड के नदियामा में आयोजित शिविर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा आम लोगों की समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहयोग शिविर जनता की समस्याओं के समाधान और सरकारी योजनाओं के लाभ को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
2: इस जन कल्याण शिविर के माध्यम से साथियों, ये जो आयुष्मान भारत कार्ड है इसका निर्माण आप जरूर कराएं, जिनका भी छूट गया हो। वैसे 90% से अधिक हमारे जितने परिवार हैं उनके एक प्रमुख साथी का हम लोगों ने आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का काम किया है। दिव्यांग कल्याण के लिए योजना चल रही है, उसके भी आवेदन आप दे सकते हैं।
1: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचे। अपने दौरे के दौरान उन्होंने कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। नौबतपुर में आयोजित खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने किसानों से संवाद किया। इस दौरान कृषि भूमि संरक्षण, टिकाऊ खेती और किसानों के आय बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई। असम के जोरहाट एयरबेस में हुए इन 32 विमान हादसे में शहीद हुए बिहार के 2 वीर सपूतों फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार और अग्निवीर दानिश आलम का पार्थिव शरीर बिहटा एयरफोर्स स्टेशन लाया गया। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की ओर से दोनों शहीदों को सैन्य सम्मान दिया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीदों की अंतिम घर वापसी पर पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल देखा गया। देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न स्थानों पर राज्य सरकार के मंत्रियों ने मंदिरों में पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। वहीं विक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा यज्ञ और हवन का आयोजन किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत युवा संगम के 6ठे चरण में बिहार के विभिन्न जिलों से चयनित 50 छात्र छात्राएं पंजाब के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक भ्रमण के लिए रवाना हुए। IIT पटना में आयोजित फ्लैग ऑफ समारोह में राज्य सरकार के मंत्री संजय कुमार ने युवाओं को रवाना किया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम युवाओं को देश की विविध संस्कृति, इतिहास और विकास की प्रक्रिया को समझने का अवसर प्रदान करेगा।
3: यहाँ आने में गर्व महसूस हो रहा है। हमारे बिहार के कई अन्य जिलों के 50 छात्र छात्राएं चयनित होकर पंजाब में जा रहे हैं। हमारे बिहार की संस्कृति को, पंजाब की संस्कृति को एकजुट करने की भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये मिशन है। एक राज्य से दूसरे राज्य के छात्र आपस में अन्य राज्यों में जाकर वहाँ अपने राज्यों का साझा करें। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बच्चे आगे बढ़े।
1: उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने हाल ही में बेहटा स्थित इरेडिएशन सेंटर और इनलैंड कंटेनर डिपो का दौरा किया। उन्होंने वहां खाद्य उत्पादों की सुरक्षित पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण और आधुनिक तकनीकों का अवलोकन किया। अधिकारियों ने बताया कि मखाना, लीची और जर्दालू आम जैसे बिहार के प्रसिद्ध उत्पादों की वैज्ञानिक पैकेजिंग से किसानों को लाभ मिल रहा है तथा राज्य के निर्यात को भी बढ़ावा मिल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार के 7 निश्चय 3 कार्यक्रम के तहत पटना जिले के सभी 23 प्रखंडों में एक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिलाधिकारी त्यागराजन SM ने इन विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक प्रयोगशालाओं, समृद्ध पुस्तकालयों और डिजिटल शिक्षण संस्थानों के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। इधर पटना में भीषण गर्मी और लू का असर लगातार बना हुआ है। जिले में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 5 तक की पढ़ाई 20 जून तक स्थगित कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार 20 जून के बाद मौसम में बदलाव आने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है।
0: अभी आप सुन रहे थे पटना जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आशीष रंजन।
4: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। कलाकार हैं अस्मिता सिन्हा। आइए कार्यक्रम में सबसे पहले इनसे सुनते हैं नीरज का लिखा ये भजन, माफ़ कीजिएगा, नीरज का लिखा ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी, जहाँ कलाकार थी स्मिता सिन्हा। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, प्रस्तुत है रजनीगंधा फिल्म संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं राहत फतेह अली खान की आवाज़ में फिल्म आदा नचले का ये गाना।

0: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
1: तिलका मांझी तो बहुत।
0: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
2: बख्शी जगबंधु तो
1: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: दोस्तों रजनीगंधा कार्यक्रम में अब सुनिए उदित नारायण और प्रीति उत्तम की आवाज में फिल्म गदर का ये गाना, जिसके बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, संगीत था उत्तम सिंह का।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: दोस्तों, रजनीगंधा कार्यक्रम में अब सुनिए फिल्म हम से मोहम्मद अजीज और शोभा जोशी की आवाज़ में ये गाना, जिसके बोल थे आनंद बख्शी के द्वारा लिखे हुए और इसे संगीत से लयबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for ₹10.99 lakh with a battery EMI of just ₹3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
1: श्रोताओं कार्यक्रम में भी बढ़ते हैं आगे और अब आइए आपको सुनाते हैं उदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाज़ में फिल्म जानवर का ये गाना, जिसके बोल लिखे थे समीर ने, संगीत था आनंद मिलिंद का।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
2: 8700। कार्यक्रम में चलिए बढ़ते हैं आगे और आप सुनते हैं फिल्म जान से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में ये प्यारा सा गाना, जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत है आनंद मिलन का।

दोस्तों रजनीगंधा कार्यक्रम में अब आइए आप सुनते हैं फिल्म मासूम से अभिजीत और साधना सरगम की आवाज़ में ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं आनंद राज आनंद ने, संगीत भी है आनंद राज आनंद का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीकंधा। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद कार्यक्रम चर्चा का विषय है हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियो में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्यसत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की सातवीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास योजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
4: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
2: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है सुबोध मिश्र।
6: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 रुपए पर बंद हुआ।
1: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarer safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence and technology cooperation at inauguration of India Pavilion at Viva Tech 2026 in Paris. Railways approves multiple projects worth over 1,200 crore rupees to improve connectivity and safety. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. And in men's cricket, Afghanistan chase target of 403 runs set by India in second ODI of three-match series in Lucknow. A crucial bilateral meeting was held between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump at Evian, France on the sidelines of G7 summit this evening. During the talks, issues of seafarer safety and opening of Strait of Hormuz figured prominently. Prime Minister Modi commended President Trump for the progress in peace efforts in West Asia. The Prime Minister said that India has consistently emphasized the importance of the freedom of navigation and all should work together to place a particular emphasis on it. Mr. Modi added that lakhs of Indian seafarers in maritime trade are on duty in different oceans of the world and their safety is of utmost importance to India.
8: Excellency, हम जानते हैं कि maritime trade की दुनिया में भारत के लाखों seafarers आज दुनिया के अलग-अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में seafarer की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। Excellency, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी-पूरी प्रशंसा करता हूं।
7: Earlier, Prime Minister Modi addressed a working session themed Promoting Balanced, Inclusive and Sustainable Economic Growth for the Benefit of All at the ongoing G7 Summit. In his address, the Prime Minister underscored the need for international financial institutions to develop mechanisms that impart economic resilience to developing countries. Mr. Modi also participated in a working lunch focused on ensuring safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The meeting brought together G7 member countries, partner nations and the CEOs of leading AI companies to discuss the future of digital innovation. On the margins of the G7 summit in Evian, Prime Minister Modi and German Chancellor Friedrich Merz today exchanged views on regional and global developments, including the situation in West Asia and the Russia-Ukraine conflict. The two leaders also reviewed the progress in bilateral engagements and expressed satisfaction at the renewed momentum in the India-Germany strategic partnership with the successful visit of Mr. Merz to India and the conclusion of the India-EU FTA negotiations earlier this year. Mr. Merz invited the Prime Minister for the 8th India-Germany Intergovernmental Consultations, IGC, scheduled to be held later this year in Germany. Prime Minister Modi also held a meeting with President of the European Commission, Ursula von der Leyen, and President of the European Council, Antonio Costa, on the sidelines of the summit. Our correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
9: The two-day visit of Prime Minister Narendra Modi to the beautiful French city of Evian has been highly significant. During the visit, the Prime Minister participated in various G7 outreach sessions where India was invited as a partner country. This marked the Prime Minister's seventh consecutive participation in the G7 summit. India's regular presence clearly demonstrates that the nation has emerged as a major global power, with the international community increasingly looking towards New Delhi for solutions to complex global challenges. During the outreach sessions, Mr. Modi strongly presented the voice of the Global South before the crucial forum. In yesterday's session, He underscored the importance of trust in building international partnerships in an increasingly interconnected world, highlighting that India has always followed a humanity-first approach. In today's session, the Prime Minister underlined the critical need for international financial institutions to develop mechanisms that impart economic resilience to developed countries. Mr. Modi also emphasized that tangible growth leads to the true inclusion and well-being of people, showcasing India's own growth story underpinned by the guiding principle of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Biswas and Sabka Prayas. Ankit Kumar, Akashwani News, AVO France.
7: India and France have reaffirmed their commitment to innovation, artificial intelligence and technology cooperation at the inauguration of the India Pavilion at Viva Tech 2026 in Paris. Speaking at the event, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and French Minister for Artificial Intelligence and Digital Affairs Anne Le Hennef highlighted the growing strategic partnership between the two countries. More from our correspondent.
10: Addressing innovators and startups, Piyush Goyal said the India-France partnership has been strengthened further through the India-France Year of Innovation 2026 announced by Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron. He said India offers key advantages for the AI era, including a young population, a large pool of STEM graduates, strong digital infrastructure and democratic governance. The minister underlined India's vision of human-centric artificial intelligence through the concept of Manav, emphasizing ethical, accountable, inclusive and trustworthy AI. He said India is prepared to become a global hub for AI talent, data centers and advanced technology. French Minister Anne Le Hennef described India as a global innovation powerhouse and welcomed its role as the AI country partner at Viva Tech 2026. This is Mahesh Sobre, Akashwani News, Paris, France.
7: The India Pavilion is one of the largest national pavilions at Viva Tech 2026 and showcases the country's growing startup and innovation ecosystem. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Indian Railways has approved a series of infrastructure projects worth over 1,200 crore rupees aimed at enhancing rail capacity, improving freight movement, strengthening safety systems and upgrading urban transport infrastructure across Gujarat, Maharashtra, West Bengal and Madhya Pradesh. The projects include the doubling of a key railway section in Gujarat, construction of a new freight cord line in Maharashtra, modernization of signaling systems on Eastern Railway, and rebuilding of a major road overbridge in Indore. Together, the initiatives are expected to improve operational efficiency, decongest critical rail corridors, enhance passenger convenience, and support economic growth. In a boost to rail connectivity in the Kutch region, the doubling of the 49-kilometer Adipur-Bhuj section on Western Railway has been approved at an estimated cost of 493 crore rupees. Indian Railways has also approved the construction of the 3.7-kilometer Somtane-Chikli cord line on Central Railway at a cost of 172 crore rupees in Maharashtra. The new line will establish a direct rail connection between the Karjat and Rohar routes, allowing freight trains to bypass the heavily congested Panvel junction. In a major modernization initiative, the Indian Railways has sanctioned a 405 crore rupees signaling upgradation project on Eastern Railway. To improve urban mobility and railroad connectivity in Madhya Pradesh, Railways has approved the reconstruction of the Shastriya Road overbridge in Indore Yard at a cost of 139 crore rupees. Union Minister Ashwini Vaishnaw today announced a major expansion of Pune Railway Station with an investment of around 600 crore rupees. The minister was speaking after flagging off the Pune Sainagar Shirdi Express at Pune Railway Station and inaugurating and laying the foundation stones for various railway development projects. In another function, inaugurating the new manufacturing facility of US-based company Jabil at Ranjangaon MIDC in Pune, Union Electronics and Information Technology Minister Vaishnaw said, India has emerged as a major electronics manufacturing hub and is now the world's sixth largest exporter of electronics.
11: Today we have electronics manufacturing industry worth 13 lakh crore rupees in our country. Electronics export was considered unthinkable. Last year, 2025, electronics as an export category became third largest export category in the country. But now we must take the target. Second largest exported category banna hai.
7: India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government has carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, the farmers, the women and the youth. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today, we focus on the steps taken by the government towards preservation and promotion of the country's heritage.
2: Over the past 12 years, India has undertaken several landmark initiatives to preserve, promote and celebrate its civilizational legacy. One of the most significant moments came in January 2024 when Prime Minister Narendra Modi performed the Pran Pratishtha of Ram Lala at the Grand Shri Ram Janmabhoomi Mandir in Ayodhya, marking the fulfillment of a centuries-old aspiration. Talking to Akashwani News, Pankaj Jaria, a devotee, shared his experience.
3: A few days ago, I went to Ayodhya where we had the darshan of Prabhu Shri Ram. The arrangements are very good. The government has made excellent arrangements to manage the crowd. Everyone stands in line to have the darshan. There are locker facilities for people to keep their belongings. There is also a facility for drinking water. Very good arrangements have been made and there are also beautiful table locks and displays which look very divine.
2: In Ujjain, Madhya Pradesh, the first phase of the Mahakal Lok project was dedicated to the nation in October 2022. The Grand Corridor showcases magnificent sculptures, murals and architectural elements depicting the life and legends of Lord Shiva. Equipped with modern technology and AI-enabled monitoring systems, Mahakal Lok beautifully blends heritage with innovation. In Varanasi, the Kashi Vishwanath Corridor, inaugurated in December 2021, has transformed the pilgrimage experience by directly connecting the temple with River Ganga. Spread across 5.5 acres, the project has enhanced accessibility and revitalized one of India's most revered spiritual centers. Talking to Akashwani News, a resident of Varanasi, Priyanshu Singh, said that the corridor is providing ease of access to pilgrims.
4: Kashi mein Modi ji ne bahut kaam kiya hai.
12: Prime Minister Narendra Modi has done a lot of work in Kashi. Earlier, the road leading to the temple used to be quite narrow, which caused a lot of inconvenience. But now, since the corridor has been built, the crowd management is more efficient and people can visit and have a darshan more easily.
2: Saklan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
7: The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal for tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Bihar, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal tomorrow. The IMD said that conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into some more parts of Telangana, Odisha, Jharkhand, Bihar and some parts of Chhattisgarh during the next 4 to 5 days. In cricket, chasing a target of 403 runs set by India, Afghanistan were 225 for 8 in 42 overs in the second ODI of the three-match series in Lucknow when reports last came in. India were bowled out 402 in 49.5 overs. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarer safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence and technology cooperation at inauguration of India Pavilion at Viva Tech 2026 in Paris. Railways approves multiple projects worth over 1200 crore rupees to improve connectivity and safety. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. And in men's cricket, Afghanistan chased target of 403 runs set by India in second ODI of three-match series in Lucknow. That is all in the news at 9. Good night.
13: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एवियों में G7 सरबराह इजलास के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग की। मीटिंग में बहरी जहाजों के अमले की सलामती और आबनाए हुरमुज को खुला रखने के उमूर पर बातचीत की गई। वजीर आजम ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स, यूरोपीय काउंसिल के सदर अंतोनियो कोस्ता और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फोन डेर लेन के साथ भी दोतरफा मीटिंगें की। पेरिस में विवाटेक 2026 के दौरान इंडिया पवेलियन की इफ्तिताही तकरीब में भारत और फ्रांस ने जिद्दत तराजी, मस्नूई जहानत और तकनीकी ताउन के फरोग के अजम का इयादा किया। रेलवे ने कनेक्टिविटी और मुसाफिरों की हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई प्रोजेक्टों की मंजूरी दी। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों और मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खत्ते में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और मर्दों के क्रिकेट में लखनऊ में 3 एक रोजा बैन अलाक्वामी मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 403 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। फ्रांस के शहर एवियों में G7 सरबराह इजलास 2026 के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक अहम दोतरफा मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान वजीर आजम मोदी ने मगरबी एशिया में अमन के कयाम की कोशिशों में होने वाली पेशरफ्त पर सदर ट्रंप की तारीफ की। वजीर आजम ने कहा कि भारत हमेशा समंदरी रास्तों पर जहाजों की आमद रफ्त की आजादी की अहमियत पर जोर देता रहा है और तमाम मुल्कों को इसके तहफ्फुज के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वजीर आजम ने मजीद कहा कि दुनिया के मुख्तलिफ समंदरों में बहरी तिजारत के शोबे से वाबस्ता लाखों भारतीय मल्लाह अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और उनकी सलामती भारत के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है।
8: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ।
13: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मस्नूई जहानत AI के महफूज तेज रफ्तार और मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के मौजू पर मुनक्किदा वर्किंग लंच में शिरकत की। इस इजलास में G7 के रुकन मुल्कों, शराकतदार ममालिक और मस्नूई जहानत की मारूफ कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान शरीक हुए, जहां डिजिटल इख्तरा के मुस्तकबिल पर ख्यालात का तबादला किया गया। वजीर आजम मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स ने इलाकाई और आलमी हालात वाकयात पर बातचीत की, जिसमें मगरबी एशिया की सूरत हाल और रूस यूक्रेन तनाज़ा भी शामिल था। दोनों रहनुमाओं ने दोतरफा ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायजा लिया और भारत जर्मनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में नई रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। इस सिलसिले में चांसलर मर्स के भारत के कामयाब दौरे और रवां साल भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती मुआहदे के मुजाकरात की तकमील का भी जिक्र किया गया। चांसलर मर्स ने वजीर आजम मोदी को इस साल जर्मनी में मुनक्किद होने वाली 8वीं भारत जर्मनी बैन हुकूमती मुशावरत में शिरकत की दावत दी। वजीर आजम मोदी ने सरबराह इजलास के मौके पर यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फोन डेर लेन और यूरोपीय काउंसिल के सदर अंतोनियो द कोस्ता के साथ भी मीटिंग की। पेरिस में जारी विवाटेक 2026 में भारतीय पवेलियन के इफ्तिताह के मौके पर भारत और फ्रांस ने اختراع مصنوعی ذہانت اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون کے اپنے عہد کو دہرایا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل اور فرانس کی مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل امور سے متعلق وزیر اینیلی ہینامف نے دونوں ممالک کے مابین کلیدی شراکت داری کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو اجاگر کیا. پیش ہے ایک رپورٹ.
14: اختراکاروں اور سٹارٹ اپ سے خطاب کرتے ہوئے پیوش گوئل نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور فرانس کے صدر ایمانوئل میخوں کے ذریعے بھارت فرانس اختراع کے سال 2026 کے اعلان کے ذریعے بھارت اور فرانس کی شراکت داری مزید مضبوط ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت اے آئی کے دور میں بھارت کو کئی نمایاں فوائد حاصل ہیں جن میں نوجوان آبادی، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی سٹیم کے ماہرین کی بڑی تعداد، مضبوط ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ اور جمہوری طرز حکمرانی شامل ہیں. انہوں نے بھارت فرانس اختراع کے سال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سٹارٹ اپس اور تحقیقی اداروں کے ذریعے بڑھتا ہوا تعاون نئی راہوں اور مواقع کو جنم دے رہا ہے. قابل ذکر ہے کہ ویوا ٹیک 2026 میں قائم انڈیا پیویلین قومی سطح کے سب سے بڑے پیویلین میں شمار ہوتا ہے جہاں بھارت کے تیزی سے فروغ پاتے ہوئے سٹارٹ اپس اور اختراعی ماحولیاتی نظام کی بھرپور نمائش کی جا رہی ہے. پیرس سے مہیش چوبڑے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان.
13: وزیر اعظم نریندر مودی فرانس کے اپنے دورے کے ایک حصے کے طور پر آج شام پیرس پہنچیں گے. بھارتی برادری کے افراد ان کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں اور ان کے خیر مقدم کے لیے تیاریاں جاری ہیں. کل صبح وزیر اعظم مودی سرکردہ چیف ایگزیکٹو افسران کے ساتھ میٹنگیں کریں گے اور توقع ہے کہ یہ تبادلہ خیال دوپہر تک جاری رہے گا. اس کے بعد وزیر اعظم مودی ویوا ٹیک سمٹ میں شرکت کریں گے جو کہ یورپ کی ٹیکنالوجی اور اختراعات سے متعلق ایک اہم میٹنگ ہے. توقع ہے کہ جناب مودی اس موقع پر خطاب بھی کریں گے. شام میں وزیراعظم ایک کمیونٹی تقریب میں شرکت کریں گے اور بھارتی برادری کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے. بھارتی ریلوے نے گجرات، مہاراشٹر، مغربی بنگال اور مدھیہ پردیش میں ریلوے کی گنجائش بڑھانے، مال برداری کے نظام کو بہتر بنانے، حفاظتی انتظامات کو مضبوط کرنے اور شہری نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کو جدید بنانے کے لیے 1200 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے متعدد بنیادی ڈھانچہ جاتی منصوبوں کی منظوری دی ہے. ان منصوبوں میں گجرات کے ایک اہم ریلوے سیکشن پر دوہری لائن بچھانے، مہاراشٹر میں مال گاڑیوں کے لیے ایک نئی کارڈ لائن تعمیر کرنے، مشرقی ریلوے میں سگنلنگ نظام کو جدید بنانے اور اندور میں ایک اہم روڈ اوور برج کی اثر نو تعمیر شامل ہے. ان اقدامات سے ریلوے آپریشنز کی کارکردگی میں اضافہ، مصروف ریلوے راہداریوں پر دباؤ میں کمی، مسافروں کو بہتر سہولیات کی فراہمی اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملنے کی توقع ہے. کچھ کے خطے میں ریلوے رابطے کو مزید مستحکم بنانے کے لیے مغربی ریلوے کے 49 کلومیٹر طویل آدی پور بھوج سیکشن کی دوہری لائن بچھانے کے منصوبے کو تقریباً 493 کروڑ روپے کی لاگت سے منظوری دی گئی ہے. اس منصوبے سے علاقے میں مسافروں اور مال برداری دونوں کے لیے بہتر سہولتیں فراہم ہوں گی. اس طرح بھارتی ریلوے نے مہاراشٹر میں 3.7 کلومیٹر طویل سومٹانے چکھلی کورڈ لائن کی تعمیر کی منظوری دی ہے جس پر تقریباً 172 کروڑ روپے خرچ ہوں گے. جدیدکاری کے ایک اہم اقدام کے تحت مشرقی ریلوے میں 450 کروڑ روپے کے سگنلنگ اپ گریڈیشن منصوبے کو بھی منظوری دی گئی ہے. ریلوے اور اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج تقریباً 600 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری سے پونے ریلوے اسٹیشن کی بڑے پیمانے پر توسیع کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ موجودہ 6 پلیٹ فارموں کے ساتھ مزید 6 نئے پلیٹ فارم تعمیر کیے جائیں گے جس کے بعد پلیٹ فارموں کی کل تعداد 12 ہو جائے گی. اس کے علاوہ کام کاج کی کارکردگی اور مسافروں کی حفاظت کو بہتر بنانے کے لیے موجودہ روٹ ریلے انٹر لاکنگ سسٹم کی جگہ جدید الیکٹرانک انٹر لاکنگ سسٹم نصب کیا جائے گا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. گزشتہ 12 برسوں کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے بھارت نے نمایاں ترقی کی ہے. اس دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے متعدد اہم اقدامات کیے ہیں. آکاشوانی نیوز آپ کے لیے ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم ملک کے ثقافتی ورثے کے تحفظ اور فروغ کے لیے حکومت کے ذریعے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
14: بھارت نے اپنی تہذیبی وراثت کے تحفظ، فروغ اور اس کا جشن منانے کے لیے کئی تاریخی اقدامات کیے ہیں، جن سے لاکھوں شہریوں میں فخر کا جذبہ پیدا ہوا ہے۔ اہم واقعات میں سب سے اہم واقعہ جنوری 2024 میں پیش آیا، جب وزیر اعظم نریندر مودی نے ایودھیا میں عظیم الشان شری رام مندر میں رام للہ کی پران پرتشٹھا کو انجام دیا۔ یہ صدیوں پرانی ایک خواہش کی تکمیل تھی۔ حال ہی میں مندر کا دورہ کرنے والے ایک عقیدت مند پنکج جاریہ نے آکاشوانی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے تجربات بیان کیے۔
3: ابھی تھوڑے دنوں پہلے میں ایودھیا گیا تھا، وہاں ہم نے پربھو رام کے درشن کیے۔ وہاں ویوستھا بہت ہی بڑھیا، بھیڑ کو مینج کے لیے سرکار نے بڑھیا پربندھ کر رکھا ہے۔ مندر کا پرانگڑ بہت ہی بھو ہے، سبھی لوگ لائن میں لگ کر پربھو کا درشن کرتے ہیں۔
14: مدھیہ پردیش کے شہر اجین میں مہاکال لوک پروجیکٹ کا پہلا مرحلہ اکتوبر 2022 میں قوم کے نام وقف کیا گیا۔ یہ عظیم کوریڈور شاندار مجسموں، دیواروں پر بنے فن پاروں اور تعمیرات پر مشتمل ہے، جو بھگوان شیو کی زندگی اور ان سے منسوب روایات کی عکاسی کرتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت پر مبنی نگرانی کے نظام سے آراستہ مہاکال لوک وراثت اور جدت کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ وارانسی میں کاشی وشوناتھ کوریڈور، جس کا افتتاح دسمبر 2021 میں کیا گیا تھا، نئے یاتریوں کے سفر کے تجربے کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ یہ کوریڈور مندر کو براہ راست دریائے گنگا سے جوڑتا ہے۔ 5.5 ایکڑ پر محیط اس پروجیکٹ نے لوگوں کی رسائی کو بہتر بنایا ہے اور بھارت کے سب سے معزز روحانی مراکز میں سے ایک کو نئی زندگی بخشی ہے۔ آکاشوانی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے وارانسی کے رہنے والے پریانشو سنگھ نے کہا کہ یہ کوریڈور یاتریوں کی آمد و رفت میں کافی آسانی فراہم کر رہا ہے۔
4: کاشی میں مودی جی نے بہت کام کیا ہے۔ پہلے مندر تک جانے والا راستہ کافی سکرا ہوا کرتا تھا، جس سے بہت ہی زیادہ دقت ہوتی تھی، پر اب کوریڈور بننے سے بھیڑ بھی ویوستھت رہتی ہے اور لوگوں کو بھی درشن کرنے میں کافی آسانی ہوتی ہے۔
14: یہ انقلابی اقدامات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ملک اپنی ثقافتی جڑوں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اعتماد کے ساتھ مستقبل کی جانب گامزن ہے۔ ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
13: دلی پولیس کے خصوصی سیل نے پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے مبینہ ہینڈلر شہزاد بھٹی سے وابستہ 8 رکنی کثیر ریاستی دہشت گردی ماڈیول کے مزید 5 ملزموں کو گرفتار کیا ہے۔ اس سے پہلے دلی پولیس نے آپریشن گینگ بیسٹ 2.0 کے دوران مذکورہ ماڈیول کے 3 ارکان کو گرفتار کیا تھا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کو دلی اور پڑوسی ریاستوں میں پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنانے، پاکستان میں موجود رابطہ کاروں کی تشہیر کرنے اور آئی ایس آئی کی سرپرستی میں مبینہ طور پر قائم تنظیم تحریک طالبان ہندوستان کو فروغ دینے کی ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں۔ کارروائی کے دوران پولیس نے 5 ہتھیار، شہزاد بھٹی نیٹورک سے متعلق پوسٹرز اور دیگر قابل اعتراض مواد بھی برامد کیے، جن میں پولیس اہلکاروں کو دھمکیاں دینے والی ویڈیوز بھی شامل ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل ملک کے شمال مشرقی علاقوں اور مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل بہار، کیرلم، ماہے، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل کے علاقوں میں بھی شدید بارش کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ اگلے 4 سے 5 دن کے دوران تلنگانہ، اڈیشہ، جھارکھنڈ اور بہار کے مزید کچھ علاقوں، نیز چھتیس گڑھ کے کچھ علاقوں میں جنوب مغربی مانسون کی پیش قدمی کے لیے حالات سازگار ہیں۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 2 روز کے دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ چھینٹے پڑنے کی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق کل جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، آندھرا پردیش، اڈیشا اور انڈمان و نکوبار جزائر میں اسی طرح کے حالات رہنے کا امکان ہے۔ کرکٹ میں لکھنؤ میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت نے افغانستان کے سامنے جیت کے لیے 403 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس سے قبل بھارتی ٹیم 49 اوورز میں 5 گیندوں میں 402 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ شبمن گل اور ایشان کشن نے سینچریاں بنائیں۔ گل نے 154 رن بنائے جبکہ کشن نے 125 رنز سکور کیے۔ اس سے قبل افغانستان نے ٹاس جیتا اور پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک افغانستان کی ٹیم نے 44.3 اوورز میں 8 وکٹ پر 232 رن بنا لیے تھے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایبیو میں G7 سربراہ اجلاس کے موقع پر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ کی۔ میٹنگ میں بحری جہازوں کے عملے کی سلامتی اور آبنائی ہرمز کو کھلا رکھنے کے امور پر بات چیت کی گئی۔ वज़ीर-ए-आज़म ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय काउंसिल के सदर अंतोनियो कोस्ता और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फोन देर लेन के साथ भी दोतरफा मीटिंगें की। पेरिस में विवाटेक 2026 के दौरान इंडिया पवेलियन की इफ्तिताही तकरीब में भारत और फ्रांस ने जिद्दत तराजी, मस्नूई जहानत और तकनीकी तआवुन के फरोग के अज़्म का इआदा किया। रेलवे ने कनेक्टिविटी और मुसाफिरों की हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई प्रोजेक्टों की मंजूरी दी है। और मर्दों के क्रिकेट में लखनऊ में 3 एक रोजा मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 403 रन का निशाना रखा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: भारत की सुरक्षा केवल उसकी सीमाओं पर तैनात सैनिकों के साहस से ही सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि उस शक्ति से भी होती है जो उन्हें आधुनिक हथियार, अत्याधुनिक तकनीक और मजबूत रक्षा उपकरण उपलब्ध कराती है। एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में गिना जाता था। लड़ाकू विमान हो, मिसाइलें हो, युद्धपोत हो या फिर आधुनिक हथियार प्रणालियां, हमारी निर्भरता विदेशी देशों पर काफी अधिक थी। लेकिन बीते कुछ वर्षों में तस्वीर तेजी से बदली है। अब भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। वर्ष 2020-21 की तुलना में इसमें 110% से अधिक की वृद्धि हुई है। रक्षा निर्यात भी बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच गया है। निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी, रक्षा गलियारों का विकास, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलें इस परिवर्तन की आधारशिला बनी हैं। भारत किस तरह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, रक्षा उत्पादन में ये वृद्धि हमारी सामरिक शक्ति को किस तरह मजबूत कर रही है, वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की क्या नई पहचान बनी है और आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की चुनौतियां और संभावनाएं क्या हैं, इन पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय बैनर्जी और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी और रक्षा विशेषज्ञ भी आप हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद। जय हिंद।
1: लेफ्टिनेंट जनरल, आपसे शुरू करते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में आज जो हमारा रक्षा उत्पादन है उसमें तकरीबन 110% की वृद्धि हुई है। एक सैन्य रणनीतिकार के नजरिए से हम बात करें तो इस भारी बढ़ोतरी ने भारतीय सशस्त्र बलों यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ऑपरेशनल तैयारियों को किस तरह बूस्ट किया है और साथ ही साथ विदेशी कल पुर्जों पर हमारी निर्भरता को कितना कम किया है?
3: मैं कहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं, शक्ति में शांति और उसी में मनोबल ऊंचा होता है आर्म फोर्सेस का। पहले जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, तकरीबन 65% पूरा का पूरा हम लोग आयात करते थे और अब तकरीबन 65% हम भारत में खुद बनाते हैं। तो ये जो पहल है हमारी आत्मनिर्भरता की, मेक इन इंडिया की, इससे बहुत फर्क पड़ा है। जो डिफेंस कॉरिडोर का सेटअप होना, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का एक साथ मिलजुल करके काम करना, डीआरडीओ का इनका मनोबल ऊंचा करना, इनको प्रोत्साहित करना, स्टार्टअप को साथ ले चलना, अकेडेमिया के साथ करना, जो यूजर्स है उनको साथ में लेकर के चलना, तो ये जो बेसिक कार्रवाई है, काफी पहले प्रोसीजर्स होते थे, उन प्रोसीजर से जिससे देरी होती थी उनको हटा दिया। अब जब भारत के अंदर कोई भी चीज बनती है और खासकर जब वो बनती है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हो, ये नहीं कि भारत में बनाने बात अलग है, पर वो वस्तु बनाना जो इंटरनेशनल से टक्कर दे, और वो हम लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर में। इस प्रकार अपने बनाए हुए रेडार ने किस प्रकार से दुश्मन के एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करते हुए दुश्मन को नुकसान पहुंचाया, और यही कारण था कि अबाउट 88 आवर सिर्फ 100 घंटे से भी कम में पाकिस्तान ने घुटने टेके। ये क्या दर्शाता है कि पाकिस्तान को पूरा का पूरा चीन का पूरा रक्षक तुर्की है उसको मदद करा, पाकिस्तान अपना खुद करा और उसको पेनिट्रेट करना, ये तब हो सकता है जब आप आत्मनिर्भर हो, जब आप दूसरे के ऊपर निर्भर ना करें, मेक इन इंडिया हो। आपको मालूम है आपकी चीज क्या है, आपने अपने एरिया के मुताबिक स्पेसिफिक इससे बनाया है, तो ये जो एक है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 1.78 लाख करोड़ ऑल टाइम हाई, और जैसे आप कह रहे हैं कि ऑफकोर्स 2000 मतलब पिछले साल से तो 15.6%, वो उससे पहले अगर देखा जाए तो 110% से भी ज्यादा, और वापस अगर 2013-14 की ओर देखेंगे तो उस वक्त तो हार्डली डिफेंस प्रोडक्शन यूज्ड टू बी समथिंग लाइक 43,000 crores, और अब इट इज प्राइवेट प्रोडक्शन हमारा तकरीबन 43,000 crores है, प्राइवेट प्रोडक्शन, यू कैन वेल इमेजिन 1,78,000 crore में प्राइवेट का कंट्रीब्यूशन है, दैट्स ऑलमोस्ट अबाउट द सेम एज व्हाट वाज द टोटल डिफेंस प्रोडक्शन ऑफ 2014।
1: अजय जी, आपसे समझने की कोशिश करते हैं। आप लंबे समय से भारत के विदेश और रक्षा नीतियों को कवर करते रहे हैं। एक वो भी दौर था जब हम दुनिया के शीर्ष हथियार खरीदारों में से एक थे, और आज यानी 25-26 की हम बात करें तो हमने 38,424 करोड़ का रक्षा निर्यात किया है। आयातक से निर्यातक बनने के इस सफर में वैश्विक पटल और जियो पॉलिटिक्स के नजरिए से भारत का कद कितना बढ़ा हुआ आप देख रहे हैं?
2: देखिए, पहले मैं एक बिंदु बताऊंगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, जो कुलकर्णी सर भी बात कर रहे थे। निजी सेक्टर ने तकरीबन 24% किया है इसे 1,78,000 करोड़ में से। निजी सेक्टर की ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट है, जब तक वो ग्रो नहीं करेगा तब तक हम देश में एक्सपोर्ट या जिसे कहते हैं नहीं कर पाएंगे। जैसे आप बात कर रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट का कैसे सफर आया है, वो सफर ग्रेजुअल होता है, हमेशा ग्रेजुअल होता है। पिछले 10-12 साल में स्पीड बहुत पकड़ी है, बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ी है। हम कोई 400-500 करोड़ की एक्सपोर्ट करा करते थे 10-12 साल पहले, और अब कोई 38,000 करोड़ की जैसे आपने नंबर दिया उतनी कर रहे हैं। अब ये एक्सपोर्ट जो है ये कई ऐसे मुल्कों को हो रही है जो तुर्की के आसपास हैं, पहले तो ग्रीस है, आर्मेनिया है, बिना का रॉकेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ और एक्सपोर्ट हो रहा है जो कि चीन के साथ, जिनकी तालमेल नहीं बैठ रही उन मुल्कों के साथ, जैसे वियतनाम को, इंडोनेशिया को, फिलीपींस को, ब्रह्मोस की हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके लिए हम पार्ट्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग यूएस से, उनकी कंपनियों को भी हम पार्ट सप्लाई करते हैं, हमारी कई निजी कंपनियां यहाँ। आगे आने वाले दिनों में हमने अभी बहुत स्पीड पकड़नी है। आपने एक बात बोली कि हम सबसे बड़े इंपोर्टर हुआ करते थे, इंपोर्टर अभी हम रहेंगे, 10-12-15 साल और रहेंगे, जब तक हमारे पास एयरक्राफ्ट का इंजन, युद्धपोत यानी वॉरशिप का इंजन और स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज, और सबसे बड़ी बात जैसे S-400 मिसाइल मारक क्षमता, जैसे हमारा एक कुशा प्रोजेक्ट चल रहा है उसको कंप्लीट होने को 5-7 साल लगेंगे। जब तक वो ऐसे प्रोजेक्ट हमारे कंप्लीट नहीं हो जाएंगे हम इंपोर्टर रहेंगे। ये एक सच्चाई है, हमारे देश को मान के चलना चाहिए। हर देश सारा कुछ नहीं बनाता, हम एक बहुत बड़े इस टाइम एक्सपोर्टर की तरह उभर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया, मगर ये अभी 10-15 साल और लगेंगे हमको टोटली सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए, और अभी स्पीड पकड़ने की बहुत जरूरत है। ये मैं आपके श्रोताओं को एक ऑनेस्टली और बिल्कुल सच्ची बात बता दूं, स्पीड पकड़ने की बहुत जरूरत है।
1: जी हाँ कुलकर्णी सर, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं, जैसा कि बैनर्जी जी कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र की जो भागीदारी बढ़ी है उससे एक नई उम्मीद की किरण रक्षा क्षेत्र में जगी है, आपको क्या लगता है कि रक्षा उत्पादन में सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच जो ये सिनर्जी है यानी जो तालमेल है, इसे आप कैसे देखते हैं, और क्या ये मॉडल आने वाले समय में हमें फाइटर जेट्स और सबमरीन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में पूरी तरह सेल्फ डिपेंडेंट बना सकता है?
3: देखिए, फाइटर एयरक्राफ्ट को देखते हुए अभी हम देखते हैं टाटा ने फर्स्ट एयरक्राफ्ट अपना फ्लाई करने की कोशिश की नागपुर से, और जैसे बैनर्जी साहब बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत वक्त लगता है, ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, इतनी आसान नहीं है और कोई दूसरा देश आपको देता भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पहल की है प्राइवेट इंडस्ट्री ने, कम से कम पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर के DRDO ने अपनी फैसिलिटीज उनको मुहैया कराई है, उसको देखते हुए जरूर मुझे लगता है बहुत जरूरी है। और खासकर डिफेंस के अंदर प्राइवेट सेक्टर को एक बात का आभास होना चाहिए, वो फौज है उनसे खरीदती रहेगी, क्योंकि अगर आप उनको बोलेगा 100 हवाई जहाज बना करके उसके बाद फैक्ट्री बंद हो जाए, वैसे नहीं हो सकता है, 100 के बाद वो प्रोडक्शन चल, उसके लिए एक्सपोर्ट बहुत जरूरी है। जब आप बनाते हैं जस्ट नॉट टू मेक इन इंडिया बट मेक फॉर द वर्ल्ड, मतलब फैक्ट्री चलती रहनी चाहिए, ये नहीं कि 40 पीस आर्टिलरी के दे दिए उसके बाद फैक्ट्री क्या करेगी, आपके लिए बनाए उसके बाद क्या होगा। तो ये जो सस्टेनेंस है ऑफ प्रोडक्शन, सस्टेनेंस ऑफ एंड मॉडिफिकेशन, उसके ऊपर इनोवेशन, तो ये जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आई हैं, और खासकर मैं कहूंगा टाटा की हो, महिंद्रा हो, L&T हो, कल्याणी भारत फोर्ज हो, अशोक लेलैंड हो, अडानी, अल्फा डिजाइन, ये जितने भी आ रहे हैं धीरे धीरे करके, मुझे लगता है बहुत जबरदस्त। और जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अभी भी 1,78,000 करोड़ का है, इसमें तकरीबन मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 25% प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, इट इज अ ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन, इसको बढ़ना है, और ये तभी हो सकता है जब सिनर्जी हो जिसकी आप बात कर रहे हैं। सिनर्जी इज अ मस्ट, यानी कि जो बनाने वाला है मैन्युफैक्चरर, जो इस्तेमाल करने वाला है यूजर, ये दोनों का जो तालमेल है ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यूजर भी कुछ ऐसी चीज मांगे जो बनने में तकलीफ हो, और मैन्युफैक्चरर भी ऐसी चीज बनाए जो यूजर को ना पसंद हो, तो दोनों का तालमेल बहुत जरूरी, नंबर वन। नंबर टू, जब चीज हिंदुस्तान के अंदर बनती है तो उसके ऊपर जो मॉडिफिकेशंस करते हैं वो उसको बहुत आसानी होती है। अभी आपने Mark 1 बनाया है, आपने हमने बनाया हिंदुस्तान के अंदर, तो उसको Mark 2 बनाने में दिक्कत नहीं आती है, उसके मेंटेनेंस, सप्लाई, स्पेयर, उसको पाने में दिक्कत नहीं होती है। तो ये जो सिनर्जी है बहुत जरूरी है, जिसमें DRDO की भी काफी हद तक उसका सपोर्ट उनको मिलना चाहिए। हमारे पास बड़े बड़े जमीनें हैं, ग्राउंड्स हैं, जहाँ पे आप फायरिंग कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं आपका मटेरियल कैसे काम कर रहा है। तो ये जो सारा कुछ मिलकर के अकेडमिया है, IITs है, भारत के

0: लार्जेस्ट इंपोर्टर, और हो सकता है कई एक साल तक हमें ऐसे रहना पड़े, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स नॉट सो इजी। ये बहुत जो डिफेंस टेक्नोलॉजी होती है, इट इज वेरी वेरी नीच टेक्नोलॉजी, और उसको पाना आसान नहीं, चाहे वो सीकर्स हो या स्टिल्थ हो। और आप देख रहे हैं इस प्रकार से हमने अमेरिका से तेजस के लिए अपने इंजन मांगे, और कहा हो दो साल हो गए, दो इंजन नहीं आ पाए, दो साल हो गए। क्यों? उन्हें उनके भरोसे, उन्होंने कहा नहीं हमने तो फैक्ट्री बंद कर दी है, हम आपके लिए अभी बनाना शुरू करेंगे। इसलिए अगर आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा फिर एमसीए प्रोजेक्ट जो है वो कभी भी नहीं रुकेगा। तो बहुत जरूरी है ये डिफेंस में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट, जो बीच बीच में रुकावटें आती है ब्यूरोक्रेटिक, वो नहीं, वो सरकार ने हटा दिए, तो इससे जो है बहुत फर्क पड़ा है।
1: बनर्जी साहब, अगर 2013-14 की बात करें तो हमारा स्वदेशी रक्षा उत्पादन 43,786 करोड़ रुपए का था, जो अब चार गुना के करीब बढ़ गया है। बतौर पत्रकार, नीतिगत स्तर पर वो कौन कौन से डिसीजन आप मानते हैं जो गेम चेंजर साबित हुए हैं रक्षा क्षेत्र में उत्पादन के नजरिए से?
2: पहली बात तो ये कि भारत सरकार ने कोई 5-6 साल पहले एक लिस्ट निकाली रक्षा मंत्रालय के लिए कि ये आइटम जो है अब हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, आपने इंडिया में ही बनाने हैं। वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो लिस्ट अपडेट होती रहती है, उसको इंडिजिनाइजेशन लिस्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रबर की सील है, कोई हेलीकॉप्टर में लगती है, हर कुछ घंटे की फ्लाइट के बाद बदली जाती है, वो इंपोर्ट नहीं होगी। कुछ व्हीकल आर्टिलरी गन इंपोर्ट नहीं होगी, अब हम खुद बनाते हैं आर्टिलरी गन, ठीक है। पनडुब्बी, एक हैरानी वाली बात यह है कि हमने एक सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत बनाया है INS विक्रांत, जो हमने खुद बनाया है। नेवी के साथ अब 95-98% जो शिप है वो इंडिया में बनते हैं। हमने एक परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी यानी SSBN जिसे बोला जाता है नेवल पार्लेंस में, INS अरिहंत, उसके तीन आगे की श्रेणियां बना चुके हैं। ये सब हम कर चुके हैं। जो नीति चेंज हुई वो ये चेंज हुई, छोटी छोटी चीजें जो हम इंपोर्ट कर रहे थे वो इंपोर्ट नहीं होंगी। मेटलर्जिकल पार्ट्स, मूविंग पार्ट्स, हर हेलीकॉप्टर में, प्लेन में टैंक है उसमें या व्हीकल है उसमें मूविंग पार्ट होता है, वो इंपोर्ट नहीं होगा। तो वो जब पॉलिसी आई वो फिर इंडियन इंडस्ट्री ने उसको टेक ओवर कर लिया। जैसे मिसाल के तौर पर आज सुखोई और MiG-29 लड़ाकू विमान है भारतीय वायुसेना के पास, तकरीबन सुखोई 270 और MiG-29 कोई 60 के आसपास है, और MiG-29 नेवी के पास भी है करीब 40-45, तो 100 वो है और 370 विमान है हमारे पास जो कि रूसी ओरिजिन के हैं। उनके स्पेयर पार्ट्स तो अब आ नहीं सकते रशिया से, वहां तो जंग छिड़ी हुई है। तो वो अब इंडियन एयरफोर्स यहां पर लोकल इंडस्ट्री के साथ बात करके उसको यहीं पर बनाने का प्रयास कर रही है। भाई डाईकास्ट तो है ही ना, पार्ट तो आपके पास है, उसको बनाइए स्पेयर पार्ट को। दूसरी चीज, ड्रोन यानी UAV बहुत एक महंगी टेक्नोलॉजी है, जटिल प्रणाली है, उसको आप इंपोर्ट करने की बजाय अब एयरफोर्स फिर से प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ मिला के कह रही है कि तुम बनाओ हमारे साथ मिलकर। एक और जटिल प्रणाली है जिसे बोलते हैं 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, उसको हमने नाम दे रखा है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अब रक्षा मंत्रालय ने पहली बार निजी क्षेत्र को वो विमान के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जो कि 5वीं श्रेणी का लड़ाकू विमान है उसको बनाने के लिए निजी क्षेत्र में 3 कंपनियों को, 3 कंसोर्टियम्स को इनवाइट करा है कि अपनी बिड दीजिए। ये पहली बार है कि निजी कंपनियों को बुलाया गया। अगेन निजी कंपनियों को फिर से एक बोला गया है सबमरीन्स में भी, जैसे मैंने आपको बताया कि परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी हम बनाते हैं, मगर परंपरागत पनडुब्बी जिसे बोलते हैं हम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, वो उस पनडुब्बी अभी हम एक जर्मनी से बनने की तैयारी है, एक फ्रांस से पहले बन रही थी, अब उसको बनाने की भी तैयारी है इंडिया में। हेलीकॉप्टर अभी तक हम ALH बना रहे थे, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बना, और अब हम अपने आप एक बड़ा हेलीकॉप्टर Mi-17 एक थोड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर होता है वो हम रूस से इंपोर्ट कर रहे थे, अब उसकी जगह एक नया हेलीकॉप्टर आ रहा है, उसे बोलते हैं इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर। उसके हेलीकॉप्टर की 2 श्रेणियां होंगी, एक नेवी यूज करेगी और एयरफोर्स यूज करेगी। जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था 8-10 साल हमें ये पेस मेंटेन रखनी पड़ेगी तभी हम आत्मनिर्भर होंगे।
1: कुलकर्णी जी, आपसे थोड़ा और समझना चाहेंगे, जैसा कि ड्रोन तकनीक का बैनर्जी साहब ने जिक्र किया, रक्षा मंत्री भी कहते हैं कि नीतिगत समर्थन और नई पहल बहुत जरूरी है, इनोवेशन, डिफेंस स्टार्टअप्स भी काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जो भविष्य की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जैसे AI और ड्रोन, उस क्षेत्र में हम दुनिया के तमाम देशों की अगर तुलना करें तो कहां खड़े हैं और उस दिशा में क्या प्रगति हो रही है?
0: देखिए ड्रोन वॉर, हम लोगों को यकीन उसके साथ अडाप्ट होना है। हम देख रहे हैं ड्रोन वॉरफेयर किस प्रकार से जबरदस्त इस्तेमाल किया गया यूक्रेन और रूस की लड़ाई में, किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है ईरान के युद्ध में। तो ड्रोन वॉरफेयर तो बहुत ही जरूरी है, हमने खुद देखा ऑपरेशन सिंदूर में हमने किस प्रकार से एंटी ड्रोन पे पूरी कार्रवाई करके पाकिस्तान के जो ड्रोन है उनको गिराया, और वो भी ड्रोन जो पाकिस्तान को तुर्की ने दे वो गिराया, जो वो ड्रोन जो चीन ने पाकिस्तान को दिए वो गिराया। तो ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत जरूरी है, हम धीरे धीरे करके, ये नहीं कहूंगा कि वी आर एट द बेस्ट, बट डेफिनेटली नाउ वी आर गेटिंग एट दैट लेवल, और इसको भारत के अंदर बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम इंपोर्ट ही करते रहेंगे तो बहुत महंगा होगा ये। तो इसलिए आज की तारीख में अगर हम देखें स्टार्टअप देखें, जरूर चाहे स्टार्टअप के पास आपके पास चाहे नेविगेशनल डिस्ट्रिक्ट हो या उसके

0: स्पीकर्स हो या उसके पास फोटोग्राफिक देते, बहुत कुछ साधन है जो स्टार्टअप्स के पास है वो इस्तेमाल करें। तो बहुत जरूरी है इनोवेशन, बहुत जरूरी है ये स्टार्टअप्स को एनकरेज करना, बहुत जरूरी है रोबस्ट R&D, बहुत जरूरी है प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन और यूजर का उसके साथ इंटरफेस। यूजर को भी बहुत जरूरी है कि अपने आप को दूर ना रखे कि जब मेरे को सामान ला करके दिखाओगे तब मैं देखूंगा तब बताऊंगा ना जी अब तो फेल हो गया ना। यूजर एंड मैन्युफैक्चरर का इंटरफेस चलता रहना चाहिए क्योंकि आफ्टरऑल अगर हम ये हमारे लिए है, इसमें आत्मनिर्भरता तो भारत के लिए है और जब बढ़िया बनेगा और सस्ता और अच्छा बनेगा तो ऑटोमेटिकली विश्व में उसकी मांग बढ़ेगी। कहा जाता है कि भारत के अंदर जब कोई भी सामान टेस्ट होता है तो हमारे जो टेस्टिंग फैसिलिटीज है और टेस्टिंग जो पैरामीटर्स है जिसको GSQR हम लोग सेट करते हैं बहुत ऊंचे हैं और वो उस बात का जब एक दफा पास हो जाता है तो पूरा विश्व इंतजार कर रहा होता है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो स्मॉल आर्म्स हो, चाहे वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, उनको लगता है अगर भारत ने लिया है मतलब ये बहुत अच्छा है क्योंकि भारत सच में उसको इस्तेमाल करता है और जब इंट्रोड्यूस करता है बहुत कुछ देखभाल करने के बात करता है क्योंकि हमारे यहाँ पे -50 डिग्रीज भी है +50 डिग्रीज भी है तो दोनों तरीके के है, हमारे में तरह तरह के टेरेन कंडीशंस है तो ये सबको देखते हुए बहुत जरूरी है कि हम लोग जब भारत के अंदर करते हैं। इसलिए रक्षा मंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा, इनोवेशन बहुत जरूरी है, अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। जो चीज जरूरी नहीं कि जो चीज यूरोप में सक्सेस कर गई वो भारत में होगी, भारत का रिक्वायरमेंट अलग है तो उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत जरूरी है कि हम लोग ड्रोन को मद्देनजर रखते हुए, UAV को मद्देनजर रखते हुए, न्यू वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चाहे साइबर है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे स्पेस है, नेविगेशनल है, जियोस्टेशनरी ऑब्जेक्ट, हर एक चीज के साथ मिल करके अपना बनाना, अपने तरीके से उसको यकीन करना कि इसको कोई हैक ना कर सके, इसको कोई लड़ाई के मैदान में कोई भी हैकिंग नहीं होगी या जाम ना कर सके, तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है ये हम भारत के अंदर बनाए और इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो भी बिजनेस कोई भी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो मुझे लगता है काफी थ्रस्ट दिया जा रहा है क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर बने हैं उसमें बहुत जरूरी है, या अगर ये हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ ने हमारे को एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है नेतृत्व रखी तो बहुत जरूरी है कि डिफेंस सेक्टर में भी हम लोगों ने उसी आले दर्जे पे अपना प्रोडक्शन होना चाहिए जिससे कि हमें गर्व होना चाहिए और हमको भी लगना चाहिए कि हमारे शक्ति से हमारा मनोबल ऊंचा हुआ।
1: बनर्जी साहब, जो आकाशवाणी के श्रोता दूर दराज के गांव से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमने बड़े बड़े आंकड़ों पर चर्चा की, वो ये जानना चाहते हैं जब भारत जैसे देश का रक्षा उत्पादन इस तरीके से बढ़ता है तो एक सामान्य नागरिक को और देश की अर्थव्यवस्था पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है।
2: इसके कई सारे आंसर है। पहला आंसर ये है कि जब हम अपने आप ही बनाएंगे तो हमारे को सबसे पहली चीज फैक्ट्रियां खड़ी होंगी, फैक्ट्रियां खड़ी होंगी तो एक कारीगर चाहिए और ये मैं लेबर की बात नहीं कर रहा हूँ, कारीगर की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज, जब वो फैक्ट्री खड़ी होगी वहां 100-500 आदमी काम करेंगे, उनके आसपास हाउसिंग की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल आएगा, जॉब्स आएंगी और सबसे बड़ी बात अभी तो डीजी सेक्टर ने शुरू नहीं किया, जब शुरू करेंगे अच्छी तरीके से तो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे लगाने पड़ेंगे। जब पैसे लगेंगे तो जो इंजीनियर हैं R&D के इंजीनियर हैं, लड़के पढ़ लिख के आए हैं IIT से और इंजीनियरिंग कॉलेज से, उनको मौका मिलेगा। मेटलर्जिकल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, इन सब की जरूरत पड़ेगी जब आप ग्रो करेंगे तो, जब आपके एक्सपोर्ट का ऑर्डर आएगा तो इन सब की जरूरत पड़ेगी। निचले स्तर पर कारीगर, मैं लेबर नहीं कह रहा हूं बिकॉज ये एक बड़ा स्पेशलाइज टास्क है, दिस इज नॉट लेबर, वेरी स्पेशलाइज टास्क, तो आपको ट्रेंड मैन पावर चाहिए और वो ट्रेंड मैन पावर हमारी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री या जो ITI हैं वो सिखाते हैं, वहां से लड़के लड़कियां चाहिए, ट्रेन मैन पावर। एक जैसे छोटी सी आपको उदाहरण देता हूं, एक जहाज में अगर एक रिवेट भी लगाना होता है वो एक स्किल्ड जॉब है, हाईली स्किल्ड जॉब है, कई सालों के परीक्षण के बाद वो लगता है एक रिवेट भी। जब आप जहाज में जाते हैं, एक सिविल एयरक्राफ्ट में जाते हैं, आपको उसके विंग पर रिवेट लगे देखेंगे जो उसको होल्ड करते हैं, बड़ा हाईली स्किल्ड जॉब है। और सोच लीजिए मिलिट्री में कितना हाईली स्किल्ड जॉब होगा, वो जब लड़ाकू विमान की स्पीड ही 2000 किलोमीटर है तो उसको एक डिफरेंट किस्म की फ्रिक्शन चाहिए, डिफरेंट किस्म का मेंटेनेंस चाहिए, मेंटेनेंस इंजीनियर चाहिए आपको, MRO हब यानी मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल हब बनेंगे। साफरान एक इंजन मेकर है फ्रांस का, उन्होंने यहां बनाया, साफरान के इंजन रफाल में यूज होते हैं, तो आपको इंजीनियर चाहिए उनके। तो ये जॉब मार्केट पे इंपैक्ट करता है सबको, छोटे शहरों के लड़के लड़कियों को इंपैक्ट करता है जो कि पढ़ लिख के आगे जाएंगे।
1: जी हाँ कुलकर्णी जी, अगर इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं, हमने भारत की उपलब्धियों की चर्चा की, थोड़ी चर्चा चुनौतियों की भी कर लेते हैं कि रक्षा निर्माण के क्षेत्र में अभी किस तरह की चुनौतियां हैं भारत के सामने और उसको डील करने के लिए सरकार किस तरह का काम कर रही है।
0: अपने को मालूम है कि हमारे दुश्मन कौन है, इसमें तो ये सोचने की तो बात नहीं, और पैदा हो सकते हैं दुश्मन, क्योंकि कोई भी जो इस तरह के देश है वो भारत को उन्नति तरक्की करते हुए देखना पसंद नहीं करते। सबको लगता है कि भारत गरीब है, तो भारत अपने बलबूते पे एक लोकतंत्र होने के नाते जिस प्रकार से धीरे धीरे करके उस पायदान पे जा पहुंचा है, वहां पर अगर अपने को रहना है उससे और आगे बढ़ना है। अगर नंबर वन जीडीपी वाला अगर 22 ट्रिलियन डॉलर का है, नंबर टू तकरीबन 17-18 ट्रिलियन डॉलर का है, तो नंबर तीन 4-5 पे नहीं रुक सकता है, उसको भी कम से कम 14-15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बननी पड़ेगी। तो अपने को बहुत आगे जाना है, उसमें बहुत जरूरी है कि हम सबने मिलकर के सोचा है यह हमारा देश है, और उस देश को यकीनन जो भी है शक्ति में शांति है। हम जो इतना सब कुछ बनाते हैं लड़ने के लिए नहीं बनाते, यकीन करने की कि लड़ाई अगर होगी तो जिसने जो भी लड़ेगा उसको मालूम है कि उसने मधुमक्खी के चक्कर में उंगली मारी है और अब वो मधुमक्खियां जो है भिन्नभिन्न गई, उनको नुकसान होगा, ये वो बात है। और इसके लिए हम लोगों को सतर्कता और सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है हर एक फील्ड में। और ये कह रहे टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पहले 10-15 साल में एक बार चेंज होती थी, अपने पास हथियार जो पुराने होते थे वो चलते, अब नहीं, टेक्नोलॉजी 3-5 साल में बदली हो जाती है। तो आज देखिएगा कौन सा है वो स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3, फटाफट कौन से जनरेशन है 1, 2, 3, 4, 5। अब हवाई जहाज देखिए आपने रफेल इंपोर्ट किया 4.5 जनरेशन, 5th, 6th जनरेशन स्टिल। तो आप देखते हैं किस तरीके से लगातार जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होती है। जो जब अब भारत के अंदर हम बनाते हैं, हम आत्मनिर्भर होते हैं, तो हम उसको अपग्रेड करने की काबिलियत भी रखते हैं। हमें मालूम है हमने इसको किस तरीके से बनाया, इसको किस तरह, जो चाहे वो इंडियन ओशन में हमें शिप्स इस्तेमाल करनी है, सबमरीन इस्तेमाल करनी है, डिस्ट्रॉयर इस्तेमाल करने हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने हैं, एंडमैन निकोबार में आपने बहुत बड़ा सेटअप करना है, चाहे अपने एयरक्राफ्ट है, चाहे अपने यूएवी है, चाहे अपने ड्रोन वॉरफेयर है, चाहे अपने लाइट टैंक्स है, चाहे अपने आर्टिलरी पीसेस है, चाहे अपने स्मॉल आर्म्स है, या अपना बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, हेलमेट्स हैं, जूते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड का इक्विपमेंट है, हाई ऑल्टीट्यूड का क्लोथिंग है, सब कुछ भारत के अंदर बनना है। और ऐसा बनना है कि हर एक भारत के सिपाही को लगना चाहिए हाँ ये मेरे देश में बना है। और क्योंकि हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, विश्व में जाकर के सब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हमारा सैनिक यूएस के सैनिक के साथ मिलता है, हमारा सैनिक साउथ एशिया में देश है उनके सैनिकों के साथ मिलता है, बाहर देशों के साथ मिलता है, बाहर के देश के सैनिक भारत में आते हैं, वो देखते हैं भारत के अंदर किस तरीके से लड़का खड़ा है, उसके पास क्या हथियार है, वो किस तरीके से बातचीत करता है, जो मनोबल है वो आपका ऑटोमेटिकली ऊंचा होता है जब मैंने ट्रेन वेल, आपका इक्विपमेंट अच्छा है, आपको आपके इक्विपमेंट के ऊपर पूरा विश्वास है, तो आपको मालूम है कि जीत मेरी होगी, इसमें कोई शक नहीं है, जीत मेरी होगी, मैंने मेहनत करनी है, मैंने कोशिश करनी है, सरकार ने अपनी पूरी कोशिश की, अब जिम्मेवारी मेरी है। जब ये माहौल एक पैदा हो जाता है देश के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि देश तरक्की के रास्ते पे है, और देश जिस मुकाम पर जाना चाहिए भारत को वो मुकाम जाएगा।
1: बैनर्जी साहब, कार्यक्रम में समय कम है, आखिर में आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालिए कि जब रक्षा उत्पादन भारत का बढ़ रहा है तो इससे भारत की विदेश नीति और रक्षा कूटनीति को भी मजबूती मिल रही है, अगर हाँ तो कैसे?
2: जी बिल्कुल, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि हमने ब्रह्मोस 3 ऐसे मुल्कों को बेची है जिनका चीन के साथ रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है, वो साउथ चाइना सी में जो विवाद है उसका पार्ट है, वो उनमें से 2 एटलीस्ट फिलीपींस और वियतनाम, और तीसरा इंडोनेशिया जिसको हमने बेची है, ये ब्रह्मोस बड़ी स्पेसिफिक ब्रह्मोस उनको बेची है कि लैंड से चलेगी टुवर्ड्स द शिप, जमीन से सामने के जो पोते मारने के लिए। दूसरी बात जो आपने बोली कैसे हमारी कूटनीति पे फर्क पड़ता है, हमारी कूटनीति पे जैसे तुर्की ने कुछ दिन पहले बोला कि भारत हमको इनसर्कल कर रहा है, आर्मेनिया को आर्म कर रहा है, साइप्रस को, ग्रीस को, जिस जिस से तुर्की की नहीं बनती उसको हम वेपन हथियार सप्लाई कर रहे हैं। अब कूटनीति में एक और बात आती है, जैसे अब आप फ्रांस के साथ आपका बहुत अच्छा टाई अप है, यूएसएसआर यानी अब सोवियत रशिया के साथ, और रशिया के साथ मॉस्को मान लीजिए बहुत अच्छा टाई अप है, विमान बनाने के लिए, इंजन बनाने के लिए, को प्रोडक्शन के लिए, टैंक्स को प्रोडक्शन के लिए, इंजन के, हमारे जो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं उसमें साफरन नामक एक कंपनी है फ्रांस की, उसके इंजन लगे हुए को 20 साल से, इंजन यही इंडिया में बनते हैं, रॉ मटेरियल भी यहीं से आता है, यहीं के लड़के लड़कियां उन फैक्ट्रीज में काम करते हैं। दूसरी बात, एयरबस का C-295 विमान वडोदरा में फाइनल असेंबली लाइन लगी हुई, उसकी कुछ इंपोर्ट होता है, कुछ यहाँ बनता है, कुछ तो बना रहे। मेरा मानना यह है एक टारगेट हमको रख के चलना चाहिए, हमने बहुत अच्छा काम किया है, 1,78,000 करोड़ पे आ गए, मगर एक कहावत है ना कि अभी रास्ता बहुत लंबा है, और वो रास्ता वाकई में बहुत लंबा है। और इसमें एक तो हमारे मुल्क में एक बड़ी रियलिटी आनी चाहिए कि हम हर चीज को क्रिटिसाइज करना चाहिए, 30 साल लग गए जी 30 साल लगते हैं जहाज बनाने को, बिकॉज आपके को हाथ पकड़ के सिखाता नहीं है, कोई टीचर नहीं है वहां कि आपने ये बनाना, देयर इज नो टीचर, आपने खुद ही गलती करनी है, गिर के फिर सीखना है, और कोई बताएगा नहीं आपको कि इंजन कैसे बनेगा, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा विमान का डिजाइन कैसे और उड़ता क्यों है, कितना थ्रस्ट चाहिए इंजन को, इसमें वेपन कैसे लगेंगे, वेपन फायर कैसे होंगे, रडार ने वो वेपन कैसे उठाने हैं, जमीन से आपने जब मिसाइल चलानी है तो रडार की क्या फ्रीक्वेंसी है, रडार उसको पकड़ के मिसाइल को बताएगा ऑटोमेटिकली कि फायर कर दो, ये कुछ सिखाएगा नहीं कोई, देयर इज नो टीचर, आप खुद ही टीचर हो तो लेट अस नॉट क्रिटिसाइज कि 30 साल लगे, 20 साल लगे, लगते हैं इतने जी, बिल्कुल लगते हैं, तेजस को 33 साल लगे जी, बिल्कुल लगते हैं, परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी को 30 साल लगे जी, बिल्कुल लगते हैं इतने, हम जर्मनी से या फ्रांस से या अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकते, वो एक बहुत विकसित मुल्क है, हम अभी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो एक तो नो क्रिटिसिज्म, दूसरा R&D, वेरी स्ट्रॉन्ग R&D, अनुसंधान जिसे बोलते हैं हिंदी में, बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए हमें इस टाइम, नो शॉर्टकट्स, जहां शॉर्टकट लगा वहां खेल खत्म है, नो शॉर्टकट्स, बेंचमार्क शुड बी वेरी हाई, रक्षा मंत्रालय ने बेंचमार्क बहुत हाई रखे हैं, अभी बेंचमार्क हाई रखना पड़ेगा, नो शॉर्टकट्स, R&D बहुत स्ट्रॉन्ग, ये वे फॉरवर्ड है।
1: कुलकर्णी जी, कार्यक्रम का आखिरी सवाल आपसे है, जैसा कि बैनर्जी साहब कह रहे हैं कि राह पनघट की आसान नहीं होती है लेकिन कदम तो बढ़ाने ही होते हैं, तो अगले 5 वर्षों में भारत के रक्षा उत्पादन के नजरिए से आप कहां देखते हैं?
0: मेरे को लगता है धीरे धीरे करके कम से कम अगर हम अपना इम्पोर्ट जो है 21% तक रखें और 80% हम अपना खुद बनाने की कोशिश करें, और जब हम खुद बना रहे वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इसमें कोई ये नहीं कट कॉर्नर्स करो ना, ये मानना करना पड़ेगा ये हमारा है और हमने इसको आगे दर्जे का बनाना है, अगर हमने ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करना है तो सबको लगना चाहिए, और ये तभी होगा जब हम एक बात माने कि ये हमारे लिए बना है, हमने इसको इस्तेमाल करना है। मुझे लगता है वी हैव अ ब्राइट फ्यूचर, अगले 5 साल के अंदर एक तो हमारा एक्सपोर्ट जो है मुझे लगता है उसमें काफी जबरदस्त बढ़ोतरी, अभी तकरीबन 40-45 हजार करोड़ का है, वो खुद ही 50 हजार करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, और अपना जो इंटरनल जो अपना डिफेंस प्रोडक्शन, जैसे अभी डोमेस्टिक प्रोडक्शन 1,78,000 करोड़ पे पहुंचा है, उम्मीद करता हूँ ये भी 3,00,000 करोड़ पार कर जाएगा। हमारे पास बहुत अच्छे दिमाग हैं, हमारे पास कैपिटल है, हमारे पास इच्छा है, करने की काबिलियत है, और हम करेंगे, चाहे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा हो, बट मेक इन इंडिया विल बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड।
1: आज की चर्चा से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं बल्कि एक सशक्त राष्ट्रीय संकल्प है जो अब धरातल पर परिणाम देता दिखाई दे रहा है। यह बदलाव केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक स्वतंत्रता और वैश्विक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। जब किसी राष्ट्र के सैनिकों के हाथों में उसके अपने देश में बने हथियार और तकनीक होती है तब आत्मविश्वास भी बढ़ता है और रणनीतिक स्वायत्तता भी बढ़ती है। आयातक से निर्यातक बनने की ये यात्रा आसान नहीं थी लेकिन ये सफर हमें बताता है कि दूरदर्शी नीतियां, तकनीकी नवाचार और सामूहिक प्रयास किसी भी लक्ष्य को संभव बना सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ता रहे, हम नित नई ऊंचाइयों को छूते रहें, हमें कार्यक्रम में अनुमति दीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी साहब आपका, अजय जी आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: थैंक यू।
0: जय हिंद।
3: अभी आप सुन रहे थे रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम एक फनकार, जिसमें दोस्तों आज हम मुकेश कुमार के बारे में बातें भी करेंगे और उन्हीं के फिल्मों के गाने यानी कि उनके गाने जो उन्होंने फिल्मों में गाए हैं वो आपको सुनाएंगे। आपको पता है मुकेश कुमार जिनके हमने इतने सारे गाने सुने हैं आज तक और जिनके गानों के हम आज भी दीवाने हैं, उनका पूरा नाम मुकेश चंद्र माथुर था। जी हाँ, ऐसे तो मुकेश कुमार नाम से उन्हें हर कोई जानता है, बहुत ही कम लोगों को ये पता था कि उनका पूरा नाम मुकेश चंद्र माथुर था। बताने कि इनकी आवाज़ में ना वो एक कमाल का जादू था, लेकिन आपको पता है उनकी आवाज़ के इस जादू को उनके एक रिलेटिव ने जिनका नाम मोतीलाल था तब पहचाना जब उन्होंने अपनी बहन की शादी में उसे गाते हुए उन्हें सुना। मोतीलाल जी उन्हें बम्बई ले गए और अपने घर में रहने के लिए जगह दी और साथ ही साथ ना उनके सिंगिंग के लिए उनकी सिंगिंग के प्रैक्टिस के लिए उन्हें रिसोर्सेज अवेलेबल करवाए। इस दौरान ना मुकेश जी को फिल्म निर्दोष के मुख्य कलाकार का भी काम मिला फिर, लेकिन प्लेबैक सिंगर के तौर पर उनको अपना पहला काम फिल्म पहली नज़र में मिला था। बता दें कि मुकेश जी ने हिंदी फिल्म में जो पहला गाना गाया वह था दिल चलता है तो चलने दे, जिसमें अभिनय खुद उनके रिलेटिव मोतीलाल जी ने किया था। इस गीत में मुकेश के जो आइडियल सिंगर हैं KL सहगल जी के प्रभाव का भी अगर आप कभी सुने ना तो वो इफ़ेक्ट दिखेगा और होता भी है। हम जिसे आइडियल मानते हैं उनका असर हम पर दिखता है। बता दें कि 1959 में अनाड़ी फिल्म में सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी के लिए उनको बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। मुकेश जी की ना बता दें कि 1914 में इन्हें मैंने बताया ना कि आपको फिल्म निर्दोष के लिए इन्हें जो है पहला मौका मिला था। इंडस्ट्री में ना शुरुआती दौर बहुत मुश्किल भरा था, लेकिन KL सहगल को इनकी आवाज़ बहुत पसंद थी। इनके गाने को सुन के एल सहगल भी दुविधा में पड़ गए थे। 40 के दशक में मुकेश का अपना प्लेबैक सिंगिंग एक स्टाइल था। नौशाद के साथ उनकी जुगलबंदी एक के बाद एक सुपरहिट गाने दे रही थी। उस दौर में मुकेश की आवाज़ में सबसे ज़्यादा गीत दिलीप कुमार पर फिल्माए गए थे। 50 के दशक में इन्हें एक नई पहचान मिली जब इन्हें राजकुमार की आवाज़ कहा जाने लगा। कई साक्षात्कारों में यानी इंटरव्यूज़ में खुद राज कपूर ने अपने दोस्त मुकेश के बारे में कहा कि मैं तो बस शरीर हूँ, मेरी आत्मा तो मुकेश है। फिलहाल दोस्तों आपसे ना इनके जीवन के बारे में और भी बहुत सारी दिलचस्प बातें हम करेंगे, लेकिन फिलहाल आइए सुनते हैं फिल्म तीसरी कसम से इनका गाया हुआ एक गाना।

जी हाँ दोस्तों। अच्छा मैंने मेरे साथ ना इस गाने के कुछ यादें जुड़ी हैं। आपको याद है बचपन में, मतलब जो मेरी उम्र के हैं या फिर जिन्होंने अपनी जवानी में ये गाना सुना था। मुझे याद है कि बचपन में मैंने जब ये गाना सुना ना, तो मुझे लगा यार, जो हकीकत में बताता हूँ कि इन दिनों मुझे मुकेश जी का नाम नहीं पता था, बट ये पता था कि इनकी आवाज़ सुनता था ना, तो लगता था यार ये उन्हीं की आवाज़ है। आज क्योंकि पहली बार जब मैंने यह गाना सुना तो मुझे लगा है कितना बढ़िया है, और मुझे कुछ मतलब नहीं पता था कि इस गाने में क्या कहना चाहते हैं लोग, क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, आखिर दुनिया क्यों बनाई, मतलब इन सारी चीज़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन मुझे एक गाना सुनने में जो मज़ा आता था, मतलब वो अलग ही था, वो फीलिंग अलग थी, वो एहसास अलग था, वो धुन, कहते हैं ना कि दिल में एक सनसनी सी फैल जाती थी, जो आज भी होता है अगर आप उन सिंगर्स के गाने सुने जिन्हें आप बचपन से सुनते आए हैं। मतलब हम 90s के लोग बचपन में 90s के ट्रैक्स तो सुनते ही थे, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स थे उनके साथ अगर कभी बैठे तो अक्सर हमें ना पुराने ट्रैक्स सुनने के लिए मिल जाते थे। मैंने ये पहली बार ये गाना तब सुना था। फिलहाल मुकेश जी के बारे में बात करें तो बता देना कि प्लेबैक सिंगिंग के लिए मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में अपना मकाम हासिल कर लेने के बाद ना, इन्हें कुछ नया करने की चाह जगी, इसलिए इन्होंने बतौर प्रोड्यूसर इन्होंने फिल्में बनाई साल 1951 में। इन्होंने फिल्म मल्हार और 1956 में फिल्म अनुराग बनाई। अभिनय का शौक बचपन से होने के कारण माशूका और अनुराग में बतौर हीरो भी आए, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये दोनों फिल्में बहुत कुछ कर नहीं पाई। कहते हैं कि इस दौर में मुकेश आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। बतौर अभिनेता निर्माता मुकेश को सफलता नहीं मिली। गलतियों से सबक लेते हुए फिर से सुरों की महफिल में लौट आए। 50 के दशक के आखिरी सालों में मुकेश फिर से प्लेबैक सिंगिंग के शिखर पर पहुंच गए। यहूदी, मधुमती, अनाड़ी जैसे फिल्मों में उनकी जो गायकी को एक नई पहचान मिली। फिर जिस देश में गंगा बहती है के गाने के लिए वे फिल्म फेयर पुरस्कार से नामांकित हुए। 60 के दशक की शुरुआत में मुकेश ने कल्याण जी, आनंद जी के डम डम डिगा डिगा, नौशाद का मेरा प्यार भी तू और एसडी बर्मन के नगमों से मतलब लोगों को अपने इशारों पे नचाया। और फिर राज कपूर की फिल्म संगम में शंकर जयकिशन द्वारा संगीत पैक कर दिया गाना, जिसके लिए वह फिर से फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेटेड हुए। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन जो एक कॉमन बात है वो ये कि आज भी अगर हम इनके गाने सुने तो दिल कहता है हाय। तो चलिए बिना किसी देर के आपको मुकेश जी का एक और गाना सुनाता हूँ, फिल्म बम्बई का बाबू से। आइए इस गाने को सुनते हैं।

अच्छा, ये गाने सुन के लगता है ना कि यार हम पुराने दिनों में लौट गए। ये गाने बहुत रेयर होते हैं सुनने के लिए, मतलब आप इन गानों को नॉर्मली रेडियो पे ही सुन सकते हैं कि ये प्लेलिस्ट में बहुत ही कम मिलते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जो लोग भी इन गानों का शौक़ रखते हैं, आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जिया है। मतलब जीने का तो पता नहीं, पर समझा बहुत अच्छे से है, क्योंकि इन गानों के अगर आप मतलब देखें और साथ में मुकेश जी की आवाज़ हो तो फिर चार चांद लग जाते हैं। बता दें कि प्लेबैक सिंगिंग में 60 के दशक में इन्होंने ना कल्याण जी, आनंद जी के लिए डम डम डिगा डिगा और नौशाद के लिए जो गाने गाए, उसके बाद 60 के दशक पे इनका जो करियर था अपने एकदम पीक पे था, और प्लेबैक सिंगिंग में इन्हें फिर से खुमारी छाई कुछ नया प्रयोग करने की। उस वक्त के जो एक्टर्स थे उनके मुताबिक इनकी गायकी भी बदल रही थी, जैसे कि सुनील दत्त और मनोज कुमार के लिए गाए गीत। 70 के दशक का आगाज़ मुकेश के जीना यहाँ मरना यहाँ गाने से किया। उस वक्त के हर बड़े फिल्मी सितारे की ये आवाज़ बन गए। साल 1970 में मुकेश को मनोज कुमार की फिल्म पहचान के लिए, पहचान के गीत के लिए दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला, और साल 1972 में ही मनोज कुमार की ही फिल्म के गाने के लिए इन्हें तीसरी बार भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अब मुकेश ज़्यादातर कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर डी बर्मन जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ ही काम कर रहे थे। और भी है इनके बारे में बताने के लिए, फिलहाल आपको सुनाते हैं फिल्म कभी कभी से मुकेश जी की आवाज़ में ये गाना। उसके बाद हम करेंगे आपसे आगे बातें।

दोस्तों, अभी तक हमने मुकेश जी के तीन गाने सुने और तीनों ही अलग अलग टाइप के। मैं बस यही कहना चाह रहा था कि मुकेश जी की खासियत यही थी कि उन्होंने हर तरह के गाने गाए। बता दें कि साल 1974 में फिल्म रजनीगंधा के लिए मुकेश जी को राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। विनोद मेहरा और फिरोज खान जैसे नए नए अभिनेताओं के लिए भी इन्होंने गाने गाए। 70 के दशक में भी इन्होंने अनेक सुपरहिट गाने दिए, जैसे फिल्म धर्म कर्म का एक दिन बिक जाएगा, फिल्म आनंद और अमर अकबर एंथनी की वो बेहतरीन नगमे। साल 1976 में यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी के लिए भी, जो अभी हमने गाना सुना, ये भी उसी वक्त की फिल्म है। इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, जो कि चौथा था, और इस गाने ने उनके करियर में फिर से एक नई जान फूंक दी। आपको बता दूं कि मुकेश जी ने अपने करियर का आखिरी गाना अपने दोस्त राज कपूर की फिल्म के लिए ही गाया था, लेकिन 1978 में इस फिल्म के जारी होने से 2 साल पहले ही 27 अगस्त को मुकेश जी का दिल का दौरा उन्हें पड़ा और उनका निधन हो गया। लेकिन वो आज भी जिंदा हैं हमारे अंदर अपनी आवाज़ के जरिए। तो चलिए आपको सुनाते हैं इसी की तरह फिल्म मिलन से मुकेश जी का ये गाना, और इस गाने के बोल लिखे आनंद बख्शी ने। मैंने बताया कि इन्होंने और जिन सिंगरों के साथ, मतलब म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ सबसे ज़्यादा काम किया, उनमें से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी थे। तो इसके म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक फनकार। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है और प्रस्तुत है अब फिल्म संगीत पुरानी फिल्मों से, जिसमें आइए सबसे पहले सुनते हैं फिल्म हमराज से महेंद्र कपूर की आवाज़ में ये गाना।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको सुनाते हैं मुकेश कुमार की आवाज़ में फिल्म जिंदगी और तूफान का ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं राम अवतार त्यागी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

दोस्तों, ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत पुरानी फिल्मों से। आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनाते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म अभिमान का ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं मजरूह ने, संगीत है SD वर्मन का।

जी हाँ दोस्तों, इस कमाल के गाने के बाद चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। और अब आपको सुनाते हैं महेंद्र कपूर की आवाज़ में फिल्म गुमराह का ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं साहिर ने, संगीत है रवि का।

जी हाँ श्रोताओं, अजनबी बनने से पहले चलिए आपको सुनाते हैं आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म जुर्म से कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पुरानी फिल्मों से। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमिया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत

0: अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनाम्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6वां सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
1: 2 प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। 3rd प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर 4th प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आर कंट्री।
0: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।